हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 15 अगस्त सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 और 45 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती हमारी आज की सभा। सभी श्रोताओं को हमारी ओर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।

FM 102.1 MHz पर ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है हिंदी समाचार। आप सुनेंगे कुछ ही पल में हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही वायुसेना के दो MI-17 हेलीकॉप्टर समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा करेंगे। ध्वजारोहण के साथ 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इसके बाद प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 5,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। उन्होंने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया।
1: हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने भावी पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया।
1: प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की स्वीकृति दी। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल हैं। अमेरिका के सीनेटरों और नेताओं ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा कि दोनों देशों की भागीदारी मजबूत है और भारत की उपलब्धियां तथा भारत के लोग विश्व को प्रेरित करते रहते हैं। न्यूयॉर्क से लेकर सिएटल तक अमेरिका के राज्यों के गवर्नर और सीनेटरों ने कहा है कि उनके यहां 15 अगस्त का दिन भारत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने फिर कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हो रहे अत्याचार और सीमा पार आतंकवाद के लिए इसका इस्तेमाल किए जाने पर चिंता व्यक्त करनी चाहिए। एक प्रश्न के उत्तर में श्री जायसवाल ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में भारत ने अफगानिस्तान के साथ कई बैठकें की हैं। अफगानिस्तान के कई मंत्री भारत के दौरे पर आए हैं जिनसे विकास, सहयोग, व्यापार और संपर्क जैसे क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत हुई है। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित परिवारों को मुआवजा या पुनर्वास न मिलने के आरोप गलत और भ्रामक हैं। मंत्रालय ने कहा है कि अधिकांश पात्र परिवारों को पूरा मुआवजा और पुनर्वास लाभ मिल चुका है और कुछ मामलों में केवल प्रकृत्यात्मक औपचारिकताएं शेष हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना उद्योग की अपेक्षाओं और नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के कौशल के बीच की दूरी कम करने में मदद के लिए तैयार की गई है। 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पात्र हैं और उन्हें इंटर्नशिप करने पर प्रतिमाह न्यूनतम 9,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलती है। दिल्ली की विशेष फास्ट ट्रैक अदालत ने नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को आगे की जांच करने की अनुमति दे दी है। ब्यूरो ने इस मामले में 13 आरोपियों के अलावा अन्य साजिशकर्ताओं की जांच जारी रखने की अनुमति की मांग की थी जिनके विरुद्ध पहले ही आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन।

एक बार कृष्ण पूछते हैं द्रौपदी से, तुमने किसी को वस्त्रदान किया है? कुछ क्षण वह सोचती रही, फिर एक दृश्य मानस पटल पर उभरा। किसी नदी के किनारे द्रौपदी देखती है एक साधु कमर भर जल में खड़ा है। स्नान करते हुए उसका वस्त्र बह गया है, वह लज्जा से बाहर निकल नहीं पा रहा। द्रौपदी अपनी नई ओढ़नी फेंककर साधु को देती है। एक बार कृष्ण की उंगली कट गई, उससे रक्त निकलने लगा। वहां उनकी रानियां थी पर उन्हें कुछ न सूझा, परंतु द्रौपदी ने अपनी नई ओढ़नी फाड़कर उंगली बांध दी और रक्त निकलना बंद हो गया। कृष्ण ने कहा, अरे द्रौपदी, तुमने तो अपनी नई ओढ़नी फाड़ दी, यह ऋण रहा मेरे ऊपर। लोकगीत में कहा गया है, कृष्ण ने प्रतिज्ञा की मन ही मन, दूंगा ताक बराबर सारी। कॉल किया तब मुरारी ने, कौन जानता था कि द्रौपदी चीरहरण होगा और कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे। सूरदास की पंक्तियां हैं, पूरे चीर बहुरी तनु कृष्णा ताके भरे जहाज, खेंच खेंची थाकियो दुशासन हाथ नहीं उपजे खाज। सूर सागर में कहा गया है, दुशासन झटके से सायं तक जब साड़ी खींचता था तो एक साथ 52 गज साड़ी निकलती थी, जिसमें कृष्ण लीला के नाना चित्र थे। धृतराष्ट्र जन्मांध थे, अपना 105 पूर्व जन्म देख सकते थे। उन जन्मों में उन्होंने कोई पाप नहीं किया, फिर भी जन्मांध क्यों हो गए? यह प्रश्न कृष्ण से पूछा उन्होंने। कृष्ण ने टालना चाहा, पर धृतराष्ट्र ने कहा कि पांडवों के समान मैं भी आपका भक्त हूं। कृष्ण ने उन्हें 106वें पूर्वजन्म को देखने की दिव्य दृष्टि दी। वह देख रहे थे कि वह एक बालक हैं, वृक्ष पर चढ़ जाते हैं और पक्षी शावकों की आंखें तिनके से फोड़ते जाते हैं। उत्तर मिल गया उन्हें। फिर अगला प्रश्न, फिर भी महाराज मैं राजा हूं, पिछले जन्मों के पुण्य अर्जित हैं आपके, जिसके कारण आप पृथ्वी का सुख भोगते रहे, पर कर्म का फल तो सुनिश्चित है। वह 106वें जन्म में मिल गया आपको, कृष्ण ने उत्तर दिया। इन दो प्रसंगों से यह सत्य उभर कर सामने आता है, यथा कर्म तथा फल, जैसा बोना वैसा काटना। तो आम कहां से होए? ऐसा कार्य भी नहीं करना जो असंभव हो, नामुमकिन हो, अरण्य रोदन सिद्ध हो जाए। क्यों कीजिए ऐसे जतन, जाते काज न होए, पर्वत में खोदे कुआं कैसे निकसे तोए। पर्वत पर कुआं खोदा जाए तो जल थोड़े ही निकलेगा, फिर बबूल बोने वाला आम कहां से पा सकता है? कर्म विपाक का ऐसा सिद्धांत है, राम कृष्ण विष्णु इंद्र आदि को भी कर्म का फल भोगना पड़ा है, वे भी कर्म सिद्धांत से बच नहीं सकते। कर्म कर्मेंद्रिय से संपन्न होगा तभी फल होगा, ऐसी बात नहीं मन से सोचा कर्म हो गया। किसी को आहत करना चाहा, हिंसा हो गई, किसी को मदद करना चाहा, सहयोग का भाव आ गया। जो बलि देता है, जो देखता है, जो इसे सुनता है, जो उसका प्रसाद पाता है, सब हिंसा के भागी हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे जिस रूप में चाहता है, मानता है, मैं उसे उसी रूप में मिलता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। अतएव कर्म के लिए मन को तैयार करना होता है। मन से चाह कर भी कर्म न हो पाया तो भी उसका प्रभाव तो हो ही जाएगा। किसी की संपत्ति देखी, सुंदर चीज देखी और लोभ जागृत हो गया उसे पाने का, हथियाने का, यह भी पाप कर्म है। इसीलिए मन वचन और कर्म की पवित्रता और एकता वांछनीय है। मन से सोचकर खूब विचार कर निर्णय लेना, फिर वचन से कथन करना और आचरण से कर्म में उतारना, यह लक्षण महात्मा का है, मन वचन कर्म की एकता। इसलिए शास्त्र पग पग पर सावधान रहने की सलाह देते हैं कि कुछ चूक न हो जाए, स्खलन न हो जाए, कर्म में विचलन न आ जाए। दृष्टि से पवित्र कर पग बढ़ाना, वस्त्र से छान कर जल पीना, सत्य से पवित्र कर वाणी निकालना और मन से पवित्र कर जीवन में आचरण करना उत्तम पुरुष के लक्षण हैं। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूतम वदे द्वायम, मनःपूतम समाचरेत। गोस्वामी तुलसीदास भी कर्म की प्रधानता और कर्मानुसार फल का समर्थन करते हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तासु फल चाखा। काश
कर्म विपाक के सिद्धांत पर अमल किया जाता।

आप सुन रहे थे आज का चिंतन। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:11 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

0: आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से।
1: पहाड़ों वाली माता ने राजा और उसकी पुत्री का दुख हर लिया। उनके वरदान से पुत्री का निष्प्राण सुहाग जीवित हो गया। पुत्री के व्रत से मां प्रसन्न हो गईं। राजा की श्रद्धा भक्ति अष्टभुजाधारी मां ने स्वीकार कर ली। वैष्णो माता का द्वार पावन द्वार है।

आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:40 में हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान का आज का भाग।

अपना नाम एक तनु बताने वाले कपटी मुनि ने राजा प्रताप भानु का विश्वास जीतने के लिए उसे तप की महिमा बताई, जिसके प्रताप से ब्रह्मा जगत की सृष्टि करते हैं और विष्णु उसका पालन करते हैं। कर्म धर्म की कथाएं कहकर वो वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। ये सुनकर जब राजा प्रताप भानु पूर्ण रूप से उसके प्रभाव में आ गया और उसे अपना नाम बताने को हुआ, तो कपटी मुनि एक तनु ने कहा, हे राजन, मैं तुमको जानता हूँ। अभी तक अपने विषय में तुम्हारा कुछ न बताना मुझे अच्छा लगा। ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं बताते। तुम महाराज सत्यकेतु के पुत्र प्रताप भानु हो। तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, साधु संतों में निष्ठा और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे प्रति ममता जगी है। अतः तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो। राजा प्रताप भानु ने मुनि को प्रसन्न जानकर अपनी ओर से ये दुर्लभ वर मांगा कि उसके शरीर को वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख नहीं व्यापे, उसे युद्ध में कोई नहीं जीत सके और वो इस पृथ्वी पर 100 कल्प तक निष्कंटक राज्य करता रहे। तपस्वी ने कहा, ऐसा ही होगा। केवल ब्राह्मण कुल छोड़कर काम भी तुम्हारे सामने झुकेगा।

आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान का आज का भाग। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। कार्यक्रम विवरण के तहत आइए आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

अब से कुछ ही पल में 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। प्रातः 7 बजे आप सुनेंगे स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर लाल किले पर आयोजित ध्वजारोहण समारोह एवं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र की जनता के नाम संबोधन का सीधा प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से। प्रातः 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से। 8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। 8:45 का समय होगा देशभक्ति गीत का। 9 बजे आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। प्रातः 10 बजे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग आप सुनेंगे। 11 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। संध्या 5:02 पर आप सुनेंगे इवनिंग मेलोडी, जिसमें आप सुनेंगे देशभक्ति गीत। 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती बारी। संध्या 6 बजे प्रादेशिक मुख्य समाचार आप सुनेंगे हमारे रांची केंद्र से। 6:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मेहनत कश। संध्या 6:30 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत। संध्या 6:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। 6:56 पर आप सुनेंगे जिले में आजकल हमारे रांची केंद्र से। संध्या 7 बजे आप सुनेंगे स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का राज्य की जनता के नाम संदेश। 7:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम देशभक्ति गीत। रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे झारखंड राज्य के विभिन्न जिले में आयोजित स्वतंत्रता दिवस 2026 समारोह के अवसर पर आधारित राज्य स्तरीय समन्वित रेडियो रिपोर्ट। रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या का आज का अंक और रात्रि 9 बजे न्यूज एट 9। साथ ही 9:15 पर आप सुनेंगे स्पॉटलाइट हमारे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे हजारीबाग जिले में स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर आयोजित विभिन्न समारोहों पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। 10:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार। रात्रि 11 बजे हिंदी समाचार और 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। FM 102.1 MHz पर ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। सुबह के 6:54 हुए, कुछ ही पल में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार और प्रातः 7 बजे से आप सुनेंगे स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर लाल किले पर आयोजित ध्वजारोहण समारोह एवं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र के जनता के नाम संबोधन का सीधा प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। अशीतितम स्वतंत्रता पर्वणः पूर्व संध्यायाम् अमृतेन संभाषणेन राष्ट्रमभिसंबोधयन्ती राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः प्राह यत् जागतिक अशान्तेः युद्ध विभीषिकायाश्च तमसि अपि भारतीया अर्थव्यवस्था उज्ज्वल नक्षत्रवत् तीव्रतमगत्या समेधते। राष्ट्रपतिना प्रोदीरितं यत् भारतस्य आर्थिक संवृद्धिः वैश्विक संवृद्धिमतिक्रम्य द्विगुणाधिकं यावत् वर्तते।
1: Even in such trying circumstances, our economy is moving ahead as the fastest growing major economy in the world. According to economic projections, the growth rate of the Indian economy is expected to be more than twice the average of global growth rate. Atmanirbhar Bharat Abhiyan has further strengthened the foundation of our economic progress and national security.
0: राष्ट्रपतिना प्रतिपादितं यत् राष्ट्रस्य नक्सलोन्मूलनम् एका ऐतिहासिकी सफलता अस्ति। सा प्रावोचत् यत् यानि क्षेत्राणि पूर्वं नक्सलातंकेन प्रभावितानि आसन् तेषु क्षेत्रेषु इदानीम् उत्साहसन्ततिः विकासप्रवाहश्च दरीदृश्यते।
1: भारत को नक्सल मुक्त बनाना एक बड़ी उपलब्धि है। आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उत्साह का वातावरण है तथा विकास के सर्वस्पर्शी धारा प्रवाहित हो रही है। बस्तर ओलंपिक्स में खिलाड़ियों ने, बस्तर पंडुम में कलाकारों ने तथा इन आयोजनों में दर्शकों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया।
0: राष्ट्रपतिना प्रोक्तं यत् छात्रवृन्दः राष्ट्रभविष्यस्य मुख्यशिल्पीवर्गः अस्ति। परीक्षाव्यवस्थायाः परिष्काराय च शासनं प्रतिश्रुतमस्ति। राष्ट्रपतेः अनुसारं भारतस्य 65% युवजनसंख्या राष्ट्रस्य मुख्यशक्तिः अस्ति, या स्वप्रयासैः उद्यमितायाः नूतनान् मार्गान् रचयति। अनेन भारतं 47.2% वर्षं यावत् विकसित भारत निर्माणस्य स्वप्नं साक्षात्कर्तुम् अग्रसरति। उपराष्ट्रपतेः सीपी राधाकृष्णन् अवोचत् यत् राष्ट्रपतेः स्वतंत्रता दिवसस्य पूर्वसंध्यायाम् एकः शक्तियुतः प्रेरणादायी च सन्देशः दत्तः, यः एकस्य आत्मविश्वासपूर्णस्य प्रवर्धमानस्य जीवन्त भारतस्य च आकांक्षाः प्रकटीकरोति। सामाजिकान्तर्जालीय स्वीये सन्देशे राधाकृष्णन् इत्यनेन प्रोदीरितं यत् राष्ट्रपतेः सम्बोधने यूनाम् आशाः, नारीशक्तेः योगदानं, देशस्य आर्थिक प्रगतिं च संस्पृश्य एकस्य सशक्तस्य समृद्धस्य च राष्ट्रस्य व्यापकं दर्शनम् उपस्थापितम्। तेन अग्रे प्रतिपादितं यत् एते रवाः राष्ट्रयज्ञे नागरिक आहुत्यै दिव्यम् आह्वानं सन्ति। देशः अद्य अशीतितमं स्वातन्त्र्यदिवसम् आचरति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी दिल्ल्याः ऐतिहासिके रक्तदुर्गे समारोहस्यास्य नेतृत्वं करोति। समारोहस्य अन्तर्गतं भारतीय वायुसेनायाः द्वे MI-17 इत्येते विमाने आयोजनस्थले पुष्पवृष्टिं करिष्यतः। राष्ट्रियध्वजारोहणम् 21 भुशुण्डिकानां निनादेन सह समन्वितं भविष्यति। पुष्पवृष्टेः अनन्तरं प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी रक्तदुर्गस्य प्राचीरात् राष्ट्रं सम्बोधयिष्यति। प्रशासनेन दूरदर्शनवाहिनीनां कृते 12-निमेषपरिमितां विज्ञापनावधिसीमां निरसितुं निर्णयः कृतः। सूचना प्रसारण मन्त्रालयेन एकस्मिन् वक्तव्ये उक्तं यत् केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 इत्यस्मिन् संशोधनस्य राजपत्रे अधिसूचना प्रकाशनस्य दिनांकात् एषः निर्णयः प्रवर्तयिष्यते। मन्त्रालयेन उक्तं यत् दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्रे घटितानां परिवर्तनानां दृष्ट्या विज्ञापनावधि सम्बद्धानां प्रावधानानां पुनरावलोकनस्य आवश्यकता अनुभूता। इति वार्ताः।
2: आकाशवाणी का यह हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7 बजे हैं, आइए अब आपको ले चले हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर लाल किले पर आयोजित ध्वजारोहण समारोह एवं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र की जनता के संबोधन का सीधा प्रसारण,
3: सजीव प्रसारण सुन सकेंगे। विवरण दे रही है श्री जैनेन्द्र सिंह, सुश्री नीलम मलकानिया और श्री देवेंद्र त्रिपाठी।
4: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण ले, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।
7: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रतिवर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
8: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-4-5-5-5।
7: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी।

0: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में ना हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
1: आइए लाल किला चलें।
2: वंदे मातरम। स्वतंत्र भारत देश के 79 वर्षों की गौरवशाली यात्रा और इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले भारत भूमि के वीरों और वीरांगनाओं द्वारा किए गए बलिदान का स्मरणोत्सव। श्रोताओं, ये स्वतंत्रता दिवस समारोह जिनके अद्वितीय बलिदान का प्रतिफल है ये दिवस। नमन ऐसे लाखों ज्ञात अज्ञात सेनानियों को, नमन राष्ट्र नायकों और राष्ट्र निर्माताओं को जिनके दूरदर्शी नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सका है और पूरे विश्व में भारत की

0: पहचान और प्रतिष्ठा बढ़ी है, ऐसे राष्ट्र नायकों को भी नमन है आज के इस अवसर पर। गौरव के इन पलों में श्रोताओं, आप सभी को देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। दिल्ली स्थित लाल किले के प्राचीर से मैं जैनेन्द्र, अपने साथी कमेंटेटर्स नीलम मलकानिया, देवेंद्र त्रिपाठी और आकाशवाणी की पूरी टीम के साथ आप सभी का इस विशेष प्रसारण में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं।
1: वंदे मातरम। लाल किले की इस ऐतिहासिक प्राचीर से आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 2026 की इस सुनहरी सुबह भारत के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ने जा रही है। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि आज पूरे गर्व और उल्लास के साथ अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रही है। कोटि कोटि कंठ आज वंदे मातरम, जय हिंद और भारत माता की जय का उद्गार कर रहे हैं। देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम और उत्साह के रंग में रंगे हुए भारतीय और भारतवंशी देश विदेश में विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। साथियों, आप जानते ही हैं कि मुख्य आयोजन यहां लाल किले पर हो रहा है, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री स्वयं राष्ट्र का नेतृत्व करते हुए प्राचीर पर बने ध्वज स्थल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। आकाशवाणी की तकनीकी और कार्यक्रम टीम यहां से आंखों देखा हाल आप तक पहुंचाने के लिए तैयार है। आज तो किले की छटा ही निराली है, जैसे ये स्वयं पर इठलाता हो कि यहीं से हर वर्ष हमारे इस राष्ट्रीय पर्व ने देश दुनिया को एक नई राह दिखलाई है। चहुं ओर भक्ति भाव और उत्साह का भाव परिलक्षित हो रहा है। किले की विशाल और शक्तिशाली दीवारें रंग बिरंगे पुष्पों और पताकाओं से सजाई गई हैं। स्वतंत्रता दिवस की बधाई वाले होर्डिंग हैं, बैनर हैं, पोस्टर्स लगे हैं तो सुरुचिपूर्ण पुष्प सज्जा भी की गई है। इस बार के आयोजन की थीम है वंदे मातरम। हमारे इस राष्ट्रीय गीत के 150 गौरवशाली वर्षों को याद करते हुए आज वंदे मातरम की गूंज यहां बार बार सुनाई दे रही है। ज्ञान पथ के सामने किले की विशाल दीवार पर ताजे पुष्पों से वंदे मातरम लिखा गया है। प्रेरणादायी संवर्धन ये है कि पहली बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी गूंजेगा। किले की बाहरी दीवार पर लगे कटआउट्स परमाणु और अंतरिक्ष तकनीक में भारत की प्रगति को दर्शा रहे हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, मातृभूमि का वंदन करते हुए, नमन करते हुए, मातृभूमि के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हुए यहाँ पर अनेक प्रतीक चिन्ह हैं। हम आपको बताएं कि लाल किले की भव्य प्राचीर पर दोनों ओर दो बड़े बुर्ज हैं, इन्हीं से सटा हुआ हमारा कमेंट्री बूथ है। प्राचीर के ठीक बीच में कुछ ऊंचाई पर ध्वज स्थल है जो हमारे दाहिनी ओर है और इस समय ताजे फूलों से सजा हुआ है। ध्वज दंड को भी फूलों की लड़ियों से सजाया गया है। खुशनुमा मौसम में सुबह की मध्यम बहती मंद बयार के साथ ताजे फूलों की गंध हमारी उत्सव धर्मिता में शामिल हो रही है। आज वैसे भी तीज है, आप सभी को तीज पर्व की भी शुभकामनाएं। और तीज को माना जाता है बहुत ही शुभ अवसर, क्योंकि त्योहारों की शुरुआत इससे होती है। ऐसे में तीज के अवसर पर जब हमारा राष्ट्रीय पर्व है तो हमारे राष्ट्रीय पर्व ने अनेक पर्वों की गरिमा साथ ही बढ़ा दी है। ध्वज स्थल के दोनों ओर दर्शक दीर्घा बनाई गई है। लाल रंग की कुर्सियां करीने से सजी हुई हैं और उन पर आमंत्रित अतिथि गणों के नाम भी लिखे हैं। दाहिनी ओर की दर्शक दीर्घा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश हैं तथा पद्म पुरस्कार विजेता अन्य अतिथि हैं। और बाईं ओर की जो दर्शक दीर्घा है उसमें केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति है। हम आपको बताएं कि यहां से हम देख सकते हैं उपस्थिति है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की, श्री पीयूष गोयल हैं, श्री नितिन नवीन यहां से हम देख सकते हैं, श्री हरदीप सिंह जी की उपस्थिति है, श्री मनसुख मांडविया जी हैं, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, डॉक्टर जयशंकर उपस्थित हैं, श्री गिरिराज सिंह जी हैं, श्री नितिन गडकरी जी हैं, श्री अश्वनवी वैष्णव जी हैं, दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू जी की भी गरिमा में उपस्थिति यहां पर है। वर्दी पहने सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति है तो आकर्षक परिधानों में उल्लासित बच्चे भी हमें दिखाई पढ़ रहे हैं। यहां से
0: माननीय प्रधानमंत्री महोदय कुछ ही देर में यहां लाल किले के प्राचीर पर पहुंचेंगे और जब वे प्राचीर के ऊपर बने ध्वज स्थल पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले राष्ट्रगीत, पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहला अवसर होगा जब स्वतंत्रता दिवस के समारोह में राष्ट्रीय गीत की धुन और स्वर यहां पर गूंजेगा। राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रगान होगा, राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी। यहां आने से पहले माननीय प्रधानमंत्री महोदय राजघाट पहुंचकर वहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद यहां के लिए वो प्रस्थान करेंगे। लाल किले के ये प्राचीर और ये पूरा परिदृश्य अद्भुत है। इस समय ईश्वर की कृपा भी है क्योंकि मौसम बहुत खुशनुमा है, आसमान घने बादलों से ढका हुआ है, इसलिए धूप की रश्मियां जो है वो धरती तक नहीं पहुंच पा रही हैं और लोग बहुत ही सुखद वातावरण में यहां बैठे हुए हैं। लगभग 27 डिग्री का यहां तापमान हम समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, लगभग इतना ही यहां पर तापमान है। और पक्षियों के कलरों के साथ हल्की हल्की बयार के साथ जो पताकाएं लगी हैं वो लहरा रही हैं हवा के साथ, हमारे राष्ट्रीय ध्वज जहां जहां तक हमारी दृष्टि जाती है वहां तक लगे हुए हैं, वो भी लहराते हुए एक नई ऊर्जा का संचार हम सबके भीतर कर रहे हैं। वैसे भोर तो हर सुबह हर रोज होती है लेकिन आज की भोर सामान्य दिनों से बिल्कुल हटकर है क्योंकि भारतवासियों के लिए बहुत विशेष है। हो भी क्यों ना, आज ही के दिन तो 15 अगस्त को सन 1947 में दुनिया के मानचित्र पर स्वतंत्र देश के रूप में भारत का उदय हुआ था, वही भारत जिसके बारे में विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुदस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद् भारतम नाम भारती यत्र संतति। अर्थात समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूभाग है उसे भारत कहते हैं और हम स्वयं को भारतीय कहते हैं। मंच की सज्जा को आपने जाना, अनुभव किया होगा, अपने अपने कल्पना में उसे सजीव भी किया होगा आपने। मंच के ठीक सामने जो ज्ञानपथ का क्षेत्र है वहां सबसे पहले हमारी दृष्टि जहां जाती है वो है राष्ट्रीय सलामी गारद जो वहां पर उपस्थित है ठीक सामने। इसमें सेना के तीनों अंगों और दिल्ली पुलिस की टुकड़ियां शामिल हैं, प्रत्येक टुकड़ी में 32 सैनिक हैं और एक अधिकारी उसमें शामिल है। राष्ट्रीय सलामी गारद का नेतृत्व कर रहे हैं मेजर लोकेंद्र सिंह, सेना की अपनी यूनिफॉर्म में वर्दी में सजे धजे गर्व से सीना तरा हुआ। सेना की टुकड़ी की कमान मेजर विकास यादव के हाथों में है जबकि लेफ्टिनेंट कमांडर अभिलाष नौसेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं अपने सफेद यूनिफॉर्म में और पीकैप के साथ। वायुसेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर उमेश जी और एडिशनल डीसीपी विकास मीणा दिल्ली की टुकड़ी दिल्ली पुलिस की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं। और हमारे ठीक सामने उस राष्ट्रीय सलामी गारद के दाहिनी हिस्से में वहां पर बैंड दल उपस्थित है जो राष्ट्रीय सलामी के समय राष्ट्रीय धुन बजाएगा और उसके पहले राष्ट्रीय गीत यहां पर बजाएगा। लेकिन उनके पीछे भी एक ऊर्जा का अनुभव अद्भुत दृश्य हम देख पा रहे हैं श्रोताओं, क्योंकि ये इस बार का आयोजन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से प्रदर्शित कर रहा है जिसको हम यहां के कणकण में, यहां के पूरे वायुमंडल में हम उसको महसूस कर सकते हैं, यहां के वातावरण में महसूस कर सकते हैं। क्योंकि जहां वंदे मातरम की गूंज यहां पर हम सबको उत्कंठा से प्रतीक्षा है उस क्षण की जब पहली बार यहां से उसे बजाया जाएगा और गाया जाएगा, उसके साथ साथ बड़ी संख्या में युवा शक्ति यहां पर एक नई ऊर्जा का प्रतिबिंब लेकर उपस्थित है। और इसमें सामने जो दृश्य हम देख पा रहे हैं ज्ञानपथ पर, वहां लगभग 2500 की संख्या ऐसे विद्यार्थियों की है जो एनसीसी से संबंधित रखते हैं, एनसीसी के तीनों विंग से संबंधित रखते हैं और उसके साथ साथ हमारे माय भारत वॉलंटियर स्वयंसेवक भी इसमें शामिल हैं। और इन्होंने जो अधिसंख्य हैं, बहुसंख्यक हैं, उसमें उन्होंने सफेद रंग की वेशभूषा पहन रखी है ज्यादातर जिनकी संख्या है, लेकिन बीच में कुछ ऐसा रंग है जो हमारे केसरिया रंग यानी हमारे बलिदान का भी प्रतीक है और उसी रंग के साथ केसरिया रंगों की वेशभूषा के साथ उन्होंने यहां रचा है वंदे मातरम, क्योंकि वंदे मातरम इस पहली बार इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में गूंजेगा।
1: जी, उत्तर से लेके दक्षिणी लकीर तक, पूर्वा से लेके पश्चिमी समीर तक, सागरों से लेके नदियों के तीर तक, पर्वतों से लेके घाटियों के तीर तक, आत्मा से लेके नश्वर शरीर तक, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, चाहे जिंदा रहें चाहे मर जाएं हम गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। देश की संचयी शक्ति जो देश का इतिहास अपने आप में समेटे है, एक अभिवादन भी है, सम्मान भी है, हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की पहचान भी है। ये दो शब्द जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में देशवासियों को एकजुट किया और आजाद भारत को भी सदा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। हम आपको बताएं साथियों, वंदे मातरम जो यहां से हम देख रहे हैं, एनसीसी कैडेट्स ने जो मानव संरचना में लिखा है, बेहद प्रेरक, बेहद खूबसूरत यहां से जान पड़ रहा है। और साथ ही जो अन्य यहां पर बच्चे हैं वो उत्सुकता से एक टक इन बच्चों को निहार रहे हैं। आज के आयोजन के लिए राजधानी में परिवहन व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं, वैकल्पिक मार्गों के बारे में काफी पहले से ही जानकारी साझा की गई है, कई दिन पहले से ही सभी प्रमुख चौक चौराहों पर, महत्वपूर्ण भवनों पर रंग बिरंगी प्रकाश सज्जा की गई है, साथ ही जन समुदाय की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है। राजधानी को गति देने वाली मेट्रो भी हमारे इस राष्ट्रीय पर्व का आज हिस्सा है। है अपनी सेवा देते हुए आज सुबह 4 बजे से सरपट दौड़ रही है। यहां आयोजन स्थल के आसपास क्लॉक रूम, व्हीलचेयर और पेयजल की व्यवस्था की गई है। लगभग 23,000 आगंतुकों को इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। अपनी सजीली सैन्य वर्दी पहने अधिकारी हैं आकर्षण

0: धान रंग है उनके परिधान पहने हुए हैं। आज का ये आयोजन अलग अलग क्षेत्रों में हमारे युवाओं की उपलब्धियों को भी उजागर कर रहा है। इंटरनेशनल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ओलंपियाड में मेडल विजेता युवाओं को भी आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। नेशनल इनोवेशन कार्यक्रम से जुड़े युवा हैं, पीएम इंटर्नशिप योजना के छात्र हैं, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चयनित बेहतरीन स्टार्टअप के तहत चुने गए श्रेष्ठ प्रतिभागी हैं, माई भारत के स्वयंसेवक हैं, दिल्ली के विभिन्न विद्यालयों में हुई परीक्षाओं और प्रतियोगिताओं के विजेता विद्यार्थी भी इस समय यहाँ बैठे हैं। इस अवसर पर देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दिल्ली में रहने वाले 1500 से ज्यादा ऐसे लोगों को भी आमंत्रित किया गया है जो इस समय अपनी पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ बैठे हैं और लघु भारत का दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और एक खास बात ये है कि हमारी जल शक्ति का सम्मान रखते हुए इस बार जो प्रांगण घेरे हैं, एनक्लोजर्स हैं, इनके नाम प्रमुख झीलों के नाम पर रखे गए हैं। भीमताल, चंद्रताल, दूध सागर, रोबिंद्र सरोवर, रुद्र सागर, चिलिका, हाफलोंग नाम रखे गए हैं। हमें यहाँ दिखाई दे रहा है वो भारत जो समृद्ध है, जो संपन्न है, साथ ही जो संकल्पित है आगे बढ़ने के लिए और साथ ही विकसित भारत 2047 का लक्ष्य लिए, जिसमें हर उम्र का देशवासी अपनी ओर से योगदान करने के लिए तैयार है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये स्वतंत्रता जिसने पराधीन भारत में जब देशवासियों को पुकारा तो अपनी जान की परवाह न करते हुए देशवासी जुट गए कि भारत माँ को हमें परतंत्रता की बेड़ियों से आजाद करवाना है। और अब यही स्वतंत्रता हमें ये प्रेरणा देती है कि लगातार आगे बढ़ते हुए हम जहाँ हैं, जो कर सकते हैं, देश प्रेम मन में रखे हुए, संजोए हुए, देश को विकसित करने की ओर लगातार बढ़े, अपना योगदान करें।
1: निश्चित रूप से, और इसीलिए भारत के भविष्य को लेकर जो संकल्पना है, विजन है, विशेष तौर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जिस गति से आगे बढ़ते हुए वर्ष 2047 तक यानी 100 वर्षों के स्वतंत्र भारत की यात्रा को पूरा करते हुए एक विकसित भारत के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके, उसका भी यहां दृश्य हमें साफ नजर आता है। यहां लाहौरी गेट पर प्रधानमंत्री महोदय का आगमन कुछ ही पलों में होने जा रहा है। वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और साथ ही रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह वहां पर उपस्थित हैं। साथ ही दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग भी वहां पर उपस्थित हैं, जो वहां प्रधानमंत्री महोदय की अगवानी करेंगे और वहां माननीय प्रधानमंत्री महोदय को सलामी दी जाएगी। और उसके बाद सलामी गारद का वो निरीक्षण करने के बाद लाल किले के प्राचीर पर पहुंचेंगे और आगे का जो कार्यक्रम है वो यहां आरंभ होगा। इस रूप में बिगुल वादन के साथ इस बात का संकेत मिल चुका है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के वाहनों का काफिला यहां प्रवेश कर रहा है। आइए आपको आगे के विवरण के लिए सीधे लिए चलते हैं देवेंद्र के पास, जो लाहौरी गेट पर उपस्थित हैं।
2: धन्यवाद जैनेन्द्र, मैं देवेंद्र त्रिपाठी आप सभी श्रोताओं का लाल किले के ऐतिहासिक प्रांगण में लाहौरी गेट से स्वागत करता हूं। इस द्वार के समक्ष होने वाली सभी गतिविधियों की जानकारी आपसे साझा करूंगा, जहां माननीय प्रधानमंत्री को तीनों सेनाओं और दिल्ली पुलिस की संयुक्त सलामी दी जाएगी। प्रधानमंत्री सम्मान कारक का निरीक्षण करेंगे, उसके बाद ऐतिहासिक 13वीं बार ध्वज फहराएंगे और देश और दुनिया को संबोधित करेंगे। आजादी का ये दिन 15 अगस्त भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित, ना जाने कितने रक्तों से रंजित। ये स्वाधीनता का ही उत्सव नहीं, ये अवसर है माँ भारती के वीर बलिदानियों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने का भी, उन्हें ये विश्वास दिलाने का कि आपके बलिदानों का ऋण हम माँ भारती की सेवा करके चुकाएंगे। ये वीर शहीदों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है, जिनके त्याग और बलिदान से ये प्रतिफल आज हमें मिला। श्रोताओं, माननीय प्रधानमंत्री के वाहनों का काफिला प्रांगण में प्रवेश कर रहा है और यहाँ का पूरा परिदृश्य नई ऊर्जा से ओतप्रोत। माँ भारती का वंदन और वीर बलिदानियों का अभिनंदन करने के इस पावन आयोजन में उत्साह, उल्लास और श्रद्धा का भाव। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन लाहौरी गेट के समक्ष सलामी मंच पर हो रहा है, जहां उनकी अगवानी के लिए उपस्थित हैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, माननीय रक्षा मंत्री राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी। श्रोताओं, सलामी मंच के सामने तीनों सेनाएं और दिल्ली पुलिस तथा नौसेना बैंड वादकों का दस्ता, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सलामी देने के लिए सभी मुस्तैद। दस्तों के पृष्ठभाग में लगा है तीन रंगों में बैनर, जिस पर झलक है विकसित भारत और विविध भारत की। अंतर सेना सम्मान गारद का जिम्मा इस बार थल सेना को दिया गया है, कमान है लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह के हाथों। और सलामी मंच के दोनों ओर खड़े हैं कैप्टन विक्की मेहता और प्रथम नेगी। प्रधानमंत्री के वाहनों का काफिला पहुंचा है सलामी मंच के पास और माननीय प्रधानमंत्री अपने वाहन से उतरते हुए लाल रंग का साफा और

ब्राउन यानी भूरे रंग की सदरी, सफेद रंग का कुर्ता पैजामा। माननीय प्रधानमंत्री श्री राजनाथ सिंह, श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री और रक्षा सचिव का अभिवादन स्वीकार करते हुए और रक्षा सचिव जीओसी दिल्ली एरिया राजेश सेठी से परिचय कराते हुए अब माननीय प्रधानमंत्री पहुंचे हैं सलामी मंच की ओर, जहां उन्हें अंतर सेना पुलिस सम्मान गारद सलामी देगी कमान लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह के हाथों में। संयुक्त कमांडर के नेतृत्व में टुकड़ों की सलामी। भारतीय सैन्य बलों के पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन लाल किले की इस प्रांगण में। अब संयुक्त कमांडर सलामी मंच की ओर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री जी से सम्मान गर टुकड़ियों का निरीक्षण करने के लिए आग्रहपूर्ण अनुमति लेंगे। सधे हुए कदमों से, हाथों में तलवार लिए और जोश भारतीय सैन्य बलों का जो झलक रहा है। प्रधानमंत्री जी ने सहमति दी और सलामी मंच से नीचे उतरते हुए मंच के बाईं ओर से बिछा है रेड कारपेट, जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री के स्वागत में अपनी लालिमा से इस स्थल को और गौरव प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री के दाईं ओर दो कदम पीछे, हाथों में तलवार और भारतीय सैन्य बलों का शौर्य लिए चल रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह। प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं नौसेना बैंड दस्ते के पास। बैंड मास्टर डी सेल्वम के नेतृत्व में नौसेना का यह बैंड आनंद लोके की धुन बजाएगा, जिसे तैयार किया बैंड मास्टर जे रोड्रिक्स ने और बच्चों की आवाजें आप सुन पा रहे हैं। यहां मौजूद उपस्थित बच्चे

0: पास 25 जवान, नेतृत्व मेजर आदित्य शर्मा के हाथों में। प्रधानमंत्री के समक्ष पूरी नम्रता लेकिन अभिमान का आभामंडल देश के वीर सैनिकों के मुख पर। ये विश्वास दिलाते हुए मां भारती की रक्षा में सदैव तत्पर। नौसेना की कमान लेफ्टिनेंट कमांडर अरुण कलमाड़ी के हाथों में। तीनों सेनाएं देशवासियों को विश्वास दिलाती हुई, हम है भारत के प्रहरी, हम है मां भारती के सेवक और रक्षक। और अब प्रधानमंत्री वायुसेना के दस्ते के समक्ष 24 जवानों की टुकड़ी। भारतीय वायुसेना का प्रतिनिधित्व 80वें स्वतंत्रता दिवस पर करती हुई कमान स्क्वाड्रन लीडर विपिन कुमार के हाथों में। दिल्ली पुलिस का नेतृत्व एडिशनल डीसीपी विनीत कुमार कर रहे हैं। सभी ने अपने भावों से माननीय प्रधानमंत्री को विश्वास दिलाया मां भारती के रक्षक सदैव तत्पर। और अब लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह परेड कमांडर माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद प्रकट करते हुए। और अब लाहौरी गेट से माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं समारोह स्थल लाल किले की प्राचीर की ओर, जो 1947 से हर वर्ष केंद्र बना है भारत के स्वाधीनता उत्सव का। प्रधानमंत्री के साथ हैं जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी। लाहौरी गेट, लाल किले की प्राचीर और दोनों गुंबद साक्षी हैं भारत के स्वाधीन होने, विकासशील से विकसित बनने के अमृतकाल के। स्वाधीन 79 वर्षों में भारत ने अपने विकास की लंबी यात्रा तय की है। श्रोताओं, 2026 का भारत विश्व पटल पर भी अपनी छाप छोड़ रहा है। भारत के विचार दुनिया के लिए मायने रखते हैं, जो समाधानों के लिए आज भारत की ओर देखते हैं, क्योंकि भारत की नीतियों के मूल में है वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श और भारत का उत्कर्ष। विकास भी और विरासत भी भारत की विचारधारा, और भारत, हमारा प्यारा भारत बढ़ रहा आगे। एक तरफ अपने हृदय में संजो रहा अपने पूर्वजों के बलिदानों को, तो दूसरी ओर माथे पर चंदन की तरह बिठा रहा युवाओं को, जो भविष्य के भारत की गाथा लिखने को तत्पर। एक ओर इंडियन नॉलेज सिस्टम का सम्मान, दूसरी ओर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घोष भी। 80वां स्वाधीनता दिवस अवसर है अपने पूर्वजों को प्रणाम करने का, उनके प्रति श्रद्धावनत होने का, जिन्होंने तन मन और धन से मां भारती की सेवा की। 21वीं सदी का सबल भारत वीर बलिदानियों का ऋणी है, जिनके समर्पण और बलिदान से हमें आज का यह सौभाग्य मिला। और श्रोताओं, मुख्य समारोह स्थल की ओर चलते हैं, लाल किले की प्राचीर पर, जहां 150 वर्ष वंदे मातरम के पूर्ण होने के अवसर पर इस बार पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम की धुन आप सुनेंगे। उसके बाद ध्वज फहराया जाएगा और फिर राष्ट्रगान होगा और प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। और विवरण के लिए हम लाल किले की प्राचीर कमेंट्री बूथ पर लिए चलते हैं अपने साथी कमेंटेटर नीलम और जैनेन्द्र के पास।
1: धन्यवाद देवेंद्र। साथियों, कुछ ही देर में ये पावन और ऐतिहासिक क्षण आएगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर ध्वज फहराने के लिए लाल किले की प्राचीर पर बने ध्वज स्थल की ओर आएंगे। जैसे ही प्रधानमंत्री जी ध्वज स्थल पर पहुंचेंगे, तब भारतीय सेना का बैंड वंदे मातरम की धुन बजाएगा, अपने राष्ट्रगीत

0: के सम्मान में हम सावधान मुद्रा में खड़े होंगे। प्रधानमंत्री जी भारत माँ की अस्मिता के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को जब फहराएंगे तब राष्ट्रगान होगा, साथ ही तिरंगे को सलामी भी दी जाएगी। आर्मी सिग्नल कोर से कैप्टन रितिका खरेटा माननीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग करेंगी। ध्वज फहराने में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और साथ ही भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर आकाश से झंडा वंदन करते हुए पुष्प वर्षा करेंगे। ध्वज फॉर्मेशन का नेतृत्व करते हुए कमान अधिकारी विंग कमांडर ऋषिकांत के साथ को पायलट स्क्वाड्रन लीडर मोहित सिंह राष्ट्रीय ध्वज वहन किए हुए आएंगे। दूसरा हेलीकॉप्टर वंदे मातरम का ध्वज लिए हुए आगे बढ़ेगा और स्क्वाड्रन लीडर पुनीत यादव पुष्प वर्षा करेंगे, इस तरह से अपनी ओर से झंडा वंदन भी करेंगे और साथ ही यहां बैठे उत्साहित देशवासियों पर भी पंखुड़ियां जब गिरेंगी तो वो दृश्य देखने लायक होता है। बच्चे बेहद उत्साहित हो जाते हैं इसे देखते हुए और आप जानते ही हैं कि अब राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों के सम्मान में हम सावधान मुद्रा में खड़े होते हैं। इस तरह से अपने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों को, राष्ट्र को प्रेरणा देने वाले इन गीतों को हम सम्मान देते हैं। मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, भगत सिंह की फांसी, मैं बापू की अंगड़ाई हूँ, हूँ जलियांवाला बाग भी मैं, पानीपत का पानी हूँ, ऊधम की पिस्तौल भी मैं, झांसी वाली रानी हूँ, रंग दे बसंती चोला मैं, गुरु गोविंद सिंह का बलिदान हूँ, चेतक की हुंकार में ही मैं राणा प्रताप की शान हूँ, मैं छुपा बोस किनारों में, मैं जंग लगी तलवारों में, मैं इनकलाब की बोली हूँ, आजाद की आखिरी गोली हूँ, मैं भारत का हर भाव चंगा हूँ, मैं सबका पूज्य तिरंगा हूँ। इसी तिरंगे के सम्मान में पूरा आयोजन यहाँ का हो रहा है और यहाँ पर जो सलामी गारद है वो भी जब राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा उस समय राष्ट्रीय सलामी देगी
1: निश्चित रूप से और सभी को उस पल की प्रतीक्षा है। श्रोताओं, लाल किले के प्राचीर से जब हमारी दृष्टि सामने इस पूरे क्षेत्र की तरफ जाती है, चांदनी चौक की तरफ जाती है, तो अनायास ही बहुत सारे ऐसे इतिहास के पन्ने अपने आप सजीव होने लगते हैं जो हमारे पूरे राष्ट्र के लिए, देश के लिए संघर्ष का एक बहुत कठिन दौर रहा है जिससे देश गुजरा है। धर्मांधता और बलपूर्वक धर्मांतरण की वो विभत्स और क्रूर घटनाएं दृश्य आंखों के सामने सजीव होने लगते हैं। आपको मालूम ही है लाल किले के प्राचीर के सामने चांदनी चौक में ही स्थित है गुरुद्वारा सीसगंज। सन 1675 में 24 नवंबर की वो तारीख थी जब यहीं हमारे नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर का सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। गुरु साहब ने बलिदान से पहले, गुरु साहब के बलिदान से पहले उनके शिष्य भाई मतीदास, भाई दयाला और भाई सतीदास के ऊपर भी बर्बरता भला कौन भूल सकता है। देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में भी ये दिल्ली स्थित चांदनी चौक एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक केंद्र रहा है। 1857 की क्रांति का दमन करने के लिए ब्रिटिश सेना ने यहाँ की मुख्य सड़कों और कोतवाली के आसपास के क्षेत्रों में अपना दमन चक्र चलाया। क्रांतिकारियों को खुलेआम फांसी दी गई। 1857 में आपको याद होगा ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने वाले जिन्हें दिल्ली का आयरन वॉल कहा जाता था, बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह को 9 जनवरी 1858 में 32 साल की मात्र उनकी उम्र थी तब उनको इसी चांदनी चौक में फांसी पर लटकाया गया था खुले में। 23 दिसंबर 1912 को जब ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली को राजधानी बनाने के उपलक्ष्य में इसी चांदनी चौक से होकर शाही जुलूस निकाल रहा था तब यहां घंटाघर के पास क्रांतिकारियों ने उस पर बम फेंका और उस हमले की योजना राजबिहारी बोस ने बनाई थी। उसमें मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद जी और बसंत कुमार विश्वास जैसे क्रांतिकारी शामिल थे। बाद में बाल मुकुंद और बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई थी जबकि राजबिहारी बोस वेश बदलकर देश से बाहर निकल गए और जापान पहुंचकर आजाद हिंद फौज की स्थापना की और उसके आगे का इतिहास आप सबको विदित है। सन 1915 से 1934 के बीच महात्मा गांधी ने चांदनी चौक में कई ऐतिहासिक बैठने की थी। यहाँ की मारवाड़ी पब्लिक लाइब्रेरी हो, गांधी मैदान हो, ये सब क्रांतिकारियों और देशभक्तों की बैठकों का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। अंग्रेजों के दमनकारी कानून रॉलट एक्ट को लेकर जब देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे तब 1919 में ही स्वामी श्रद्धानंद जी ने चांदनी चौक के घंटाघर पर पुलिस की संगीनों के सामने खड़े होकर निडरता से रॉलट एक्ट का विरोध किया था। कोतवाली के सामने का जो क्षेत्र है इसी चांदनी चौक की एक गली में क्रांतिवीर स्वतंत्रता संग्राम के पर्चे और बुलेटिन चुपके चुपके छापा करते थे और पूरे शहर में बांटकर स्वतंत्रता की अलख जगाया करते थे। यहाँ चाहे वो कटरा नील हो, खारी बावली हो, दरीबा कला हो, इन सभी क्षेत्रों के व्यापारी और आम नागरिक भी इस लड़ाई में शामिल थे। और इस समय जबकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आगमन के साथ जब शुरू होगा यहाँ का मुख्य आयोजन और वंदे मातरम के स्वर गूंजेंगे, उसकी उत्कंठा में और उल्लास में बहुत बड़ी संख्या में जो यहाँ उपस्थित जनसमुदाय है, विशेष रूप से बच्चे अपने अपने स्थान पर खड़े होकर हाथ हिला रहे हैं, प्राचीर की तरफ देखकर उनके उत्साह और उमंग की अभिव्यक्ति उनके चेहरे पर साफ नजर आती है, और जो पारंपरिक वेशभूषा में यहां बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं उनके स्वर, उनकी पहचान और उनकी आभा जो व्यक्तित्व की है वो भी बहुत आकर्षित कर रही है।
0: बिल्कुल जानेंद्र जी, और मैं देख पा रही हूँ कि बच्चे जो हैं वो बार बार टुकुर टुकुर निहार रहे हैं यहाँ ध्वज स्थल की ओर, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पूरे विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय और सम्मानित प्रधानमंत्री जी का आगमन होने जा रहा है। साथियों, आज का दिन हम अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए, उनकी स्मृति को नमन करने के लिए भी विशेष तौर पर मनाते हैं। विशेष तौर पर आज का दिन हमें ये अवसर देता है क्योंकि हम जानते हैं, तुम न समझो देश को स्वाधीनता यूं ही मिली है, हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है। स्वतंत्रता संग्राम के चिर परिचित सेनानियों के साथ ही गुमनाम नायकों के प्रति आज कृतज्ञता का भाव है, तो आजाद भारत के उन वीरों का गुणगान भी है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन किया है। मंगल पांडे की पहली चिंगारी से लेकर रानी लक्ष्मीबाई का दम्य साहस, सब कुछ हमें प्रेरित करता है। और हम देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है इस समय ध्वज स्थल पर।

0: और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं।
1: राष्ट्रीय ध्वज नमः।

0: और इस समय आकाश आकाश में जो स्वर हमें सुनाई दे रहे हैं, ध्वनि सुनाई दे रही है, वो उन हेलीकॉप्टर्स की है जो पुष्प वर्षा करते हुए लाल किले के प्राचीर के ऊपर से गुजर रहे हैं और लोगों की निगाह उसी आसमान की तरफ है। एक हेलीकॉप्टर ये मी 17 हेलीकॉप्टर से भारतीय वायुसेना के, जिसमें एक हेलीकॉप्टर में राष्ट्रीय ध्वज उस समय दिखाई दे रहा है हवा के साथ अठखेलियां करता हुआ, और दूसरे हेलीकॉप्टर में नीचे लिखा है वंदे मातरम और पुष्प वर्षा करते हुए ये सभी यहां से हमारी बाईं तरफ से दाहिनी तरफ आसमान में आगे बढ़ते हुए। बच्चों के बीच खासतौर पर उल्लास और फूलों की पंखुड़ियां यहां चारों तरफ बिखरी दिखाई देती है। खासतौर पर जो सफेद वेशभूषा में बच्चे बैठे हुए हैं वहां ठीक सामने उनके कपड़ों पर सफेद रंग पर जो पुष्प है, पंखुड़ियां है पीले रंग की, वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आनंदित करने वाली लग रही है।
1: जी, और जनेंद्र किस तरह से बच्चे उल्लासित होकर प्रधानमंत्री जी को भी निहार रहे हैं और उनकी कोशिश है कि एक दो पंखुड़ी को वो कैच कर पाए, और ये पंखुड़ियां इस समय हमारे बूथ की ओर भी आई, बेहद रमणीय दृश्य है ये।
0: जी, और राष्ट्रीय सलामी गारद अब राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के बाद और राष्ट्रीय सलामी देने के बाद यहां से प्रस्थान करती हुई सेना कमांड कुमायूं रेजिमेंट सेंटर जो इसमें शामिल थे, जिसने आज पहली बार ये इतिहास रचा गया, स्वतंत्रता दिवस के आयोजन में पहली बार यहां राष्ट्रगीत वंदे मातरम की धुन बजी, लेकिन सस्वर यहां उपस्थित हजारों लोगों ने उस गीत को अपने मुखारबिंदु से गाया है, चाहे वो प्राचीर के ऊपर बैठे हुए हमारे सभी अतिथियों दर्शक दीर्घाओं में या ठीक सामने हमारे बाईं और दाहिनी तरफ बड़ी संख्या में जो दर्शक दीर्घा में हजारों की संख्या में देश भर से पधारे हमारे दर्शक हैं, विशेष मेहमान हैं, दिल्ली वासी हैं, अलग अलग प्रदेशों के और केंद्र शासित प्रदेशों के वासी हैं, उन सबने अपने वेशभूषा में, जिसमें बहुत सारे लोग हैं पारंपरिक वेशभूषा में, खड़े होकर बड़े गर्व के साथ इस बार पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया। इस समय परेड कमांडर मेजर लोकेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में राष्ट्रीय सलामी गारद जो है हमारी दाहिनी तरफ, जो उनका स्थल है इकट्ठे होने का, वहां आगे की तरफ लाल किले के प्राचीर से ज्ञानपथ से होते हुए यहां से प्रस्थान करते हुए और आतुरता से यहां उपस्थित हजारों की संख्या में उपस्थित जनसमुदाय, देश के 145 करोड़ जनता और दुनिया भर के लोग आतुरता से इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लाल किले की ये प्राचीर, जिसने पिछले 12 वर्षों में विकास के नए नए प्रतिमानों का बीजारोपण जहां से हुआ है लाल किले के प्राचीर से, और इस प्राचीर से विकसित भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचने और जन जन की प्रेरणा प्राप्त करने का अवसर मिला है। राष्ट्र को जब प्रधानमंत्री महोदय संबोधित करते हैं तो उसे सभी सुनते हैं, सभी प्रेरणा लेते हैं, सभी उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि आज राष्ट्र की प्रति सोच, राष्ट्र के प्रति हमारी संवेदनाएं अपनी गहनता के शिखर पर हैं, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, विकसित भारत बनना है। श्रोताओं,
2: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम सब 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हर दिलों की धड़कन वंदे मातरम के नाद से गूंज रही है। आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है, और देश उत्साह और उमंग के साथ नए संकल्पों को लेकर के आज आगे बढ़ रहा है। आप सबको

स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश आज उन महान सपूतों का पुण्य स्मरण करती है जिन्होंने देश की आजादी के लिए त्याग बलिदान की पराकाष्ठा की। अपने तप त्याग और बलिदान से आजादी के एकमात्र लक्ष्य को लेकर के अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। पूज्य बापू समेत सभी स्वातंत्र सेनानियों को बलिदान की महान परंपरा जगाने वाले महान क्रांतिकारियों को आज मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज जो इस समारोह में उपस्थित है उन सब के लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए। उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है, तब अपनी सिद्धियों को प्राप्त करता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं है। हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं, हमारी सोच की क्षितिज को विस्तृत करते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे संकल्प भी ऊंचे होने चाहिए, क्योंकि जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं, तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है, और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा।

दृढ़ संकल्प के साथ देखा है, नई ऊंचाइयों को छूने के लिए देखा है। और वो सपना है, जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे, 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है, तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है। दुनिया हमारी तरफ देखने का नजरिया बदलने के लिए मजबूर हो जाती है। प्यारे देशवासियों, और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने, दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नारी हो, पुरुष हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ, समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता हूं, और उसी का परिणाम है कि इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले हैं। इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल फाइव में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं। साथियों, देश आजाद हुआ, बहुत सारे सपने लेकर के आजाद हुआ, लेकिन हम गति नहीं पकड़ पाए, रफ्तार नहीं पकड़ पाए। होती है, चलती है, अरे हो जाएगा, देखा जाएगा, उसी में खोए रहे। 2014 तक आते आते तो पूरे विश्व ने हमें फ्रेजाइल फाइव के उस में डंप कर दिया था। ऐसे समय पिछले 12 साल में भारत ने एक नई रफ्तार पकड़ी है, तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं। और देशवासियों का संकल्प है कि अब 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को, सामर्थ्य को रोकना नामुमकिन है। अरे देशवासियों, पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना हुआ, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। इतना ही नहीं, आधुनिक युग को देकर के भी, डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट कंज्यूमर करीब करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 गुना बढ़े, सामान्य मानवीय की सुविधाओं की तरफ भी हमने उतना ही गंभीरता से काम किया। हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए, हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए, हर साल 4 गुनी रफ्तार से गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने का काम किया,
हर साल 3 गुना ज्यादा तेजी से गरीबों को घर देने का काम किया। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया, हजारों की संख्या में कंप्लायंसेज खत्म किए, सैकड़ों की तादाद में पुराने कानून खत्म किए। पिछली शताब्दी के कानूनों से 21वीं शताब्दी की मार्च नहीं हो सकती है। हमने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेट्रो का विस्तार किया, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ताकत दी। जिस स्पीड से काम, जिस स्केल पर काम किया, ये सब, ये रफ्तार, ये विस्तार, ये अचीवमेंट आजादी के बाद पहली बार पिछले एक दशक में देखा है। और जब इतनी सारी सिद्धियां हमारे सामने हो, इतनी तेज गति दिखाई देती हो, देशवासियों का सामर्थ्य पल पल प्रकट होता है, तब तो 2047 में विकसित भारत बनने का संकल्प कभी भी अधूरा नहीं रह सकता है। ये सारे आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि हम आगे बढ़ने वाले हैं, मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन उसके लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है, आत्मगौरव की जरूरत होती है, और साथ साथ आत्मनिर्भर भारत होना भी बहुत जरूरी होता है। और इसलिए बीते वर्षों में हमारा कन्विक्शन रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता है, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है। और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, अपने हितों की सुरक्षा हमें खुद को करनी है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प बहुत दृढ़ता के साथ हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेक इन इंडिया, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, इन सारे क्षेत्रों में आज हर भारतीय का मन जुड़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं सेमीकंडक्टर का। देश आजाद होने के बाद विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी थी, हमारे यहां भी बातें होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज स्थिति क्या है? आज की डिजिटल दुनिया में, आज की टेक्नोलॉजी में चिप का महात्म्य हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है। और इसे, इस चिप के बिना दुनिया थम जाए, ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है। और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लान, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लान, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं। और मुझे बताया गया है कि वहां जो प्रोडक्शन हो रहा है वह एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, आने वाले 7-8 वर्ष में और 5, 7 या 8 सेमीकंडक्टर प्लांट बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं। ये आत्मनिर्भर भारत हमें विकसित भारत की दिशा में जाने का महामार्ग देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, वैसे ही एक चर्चा क्रिटिकल मिनरल की हो रही है। पूरी टेक्नोलॉजी क्रिटिकल मिनरल पर निर्भर है।
भारत इसमें भी अपने आप को सुरक्षित करने में जुटा हुआ है कि क्रिटिकल मिनरल का लक्ष्य साझा किया जाए। नेशनल क्रिटिकल मिनरल ये हमने लॉन्च किया, बजट में क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर की हमने घोषणा की है। कई देशों के साथ एग्रीमेंट हो रहे हैं, विश्व के कई देश अब इस क्रिटिकल मिनरल विषय में भारत के पर भरोसा करने लगे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जैसे सेमीकंडक्टर की बात हो, क्रिटिकल मिनरल की बात हो, वैसे ही जिस टेक्नोलॉजी की दिशा में हम जा रहे हैं, दुनिया जा रही है, उसमें एनर्जी का महत्व और बढ़ता चला जा रहा है। अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है और इसलिए हमें चीप हो, एआई हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य स्तर लाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इसी एक दशक में हम 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इस वर्ष भारत ने फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करके एक अहम पड़ाव पार किया है और इसके कारण परमाणु ईंधन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हमें एक बहुत बड़ा सफलता का कदम हमने रखा है। मेरे प्यारे देशवासियों, कई बार संसाधनों की कमी के कारण देश रुकता नहीं है, लेकिन रुकने का कारण सोच की सीमाएं होती हैं। जब सोच बंद जाती है, सीमाओं में सड़ने लग जाती है, तब हम अपने सामर्थ्य को भी पहचान नहीं पाते हैं। देश को आज कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ रहा है और हमारी गलत सोच के कारण है। आप जान के हैरान हो जाएंगे, हमने समुद्री तट पे 99% हमारा समुद्री तट का पूरा हिस्सा ऐसी सोच के कारण नो गो एरिया घोषित करके रखा। हमने ही समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र था, हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया और अब हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले वर्ष उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखते हुए समुद्र मंथन की घोषणा की थी और पिछले दिनों हमने 85,000 करोड़ रुपए इस काम के लिए आवंटित करके काम को गति देने का निर्णय कर लिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, एनर्जी सिक्योरिटी, इसका मैंने कहा कि हमें अल्टरनेट स्रोतों की तरफ भी पूरी शक्ति लगाना बहुत जरूरी है और इसलिए ऊर्जा का सही इस्तेमाल बढ़ाते हुए भारत इसी दिशा में
आज तेजी से काम कर रहा है। 2014 से पहले, मतलब आज से 12 साल पहले, हमारे देश में सिर्फ 70 शहरों में पाइप से गैस की व्यवस्था थी, पाइप से गैस डिस्ट्रीब्यूशन होता था। 12 साल में इन 70 शहरों को हमने 700 शहरों तक पहुंचा दिया है। ये होती है रफ्तार, ये होता है विस्तार। 2014 के पहले मुश्किल से 20-22 लाख घरों में पाइप से गैस पहुंचता था, आज 2.25 करोड़ घरों में पाइप से गैस पहुंचाने का काम हो रहा है। 12 वर्ष पहले देश में सोलर एनर्जी की कैपेसिटी सिर्फ 2 गीगावाट थी, 2 गीगावाट, आज 160 गीगावाट हमने प्राप्त किया है लक्ष्य। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं एक और जानकारी देता हूं, हमने इसका लाभ देश के मध्यम वर्ग को, सामान्य परिवार को मिले, इस तरफ भी उतना ही ध्यान केंद्रित किया। हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना चालू की और आज मुझे संतोष है कि इतने कम समय में 50 लाख घरों का सोलर एनर्जी का काम हम आंकड़ा पार कर चुके हैं, तेजी से चल रहा है। और इसके कारण हजारों घरों का बिजली बिल जीरो हो गया है, हजारों घर अपनी बिजली का उपयोग करने से अतिरिक्त बिजली आज बेच करके कमाई कर रहे हैं। हर परिवार को हम इस काम के लिए 80,000 रुपया सरकार की तरफ से एक एक परिवार को मदद दी जा रही है, तब जाकर के हम इस काम को पूरा कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आपको जानकर के हैरानी होगी, ये जो हमारी रेलवे है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हमारे देश में 1925 में शुरू हुआ था। 1925 में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू हुआ, लेकिन 90 साल में, 1925 से लेकर के 90 साल में सिर्फ 30% रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। यानी 90 साल में 30%। हमारी रफ्तार देखिए, लक्ष्य को पाने के लिए हमारी दौड़ देख लीजिए। हमें इन एक दशक के अंदर 100% काम पूरा कर दिया। 90 साल में 30%, 10 साल में 70%, ये होता है काम। और इसके कारण डीजल जो हमें बाहर से लाना पड़ता है उसकी बचत हुई, बिजली से हमारी ट्रेनें चली, पर्यावरण को फायदा होने लगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हम यहां तो नहीं रुके हैं, हम दुनिया के अंदर पीछे रहना नहीं चाहते। पिछले दिनों आपने खबर सुनी होगी, भारत ने ईंधन का एक नया क्षेत्र को भी छू लिया है। देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी है और मुझे खुशी है ये सबसे लंबी ट्रेन है और सबसे ताकतवर ट्रेन है। और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है। प्यारे देशवासियों, पिछले 10-12 साल हम लगातार 2047 के लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ रहे हैं, एक के बाद एक सोपान सिद्ध कर रहे हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि हमें इसमें भी कुछ मुसीबतों का झेलना पड़ेगा। पिछले 10-12 वर्ष में कितने संकटों का सामना करना पड़ा,
कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया था। सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। कोरोना से बाहर निकले युद्ध की विभीषा की खबरें आने लगी। कहीं यूक्रेन तो कहीं पश्चिम एशिया, हर जगह पर तनाव का माहौल। और पता नहीं भविष्य वेत्ताओं ने तो न जाने क्या क्या घोषणाएं कर दी थी। देश को डराना, देश को भयभीत रखना, देश को चिंतित रखना, इसी में कुछ लोगों को आनंद आता है। वैक्सीन नहीं मिलेगी, कोविड में लोग बचेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला। वेस्ट एशिया का क्राइसिस आया, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा। सारी दुनिया भर की अफवाहें फैला करके भारत के लोगों को भयभीत करने का, डराने का, चिंता के अंदर डुबो देने का कुछ लोगों को आनंद आ रहा था। लेकिन देश ने देख लिया कि पिछले 10-12 साल की सुविचारित योजनाएं रंग ला रही है और हम इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था। सोचा नहीं था यह संकट आएगा, लेकिन इस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है। हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, दुनिया के इन संकटों का प्रभाव हर किसी पर हुआ, हम भी अछूते नहीं। यूरिया के दाम दुनिया में 3000 रुपये पहुंच गए एक बोरी का। आज भी हम मेरे देश के किसानों को वो बोझ सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, सरकार अपने कंधों पर वो बोझ उठा रहा है। और दुनिया से जो 3000 रुपये में यूरिया का बोरा हमें मिलता है, वो हमारे किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में दे पाते हैं। इतना ही नहीं, डीएपी आज दुनिया में बाजार 5000 पहुंच चुका है, लेकिन मेरे देश के किसानों को दिक्कत ना हो इसलिए 1350 रुपये में आज भी डीएपी देने का काम हम कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एक समय था जब मैं आत्मनिर्भरता की बात कर रहा था तो कुछ लोग एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ करके सोचने वाले लोग हमें बता रहे थे ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा। लेकिन दुनिया देख रही है कि पिछले एक दशक में ऐसा लग रहा है कि दुनिया ने ग्लोबलाइजेशन बोलना ही बंद कर दिया है। जहां से ग्लोबलाइजेशन की आवाज आती थी वह बंद सुनाई नहीं देती है। दुनिया का हर देश अपनी अपनी संभालों के मिजाज की तरफ गया है। लेकिन दुर्भाग्य से इस संकट के कालखंड में कुछ लोगों ने अपना रुतबा दिखाने के लिए संसाधनों को वेपनाइज करने का खेल खेला है। दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसको वेपनाइज करने में लगी है, संसाधनों का वेपनाइज, रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर्स, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चिप्स। इतना ही नहीं, भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है। मुझे और ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भरते मंत्र को लेकर 10 साल सही दिशा में न चले होते तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला कैसे करते। और हमारी तैयारियां निरंतर बढ़ती जा रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, दूसरी तरफ आज भारत का प्रोफाइल पूरी तरफ बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया के लिए एक स्वीकृत और सम्मानीय देश के रूप में बन रहा है। भारत के पास स्थिर पॉलिटिकल मैंडेट है, स्थिर सरकार है, भारत का वाइब्रेंट लोकतंत्र है, भारत का मजबूत न्याय तंत्र है और हम सबको दिशा देने वाला भारत का संविधान है। और अब दुनिया
हमारे इन सामर्थ्य को पहचानने लगी है और इसलिए 2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा एफटीए एग्रीमेंट हो रहा है। अब देखिए कितना बड़ा अवसर आया है। लेकिन मैं ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं ये बहुत बड़ा अवसर है और इसलिए खास करके मैं मेरे एमएसएमईज को कहना चाहूंगा कि हमें इस मौके को छोड़ना नहीं है। दुनिया में हमें पहुंचना है, भारत के उत्पाद की हर चीज विश्व के बाजार में पहुंचे और हमारा टेक्सटाइल हो, हमारी मशीनरी हो, हमने दवाइयां हो, हमने मौका छोड़ना नहीं है। लेकिन वैश्विक जो पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर को हमें पार करना होगा। हमें दुनिया से जो मिलता है उसे अच्छा देना पड़ेगा, दुनिया में जो मिलता है उसे सस्ता देना पड़ेगा और पंजाब के लुधियाना से लेकर के तमिलनाडु के तिरुपुर तक हमारा टेक्सटाइल सेक्टर दुनिया में पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, केरलम से लेकर के गुजरात और तमिलनाडु से लेकर के बंगाल, ये हमारा समुद्री तट, हमारे मछुआरे भाई बहन आज इस एफटीए के कारण हमारे श्रीप यानी झींगा उसके एक्सपोर्ट की बहुत संभावना बनी है, हमारे सी फूड की दुनिया में पहुंच बनने की संभावना पड़ी हुई है। और इसे मैं चाहूंगा हमें इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए हम आगे चलते हुए हम इन कामों को पार करने के लिए प्रयास करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने जो भूमिका आपके सामने रखी है उसके पीछे 2047 का लक्ष्य इन मजबूत नींव पर खड़ा है। 2047 विकसित भारत का लक्ष्य हमने पिछले 10-12 साल में देशवासियों ने जो सामर्थ्य दिखाया है उस सामर्थ्य का हिस्सा है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सभी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है और अगला एक चौथाई हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम रुक नहीं सकते हैं, हमारी गति नहीं रुक सकती है, हमारी दिशा तय हो चुकी है, हमें प्राप्त करके रहना है। और इसके लिए हमें अपना वर्क कल्चर बदलना होगा, हमारे वर्क कल्चर को बदलते हुए हमें हमारी सोच को भी बदलना होगा, हमें हमारे काम की गति को भी बदलना होगा। जो काम पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए हैं वो काम हमें आने वाले 5-7 साल में करने हैं। और मेरा भरोसा है मेरे देश की युवा शक्ति पर, मेरे देश के नौजवानों पर, मेरे देश की माताओं को बहनों पर, मेरे देश के किसानों पर, मेरे देश के मजदूरों पर कि हम इस सपने को साकार कर सकते हैं। और इसलिए हमें रिफॉर्म की गति को भी आगे बढ़ाना है। और जब मैं रिफॉर्म की बात कर रहा हूं, रिफॉर्म नहीं हमारे लिए कोई कंपल्शन है, नहीं रिफॉर्म ये हमारे लिए कोई बजबड़ है, हमारे लिए रिफॉर्म ये कन्विक्शन है। आउट ऑफ कन्विक्शन हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं और हम आने वाले दिनों में भी नेक्स्ट लेवल रिफॉर्म की ओर बढ़ने वाले हैं। और इसलिए सरकार, समाज, उद्योग, उत्पादक, किसान, हर किसी ने अपनी ट्रेडिशनल व्यवस्थाओं में रिफॉर्म करना पड़ेगा, सोच में रिफॉर्म करना होगा, अपने लक्ष्यों को रिफॉर्म करना होगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, हमें एक निश्चित दिशा में को लेकर के चलना होगा। मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश, भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ वो सप्त धारा के
सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को

पढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे पुर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं। पूरा वैल्यू चेन हमारा होना चाहिए और उसे लेकर के चाहना, हमें कंपोनेंट भी चाहिए और हमें कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, कंप्लीट प्रोडक्ट भी चाहिए। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसामंद केंद्र बनना होगा। इसके लिए मैं तीन चीजों पर विशेष जोर देना चाहता हूं। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो मेरे भाई बहन हैं, यह समय का यह अवसर है, इस अवसर को जाने मत दें और इसके लिए हमें कॉस्ट, क्वालिटी और स्केल इसके विषय में वैश्विक मानदंडों से खरा उतरना पड़ेगा। हमारी फैक्ट्रीज कॉम्पिटिटिव हो, हमारे प्रोडक्ट्स यूजर फ्रेंडली हो, हमारा पैकेजिंग दुनिया के लोगों को लुभावने वाला हो, आकर्षित करने वाला हो, हमारा जीरो डिफेक्ट प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग ये हमारी पहचान बनना चाहिए। हर मैन्युफैक्चरर, हर एंटरप्रेन्योर, हर एमएसएमई से मैं कहना चाहता हूं, ग्लोबल मार्केट में हमारी पहचान विश्वसनीयता और गुणवत्ता के आधार पर होनी चाहिए, क्वालिटी के संबंध में नो कॉम्प्रोमाइज। और इसलिए हमारा मंत्र क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी होना चाहिए, यही हमारा ग्लोबल ब्रांड वैल्यू बनेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे किसानों ने अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं, एफपी के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है, हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है, हमें खेत से लेकर हमें एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा। हमारे पारंपरिक खान पान हो, हमारे मिलेट्स हो, हमारे मसाला हो, हमारे फल हो, फूड हो, क्या कुछ नहीं है हमारे पास, वो ग्लोबल ब्रांड बनने चाहिए। हमारे किसान केमिकल फ्री खेती को बल देंगे, दुनिया में इनकी मांग और बढ़ने वाली है। और जो ग्लोबल पैरामीटर्स के अंदर हर प्रकार से सिद्ध होने वाले हमारे एग्रो प्रोडक्ट होंगे तो दुनिया में हम आसानी से पहुंच पाएंगे। मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है, पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मनवा लिया है, हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है। अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजी उसको भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। भारत को नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लीड करना है। मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए और हमें उस पर तेजी करनी चाहिए और इसके लिए हमारा प्रयास कम नहीं होना चाहिए। सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। यह गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा। मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलैंड वाटरवेज चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक की व्यवस्था चाहिए। हमें पोर्ट्स को सिर्फ सामान उतारना चढ़ाने की जगह नहीं, दुनिया के शिप्स आकर के लंगर हो जाए इतना नहीं, हमें हमारे पोर्ट्स को पोर्ट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। अरे रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है। मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है।
इसके बिना कोई चारा नहीं है।

विश्व जब अपनी अपनी ही सोच रहा है तब भारत विश्व के लिए बाजार बनकर के नहीं रह सकता है। हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना होगा, नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है। हमें ड्रोन काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा और हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज उस पर हमें लीडरशिप लेनी होगी। साथियों, साइबर सुरक्षा भी आज हर घर के लिए एक समस्या बन रही है, वो भी एक रक्षा का क्षेत्र है जिसमें हमारे युवाओं की जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का उपयोग हम देश के और दुनिया के लिए कर सकते हैं। हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग इन ग्लोबल स्केल हमें पा करके रहना है। हमें दुनिया में, दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है, हम रास्ते खोजते रहते हैं, हम समस्याओं का समाधान दे रहे हैं और भारत ये ग्रीन मूवमेंट का बहुत बड़ा सामर्थ्य लेकर के चलिए। भारत के पास ब्लू इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा लंबा हमारा कोस्ट लाइन है, ब्लू इकोनॉमी के लिए बहुत बड़े अवसर है, फिशरीज है, कोस्टल टूरिज्म है, ओशन टेक्नोलॉजी है, ऐसे कितने ही क्षेत्र हैं जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत सप्तधारा की जब बात करके लेकर चला है तब हमारी सातवीं धारा है और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। आयोग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ है। योग दुनिया के लिए एक ऊर्जा बनता जा रहा है, भारत के लिए विश्वास का बड़ा कारण बनता जा रहा है। जिस भारत के पास आस्था के केंद्र हो, जिस भारत के पास आयुर्वेद हो, जिस प्रकार से भारत के पास होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो, हीलिंग इंडिया का मूवमेंट हो, हम दुनिया के अंदर हमारे सामर्थ्य को लेकर के जा सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट हो, संस्कृति हो, हमारी फिल्में हो, हमारा क्रिएटिव वर्ल्ड हो, वीएफएक्स हो, हमारा एनिमेशन हो, हमारे गेमिंग हो, डिजिटल कंटेंट हो, क्रिएटिव वर्ल्ड के अंदर भारत अपना रुतबा दिखा सकता है। हमने उसको वैश्विक सामर्थ्य के रूप में विकसित करना होगा। आज भारत ने वेव समिट को एक बहुत बड़ी ताकत दी है। दुनिया धीरे धीरे भारत का ये जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट है उसकी राह देखता रहता है और वो भारत के सॉफ्ट पावर को, भारत के क्रिएटिव दुनिया को परिचित करेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के पास विशाल वन्य संपदा है, हमारे पास 100 से ज्यादा नेशनल पार्क है। क्षमता बहुत है लेकिन विदेशी टूरिस्टों को आकर्षित करने में हम कम पड़े हैं। हमें मौका है हमारे सॉफ्ट पावर के माध्यम से दुनिया के टूरिस्टों को भारत के लिए आकर्षित करने का। हमारा सामर्थ्य हमें दुनिया को दिखाना है। हम ये काम आरा से करें और हम जल्द से जल्द हम इन लोगों आज दुनिया में स्पोर्ट्स की जो है वो भी एक बहुत बड़ा भारत के प्रति आकर्षण का केंद्र। दुनिया के स्पोर्ट्स इवेंट भारत में क्यों न हो। कॉन्सेंट इकोनॉमी बहुत बढ़ रही है, देश के नौजवानों का आकर्षण है। विश्व का हर कोई कलाकार चाहता है कभी न कभी भारत की धरती पर अपना कॉन्सेंट करे। ये बहुत बड़ा अवसर है, हमें इसको मोबिलाइज करने के लिए व्यवस्थाएं खड़ी करनी होगी। साथियों, सप्तधारा की इन सप्त शक्तियां उद्देश्य सिर्फ एक सेक्टर में प्रगति करने का नहीं है। एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमें राष्ट्र को जो लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं, जो एम्बिशन लेकर के चल रहे हैं, उस स्केल को हमें पार करने की दिशा में काम करना है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ चीजें मैंने बताई हैं लेकिन मैं इससे भी आगे सोचता हूं। मैं जरा देश को झकझोरना चाहता हूं, मैं देश की शक्ति को भी झकझोरना चाहता हूं। देश यानी सिर्फ सरकार नहीं होती है, देश यानी हर नागरिक जुड़ता है। क्या हम सोच नहीं सकते कि फॉर्च्यून 500 की चर्चा तो बहुत सुनते हैं, आने वाले एक दशक में
इन फॉर्चून 500 में 50 कंपनियां भारत की क्यों न हो, ये लक्ष्य हमारा क्यों न होना चाहिए। आज बैंकिंग सेक्टर फल फूल रहा है, दुनिया की टॉप बैंक के अंदर भारत की बैंक का झंडा भी क्यों न फहरता हो, भारत की बैंक भी टॉप बैंक 5 बैंक में भारत की भी एक बैंक होनी चाहिए। भारत फार्मा की दिशा में हमने बहुत काम किया है, लेकिन समय की मांग है कि दुनिया की 5 बड़ी फार्मा कंपनियों में भारत की भी 1-2 फार्मा कंपनियों का नाम गूंजना चाहिए, भारत उसमें अपना स्थान बनाना चाहिए। लॉ फर्म्स होते हैं, रेटिंग एजेंसी होती है, क्या समय की मांग नहीं है कि ग्लोबल लीडरशिप अब हमारे हाथ में होनी चाहिए? टैलेंट है, सामर्थ्य है, हमारा लंबा इतिहास भी है, भाषाओं पर हमारा प्रभुत्व है, हमें विश्व में पहुंचना चाहिए। हमारी कोई कंसल्टिंग फर्म, अकाउंटिंग फर्म दुनिया के टॉप फर्म्स के अंदर क्यों नहीं होनी चाहिए? भारत की टेक्नोलॉजी कंपनियां दुनिया के अंदर सिरमौर हो, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारे ऐसे ब्रांड हो जिससे दुनिया आकर्षित होती हो, हमारे ब्रांड हमारे देश की पहचान हो और विश्व के लिए एक डेस्टिनेशन बन जाए, उस दिशा में हमें काम करना है। और इसके लिए मैं राज्य सरकारों को कहना चाहता हूं, मैं स्थानीय स्वराज की संस्थाओं को कहना चाहता हूं, भारत सरकार का भी यह दायित्व है कि हमें हमारे रिफॉर्म की गति बढ़ानी होगी, हमें 2047 के लक्ष्य के अनुरूप हमारी व्यवस्थाओं को विकसित करना होगा, हमें बीते हुए काल के नीति नियमों से नहीं चल सकते, हमें आने वाले सपनों के हिसाब से नीति नियमों को गढ़ना होगा। और इसको अगर हम पढ़ेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है और मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, इसी रास्ते मेहनत में कोई कमी न करते हुए हम विकसित भारत का सपना पार करके रहेंगे। हमें सबको मिलकर के चलना है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इंडस्ट्री हो, हम सब ने मिलकर के आगे बढ़ना है। हमें रिफॉर्म्स करते रहना है, रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाते रहना है। और मैंने पहले भी कहा था, हम रिफॉर्म कंपल्शन से नहीं, कन्विक्शन से कर रहे हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है। और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। साथियों, पिछले 10-12 साल में उस दिशा में बहुत कुछ हुआ है। स्टार्टअप इंडिया अभियान, आज पूरे देश में 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप बन गए। देश के नौजवान खुद तो काम कर रहे हैं, अनेकों को रोजगार दे रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया इनोवेशन फंड भारत सरकार ने घोषित किया है। मैं देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपनों को लेकर के आइए, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। रिसर्च के नए अवसर मिले, डिजिटल इंडिया के नए सस्ते डेटा युवाओं को सशक्त किया। दुनिया में सस्ता डेटा कहीं है तो भारत की धरती पर है, और देश के नौजवानों ने नौजवानों को उसने नवी ताकत दी है। स्किल इंडिया हमने नेशनल प्रोग्राम बनाया है, स्पेस सेक्टर को हमने ओपन कर दिया, नेशनल ड्रोन पॉलिसी हमने बनाई है, खेलो इंडिया पॉलिसी बनाई है, 35 वर्षों तक एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं, और इसका फायदा मिडिल क्लास के परिवारों को हुआ है। साथियों, 2004 से 14 आंकड़े मुझे देना चाहिए आपको, 2004 से 14 हमारे देश में 350 से भी कम यूनिवर्सिटी थी, और आज
10-12 साल के भीतर भीतर करीब 650 नई यूनिवर्सिटी जुड़ चुकी है। करीब 1000 का आंकड़ा हम पहुंच रहे हैं। 2014 के पहले मेडिकल की सिर्फ 400 सीटें हुआ करती थी, आज करीब करीब 850 सीटें मेडिकल की हो रही है। इतना ही नहीं, अब विदेशी यूनिवर्सिटी भी भारत की धरती पर आ रही है। भारत के अंदर विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री मेरे नौजवान को मिले, इसका प्रबंध भी हो चुका है। हमारे देश के युवा मन बचपन से ही टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और इसलिए हमने करीब 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग की लैब छोटे छोटे बच्चों के हवाले कर दी है, ताकि उनका इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर उनका मन बने। 12 वर्ष युवा, हमने अनेक रास्ते खोले। हम स्टार्टअप ओपन कर दिया, आपने देखा होगा भारत के प्राइवेट स्टार्टअप 28 साल के एवरेज उम्र के बच्चों ने, नौजवानों ने दुनिया में पहले ही ट्रायल में अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया और रॉकेट लॉन्च कर दिया उन्होंने। बहुत बड़ा काम कर दिया साथियों। आज करीब 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है। एक समय था 2014 के पहले सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का बायो इकोनॉमी का काम होता था। मेरे देश के नौजवान, आपने क्या कमाल कर दिया है। देखिए, नीतियां जब सही होती है, लक्ष्य जब साफ होता है, तो मेरे देश के नौजवान कैसा करके दे। बायो इकोनॉमी में देश की युवा शक्ति ने सामर्थ्य दिखाया। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी का, बायो इकोनॉमी 20 लाख करोड़ पहुंच चुकी है। दोस्तों, दो हजार नौ दस का कालखंड था सिर्फ 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे 2009-10 में। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल, इस 25-26 में 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एविएशन सेक्टर भी मेरे नौजवानों के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। नए एयरपोर्ट, नए रूट, नए रोजगार के अवसर बना रहे हैं। मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग, इसके भी कारण देश में बहुत बड़ी मात्रा में स्किल मैन पावर को काम मिल रहा है। मेड इन इंडिया हवाई जहाज बनाने की दिशा में हमने सफलता पाई है। मेड इन इंडिया डिफेंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 ऑलरेडी अपनी उड़ान भर चुका है, सफल उड़ान भर चुका है। ये देश के नौजवानों के लिए। मेरे साथियों, ड्रोन ने भी बहुत बड़ा काम किया है। स्वामित्व योजना, गांव में ड्रोन से स्वामित्व योजना सफल हो रही है। करीब 3.25 करोड़ परिवारों को स्वामित्व योजना का लाभ मिला है और इसके कारण 140 लाख करोड़ रुपए जैसी संपत्ति अनलॉक हुई है, जिसके कारण बैंक से लोन मिल सकता है, लोग अपना कारोबार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे मध्यम वर्ग के परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर मां बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए, 1000 करोड़ रुपए का उनका खर्च है, वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ ना आए, और इसलिए हमने युवाओं के लिए
विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले। जब मैं खेले वो खिले की बात कर रहा हूं, तब मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। अब खेल के पोडियम में भारत का राष्ट्रगीत सुनाई देता है, भारत का राष्ट्रगान सुनाई देता है, भारत का तिरंगा झंडा लहराता दिखाई नजर आ रहा है। टॉप्स योजना ने बहुत बड़ी सफलता की है। खेलो इंडिया गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, बीच गेम्स, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स के लिए न्यूट्रिशन, इन सारे विषयों में भारत अब महारत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नौजवानों के लिए पूरा नया क्षेत्र, खिलाड़ी न बन सके तो उसकी सपोर्ट सिस्टम में भी बहुत बड़ा क्षेत्र खुल रहा है। स्पोर्ट की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का को भारत होस्ट करने वाला है। और मेरे साथियों, दुनिया में जो ओलंपिक की खेल होते हैं, करीब 40 प्रकार के गेम होते हैं और करीब 350-350 स्पर्धाएं होती है ओलंपिक में। और आपको जानकर के दुख होगा मेरे देशवासियों, मेरे नौजवानों, मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आह्वान करता हूं, मैं आपकी मदद चाहता हूं। 350 जितने स्पर्धाओं में भारत 2/3 खेलों में कहीं होता ही नहीं, हमारी मौजूदगी नहीं होती, हम क्वालिफाई नहीं होते हैं। हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, हम चाहते हैं कि वो भारत में हो, लेकिन 2036 में जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, जिन स्पर्धाओं में भारत ने छोड़ के रखा है, 3/4 हिस्सा हमारे इंतजार कर रहा है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल, 10 साल, 15 साल की उम्र के नौजवान हैं, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव, शहर शहर, स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग देकर के देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे। मेरे प्यारे युवा, देश के सामने, देश के नौजवानों के सामने नशा एक बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। नशा मुक्त भारत, ये हम सबका सामूहिक दायित्व होना चाहिए। हमारे उज्जवल भविष्य के लिए हमारी युवा पीढ़ी मजबूत हो, हमारा युवा सामर्थ्य हमारे देश के लिए काम आए, इसलिए नशा मुक्त भारत। पिछले दिनों माय भारत के वॉलेंटियर्स ने, देश के एनजीओज ने, देश के सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों ने, देश के आध्यात्मिक पुरुषों ने मिलकर के नशा मुक्त भारत का 100 सप्ताह का एक कार्यक्रम तय किया है। 100 सप्ताह तक एक अभियान चलने वाला है। मैं हर परिवार को कहना चाहता हूं कि आप भी इस अभियान का हिस्सा बने, आप इसके साथ जुड़िए और देश के नशा मुक्त भारत के सपने को पूरा करने के लिए आप आगे आइए। मेरे प्यारे देशवासियों, 21वीं सदी में दशकों पुरानी जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को खत्म करना बहुत अनिवार्य है। नक्सलवाद, माओवाद, लाखों युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया, अनेक माताओं के

नौजवानों को छीन लिया, बर्बाद कर दिया, हर मां बाप के सपनों को चूर चूर कर दिया। इस नक्सलवाद ने चार चार दशक तक हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को, बहुत बड़ी आबादी को दबोच करके रखा था, बंदूक के नोक पर दबोच करके रखा था, संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी और देश के सामान्य नागरिकों की रक्षा में 3,500 से ज्यादा हमारे पुलिस के, सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी ताकि देश के सामान्य मानवी को सुरक्षा मिले। ये नक्सलवाद ने धरती को लहूलुहान कर दिया था। 2014 में आपने जब हमें मौका दिया, उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे और आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस विषाद रहने की अब तो ताकत नहीं रही है, पूरी तरह उसे खत्म करने की दिशा में जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में, उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है, मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन इस चुनौती को हमने कम नहीं आंकना, इस चुनौती से हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे, सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, सुरक्षित भारत बनाना हम सबका दायित्व है। चुनौती सीमा के भीतर हो या सरहद से बाहर, भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है। आज युद्ध का नेचर बदल रहा है, अब युद्ध सीमा पर ही होता है गारंटी नहीं है, युद्ध सीमा के अंदर कहीं रिफाइनरी पे जाकर के, कहीं बैंकिंग सेक्टर को जाकर के, कहीं डेटा सेंटर को जाकर के, एक प्रकार से लड़ाई का नया रूप इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़े जा रहे हैं, फैक्ट्रियां तोड़ी जा रही है। हमने मिशन सुदर्शन चक्र की पिछले सालों घोषणा की, बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है। आज डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा करीब 50 गुना बढ़ा है, करीब 100 देशों में हमारे अस्त्र शस्त्र पहुंच रहे हैं, वैश्विक पटल पर भारत की प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ रही है। बदलते हुए समय में अस्त्र शस्त्र की तरफ काम करना है, सैन्य बलों का सामर्थ्य बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ नागरिकों को भी तैयार करना होगा। पिछली शताब्दी के युद्धों के अनुरूप जो सिविल डिफेंस की व्यवस्थाएं हमारे देश में विकसित हुई है वो कालबाह्य हो चुकी है, और इसलिए मैं आज लाल किले से घोषणा कर रहा हूं कि हम आने वाले दिनों में सिविल डिफेंस का एक वाइब्रेंट नेटवर्क खड़ा करेंगे, आधुनिक व्यवस्थाओं से उनको परिचित कराएंगे, आधुनिक संकटों से नागरिकों को रक्षा करने की क्या व्यवस्था हो सकती है, एक बहुत बड़ा वॉलेंटरी फोर्स सिविल डिफेंस का, आधुनिक चुनौतियों को पार करने वाला हम बनाने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों,
राष्ट्र के निर्माण

निर्माण में आज हमारी बहनों बेटियों का योगदान हम सबके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का कारण बना हुआ है। फाइटर जेट हो या सिविल एविएशन, हमारी बेटियां सबसे आगे दिखाई दे रही है। खेलकूद का मैदान हो, हमारी बेटियां आगे दिखाई दे रही है। स्टेम एजुकेशन में भर्ती होने की प्रक्रिया हो, सबसे ज्यादा हमारी बेटियां आगे दिख रही है। आज सेना में भी एनडीए से जो बेटियां निकली है वो बड़े रौब के साथ देश की सेना का नेतृत्व करने का सामर्थ्य दिखाने लगी। मेरी बेटियों की ताकत कैसी है, मैं पिछले दिनों सारण में एक सेमीकंडक्टर प्लांट में गया, वहां आदिवासी बेटियां देश के अलग अलग कोने से आई हुई बेटियां काम कर रही थी। वो उस गांव से आई थी जिन्होंने पासपोर्ट क्या होता है पता तक नहीं था। वो बेटियां विदेशों में गई, ट्रेनिंग लेकर के आई और आज चिप निर्माण का काम कर रही है और बड़े कॉन्फिडेंस, मैं जो उनका कॉन्फिडेंस देखा मैं सचमुच में बहुत प्रभावित हुआ था। आज तीन करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पंचायतों में, नगर पालिका में, महानगर पालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से यह सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता, आग्रह करता, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले। ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। 2014 से पहले सिर्फ 25 करोड़ लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी का कवर था, सिर्फ 25 करोड़ का। साथियों, पिछले 5-7 दशक में सिर्फ 25 करोड़, हमने एक दशक के भीतर भीतर 100 करोड़ देशवासियों को सोशल सिक्योरिटी का कवच दिया है। आयुष्मान भारत योजना से 70 साल की उम्र के बुजुर्गों से भी आज 5 लाख रुपए तक मुफ्त दवाई की व्यवस्था हो रही है। करोड़ों करोड़ों परिवारों को इसके कारण बहुत बड़ी सुविधा मिली है और इस आयुष्मान कार्ड के कारण 2 लाख करोड़ रुपया जो दवाई और ऑपरेशन के पीछे खर्च होना था वो मेरे परिवारों के बच्चे हैं, वो गरीब परिवार है, वो मध्यम वर्ग के परिवार है, उनको इतनी बड़ी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मुझे एक काम के लिए आपकी मदद चाहिए। मैं आप सबसे एक मदद मांग रहा हूं। सभी नौजवानों से मैं चाहता हूं कि आप इसका नेतृत्व करिए। आपका 1 या 2 घंटे देश को बहुत बड़ी शक्ति देने वाले हैं। आपको लगेगा ये 1-2 घंटे में मैं देश की क्या शक्ति, मैं बताता हूं, आप बहुत बड़ी शक्ति बनने वाले हैं और इसलिए हर घर में वातावरण बने। इन दिनों देश में जनगणना का काम हो रहा है, सेंसस का काम हो रहा है, गिनती चल रही है।
और

गिनती सिर्फ आंकड़ों से बात बनती नहीं है, उसकी बारीकियों से नीतियां बनती हैं, योजनाएं बनती हैं, देश आगे बढ़ने की अपनी रूपरेखा तैयार करता है। और इसलिए सटीक जानकारियां होना बहुत जरूरी है। कभी कभी जो सरकार की तरफ से प्रतिनिधि आते हैं वो इतनी जल्दी में होते हैं, कभी स्पेलिंग एक लिख देते हैं, कभी अलग लिख देते हैं, और इसके कारण अल्टीमेट परिणाम हमें सही मिलने में दिक्कतें आती हैं। अब जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और इस बार निर्णय किया है, आप स्वयं भी जनगणना में अपनी जानकारियां अपने मोबाइल फोन से भर करके दे सकते हैं। बाद में कोई बाबू आएंगे, कोई प्रतिनिधि आएंगे, आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन आप परिवार के सब बैठ करके अगर डिजिटली अपना रजिस्ट्री करवा दे, सारी बारीकियां, स्पेलिंग में भी गलती ना हो, कोई भी जानकारियों में गलती ना हो, आप जितनी परफेक्ट जानकारी देंगे देश को आगे बढ़ने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और इसलिए मैं देश के नौजवानों कहता हूं कि आप अपने परिवार के लोगों को बिठा करके पूरे फॉर्म को समझिए, पहले कागज पे फॉर्म को भर दीजिए, कोई गलती है तो करेक्ट कर लीजिए, और फिर टेक्नोलॉजिकली उसको डिजिटली इसको अपलोड कर दीजिए। आप देखिए इतना बड़ा काम देश कर लेगा और देश का समय और शक्ति सही काम के लिए उपयोग आएगा। और इसलिए मेरे देश के नौजवानों को जनगणना के इस काम में सक्रियता से जुड़ने के लिए मैं आग्रह करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने लाल किले से पंच प्राण की बात कही थी। इस पंच प्राण ने देश को अपने आत्मगौरव की ओर लेकर के आगे बढ़ने का, लक्ष्यों को पार करने के सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा संबल दिया है। हमें गुलामी की मानसिकता हर पल मिटाते ही रहना है। जिस भारत का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, पंडित नेहरू ने देखा था, सरदार पटेल, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु ने देखा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, भगवान बिरसा मुंडा ने देखा था, ज्योतिबा फुले ने देखा था, उन सबसे प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़े। इस आइए इस संकल्प को हम दोहराएं, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो और कर्तव्य ही हमारी पहचान हो। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा, समय हमारा है। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा, समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है। आइए सपनों को संकल्प बनाए, संकल्प को सामर्थ्य बनाए और सामर्थ्य को सफलता में बदल के रहे। आइए हर कदम को विकास का कदम बनाए, कदम से कदम मिलाए, मन से मन मिलाए, लक्ष्य से जुड़े रहे, एक दीप से जले दीप हजारों, आओ मिलकर विकसित भारत बनाए। इसी एक भावना के साथ इस मंगल पर्व पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: बहुत बहुत आभार महोदय। और वो सामने
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अभी लाल किले की प्राचीर पर बने ध्वज स्थल से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रेरणादायी वक्तव्य आपके जो लंबे समय तक सभी को प्रेरित करते रहेंगे। और इस समय हम देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया है, शान से वो लहराता हुआ और हमारे दाहिनी ओर से तीन रंगों के गुब्बारे इस समय गगन को चूमने के लिए तैयार ऊपर उठते हुए सभी की निगाहें इन गुब्बारों को देखती हुई माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय अपने केंद्रीय मंत्रियों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और ध्वज स्थल से ही हाथ हिलाकर जो विशाल जन समुदाय यहाँ पर उपस्थित है उनका अभिवादन, उनका स्नेह भी स्वीकार कर रहे हैं। साथ ही जो एनसीसी कैडेट्स बैठे हैं, माई भारत के स्वयंसेवक इस समय बैठे हैं अपने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए और बीच में नारंगी रंग से वंदे मातरम जिन्होंने लिखा है, वो करतल ध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति सम्मान और स्नेह प्रकट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का इस समय लाल किले की प्राचीर से उसके प्रांगण में प्रस्थान हो रहा है और सभी केंद्रीय मंत्री अपने अपने स्थान पर खड़े होकर हाथ जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए शान से हमारा तिरंगा यहाँ पर लहराता हुआ सभी की निगाहें कभी प्राचीर की ओर, कभी आसमान में उड़ते तीन रंगों के गुब्बारों की ओर और कभी दाहिनी ओर जाती है, क्योंकि सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के वाहनों का काफिला उस ओर से आएगा कुछ ही देर में और सभी इस उत्कंठा से भरे हुए कि अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने स्वयं को प्रधान सेवक कहा है,

0: उन्हें नजर भर देख लें और अगर ये सौभाग्य प्राप्त हो जाए कि माननीय प्रधानमंत्री जी उनके सर पर हाथ रख दें तो जीवन भर के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि और एक ऐसी याद रहेगी जो इन युवाओं को तो प्रेरित करेगी ही, साथ ही इनके पूरे परिवार को और विद्यालयों को भी प्रेरित करेगी। हम आपको बताएं कि हर घर तिरंगा माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो ये अभियान शुरू हुआ है 9 अगस्त से इस बार 17 अगस्त तक चलेगा। इस बार नया ये है कि सूर्य पथ तिरंगा भी हमारे पास है जिसने कि भूखंड और कालखंड की सीमाओं को छोटा कर दिया है। यही है वसुधैव कुटुंबकम का वास्तविक भाव। अलग अलग देशों में जहां जहां सूर्य रश्मियां पहुंचेंगी यानी सूर्योदय के साथ ही भव्य उदय होगा हमारे राष्ट्रीय ध्वज का भी, हमारे प्रिय तिरंगे का भी। विभिन्न देशों में स्थित भारतीय दूतावास और मिशन के परस्पर संयोजन से तिरंगा फहराया जाएगा, अनेक माध्यमों से प्रदर्शित किया जाएगा, वैश्विक स्तर पर तकनीक का परंपरा के साथ समागम होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराया और साथ ही इस मंच से आपने बात की शक्ति की, सप्त धारा की, यहीं से पंचप्रण का उल्लेख हुआ, स्वच्छ भारत यहीं से हमने अपनाया और फिर उसे दुनिया को भी दिखाया कि भारतीय जब एकजुट हो जाएं एक लक्ष्य के प्रति तो क्या कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सराहना इसी मंच से हुई। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने विनिर्माण क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों को हासिल करने की प्रेरणा दी है, इनोवेशन का हब भारत को बनाने की बात कही है, भारत की सॉफ्ट पावर किस तरह दुनिया में अपना स्थान बना रही है इसका उल्लेख किया, तो साथ ही खेल क्षेत्र और शिक्षा क्षेत्र का भी उल्लेख किया है।
1: और इस समय
0: माननीय प्रधानमंत्री जी के वाहनों का काफिला हम देख रहे हैं कि इस समय बढ़ चला है ज्ञान पथ की ओर और जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो उत्सुकता से अपने अपने स्थान पर खड़े होने को आतुर हैं। जानेंद्र,
1: निश्चित रूप से उनके लिए ये बहुत विशेष अवसर होता है जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय या लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करने के बाद जब वे यहाँ से प्रस्थान कर रहे होते हैं उस समय इन सभी उपस्थित बच्चों को उनका स्नेह मिलता है। यहाँ पर दर्शक कार्यक्रम की समाप्ति के बाद भी बड़ी उत्कंठा से यहाँ उपस्थित होते हैं इस बात के लिए और उस काफिले के राह के किनारे कहीं खड़े होकर एक झलक पाने को आतुर होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का युवाओं के साथ जो जुड़ाव है, जो कनेक्ट है, वो बहुत अद्भुत है और इसीलिए वो देश, चूंकि ये युवाओं का देश है और इस देश के भविष्य में 1 करोड़ ऐसे युवाओं को जो कि कर्तव्य को अपनी पहचान बनाए, राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखे, ऐसे 1 करोड़ युवा अपने आप को कौशल के साथ जोड़ते हुए राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं, इस बात का बहुत विशेष उल्लेख किया उन्होंने। इसके पहले भी उन्होंने अनेक बार युवाओं को केंद्र में रखते हुए अपनी विजन, अपने विजन को, अपनी सोच को यहां से इस मंच से साझा किया है। शक्ति की सप्तधारा का बहुत विशेष उन्होंने आज एक नई सोच दी है इस देश को और देश के प्रगति को, विकास को, और इसमें जो 7 अलग अलग क्षेत्रों की उन्होंने बात की, दरअसल इसके पीछे चूंकि कार्य तो हर क्षेत्र में हो ही रहा है लेकिन इसको गति देने की बात है, इसको शक्ति देने की बात है। और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने वाहन से उतरकर बच्चों के बीच में पहुंच रहे हैं, इसलिए करतल ध्वनि के जो गूंज है वो आप तक पहुंच रही होगी। प्रधानमंत्री जी ने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए उन बच्चों को अपना आशीष दिया है और जो 7 बच्चे वहां निकट हैं उनके, उन बच्चों के साथ वो हाथ मिलाकर उन्हें अपना स्नेह दे रहे हैं। इस समय बच्चों के लिए ये विशेष अवसर होता है क्योंकि एक बार का दृश्य मुझे याद है, पहले का बच्चे जब खड़े होते हैं तो सब निकट आने की कोशिश करते हैं और ऐसे में थोड़ी सी अफरा तफरी भी होती है, लेकिन चूंकि अनुशासन और संयम का एक दृश्य इस समय एनसीसी के विद्यार्थी यहां पर दिखा रहे हैं तो वो दृश्य हम यहां पर देख पा रहे हैं। सभी अपने अपने स्थान पर बैठे हुए युवा साथी अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी का और उनका स्नेह प्राप्त कर रहे हैं।
0: जी, और जिन बालिकाओं से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाथ मिलाया है उनके लिए तो ये एक ऐसा पल है जो वो लंबे समय तक याद करेंगी और जब एक लक्ष्य चुनेंगी, अपने जीवन को एक दिशा देंगी, उस समय भी ये पल उन्हें अभिभूत करता रहेगा, प्रेरित करता रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय एनसीसी कैडेट्स के बीच से दोनों ओर हाथ हिलाते हुए जैसे एक साथ सभी को अपना स्नेह, अपना आशीष देना चाहते हों, और ये कैडेट्स जो है बहुत ही मुश्किल से संयम दिखा रहे हैं, इस समय अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं निर्देशों का पालन करते हुए लेकिन अपना स्नेह लगातार प्रकट कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति। हवा में दोनों हाथ हिलाते हुए नमस्कार भी कर रहे हैं और साथ ही भारत माता की जय के नारे यहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष लगा रहे हैं। मैं भारत के उज्ज्वल भविष्य का प्रमाण हूं, राष्ट्रहित में होने वाला सारा उत्थान हूं, स्वामी विवेकानंद के विचारों का चितवाण हूं, मैं युवा हूं, मैं भारत का प्राण हूं।
1: प्रधानमंत्री जी ने एक जो उनके

0: पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व से एक बात, एक संदेश जो साफ झलकती है वो है नई सोच नागरिक देवो भव का। नागरिक को केंद्र में रखते हुए अपने पूरे सुशासन के तंत्र को, व्यवस्था को उस ढंग से रूप देना, आकार देना। बच्चों के बीच से होते हुए प्रधानमंत्री महोदय अब दर्शक दीर्घा की तरफ जा रहे हैं। हमारी बाई तरफ जो दर्शक दीर्घाएं बनी है उसके रेलिंग के साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में लोग बड़े उत्साह उमंग से अपने अपने मोबाइल को हाथ में पकड़े हुए, वे कोई सेल्फी लेना चाहता है, कोई फोटो खींचना चाहता है, कोई हाथ हवा में लहराते हुए प्रधानमंत्री जी का अभिवादन और अभिनंदन कर रहे हैं। देश का ये वो नेतृत्व है जो दुनिया में सबसे अधिक लोकप्रिय है, जो विकसित भारत की सोच और विजन को इस देश को जिन्होंने दिया है, इस देश के करोड़ों युवाओं को नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और आत्मगौरव का भाव जिन्होंने भरा है। और हर व्यक्ति आज, हर भारतवासी इस विश्वास के साथ कि भारत विकसित होगा, भारत आत्मनिर्भर होगा, भारत अपने स्वदेशी सोच और अपने पुरातन चिंतन के साथ, धर्म और आध्यात्म के साथ विश्व में अपनी पहचान बनाएगा, भारत विकसित भी होगा, अपनी विरासत के साथ विकसित होगा। इस समय दर्शक दीर्घा में काफी आगे तक प्रधानमंत्री जी बढ़ चुके हैं और उनकी इच्छा होती है कि कोई भी दूर दूर तक, जहां तक भी दर्शक आए हुए हैं और बल्कि ये देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं, इसमें ऐसी बड़ी संख्या में हमारे दर्शक हैं जो अलग अलग जो सरकार की नीतियां रही हैं, उनकी योजनाएं रही हैं, उसका लाभ लेते हुए जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और उन सबको विशेष रूप से इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से यहां आमंत्रित किया गया है। और सबसे बड़ी खास बात यह है, आकर्षण की चीज ये लगती है कि वो सभी अपने अपने प्रदेश की अलग अलग वेशभूषा में यहां पर आए हुए हैं। अधिकांशता उसमें से वहां प्रधानमंत्री महोदय के निकट अपने आप को पाकर वो निश्चित रूप से बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे होंगे।
1: जी बिल्कुल जैनेन्द्र, और यहाँ पर भारत में जो अन्य देशों के दूतावास हैं उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति भी है। इस समय वे भी बेहद आह्लादित महसूस कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी की यही शैली, जो अपने देशवासियों से जुड़ने की शैली है, इससे दुनिया के बहुत सारे नेता प्रेरित हुए हैं। और यही वजह है कि खाड़ी और मध्य पूर्व के देशों या हमारे पड़ोसी और एशियाई देशों या फिर कई संगठनों, आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया है, अपने देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिए हैं, सैन्य सम्मान दिए हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने व्यवहार से अन्य देशों को भी दिखाया है कि किस प्रकार से अपने देशवासियों से जुड़ना है, उनके आकांक्षाओं को कैसे समझना है और किस प्रकार से उनके लिए जनहित की नीतियां बनाकर जन जन को राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए प्रेरित करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने प्रिय ये जो जनता है इनसे भेंट करने के बाद, शासन भेंट करने के बाद अब पुनः जो एनसीसी कैडेट्स हैं उनकी ओर प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन लगातार हाथ हिलाते हुए, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा कर्मी हैं उनके लिए ये थोड़ी सी कठिन घड़ी है, क्योंकि लगातार पैनी दृष्टि हर ओर उन्होंने बना रखी है, लेकिन वो भी समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्युत्तर दे रहे हैं सबके स्नेह का, इसलिए उचित दूरी उन्होंने बनाए रखी है, लेकिन पूरी तरह से मुस्तैद और चौकस हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर स्नेहिल मुस्कान है अपने देशवासियों को देखकर और साथ ही जो बच्चे हैं यहाँ पर उन्हें देखते हुए। और ये जो देशवासी है इस समय आभार प्रकट कर रहे हैं एक तरह से उन नीतियों के लिए जिन्होंने इनके जीवन में बड़ा बदलाव किया है, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, जीएसटी हो, आर्थिक सशक्तिकरण हो, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, प्रधानमंत्री जी की कही ये उक्ति हो, हरित ऊर्जा हो, अंतरिक्ष अनुसंधान हो, जनधन से जन जन तक होता वित्तीय समावेशन हो, उन सभी के प्रति एक तरह से आभार प्रकट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहते हुए अपने जो ये संकेत है उनसे। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी के बेहद नजदीक पहुंच गए कुछ एनसीसी कैडेट और सुरक्षाकर्मी, उन्हें स्नेहिल भाव से थोड़ा हटाते हुए, वहाँ थोड़ा अनुशासन बनाते हुए, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का सपना, डिजिटल भारत जिसकी धूम अब दुनिया भर में है, और साथ ही आत्मनिर्भर भारत, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कहते रहे हैं हमारे उत्पाद जो हैं वो वैश्विक गुणवत्ता के हो, हमारे बाजार दुनिया भर के लिए खुले रहें, और जब भी कोई विदेशी मेहमान हमारे यहाँ आता है तो जो भोजन परोसा जाता है उसमें हमारे हर प्रांत का कोई एक व्यंजन उसमें होता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और साथ ही जो हमारे बुनकर हैं उनके द्वारा बुनी हुई जो वस्तुएं हैं वो भेंट स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी देश दुनिया के बड़े नेताओं को देते हैं और बहुत सारी इस तरह की सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ लगातार हमारे देशवासियों को मिलता रहा है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो मंच है गरिमा में मंच है यहाँ से भी देश दुनिया को एक नई दिशा दिखाई है, नए प्रयास किए हैं, देशवासियों को लगातार प्रेरित किया है आगे बढ़ने के लिए और अब नया लक्ष्य हमारे सामने विकसित भारत का जिसमें हम सभी को लगातार योगदान देना है।
0: आज प्रधानमंत्री जी ने इस लाल किले के प्राचीर से जहां संकल्पों की बात की, संकल्प से सामर्थ्य के निर्माण की बात की और सामर्थ्य से सफलता की राह पर आगे बढ़ते हुए देश को समृद्धि के राह पर विकसित भारत बनाने का एक संकल्प उन्होंने दिया है। बीते 12 वर्षों में सरकार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में जो तमाम प्रयास किए गए हैं उनके बारे में इस बात की परिकल्पना शायद पहले भी किसी ने नहीं की होगी कि उनका इतना बड़ा परिणाम और फल इस देश को मिलेगा। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें जनधन योजना की ही, तो जब जनधन योजना की शुरुआत हुई आज आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंकिंग सेवा देश के कोने कोने तक पहुंची है, हर गांव तक पहुंची है, 99.92% गांवों तक इस सेवा की पहुंच बनी है। ये निश्चित रूप से 100% आप इसको कह सकते हैं और किसी भी गांव में 6 लाख से अधिक गांव में देश में मात्र 5 किलोमीटर की दूरी के भीतर भीतर बैंकिंग सेवाएं प्राप्त होती है। प्रधानमंत्री महोदय बच्चों के बीच से निकलते हुए और एक बार फिर से प्राचीर की तरफ उन्होंने हाथ हिलाकर यहाँ के अतिथियों का भी अभिवादन स्वीकार करते हुए अब अपने वाहन में वो सवार हो चुके हैं और अब समय है जब 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतिम में माननीय प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्र को संबोधित करने के बाद और यहां उपस्थित जनसमुदाय और विशेष रूप से युवा शक्ति के साथ संवाद और निकटता का एक भाव प्रेषित संप्रेषित करने के बाद अपने वाहन में सवार होकर यहां से अब प्रस्थान करने जा रहे हैं। आप सबके लिए उनकी तरफ से जो प्रेरणा मिली है इस राष्ट्र को निश्चित रूप से आगे लेकर जाएगी।
1: जी बिल्कुल, और माननीय प्रधानमंत्री जी अब अपने वाहन में सवार हो चुके हैं, वाहनों का काफिला मंथर गति से बूथ जो है हमारा उसकी बाईं ओर बढ़ता हुआ धीरे धीरे, और जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो अब पुनः अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं, जो आगंतुक है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के वाहनों की भी तस्वीर इस समय ले रहे हैं और साथ ही प्रधानमंत्री जी अपने वाहन के भीतर से भी हाथ हिलाकर लगातार सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। नया देश है, नया भारत है, बदलती तस्वीर है जिसमें बेटियों को भी बराबरी मिल रही है और इसी वजह से शायद माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब एनसीसी कैडेट्स के बीच पहुंचे तो सबसे पहले एक बेटी के सर पर हाथ रखा। सैन्य क्षेत्र, शिक्षा, विज्ञान, कृषि, फैशन, खेल और उद्योग क्षेत्र में भारत माँ की बेटियां भी प्रभावशाली प्रदर्शन कर रही हैं। फाइटर कॉम्बैट लीडर बनना हो या ड्रोन दीदी या फिर अपनी मेहनत से सफलता के नए अध्याय रचती लखपति दीदी हो, माँ भारती का नाम रोशन कर रही हैं देश की बेटियां। कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे मेहनती खिलाड़ियों ने 13 स्वर्ण पदक जीते जिनमें 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। लगभग 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इस दिशा में नए लक्ष्य हासिल किए जा रहे हैं और ऐसे ही लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भी हमें दिए हैं। मत पूछो मुझसे देश क्या है, ये कागज पर खींची रेखा नहीं, ये उन वीरों की आखिरी सांस है जिन्होंने पीछे मुड़कर देखा नहीं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी हैं उनके प्रति आभार प्रकट करने का दिन आज, लेकिन साथ ही जो राष्ट्र निर्माण में लगातार सहयोग करते रहे हैं उनके प्रति भी। निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक, विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी, मेहनती श्रमिक और अन्नदाता किसान, प्रतिभावान खिलाड़ी, शिल्पकार और कलाकार, जनहित में सेवारत जनप्रतिनिधि, न्याय व्यवस्था से जुड़े न्यायकर्मी, कार्यनिष्ठ सिविल सेवक, अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले छोटे बड़े सभी निवेशक, निस्वार्थ समाजसेवी और स्वच्छता अभियान के अग्रणी कार्यकर्ता, हमारे सैनिक और सशस्त्र बल अपनी कर्तव्य निष्ठा से हम सभी को विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाना है, इसमें अपना दायित्व निभाते हैं प्रवासी भारतीय भी। सभी के ऊपर ये दायित्व के 2047 तक हमें भारत को विकसित भारत बनाना है। और आपको फिर से एक बार आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए मैं तकनीकी टीम प्रमुख श्री जितेंद्र पुरुथी, तकनीकी टीम के सदस्य शांतनु घोष, शक्ति धरध्यानी, अशोक कुमार मिश्र, कमल सिंह, सुमित कटियार, नागेंद्र पटेल, नीरज तिर्की, बाबूलाल मीणा, राजकमल शर्मा, नरेंद्र नाथ, किरण पाल सिंह, विष्णु आनंद तिवारी, अतुल कुमार, हेमराज मीणा, विशाल कुमार, अभिषेक कुमार, कार्यक्रम प्रमुख श्रीमती मनीषा जैन, कार्यक्रम टीम के सदस्य विवेक कुमार तोमर, तुषार पाराशर, शाहनवाज खान, भगवती चरण बौखंडी, जगमोहन सिंह, कार्यक्रम संयोजक श्री प्रमोद कुमार वत्स के साथ मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कमेंटेटर जैनेन्द्र सिंह और देवेंद्र त्रिपाठी के साथ पुनः 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ आपको आकाशवाणी।

0: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रति वर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
1: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 14555।
0: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी।
2: किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रति वर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
1: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 14555।
0: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी।
2: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।

0: रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। आकाशवाणी समाचार कक्ष की ओर से हमारे सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने संकल्प दोहराया, 2047 तक हम विकसित भारत बनकर रहेंगे। विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गतिशक्ति, रक्षा शक्ति, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा। समुद्र में नए अवसर तलाश करने के लिए नो गो एरिया के स्थान पर गो अहेड एरिया योजना की शुरुआत। ऊर्जा सामर्थ्य के बारे में उन्होंने कहा, हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर भारत ने हाइड्रोजन ऊर्जा की दिशा में झंडा गाड़ दिया है। उन्होंने कहा, सुरक्षित भारत के लिए हमें दिमागी नक्सलियों से निपटना होगा। प्रधानमंत्री ने जनगणना में सटीकता के लिए युवाओं से डिजिटल रजिस्ट्रेशन का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, सरकार परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने रक्षा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज से श्रीलंका के गाले में। और अब समाचार विस्तार से। देश आज 80वां स्वाधीन

0: स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र ध्वज फहराया। राष्ट्र को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गूंज रही है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें अपनी कार्य संस्कृति, अपनी सोच और काम की गति को बदलना होगा।
1: जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं, तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश सुधार यानी रिफॉर्म एक्सप्रेस पर आगे बढ़ चला है और अब नेक्स्ट लेवल यानी अगले स्तर के सुधार पर भी हम आगे बढ़ेंगे। श्री मोदी ने विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि तकनीक, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित व्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा की। उन्होंने गति शक्ति को सप्तधारा की चौथी शक्ति बताते हुए कहा कि निर्बाध और तेज कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा।
1: आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्तधारा का आह्वान करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्तधारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने में संसाधनों की बाधा नहीं होती, बल्कि सोच की सीमाएं बाधा होती हैं। उन्होंने कहा कि आज देश को कच्चे तेल पर निर्भर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश में 99% समुद्र तट को, नो गो एरिया को, तेल भंडार की खोज के लिए गो अहेड घोर एरिया घोषित किया जाएगा।
1: हमने समुद्री तट पे समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र था, हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया। हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि हमने दुनिया में हाइड्रोजन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है।
1: देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी और मुझे खुशी है ये सबसे लंबी ट्रेन है और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ लिया है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद देश में सेमीकंडक्टर को लेकर कोई बड़ी योजना नहीं थी। उन्होंने कहा कि आज की डिजिटल दुनिया में हम चिप के महत्व को समझते हैं।
1: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इसे इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि नक्सलवाद ने 4 दशक तक भारत की आबादी को दबोच कर रखा था। नक्सलवाद से निपटने में 3,500 से ज्यादा जवानों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। श्री मोदी ने देश को नक्सलवाद से मुक्त बनाने का आह्वान किया।
1: ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा।

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड जैसी वैश्विक महामारी से पूरी व्यवस्था चरमरा गई थी, लेकिन सभी के प्रयासों से देश को उस संकट से बाहर निकाला गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत नागरिक देवो भव के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था। सोचा नहीं था यह संकट आएगा, लेकिन इस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है। हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था ने नई रफ्तार पकड़ी है और एक नई गति से देश आगे बढ़ रहा है।
1: इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल 5 में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत एक बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। जब 2047 में स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होंगे, हम विकसित भारत बना कर रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये 140 करोड़ भारतीयों के पुरुषार्थ से ही संभव है।
1: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में आए संकट का हर किसी पर प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा कि हमने किसानों पर यूरिया और डीएपी जैसे उर्वरकों में बड़ी कीमतों का असर नहीं आने दिया।
1: यूरिया के दाम दुनिया में 3000 रुपया पहुंच गए एक बोरी का। आज भी हम मेरे देश के किसानों को वो बोझ सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, सरकार अपने कंधों पर वो बोझ उठा रहा है। और दुनिया से जो 3000 रुपया में यूरिया का बोरा हमें मिलता है, वो हमारे किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में दे पाते हैं। इतना ही नहीं, डीएपी आज दुनिया में बाजार 5000 पहुंच चुका है, लेकिन मेरे देश के किसानों को दिक्कत ना हो इसलिए 1350 रुपए में आज भी डीएपी देने का काम हम कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नशा मुक्त भारत के 100 सप्ताह के अभियान से जुड़ने की अपील की। उन्होंने देश के युवाओं से जनगणना में सटीकता के लिए डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराने का आह्वान भी किया। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम का गायन हुआ। इससे पहले प्रधानमंत्री ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ा है। ऐसी परिस्थितियों में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी अर्जित कर रहे हैं। उन्होंने भावी पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि सरकार परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। इनमें 13 ऐसे वीर शामिल हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायु सेना मेडल शामिल हैं। सरकार ने टेलीविजन चैनल्स के लिए विज्ञापन की 12 मिनट की समय सीमा को हटाने का फैसला किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में आए बदलाव को देखते हुए विज्ञापन की अवधि से जुड़े नियमों पर फिर से विचार करने की जरूरत महसूस की गई। भारत में पे चैनल या फ्री टू एयर सभी बहुत हद तक विज्ञापनों पर ही निर्भर हैं। भारत और श्रीलंका के बीच दो क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला श्रीलंका के गाले स्टेडियम में खेला जाएगा। यह श्रृंखला 2025-27 के आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल और श्रीलंका टीम के कप्तान धनंजय डी सिल्वा हैं। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ आज तिरंगे की छठा बिखेर रहे हैं। कुछ अखबारों ने देश की उपलब्धियों का उल्लेख किया है तो कुछ ने स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले सैनिकों और रक्षा कर्मियों की गाथाएं सचित्र प्रकाशित की हैं। इसके अतिरिक्त जनगणना प्रक्रिया में पूछे जाने वाले सवालों की सूची को भी अखबारों ने सुर्खियों में जगह दी है। अधिकांश समाचार पत्रों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर के नाम संदेश को भी मुख पृष्ठों पर सुर्खियों में प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों का उल्लेख इस संबोधन में किए जाने को अपना शीर्ष समाचार बनाया है। परीक्षा प्रणाली सुधारने में जुटी सरकार। हिंदुस्तान ने हाल में शौर्य का नया इतिहास रचने वाले रक्षा कर्मियों की वीरता की कहानियां प्रकाशित की हैं। शीर्षक दिया है तिरंगे को दिल दिया देश के लिए जान। नवभारत टाइम्स ने स्वतंत्रता दिवस के आसपास रिलीज हुई फिल्मों का विश्लेषण प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता और दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने जनगणना में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उल्लेख अपने मुख पृष्ठ पर किया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय लेख को शीर्षक दिया है अभिव्यक्ति का हक। पत्र का कहना है कि इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि कुछ विद्यार्थियों के सिर्फ असहमति जताने या विरोध जाहिर करने की वजह से उनके समूचे समूह की पढ़ाई के आगे के रास्ते को बंद करने का फरमान जारी कर दिया जाए। पत्र ने नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च के दीक्षांत समारोह में भारत के प्रधान न्यायाधीश को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने पर कुछ विद्यार्थियों के विरोध पर दंडात्मक कार्रवाई का हवाला देते हुए ये भी कहा है कि लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति सजग नागरिकों सहित खुद प्रधान न्यायाधीश की ओर से जैसी प्रतिक्रिया आई वो उम्मीद जगाने वाली है। दैनिक जागरण ने विभिन्न क्षेत्रों में देश की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए विश्लेषण प्रकाशित किया है और शीर्षक दिया है गरीबी से गर्व करने की ओर भारत। जबकि लोकसत्ते ने स्वतंत्रता दिवस के आयोजन को देखते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा जारी यातायात परामर्श को विस्तार से प्रकाशित किया है।
0: अमेरिका के सीनेटरों और नेताओं ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा है कि दोनों देशों की भागीदारी मजबूत है और भारत की उपलब्धियां और भारत के लोग विश्व को प्रेरित करते रहे हैं। न्यूयॉर्क से लेकर सिएटल तक अमेरिका के राज्यों के गवर्नर और सीनेटरों ने कहा है कि उनके यहां 15 अगस्त का दिन भारत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने संकल्प दोहराया 2047 तक हम विकसित भारत बनाकर रहेंगे। विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में समुद्र में तेल भंडार की खोज के लिए नो गो एरिया को गो अहेड एरिया घोषित किया गया। ऊर्जा सामर्थ्य के बारे में उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर भारत ने हाइड्रोजन ऊर्जा की दिशा में झंडा गाड़ दिया है। सुरक्षित भारत के लिए हमें दिमागी नक्सलियों से निपटना होगा। प्रधानमंत्री ने जनगणना में सटीकता के लिए युवाओं से डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने रक्षा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को अपनी स्वीकृति दी और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज से श्रीलंका के गाले में। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, उद्योगों को मिलकर आगे बढ़ना होगा और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज से श्रीलंका के गाले में खेला जाएगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: Good morning, I'm Sarabjeet Kaur. The headlines. Nation celebrates its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi hoists national flag at Red Fort in Delhi. Addressing the nation, Prime Minister unveils 7-point reform framework or Saptadhara aimed at accelerating India's journey towards becoming Vikasit Bharat by 2047. Mr. Modi says India has set target of 100 gigawatt nuclear energy and set up 5 new reactors. Prime Minister says India has rapidly progressed in the last 12 years with significant progress in digital, manufacturing, infrastructure and social welfare sectors. President Draupadi Murmu says government taking comprehensive steps to curb unfair means in public examinations. President approves 78 gallantry awards including 13 posthumous for defence and central armed police forces personnel. And in cricket, first test of 2-match series between India and Sri Lanka to begin today at Gale. And now the news in detail. The nation celebrates its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi hoisted the national flag at Red Fort in Delhi and addressed the nation. The celebrations this year also commemorates Yuva Shakti, acknowledging the contribution of young India in building a Vikasit Bharat by 2047. Addressing the nation from the ramparts of Red Fort, Prime Minister Modi said that this is the first time since independence that Vande Mataram has resonated from the ramparts of Red Fort.
1: आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है. पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए. उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं. पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं.
0: Prime Minister said a nation becomes great when it moves forward on the strength of its resolve and capabilities.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है. मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं, हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं. हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए. जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है.
0: Mr. Modi said that over the past 12 years, crores of citizens of the country, with their determination and dedication, made every possible effort to take the country to new heights. He said due to these efforts, 25 crore people have come out of poverty.
1: पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि-कोटि नागरिकों ने, दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नारी हो, पुरुष हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है. मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता और उसी का परिणाम है कि इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले हैं.
0: He said India, which was once among the fragile 5 economies, has now emerged as a major and the fastest growing economy in the world. Mr. Modi said that India has set a big goal to become a developed nation by 2047.
1: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे. 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है. और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है.
0: Highlighting the achievements made in different sectors, the Prime Minister said, over the past 12 years, defense production has increased nearly fourfold.
1: पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेल

0: रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। आधुनिक युग को देकर के भी, डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट यूजर करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजेक्शन 100 गुना बढ़े।
1: He said internet users increased by nearly fourfold and digital transactions by 100 times. Mr. Modi said the NDA government has worked with equal seriousness towards the welfare and amenities for the common man. Prime Minister said energy security is today's need and that's why we have already taken steps in this direction. Mr. Modi said the government is moving forward with the aim of 100 gigawatts of nuclear power capacity by 2047. He added that India has set a target of commissioning 5 new nuclear reactors during the current decade.
0: Ab energy ke bina bhi nayi duniya ko chalana mushkil hai aur isliye hame cheap ho AI हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
1: Prime Minister said India has already begun production at 3 semiconductor plants and 5 to 8 more plants are expected to come up in the coming years.
0: देश आजाद होने के बाद विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी, हमारे यहाँ भी बातें होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज स्थिति क्या है, आज की डिजिटल दुनिया में चीप का महात्म्य हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चीप अनिवार्य है और इसे इस चीप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो। भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुका।
1: Prime Minister said India must move towards self-reliance and not remain dependent on other countries. He asserted that the country needs to strengthen its own capabilities and protect its national interests.
0: बीते वर्षों में हमारा conviction रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है।
1: Mr. Modi unveiled a 7-point reform framework or Saptadhara aimed at accelerating India's journey towards becoming a Vikasit Bharat by 2047. He said work that could not be completed in the past 5 to 7 decades must be achieved within the next 5 to 7 years.
0: मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश, भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
1: Prime Minister said that government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. He said this will enable them to take the lead in the global AI sector. Mr. Modi said the country has to focus on 3 things: cost, quality and skill.
0: हमने पिछले दिनों AI impact summit किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान AI की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है।
1: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're listening to the morning news. President Draupadi Murmu has said that the government is undertaking comprehensive steps to completely curb the use of unfair means in public examinations. Addressing the nation on the eve of the Independence Day, she said students are the architects of India's future and government is making the system more transparent, secure and trustworthy for the youth.
2: Everyone must contribute through joint and concerted efforts to safeguard the present and future of our students. Public examinations become gateways to the opportunities for our students. The government is undertaking comprehensive steps to reform these examinations. The objectives of these reforms are to completely curb the use of unfair means in public examinations, make the examination system more transparent, more secure, and more trustworthy for the youth.
1: President Draupadi Murmu has approved 78 gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and Central Armed Police Forces on the eve of Independence Day. 13 awards have been given posthumously. These are 9 Kirti Chakras, 1 bar to Shaurya Chakra, 19 Shaurya Chakra, 5 bar to Sena Medals, 36 Sena Medals, 3 Neo Sena Medal and 5 Vayu Sena Medals. A powerful 7.7 magnitude earthquake hit the ocean near Indonesia early in the morning, damaging homes and public buildings while triggering a tsunami warning. There are no immediate reports of casualties. The quake was felt across much of Flores Island. Authorities have issued a tsunami warning for part of East Nusa Tenggara, West Nusa Tenggara, South Sulawesi and Southeast Sulawesi provinces and urged residents to stay away from beaches and river banks. Residents along affected coastlines have been advised to move to higher ground. The first test of 2-match series between India and Sri Lanka will begin today at the Gale International Stadium. The match will begin at 10 a.m. IST. After suffering 0-2 defeat to South Africa at home, Shubman Gill and company cannot afford any more slip-ups and need a sweep to stay alive in the ICC World Test Championships 2025-27. A slew of injuries have hampered India in the lead-up, but an extended training period in Sri Lanka would put the side in position to perform well and aim for a win. And now for a look at today's newspapers, it's over to Saira Mujtaba.
3: Thank you, Sarabjit. Most newspapers today open with details of President's address on the eve of 80th Independence Day. Government taking comprehensive steps to reform exam system, notes the Statesman. While the Financial Express, quoting the President, says, India moving as world's fastest growing major economy. Prime Minister Modi to lead 80th Independence Day celebrations. Red Fort gets high-tech security cover for I Day, says the Asian Age. With the state set for enumeration exercise, census set to seek for first-time caste, Aadhaar, other IDs is the lead in Hindustan Times. And with dosa, idli, pasta and chaap getting a tricolour flavour across the capital, the Delhi Tribune writes, eateries give patriotic twist. And with that, it's back to you, Sarabjit.
1: Thank you, Sarah. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Nation celebrates its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi hoists national flag at Red Fort in Delhi. Addressing the nation, Prime Minister unveils 7-point reform framework or Saptadhara aimed at accelerating India's journey towards becoming Vikasit Bharat by 2047. Mr. Modi says India has set target of 100 gigawatt nuclear energy and set up 5 new reactors. Prime Minister says India has rapidly progressed in the last 12 years with significant progress in digital, manufacturing, infrastructure and social welfare sectors. President Draupadi Murmu says government taking comprehensive steps to curb unfair means in public examinations. President approves 78 gallantry awards including 13 posthumous for Defence and Central Armed Police Forces personnel. And in cricket, first test of 2-match series between India and Sri Lanka to begin today at Gale. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
4: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
5: जन जन तक पहुंचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
6: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
7: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
6: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
8: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र मना रहा 80वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लाल किले के प्राचीर पर किया ध्वजारोहण। पहली बार लाल किले पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम का हुआ सामूहिक गायन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को किया संबोधित। कहा, विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा संकल्प। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उपराजधानी दुमका और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में फहराया तिरंगा। विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने किया ध्वजारोहण। झारखंड के 9 पुलिस अफसरों को राष्ट्रपति पुलिस पदक, आईजी शैलेंद्र सिन्हा को विशिष्ट सेवा सम्मान। और मौसम विभाग ने आज से अगले 4 दिनों तक गरज के साथ भारी बारिश और वज्रपात का जारी किया येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से लगातार 13वीं बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया। पहली बार लाल किले पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया गया। इस भव्य आयोजन के माध्यम से राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150 वर्ष पुरानी विरासत को याद किया गया। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा की गई। ध्वजारोहण के साथ 21 तोपों की सलामी भी दी गई। इसके बाद प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है, देश उत्साह और नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है।
0: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम सब 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हर दिलों की धड़कन वंदे मातरम के नाद से गूंज रही। आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है और देश उत्साह और उमंग के साथ नए संकल्पों को लेकर के आज आगे बढ़ रहा है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
8: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आज उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता है जिन्होंने आजादी के लिए बलिदान दिया।
0: देश आज उन महान सपूतों का पुण्य स्मरण करती है जिन्होंने देश की आजादी के लिए त्याग बलिदान की पराकाष्ठा की। अपने तप, त्याग और बलिदान से आजादी के एकमात्र लक्ष्य को लेकर के अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। पूज्य बापू समेत सभी स्वतंत्र सेनानियों को बलिदान की महान परंपरा जगाने वाले महान क्रांतिकारियों को आज मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं।
8: इस वर्ष लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष रूप से प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है।
9: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श हैं। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्र असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है।
8: उन्होंने कहा कि स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रेरणादायक और सुविचारपूर्ण भाषण दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू के विचार राष्ट्र की शक्ति और प्रत्येक भारतीय की आकांक्षाएं दर्शाती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश देशवासियों को विकसित भारत के लिए नए दृढ़ संकल्प के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दुमका के पुलिस लाइन मैदान में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने वीर बलिदानियों की शहादत को नमन किया। विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने तिरंगा फहराया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर दुमका स्थित लोक भवन में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े नागरिकों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि समाज के विकास में हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। राज्यपाल ने हिजला ग्राम स्थित राजकीय मुकबधिर आवासीय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने मुकबधिर बच्चों के बीच पुरस्कार वितरित किए और चॉकलेट व मिठाइयां बांटकर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश को आजाद हुए काफी समय बीत चुका है, लेकिन देश में अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।
10: आज आवश्यकता है कि जो भी समाज के लोग अगर यहाँ आ सकते हैं तो यहाँ जरूर आए और बच्चों के साथ समय बिताने का काम जरूर करें। उनको ये महसूस कराएं कि सब हमारे हिस्से के हैं। अब कोई कमी रह गई है कोई गलत बात है, पर उनको महसूस कराएं कि वो प्रगति तरक्की करके आगे बढ़ सकते हैं और पहचान बना सकते।
8: स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर झारखंड पुलिस के 9 अफसर जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। इनमें झारखंड के आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा को राष्ट्रपति पुलिस पदक विशिष्ट सेवा PSM के लिए चुना गया है। वहीं 8 पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवा पदक MSM प्रदान किया गया है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का आंदोलन जारी है। स्वतंत्रता दिवस पर आज आंदोलनरत छात्र रांची में तिरंगा यात्रा निकालेंगे। इससे पहले JPSC JSSC रिफॉर्म मंच की ओर से कल सरकार में शामिल मंत्रियों और JSSC के अध्यक्ष का पुतला दहन किया गया। छात्रों का कहना है कि उनकी मांगों पर सरकार की ओर से अब तक ठोस पहल नहीं किए गए हैं।
11: अभी स्टूडेंट हम लोग खड़ा नहीं हुए ना, तो फ्लिपकार्ट और अमेजन में झारखंड का नौकरी पीछे। मेरा नाम कृष्णा है। 15 अगस्त है, झंडा मार्च करेंगे स्टेडियम से लेकर लालपुर, लालपुर से फिर यहाँ अल्बर्ट एक्का चौक और यहाँ से फिर वापस हम लोग स्टेडियम जाएंगे। फ्लैग मार्च होगा, समय सुबह है सर 9 बजे।
8: जामताड़ा जिला के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत सुदूरवर्ती मिर्गा गांव में मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने वन महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने प्रत्येक परिवार को 5-5 पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया।
12: वृक्ष है तो जीवन है, हरियाली है तो खुशहाली है, और प्रत्येक घरों में हम लोगों ने कहा कि 5-5 पेड़ आप लोग लगाई। जामताड़ा में पहली बार 10 लाख पेड़ जिला में हम लोग लगाने का संकल्प लिया है, और उसी के तहत जहाँ पे हमने वन महोत्सव बनाया है वहाँ लगभग 8,000 पेड़ हम लगाए। इस प्रकार जो पॉल्यूशन हो रहा है तो इसको रोकने के लिए पेड़ बहुत जरूरी है लगाना।
8: पाकुड़ जिले की नगर थाना की पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का खुलासा किया है। चोरी की घटना के उद्भेदन को लेकर गठित एसआईटी ने चार अपराधियों को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। अपराधियों की निशानदेही पर चुराए गए सामान भी बरामद किए गए। झारखंड में अगले चार दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। मौसम विभाग ने इस दौरान गरज के साथ भारी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया। वहीं गढ़वा पलामू क्षेत्र में अतिवृष्टि को लेकर चेतावनी दी गई। रांची में 28 से 30 अगस्त 2026 तक 18वीं झारखंड स्टेट फेंसिंग चैंपियनशिप 2026-27 का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राज्य के सभी जिलों के खिलाड़ी अपना हुनर दिखाएंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि 20 अगस्त है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने स्वतंत्रता दिवस की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया। दैनिक जागरण के शब्द हैं, राज्यपाल दुमका में और मुख्यमंत्री रांची में करेंगे ध्वजारोहण। दैनिक भास्कर के सुर्खी है, एसआईआर मतदाता सूची पर दावा आपत्ति की तिथि 15 सितंबर तक बढ़ी। हिंदुस्तान ने लिखा है, नीट पेपर लीक, सीबीआई को आगे की जांच के लिए मिली मंजूरी। प्रभात खबर लिखता है, 78 वीरता पुरस्कारों का ऐलान, 13 को मरणोपरांत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र मना रहा 80वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लाल किले की प्राचीर पर किया ध्वजारोहण। पहली बार लाल किले पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम का हुआ सामूहिक गायन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को किया संबोधित। कहा, विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा संकल्प। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उपराजधानी दुमका और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में फहराया तिरंगा। विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने किया ध्वजारोहण। झारखंड के 9 पुलिस अफसरों को राष्ट्रपति पुलिस पदक। आईजी शैलेंद्र सिन्हा को विशिष्ट सेवा सम्मान। और मौसम विभाग ने आज से अगले चार दिनों तक गरज के साथ भारी बारिश और वज्रपात का जारी किया येलो अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:04 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।
1: 10 9 8 7

दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग, मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग। और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा, जीवन की प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों संग हेलो।

हेलो हजारीबाग, नमस्कार, जोहार। आज का ये सफर आप तय करेंगे अंजना के साथ। स्वागत करते हैं आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम हेलो हजारीबाग में। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर आप सभी सुनने वालों को हमारी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं।

आज हम सभी देशवासी मिलकर आजादी का जश्न मना रहे हैं। हमारा प्यारा तिरंगा, हमारा स्वाभिमान तिरंगा, स्वतंत्रता आंदोलन की कई गाथाओं को समेटे हुए लहरा रहा है ऊंचे आसमान में। प्रण ले हम सभी आज ये, मिलकर देश सजाएंगे, भारत को आगे बढ़ाएंगे। श्रोताओं, मिट्टी की सौंधी खुशबू में जब आजादी का जश्न घुल मिल जाता है, देशभक्ति का जज्बा चहुं ओर नजर आता है।

आज का सुविचार। महात्मा गांधी ने कहा था, हमेशा अपने विचारों, शब्दों और कर्म के पूर्ण सामंजस्य का लक्ष्य रखें। हमेशा अपने विचारों को शुद्ध करने का लक्ष्य रखें और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा था, स्वयं के अंदर वह बदलाव लाएं जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, आइए जानते हैं आज का इतिहास। 15 अगस्त 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिलों में अलग दीवानी और फौजदारी अदालतों के गठन का निर्णय लिया। 1854 को आज के दिन ईस्ट इंडिया रेलवे ने कलकत्ता से हुगली के बीच 37 किलोमीटर की दूरी में पहली यात्री ट्रेन चलाई थी। 1907 में आज ही के दिन इंडियन बैंक स्वदेशी आंदोलन के अंश के रूप में 15 अगस्त को इसकी स्थापना हुई थी। 1947 में आज के दिन भारत देश को अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 15 अगस्त 1947 को रक्षा वीरता पुरस्कार परम वीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र स्थापित किया गया। 1947 में आज ही के दिन देहरादून उत्तराखंड से युगवाणी पत्रिका प्रकाशित की गई थी। यह मासिक पत्रिका कालांतर में पहाड़ का प्रमुख साप्ताहिक समाचार पत्र बना। 1950 में भारत में 8.6 के तीव्रता वाले भूकंप के कारण 20 से 30 हजार लोग मारे गए थे।

1971 में आज के दिन बहरीन ब्रिटेन के शासन से आजाद हुआ था। 1972 में आज के दिन पोस्टल इंडेक्स नंबर अर्थात पिन कोड लागू किया गया था।

1979 में आज के दिन फरीदाबाद हरियाणा का 12वां जिला बना था। 1982 में राष्ट्रव्यापी रंगीन प्रसारण और टीवी के राष्ट्रीय कार्यक्रम का दिल्ली में उद्घाटन किया गया। 1990 में आज के दिन जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल आकाश का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। 1998 में आज के दिन उत्तरी आयरलैंड में ओमाग द्वारा की गई बमबारी में 29 लोग मारे गए और 220 अन्य घायल हुए थे। सन 2000 में आज के दिन उत्तर एवं दक्षिण कोरिया के बिछड़े नागरिक आपस में मिले थे। 2002 में आज के दिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस्लामाबाद स्थित अपने सूचना केंद्र को बंद किया। 2004 में लारा सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। 2008 में आज के दिन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने संसद भवन परिसर में स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया था।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। श्रोताओं, प्राचीन काल से ही भारत अपनी संस्कृति और समृद्धि के लिए जाना जाता है। यही कारण है कि कई विदेशी ताकतों ने भारत को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाना चाहा। अपनी समृद्धि और खुशहाली के कारण भारत हमेशा से आक्रमणकारियों और शासकों की रुचि का कारण रहा। बात 1757 की है। पलासी युद्ध के बाद ब्रिटिश भारत में राजनीतिक सत्ता जीत गए और अंग्रेजों का आगमन हुआ। करीब 200 साल तक अंग्रेजी हुकूमत का शासन रहा। 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में उनका शासन स्थापित हुआ। उत्तर पश्चिम भारत अंग्रेजों के निशाने पर सबसे पहले रहा और 1856 तक उन्होंने अपना मजबूत अधिकार स्थापित कर लिया। 18वीं सदी में नाराज और असंतुष्ट स्थानीय शासकों, किसानों और बेरोजगार सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, जिसे आमतौर पर 1857 का विद्रोह या 1857 के गदर के नाम से जाना जाता है। यह गदर मेरठ में सैनिकों के विद्रोह से शुरू हुआ। उनकी बेरोजगारी का कारण बनी नई कारतूस, जो नई एनफील्ड राइफल में लगती थी। इन कारतूसों में जानवरों की चर्बी से बना ग्रीस इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए भारतीय सैनिकों द्वारा इसे इस्तेमाल करने के लिए मना कर दिया गया। अतः वे बेरोजगार हो गए। जल्दी विद्रोह दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में फैल गया, लेकिन अंग्रेजों की सेना के आगे यह विद्रोह असफल रहा। इस विद्रोह ने दिल्ली, अवध, रोहिलखंड, बुंदेलखंड, इलाहाबाद, आगरा, मेरठ और पश्चिमी बिहार को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। यह विद्रोह असफल रहा। और एक साल के अंदर ही समाप्त हो गया। 1857 के विद्रोह के बाद राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे सुधारक उभरे और उन्होंने भारतीयों के हक की लड़ाई लड़ी। 1876 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अस्तित्व में आई, जिसकी स्थापना की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति की घोषणा की गई। इस तरह स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। 1911 में पश्चिम बंगाल का विभाजन हुआ और देश की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली कर दी गई। इधर स्वदेशी आंदोलन की खबरों ने अंग्रेजों को

विचलित किया और वे भारतीयों के बीच मतभेद पैदा करने लगे। जहां एक ओर सुधारवादी और क्रांतिकारी योजनाएं बना रहे थे, वहीं दूसरी ओर पंजाब में जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ, जहां बैसाखी मनाने के लिए लोग इकट्ठे हुए थे। 1914 से 1918 के प्रथम विश्व युद्ध के बाद महात्मा गांधी भारत लौटे और देश की स्थिति को देखते हुए अहिंसक आंदोलन सत्याग्रह के तौर पर शुरू किया। उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया, जो 1922 तक चला और सफल रहा। इसके तुरंत बाद साइमन कमीशन को लेकर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में कई बड़े प्रदर्शन किए गए। दिसंबर 1929 में नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य था ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जाकर अवज्ञा करना। इसी आंदोलन के दौरान भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें फांसी दी गई। अगस्त 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। इसका लक्ष्य था ब्रिटिश शासन से पूरी तरह आजादी हासिल करना और यह करो या मरो की स्थिति के रूप में उभरा। कई वीर सपूतों ने अपनी जान गंवाई। शहीदों में बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री पुरुष सभी थे। उन शहीदों की शहादत को कभी भूला नहीं जा सकता। ये वो मंजर था जब सभी भारतवासी एकजुट होकर इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना चाहते थे और अपने भारत की आजादी चाहते थे। अंत में सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश हिरासत से भाग गए और इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। गांधी जी ने अलग रास्ता अपनाया, अहिंसा का मार्ग। अंत में अहिंसा आंदोलन के आगे ब्रिटिश हुकूमत को झुकना पड़ा और हमारा प्यारा भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। भारत के शासकों, क्रांतिकारियों और उस समय के नागरिकों की देशभक्ति, मेहनत, त्याग और निस्वार्थता के कारण पूरी तरह से एक स्वतंत्र देश बना।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आज है 15 अगस्त। आप सभी सुनने वालों को हमारी ओर से 80वां स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए मिलकर सुने ये प्यारा सा देशभक्ति गीत।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: श्रोताओं, मौसम की बात करें तो मौसम विभाग के पूर्वानुमानुसार हजारीबाग और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने के साथ बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान होगा 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान होगा 24 डिग्री सेल्सियस। सूर्योदय का समय था आज सुबह 5:23 और कल सूर्योदय का समय होगा

सुबह 5:24। आज सूर्यास्त का समय है संध्या 6:28। सावधानी के लिए, खराब मौसम के दौरान खुले मैदानों, पेड़ों के नीचे या बिजली के खंभों के पास जाने से अवश्य बचें। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो हजारीबाग, आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से।

0: श्रोताओं, बिना किसी भेदभाव के सभी का सम्मान करना एक बेहद अच्छी और मानवीय आदत है। यह समाज में आपसी प्रेम, शांति और समानता की भावना को मजबूत करती है। इससे समाज का हर व्यक्ति खुद को सुरक्षित महसूस करता है। सभी का आदर समान रूप से करने से हमारे संबंध दूसरों के साथ अच्छे और व्यवहारिक बनते हैं। यह हमारी विनम्रता, अच्छे स्वभाव और उच्च संस्कारों को दर्शाता है। बिना भेदभाव सभी का सम्मान करना समानता और मानवता की पहचान है। इसे सरल शब्दों में सदाचार या निष्पक्षता भी कहा जाता है। यह एक बहुत ही दुर्लभ और मूल्यवान गुण है।
1: श्याम, तुझे पता है तुम्हारे बाबूजी को कभी प्यार का पैगाम भेजना ही नहीं आया।
2: क्या कहती हो श्यामू की माँ?
1: और क्या, आपको जब भी प्यार जताना होता था हिंदुस्तान का झंडा भेज देते थे।
2: माँ जानती हो बाबूजी ने सबसे ज्यादा प्यार किससे किया है? इस मुल्क से, इस देश से।

तिरंगा देश की शान है, हर भारतीय का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है। तीन रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो हजारीबाग आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। आप सभी सुनने वालों को हमारी ओर से 80वां स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए मिलकर सुनते हैं एक और प्यारा सा देशभक्ति गीत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10:59 हुए हैं। आइए अब आपको ले चले हमारे मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर प्रस्तुत है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अनुवादों पर आधारित वंदे मातरम एक जय घोष, इस रूपक श्रृंखला की विशेष कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: प्राचीन काल से हिंदुस्तान में भाषा, धर्म, आहार विहार और भौगोलिक परिस्थिति में विविधता पाई जाती है। ब्रिटिश काल में भी राजकाज की सहूलियत को देखते हुए प्रांत रचना सीमित संख्या में थी। फिर भी सार्वजनिक रूप से आम जीवन में बोली जाने वाली 15 से अधिक ऐसी भाषाएं तो थीं जिनकी अपनी अधिकृत लिपि थी।
1: वंदे मातरम इस रचना की और उसके रचयिता की बात करें तो मातृभाषा बांग्ला और अंग्रेजी के ज्ञाता तो वे थे ही। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय गीरवाण भाषा संस्कृत के भी अध्येता थे। संस्कृत साहित्य का प्रभाव उनके साहित्य पर था। वंदे मातरम गीत का निर्माण एक सहज उमंग से हुआ था, इसलिए उसे भाषा के बंधन स्वयं बंकिम चंद्र भी नहीं लगा सके। यह गीत बांग्ला और संस्कृत भाषा का मिश्रण है, पर इसमें हर वाक्य में एक शब्द बांग्ला और एक शब्द संस्कृत ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें कुछ वाक्य पूरे पूरे बांग्ला हैं। ऐसा होने पर भी इसकी प्रभावकारिता कहीं भी खंडित नहीं होती। वंदे मातरम का पहला अनुवाद बंकिम चंद्र जी के जीवन काल में ही हुआ और यह अनुवाद संस्कृत में किया गया था। विजयलाल दत्त द्वारा रचित जागो माँ आमार इस कविता में शुरुआत की कुछ पंक्तियों को जोड़कर वंदे मातरम का संस्कृत अनुवाद लेकर और फिर अंत में उन्होंने वंदे मातरम के महत्व को बताने वाली पंक्तियां जोड़ी। मूल गीत में जो पंक्तियां या शब्द बांग्ला के हैं केवल उन्हीं पंक्तियों को संस्कृत में बदला गया था। उदाहरण के लिए के बोले माँ तुमी अबले इसकी जगह कोह भिदंते मातर बले, उसी प्रकार बाहुते तुमी माँ शक्ति के स्थान पर भुजयो स्तबम मसी शक्ति चेतसी त्वमसी भक्ति ही सृजामिते प्रतिमूर्ति ही मंदिरे मंदिरे ऐसी पंक्तियां आई हैं। ऋषि बंकिम चंद्र द्वारा लिखे गए वंदे मातरम गीत में अधिकांश शब्द रचना संस्कृत में ही है, इसलिए इस अनुवाद में सभी पंक्तियां संस्कृत भाषा में रूपांतरित हो गई हैं और इसीलिए इसे पूरी तरह से स्वतंत्र पहला अनुवाद नहीं माना जा सकता।
2: ১৮৭৫ में ऋषि बंकिम चंद्र जी ने बंगाली मिश्रित संस्कृत में वंदे मातरम की रचना की, लेकिन उसमें निहित आशय के कारण मात्र बंगाल तक सीमित न रहकर वो काव्य पूरे देश का गीत बन गया। मूल गीत तो लोकप्रिय हुआ ही, परंतु अनेक भाषाओं के कवियों ने ये महसूस किया कि ये गीत उनकी अपनी प्रांतीय भाषा बोलने वाले सामान्य जनों तक पहुंचना चाहिए। अतएव उन कवियों ने अपनी अपनी भाषा में इसका अनुवाद भी किया।
0: गुजराती, तेलुगु और उर्दू जैसी भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी में भी 9 से अधिक अनुवाद हुए। हर भाषा की अपनी विशेषता, अपना निरालापन होने पर भी बंकिम बाबू के मूल गीत की मधुरता बनाए रखने का प्रयास सभी ने किया।

0: आश्चर्य की बात यह है कि वंदे मातरम का पहला अनुवाद 1888 में यानी बंकिम चंद्र जी के जीवन काल में ही श्री अरविंद के दादा राज नारायण बसु ने अंग्रेजी में किया और ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसी अनुवाद के कारण वंदे मातरम के भाव पर शंका जताई गई। अंग्रेजों ने वंदे मातरम का संज्ञान इसी अंग्रेजी अनुवाद के कारण लिया। बाद में लगभग 17-18 साल बाद राज नारायण बसु के ही नाती क्रांतिकारी अरविंद घोष ने वंदे मातरम के दो अंग्रेजी अनुवाद किए।
1: उसके बाद 6 और अनुवाद प्रकाशित हुए। उनमें से एक अनुवाद बंगाल के विभाजन की पृष्ठभूमि में 11 दिसंबर 1905 के इंडियन मिरर के अंक में प्रकाशित हुआ। उस पर कवि का नाम नहीं था। एक और अंग्रेजी अनुवाद द स्टेट्समैन के 1905 के अंक में प्रकाशित हुआ और उस पर ट्रांसलेटेड बाय द मेंबर्स ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल काउंसिल इन अमेरिका ऐसा छपा था।
0: इन अंग्रेजी अनुवादों की एक विशेष बात ये है कि इनमें से एक अनुवाद ब्रिटिश अधिकारी W.H.L. लेफ ने किया था, जिसमें विंध्य, दुर्गा, लक्ष्मी और वाणी इन शुद्ध हिंदी शब्दों का प्रयोग उल्लेखनीय है।
2: My motherland, I sing. Her splendid streams, her glorious trees, they zephyr from the far-off Vindhya Heights. Her fields of waving corn, the rapturous radiance of her moonlit nights, the trees and flowers that flame afar. The smiling days that sweetly vocal are, the happy blessed motherland, her will by 70 million arms upheld, her strength no man scorn, thou art my head, thou art my heart, my life and soul art thou. My song, my worship and my art. Before thy feet I bow. As Durga, scourge of all thy foes. As Lakshmi, bowered in flower that in the water grows. As Vani, wisdom and power, the source of all our might. Our every temple doth thy form uphold, unequaled, tender, happy, pure, of splendid streams, of glorious trees, my motherland, I sing, the stainless charm that shall endure, and verdant banks and wholesome breeze, that with her praises sing, my motherland.

0: सबसे अधिक अनुवाद अंग्रेजी में हुए। हिंदी साहित्यकारों पर भी वंदे मातरम का प्रभाव पड़ा। प्रसिद्ध हिंदी कवि मदनलाल वर्मा कांत और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बहुत सुंदर अनुवाद किए हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी वंदे मातरम के कोटि कोटि कंठ वाले छंद का अनुवाद सुंदर हिंदी में करते हैं।
1: 30 कोटि लोगों की कलकल सुनी जहां पर जाती है, उसके दुगुन खड्ग धारा की द्युति विकास जहां पाती है, तिस पर भी तू अबला है, ये बात व्यथा उपजाती है। हे तारिणी, हे बहुबल धारिणी, रिपु तू काट गिराती है।

0: वंदे मातरम, वंदे मातरम।
1: उर्दू भाषा में भी वंदे मातरम के तीन अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। उनमें से पहला काजी अब्दुल गफ्फार द्वारा किया गया अनुवाद दैनिक पयाम के उर्दू अंक में 7 अक्टूबर 1937 को प्रकाशित हुआ। प्रसिद्ध उर्दू शायर सीमाब अकबराबादी तथा कवि भानु ने भी उर्दू में अनुवाद किए हैं। उनमें से भानु द्वारा किया गया अनुवाद ये रहा।

तमिल भारत की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। विख्यात कवि सुब्रमण्यम भारती ने दक्षिण में वंदे मातरम शब्दों का प्रचार अपने काव्य और कार्य से किया। भारत रत्न MS सुब्बलक्ष्मी ने भारती द्वारा किए गए अनुवाद को अपने मधुर स्वरों से सजाया था।

संध्या दीक्षित के कन्नड़ अनुवाद में मूल वंदे मातरम की नाद मेहता बहुत सुंदर ढंग से प्रकट हुई है। तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म का अनुवाद करते हुए वे लिखती हैं, नी विद्ये नी ने धर्म नम हृदय दी नी ने

बड़ौदा के सावरकर अध्येता और युवा लेखक चिरायु पंडित ने मूल वंदे मातरम के समवृत्त में ही गुजराती अनुवाद अभी हाल ही में किया है। गायक जयदीप बेहरे, संगीतकार निखिल पालकर।

0: अंग्रेजी अनुवाद के बाद सबसे अधिक यानी 5 अनुवाद मराठी भाषा में हुए हैं। विष्णु रंगाजी शेल्डेकर जो गोवा के प्रसिद्ध कवि थे, उनके द्वारा किया गया अनुवाद संभवतः 1910 से पहले का है। वहीं पर वंदे मातरम के 125वें वर्ष के अवसर पर डॉक्टर प्रदीप आगाशे ने मुक्त छंद में वंदे मातरम का अनुवाद किया।
1: वंदितो माते तुलामी मातृभूमि आमुची, वर्णिता शब्द ही सुचेना ही अवस्था आमुची, पाणी आणि धान्य विपुल ही देसी सततची तू आम्हा, वायु लहरी शीतल अशा मलय शिखरा वरुणी ज्या, विपुल शेती शीतलहरी यामुळे श्यामल अशी, वंदितो माते तुलामी मातृभूमी आमुची।

मराठी के सुप्रसिद्ध कवि प्रवीण दवणे द्वारा हाल ही में समवृत्त में किया गया वंदे मातरम का अनुवाद विशेष चर्चित रहा है।

वंदे मातरम के इन अनुवादों के अलावा वंदे मातरम से प्रेरणा लेकर राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, कविवर बीनी माधव, क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, स्वामी श्रद्धानंद के पुत्र कवि इंद्र, सरला देवी चौधरानी, मराठी में ग दी माडगुलकर, गुजराती कवि नानालाल और महाकवि वल्लतोल नारायण मेनन ने भी वंदे मातरम से प्रेरित होकर मातृ वंदना करने वाले गीत लिखे हैं। उनमें से मलयाली कवि महाकवि वल्लतोल का ये गीत है।

और अब वंदे मातरम का वो हिंदी अनुवाद संवित स्वरों में प्रस्तुत है जो रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष के इस विशेष संस्करण के लिए रचा गया है। अनुवादक कवि जयंत पात्रिकर, संगीतकार अजय पराड़।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वंदे मातरम के विषय में अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा है,
1: वंदे मातरम, वंदे मातरम, एक गान नथी आ शान बान अने आन आपणी, आजादीना महायज्ञनी आहुति आ, राष्ट्रभक्तिनी आहले का, गणतंत्रना उरतंत्रनो महामंत्र आ, विकासनी आ सतत धबकती अननम ओळख रहे आपणी, 1857 नो प्रकाश पुंज आ, सत्य काजे रक्तनो अभिषेक अविरत, वंदे मातरम ए शब्द नहीं आ मंत्र आपणो, आजादीनी ऊर्जानो धबकार आपणो, विकासनो आ राजमार्ग छे, संकल्पित आ राष्ट्र जीवननो महामार्ग छे, प्रजा जीवननी प्रत्येक प्रत्येक प्रभातनी प्रत्येक प्रबुद्ध चेतनानो स्वर आछे, वंदे मातरम।
2: आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

आप सुन रहे थे स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अनुवादों पर आधारित वंदे मातरम एक जय घोष, इस रूपक श्रृंखला की विशेष कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर, ममता सिंह, मंदाकिनी जोशी और यूनुस खान। अंग्रेजी, उर्दू और तमिल अनुवादों के रिकॉर्डिंग स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित जन गर्जय इस एल्बम से साभार। हिंदी, तेलुगु और कन्नड़ अनुवादों के संगीतकार अजय पराड़, हिंदी अनुवाद के गायक भाग्यश्री अभ्यंकर, मानसी दीक्षित, ऋषिकेश केलकर और धनंजय पवार, तेलुगु अनुवाद गायिका अपर्णा केलकर, कन्नड़ अनुवाद गायिका अनुष्का आपटे, तकनीकी सहयोग किरण बंग, भावना सिंदल और समृद्धि नाइक, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से प्रसारित किया गया।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। श्री मोदी ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन

0: सी गुंजायमान हो रही है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई शिखर सम्मेलन के आयोजन से भारत ने विश्व को अपनी शक्ति दिखाई है। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स है, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है और ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। 80वें स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की जनता से अधिक विकसित, समृद्ध और उज्जवल पश्चिम बंगाल के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। श्री अधिकारी ने स्वतंत्रता दिवस पर राज्य की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि सरकार महात्मा गांधी के कार्यों और उनके दृष्टिकोण से सदैव प्रेरणा लेती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक की प्रगति के लिए काम करती रहेगी, इससे देश प्रगतिशील और समृद्ध बनेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। इनमें 13 ऐसे वीर शामिल हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल मनियो फ्रांसिस और मेजर जितेंद्र राठी को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाएगा। लेबनान में आज सवेरे इसराइल के हमलों में 7 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। मलबे में दबे लोगों को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेबनान और इसराइल में इस वर्ष 26 जून को बनी सहमति के अनुसार दक्षिणी लेबनान के इसराइली सैनिकों को लौट जाना था। इसके बदले ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्ला गुट को हथियारों से मुक्त करने की पहल की जानी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री अरबिंदो की जयंती पर स्मरण किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अरबिंदो को एक महान दार्शनिक, राष्ट्रवादी कवि और विचारक बताया। प्रधानमंत्री ने पारसी नववर्ष नवरोज के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि पारसी समुदाय के लोगों के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान ने देश को अनगिनत तरीकों से समृद्ध किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 80वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। गाल में श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 1 विकेट पर 101 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

विविध भारती से लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। अपने सभी श्रोताओं का हम इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। विविध भारती परिवार की ओर से हमारे सभी सुनने वालों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।

0: शंकर जयकिशन की तर्ज थी शैलेंद्र का लिखा गीत, आपने सुना मुकेश की आवाज में, फिल्म थी जिस देश में गंगा बहती है।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से

0: प्रेम पुजारी फिल्म का ये देशभक्ति गीत आप सुन रहे थे मन्ना डे, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। नीरज की रचना थी, सचिन देव बर्मन की तर्ज थी।
1: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
2: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता है आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
1: सेहत नामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
2: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
1: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सेहत नामा।

आप सुन रहे थे शहीद फिल्म का ये गीत, मोहम्मद रफी और साथियों का गाया, प्रेम धवन की रचना थी और संगीत भी था प्रेम धवन का ही। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

हर एक रंग के फूल है खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महल

जिगरी दोस्त इस फिल्म में मोहम्मद रफी को आपने सुना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।

0: जागृति फिल्म का ये गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी की आवाज में प्रदीप की रचना थी, श्रोताओं, और हेमंत कुमार की तर्ज थी ये।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: तिरंगा की सौगंध फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आरती मुखर्जी, मोहम्मद रफी, अमित कुमार और साथियों की आवाजों में। अनजान के बोल थे कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। श्रोताओ, यादों की महफिल कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल। नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहा।
0: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा सुरीला सफर। यह कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। इस कार्यक्रम में हम अपने सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओ, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को विविध भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज देश सलाम कर रहा है श्रोताओं, उन सभी वीरों और स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने देश को सर्वोपरि रखते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। मां भारती को परतंत्रता की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए जाने कितनी ही यातनाएं सही, उन्हीं वीरों का गुणगान कर रही है आज चारों दिशाएं। ये स्वर्णिम दिवस हमारे शहीदों और स्वतंत्रता के दीवानों की याद से आज जगमगा रहा है। केसरिया बाने से सजे तिरंगे की शान चौकट को हम निहार रहे हैं और सलाम कर रहे हैं मां भारती के उन होनहारों को, उन फौजी साथियों को जो आज सरहद पर डटे हैं, और साथ ही हम सलाम करते हैं उन कवियों को जिन्होंने ऐसे गीत लिखे, ऐसी कविताएं लिखी जो स्वतंत्रता सेनानियों में देशभक्ति और वीरता का जज्बा जगा देती थी, एक ओज भर देती थी कह सकते हैं। ये आजादी के रंग का गुलाल है साथियों जो आज सबके मुख पर है। यकीन ना हो तो देख लीजिए, इसी गुलाल में सराबोर सुरीला सफर के गीत आ गए हैं आपके रेडियो सेट पर। तो आज की इबारत जो इस खास दिन को लेकर हमने लिखी है आपके आपकी नजर करते हैं। आज मातृभूमि के श्वेत बादलों में केसरिया बाना पहने विजयी विश्व तिरंगा अपनी पूरी आन बान और शान के साथ लहरा रहा है। सलाम इस जानशी तिरंगे को, आज हवाओं में बसंती बयार है। ओढ़ कर धानी चुनर सजा कर आजादी की मेहंदी जैसे दुल्हन चली। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु का शंखनाद, ऋषियों के कमंडल जल से सिंचित आर्यावर्त हमारा प्यारा वतन हम सबकी शान है। वंदे मातरम की गूंज से आह्लादित चारों दिशाएं वंदन करती हैं उन वीर सपूतों का जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ये लहू आज गुलाल बनकर आसमां पे छाया है क्योंकि वीर कभी मरते नहीं। वो खुश हैं हमारी मुस्कुराहटों में जैसे पैगाम देते हों कि आजादी तूफान में कश्ती का सफर है। याद रहे जान तन रहे न रहे, हाथ से तिरंगा न छूटे याद रहे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। वंदे मातरम। स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर हमारे सभी श्रोताओं को बहुत सारी शुभकामनाएं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। देश भर में जश्न आजादी की धूम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लाल किले की प्राचीर पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। 2047 तक विकसित भारत निर्माण का दोहराया संकल्प। केंद्र सरकार अगले एक साल में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल्स की ट्रेनिंग देगी। गरीब और मिडिल क्लास युवाओं को मिलेगी फ्री ऑनलाइन कोचिंग। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दुमका और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में फहराया तिरंगा। अपने संबोधनों में युवाओं, रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता पर दिया विशेष जोर। रांची में आंदोलनरत छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से निकाली तिरंगा यात्रा। स्वतंत्रता दिवस पर बनाई जलेबी, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। और चमोली सुरंग हादसे में झारखंड के 7 श्रमिक प्रभावित, 1 की मौत तथा 1 अन्य के फंसे होने की सूचना। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राहत व पुनर्वास कार्य तेज। और अब समाचार विस्तार से। देश आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र ध्वज फहराया। राष्ट्र को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गूंज रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य हासिल

0: हासिल करने के लिए हमें अपनी कार्य संस्कृति, सोच और काम की गति को बदलना होगा। श्री मोदी ने विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित व्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा की। श्री मोदी ने देश को नक्सलवाद मुक्त बनाने का आह्वान किया।
1: दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अगले एक साल में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल्स की ट्रेनिंग देगी। गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के युवाओं के लिए कई परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी।
1: डिजिटल इंडिया के नए सस्ते डेटा युवाओं को सशक्त किया, दुनिया में नौजवानों को नई ताकत दी है। स्किल इंडिया हमने नेशनल प्रोग्राम बनाया, स्पेस सेक्टर को हमने ओपन कर दिया, नेशनल ड्रोन पॉलिसी हमने बनाई है, खेलो इंडिया पॉलिसी बनाई है, 35 वर्षों तक एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं। विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है, पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में झंडोत्तोलन किया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने सरकार की प्राथमिकताओं को सामने रखा। राज्यपाल ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक, कदाचार या किसी भी प्रकार की परीक्षा अनियमितता स्वीकार नहीं की जा सकती और ऐसी घटनाएं युवाओं के भविष्य तथा उनके विश्वास को प्रभावित करती है। उन्होंने राज्य सरकार से परीक्षा व्यवस्था की गहन समीक्षा कर कमियों को दूर करने और अनुचित साधनों पर प्रभावी रोक लगाने की अपेक्षा जताई। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर राज्यपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना को अगले 5 वर्षों में चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा।
2: सेना चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की दिशा में कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीण एवं दूर दराज के क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना को अगले 5 वर्षों में चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा। युवाओं, किसानों तथा वंचित एवं जरूरतमंद वर्गों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए कार्य कर रही है।
0: राज्यपाल ने इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया एवं उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मोराबादी मैदान में तिरंगा फहराया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के युवाओं की मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी और उनके भविष्य को किसी माफिया, भ्रष्टाचार या अनियमितता के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि JPSC, JSSC समेत अन्य भर्ती एजेंसियों के माध्यम से आने वाले समय में बड़ी संख्या में नियुक्तियां समयबद्ध तरीके से की जाएगी और रोजगार को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया।
3: झारखंड के लाखों युवा आज अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इसलिए यह हमारा सर्वोच्च जिम्मेदारी है उनकी मेहनत का सम्मान हो और उनकी प्रतिभा को न्याय मिले। मैं जानता हूं कि पिछले कुछ समय में भर्ती परीक्षाओं को लेकर अनेक प्रश्न उठे हैं। जब परीक्षा व्यवस्था पर संदेह पैदा होता है तो केवल एक परीक्षा प्रभावित नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी का विकास प्रभावित होता है। मैं आज झारखंड के प्रत्येक विद्यार्थियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी मेहनत को किसी माफिया, किसी भ्रष्ट तंत्र और किसी अनियमितता के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा।
0: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आकाशवाणी रांची के कार्यालय परिसर में उप महानिदेशक DC हेम्ब्रम ने झंडोत्तोलन किया गया। इस अवसर पर सभी कर्मचारी और पदाधिकारी मौजूद रहे। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड में भी जश्न आजादी की धूम है। राज्य के सभी जिला में शान से तिरंगा फहराया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले में चाईबासा स्थित पुलिस लाइन मैदान में मंत्री दीपक बिरवा

0: में दी। मौके पर उन्होंने वीर सपूतों को नमन किया। इधर सिमडेगा, पाकुड़, कोडरमा, सरायकेला समेत कई जिलों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निर्वाचन सदन में झंडोत्तोलन किया। जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी के खिलाफ रांची में आंदोलनरत छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा से पहले छात्रों ने स्टेडियम परिसर में जलेबी बनाई और एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। खान एवं खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को लेकर झारखंड सरकार के साथ जारी गतिरोध पर हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बड़ा बयान दिया है। इन्होंने कहा कि इस विधेयक से राज्य को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों के आंदोलन से डरी हुई राज्य की वर्तमान सरकार मुद्दे को दूसरी तरफ मोड़ना चाहती है।
1: भारत सरकार ने एक सामितिक निर्णय लेते हुए राज्यों के इंटरेस्ट को खराब किए बिना एक प्रकार का जो है टैक्स रॉयल्टी ये लागू होगा। इससे पूरा देश प्रगतिशील होगा, राष्ट्रीय भावना को मजबूती मिलेगी कि ये जो स्टूडेंट आंदोलन जो अभी चल रहा है इससे सरकार बैकफुट पर है। उस आंदोलन से लोगों का मन भटकाने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए जो है इस मुद्दे को हवा दिया जा रहा है।
0: उत्तराखंड के चामोली जिले में निर्माणाधीन सुरंग में गुरुवार को हुए हादसे में झारखंड के भी 7 श्रमिक प्रभावित हुए हैं। इनमें एक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य के फंसे होने की सूचना है। दुर्घटना में राज्य के कुल 5 श्रमिक घायल हुए हैं, जिनका इलाज निकटवर्ती अस्पतालों में चल रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राहत और पुनर्वास कार्य तेज कर दिया गया है। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,44,100 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,44,000 प्रति किलो है। राज्य में मौसम का मिजाज पल पल बदल रहा है। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 2 दिनों के लिए भारी बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में जश्न आजादी की धूम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लाल किले की प्राचीर पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। 2047 तक विकसित भारत निर्माण का दोहराया संकल्प। केंद्र सरकार अगले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल्स की ट्रेनिंग देगी। गरीब और मिडिल क्लास युवाओं को मिलेगी फ्री ऑनलाइन कोचिंग। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दुमका और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में फहराया तिरंगा। अपने संबोधनों में युवाओं, रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता पर दिया विशेष जोर। रांची में आंदोलनरत छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से निकाली तिरंगा यात्रा। स्वतंत्रता दिवस पर बनाई जलेबी, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। और चामोली सुरंग हादसे में झारखंड के 7 श्रमिक प्रभावित, एक की मौत तथा एक अन्य के फंसे होने की सूचना। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राहत व पुनर्वास कार्य तेज। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखा है, शहीद फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी मन्ना डे और राजेंद्र भाटिया की आवाजें थी, यानी तीन स्वर थे श्रोताओं और तीन कलाकार भी थे इस फिल्म में जो आपको बताने हैं। अगर आपने फिल्म देखी है तो आप जरूर बताएं। और एक श्रोता लिखते हैं कि आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, मेरा देश मेरा है, मेरा स्वाभिमान सम्मान है, आज भी सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया रहेगा, देश के सम्मान को आंच लगे ऐसा होने न दें, मान सम्मान मिला है उसे टिकाना है, देश भक्ति गीत बहुत हैं लेकिन सुंदर हमारा वंदे मातरम है, हमारी धरोहर है भारत माता का, हमें रक्षण करना है।

है तो बच्चे सुरक्षित रहेंगे। जय हो, ऐसा ये लिखते हैं। और हमारे कुछ श्रोता जरूर ऐसे होंगे जिन्होंने देश प्रेम में कुछ न कुछ इबारत या कविता जरूर लिखी होगी, तो कुछ पंक्तियों में जो कविता आपने लिखी है वो आप हमें जरूर भेज सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज हम सुबह से ही देशभक्ति गीत सुन रहे हैं और कुछ ऐसे गाने जो हमारे भीतर साहस, जज्बा, हौसला, मजबूती के साथ जो है इरादे हमारे उत्पन्न करते हैं। और अपने देश भारत के गायक गायिकाओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतने लगन और भाव से इन गानों को गाया है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि पता नहीं लिखते हैं कि आज तमाम सारे शब्द जो हैं वो इबारत में हैं, बसंती, दुल्हन, विजय, विश्व, तिरंगा, ब्रह्मा, वतन, पैगाम, तूफान, जानो तन और तमाम शब्द के बारे में, शब्दों के बारे में इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता ने लिखा है कि भारत भूमि के वीर सपूतों के बलिदान को शत शत नमन, हजारों बरस आपको सच्ची आंखों देखी कहानियों में गाथाएं आने वाली पीढ़ी को सुनाई जाएगी। सरहद के जांबाज सैनिकों को नमन जो देश की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहते हैं। और सब देशभक्ति गीत मुझे पसंद है, मेरा रंग दे बसंती चोला, इंसान का इंसान से हो भाईचारा और किसी की मुस्कुराहटों पर, तमाम गीतों के बारे में इन्होंने लिखा है। आप ये गीत सुनिए श्रोताओं और बताइए जो हमने आपसे पूछा है कविता के बारे में, अपने स्कूल के समय के बारे में, आज आपने किस खास अंदाज में स्वतंत्रता दिवस को मनाया या मना रहे हैं, और क्या कभी आपका सपना रहा भारतीय फौज में जाने का।

प्रदीप की ये रचना आपने सुनी, हेमंत कुमार की तर्ज से जागृति फिल्म का ये गीत था। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास आनंद मठ केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि भारतीय स्वाभिमान, मातृभूमि के प्रति अगाध प्रेम और त्याग की वो पावन ज्योति है जिसने गुलाम भारत के प्राणों में स्वतंत्रता की अद्भुत और अमिट अलख जगाई थी, ऐसा हमारे ये श्रोता लिखते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि रक्त प्रवाह तप्त और तीव्र हो जाती है ये गाना सुनकर, बहुत हुवीरसपूर्ण गीत है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि न जाने कितने ही वीर शहीद हुए तब जाकर हम आजाद हुए, हंसते हंसते जान लुटा दी, भारत माँ को खुश कर दिया, तिरंगा लहराए हर घर में गूंजे जय हिंद, और अपनी तमाम बातें इन्होंने लिखी हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है, वंदे मातरम उसी उपन्यास से लिया गया है। जी हाँ, ये सवाल हमने आपसे पूछा था। एक और सवाल हमने आपसे पूछा था श्रोताओं, क्या कभी भारतीय फौज में जाने का सपना आपका रहा, तो आप जरूर हमें बताएं। एक और श्रोता लिखते हैं कि स्वतंत्रता दिवस बचपन में स्कूल में मनाते थे, वो राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रध्वज को सलामी देना, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने का मजा, और पूरे गाँव में रैली में निकालना, और फिर खाने को मिश्री चीनी मिलती थी, बहुत ही मजा आता था। आज तो बस मोबाइल पर ही मना लेते हैं, ऐसा नहीं है, आप बाहर निकलकर देखेंगे तो बहुत ही मजा आएगा, देश वही और राष्ट्र वही, हमारा तिरंगा वही गुरूर से फैल रहा है। और आपको ये बताना है श्रोताओं कि जब हम स्कूल जाया करते थे तो वहाँ बहुत सारे कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस के खास अवसर पर जो थे वो मनाए जाते थे और बच्चे उसमें भाग लेते थे, तो क्या आपने भी कभी भाग लिया है ये आप बताएं। और एक सवाल जो हमने आपसे पूछा है, भारतीय फौज में जाने का आपका सपना, ये आपको जरूर बताना है। और स्कूल में क्या क्या मिठाइयाँ मिलती थी, बहुत सारे स्कूल में तो चॉकलेट्स भी मिलती थी, तो आपके यहाँ क्या मिलता था, क्योंकि लड्डू तो बहुत मिलते थे। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज देशभक्ति के गीतों से सराबोर रहेगा और जिन वीरों ने इस देश के लिए बलिदान दिया उनको सादर नमन, और अब हमारी जवाबदारी है कि इसको सहेज कर रखना। एक और श्रोता लिखते हैं कि अभी स्कूल से लौटा हूँ, देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस बच्चों के बीच मनाया, राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सलामी दी, कितना गौरवशाली दिन है आज, दिलों में जोश है, चारों ओर हवा में नई ऊर्जा, नए प्राण की अनुभूति हो रही है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि दुल्हन चली, पहन चली, तीन रंग की चोली और क्रांति फिल्म के गीत को इन्होंने याद किया है, तो देखते हैं कि आज कौन कौन से गीत शामिल हैं कार्यक्रम में। वो कौन से कलाकार हैं श्रोताओं जिन्हें भारत कुमार के नाम से जाना जाता है।

संगीत के साथ आपकी क्या यादें हैं श्रोताओ, आप हमसे बता सकते हैं। क्या ये फिल्म आपने देखी है तो उसकी यादें भी आज आप ताजा कर सकते हैं।

0: भारत कुमार किन अभिनेता को कहते हैं? हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। जी हाँ, मनोज कुमार, बिल्कुल ठीक आपने बताया है श्रोताओं। और फौज का जो सवाल हमने आपसे पूछा था, सपना क्या आपने सजाया था, तो हमें ज़रूर बताएं। और फौजियों का एक खास ड्रेस कोड होता है श्रोताओं, यानी वर्दी जो उनकी होती है वो आपको कितना प्रोत्साहित करती है देश सेवा के लिए, ये आपको बताना है। एक हमारी श्रोता ने कविता की तरह से लिखा है कि नमन करूँ वंदन कर लूँ मैं, ये माटी है वीर वीरांगनाओं की, इसे माथे से लगाकर चंदन कर लूं मैं, सदा सर्वदा अटल रहे मेरे भारत की प्रतिष्ठा, केसरिया श्वेत हरित वर्ण से सुशोभित ये तिरंगा प्यारा, गौरवान्वित इन क्षणों में इस ध्वजा को लहराकर अभिनंदन कर लूं मैं, ऐसा इन्होंने लिखा है। और बड़ी ही सुंदर एक कविता की तरह से कह सकते हैं कि इन्होंने बनाया है। एक और श्रोता ने लिखा है कि यह गीत मनोज कुमार पर फिल्माया गया, उपकार फिल्म का बड़ा ही प्रसिद्ध गीत है, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजें हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज़ादी का मतलब केवल राजनीतिक रूप से देश को अंग्रेजी या किसी बाहरी शासन के से मुक्त कराना नहीं, इसका वास्तविक अर्थ बहुत ही व्यापक है, जिसमें वैचारिकता, स्वतंत्रता, मानसिक मुक्ति और संविधान द्वारा दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है, ताकि हर नागरिक बिना डर के सम्मान से जी सके। जी हाँ, और संविधान का हम सभी को भी जो है बहुत बहुत सम्मान रहे। और एक और श्रोता लिखती हैं कि जब भी इन देशभक्ति गानों को सुनते हैं तो बचपन में वो स्कूल का नेशनल त्यौहार और स्कूल में दिखाई जाने वाली फिल्मों की याद आ जाती है। जी हाँ, स्कूल में तो बहुत सारी फिल्में दिखाई जाती थी श्रोताओं। और स्वतंत्रता को लेकर जो फिल्में बनी हैं हमारे देश में, उनमें सबसे ज्यादा पसंदीदा आपकी कौन सी फिल्म है, ये आप बता सकते हैं। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि अब की बार हमें मौका मिला, भारत भूमि का ताज श्रीनगर कश्मीर के ऐतिहासिक लाल चौक और बलिदान स्तंभ पर मेरी धर्मपत्नी और मैंने स्वयं तिरंगा को सलामी दी, तिरंगा वहां फहराया, वंदे मातरम गीत गाया, वहां तैनात सुरक्षा फौजी जवानों को जय हिंद और जय बाबा अमरनाथ कहा, और वीडियोज भी और फोटोज भी हैं इसके। एक और श्रोता ने लिखा है कि स्कूल के समय मूल राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाने का सौभाग्य सदैव मुझे प्राप्त रहा, आज भी सुबह पुणे में अपनी सोसाइटी में ध्वजारोहण भाषण में व्यस्त रहा और दिन भर रहेंगे। इस गीत को आप पहचानिए श्रोताओं।
1: करता नहीं

ये रचना किस फिल्म से है और किन की है ये आपको बताना है श्रोता। और एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन के उत्साह का तो कहना ही क्या, उस दिन स्कूल की तरफ जाने वाला रास्ता कुछ अलग ही लगता था, सब कुछ नया धुला धुला, और फिर उस दिन मिलने वाले लड्डुओं का अनोखा स्वाद क्या फिर कभी जीवन में दुकान से खरीदने पर मिला वो स्वाद। आज के दिन उन वीरों को नमन करने का दिन है जिन्होंने अपनी शहादत से देश की रक्षा में अपने को तज दिया। उन वीर सैनिकों को सलाम जो कड़ी गर्मी, ठिठुरती ठंड और बारिश में सीमा पर प्रहरी बनकर खड़े रहते हैं, सबको मेरा नमन, ऐसा ये लिखती हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आज़ादी के जश्न में सबसे अधिक कोई इठलाता है तो वो है गोल गोल जो जलेबियां हैं वो, और तनो जलेबी जो है वो जगह जगह, यानी बिहार के बारे में खास इन्होंने लिखा है कि बिकी होगी, ऐसा होता होगा वहां, और सोसाइटी की तरफ से केसरिया रंग वाली घी की जलेबी ही आई। जय भारती इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के दिन भोर की बेला में बचपन में एक अलग ही उमंग लेकर आती थी, सुबह सुबह जल्दी जागना, साफ सुथरे स्कूल ड्रेस को पहनना, सीने पर तिरंगे का बैच लगाना और प्रभात फेरी में गूंजते वंदे मातरम के नारे अपने स्कूल के दोस्तों के साथ लगाते, और आज भी मन को पुरानी यादों से भर देती हैं ये सभी बातें। और बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी हैं कि स्कूल के सहपाठियों के साथ हाथ में राष्ट्रीय झंडा लेकर पूरे जोश और जुनून के साथ देशभक्ति के का नारा लगाना। एक और श्रोता ने लिखा है कि नमस्कार के साथ साथ स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ढाई महीने अमेरिका में बिताने के बाद आज इस पावन पर्व पर ही घर वापसी हुई है, तो बहुत बहुत आपको भी बधाई। और हमारे तमाम श्रोताओं ने बहुत सारी बधाइयां दी हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था देशभक्ति कविताएं सुनाता था, मैं 15 अगस्त के पर्व पर स्कूल के हर प्रोग्राम में भाग लेता था, ये मैं कभी भूल नहीं सकता। एक और श्रोता ने लिखा है कि बचपन में 15 अगस्त का दिन किसी त्यौहार से कम नहीं होता था। सुबह सुबह स्त्री की हुई स्कूल ड्रेस पहनकर हम हाथ में तिरंगा लिए बेहद उत्साह से स्कूल पहुंचते, प्रभात फेरी में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाने का मजा ही अलग था। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान के समय गर्व से सीना चौड़ा हो जाता था, देशभक्ति गीत, पीटी परेड और अंत में मिलने वाले जो समोसे थे वो बूंदी के लड्डू उस खुशी को दुगना कर देते थे। तो आज आप बताइए कि आज ये जो मिठाइयां हैं वो किस तरह से आप खा रहे हैं और क्या यादें हैं आज खास, क्या आज वापस बूंदी के लड्डू और जलेबियां मिली।

लीडर फिल्म का ये गीत किस कलाकार पर फिल्माया गया है श्रोताओ, ये आपको बताना है, और किन्हीं तीन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम आप बताएं, और उनका नाम तो अवश्य बताएं जो 1857 में शहीद हुई और जिन्होंने झांसी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तो ये नाम आपको बताने हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज स्वतंत्रता दिवस पर बस इतनी सी इच्छा है कि हमारा देश यूं ही प्यारा, भाईचारे और खुशियों से भरा रहे, और छोटे छोटे काम हम अपने देश के लिए करते रहें, थोड़ा और सुंदर इसे बनाएं और कोशिश करते रहें, और सिर्फ सलाम नहीं करना है बल्कि हर दिन अपने हिस्से का प्यार और जिम्मेदारी निभाना है, और देश के लिए अच्छे अच्छे काम करें, कम से कम एक पेड़ ज़रूर लगाएं। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले एक आध कमेंट्स की और गुंजाइश बाकी है। तो ये हमारे श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। एक और श्रोता लिखते हैं कि इन्होंने लिखा है स्वतंत्रता दिवस की हमारे जितने भी साथी हैं उन सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। और मनोज कुमार वाली फिल्म शहीद मुझे स्कूल में दिखाई गई थी जब मैं 4th कक्षा में पढ़ता था, फिल्म का एक दृश्य आज भी मेरे दिल में बसा हुआ है। जागृति फिल्म के बारे में हमारे कुछ एक श्रोताओं ने जो है वो कमेंट किया है कि बहुत अच्छी फिल्म थी।

हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उपकार फिल्म बचपन में सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से रोड पर सफेद पर्दा लगाकर दिखाई जाती थी, जिसे सड़क पर बैठकर घर से ही देखा जा सकता था। आज वह सब याद आ रहा है।

0: साथियों।
1: एक श्रोता ने प्यारा सा कमेंट लिखा है कि मैं एनसीसी में थी और बचपन से ही देशभक्ति का जज्बा है। मेरा सपना था मेरे घर के बच्चे फौज में जाएं और मैं अपने पापा के साथ झंडा फहराने जाया करती थी।

शुभता से भरा स्वतंत्रता दिवस का ये खूबसूरत दिन आप सबको मुबारक हो। श्रोताओं, तिरंगे को हम एक बार फिर सलाम करते हैं।

मोहम्मद रफी के गाय फिल्म हकीकत के इस गीत के साथ ही सुरीला सफर कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। श्रोताओं, आप सभी को एक बार फिर विविध भारती परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।

आज त्रिवेणी की धाराएं मिल रही हैं स्वाधीनता दिवस पर। स्वाधीनता दिवस की आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दोस्तों, आज का दिन हमें याद दिलाता है कि हम अपने देश के लिए कुछ बेहतर करें, अपने नागरिक कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें और देश की प्रगति में अपना योगदान दें। आज़ादी केवल अधिकारों का नाम नहीं बल्कि जिम्मेदारियों को समझने और निभाने का संकल्प भी है। आइए हम अपने आसपास स्वच्छता, सद्भाव, समानता और भाईचारे को बढ़ावा दें, अपने कर्मों से देश को मजबूत बनाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर, सुरक्षित और संवेदनशील भारत का निर्माण करें। देश के प्रति सम्मान केवल एक दिन नहीं बल्कि हर दिन हमारे व्यवहार और कर्मों में दिखाई देना चाहिए। यही सच्चे अर्थों में आज़ादी का उत्सव है।

दोस्तों, आज का दिन केवल तिरंगा फहराने और देशभक्ति के गीत गाने का दिन नहीं है, बल्कि अपने भीतर झांकने और ये सोचने का दिन भी है कि एक नागरिक के रूप में हम अपने देश को क्या दे रहे हैं। आज़ादी हमें बहुत संघर्ष और बलिदानों के बाद मिली है, इसे सहेजना हम सभी की जिम्मेदारी है। हमारा एक छोटा सा अच्छा काम, ईमानदारी से निभाया गया एक कर्तव्य और किसी जरूरतमंद के लिए बढ़ाया गया एक हाथ भी देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभाता है। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम केवल देश को सिर्फ शुभकामनाएं ही न दें, बल्कि एक बेहतर नागरिक बनने का संकल्प भी लें। हम अपने देश की विविधता का सम्मान करें, पर्यावरण की रक्षा करें, अपने आसपास प्रेम और सद्भाव बनाए रखें।

दोस्तों, हमें चाहिए कि हम आने वाली पीढ़ी को आज की तारीख की अहमियत समझाएं, उनमें देशभक्ति का जज्बा पैदा करें, उन क्रांतिवीरों के बारे में बताएं जिनकी बदौलत हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। उन्हें ये भी बताएं कि आजादी हमें विरासत में मिली कोई साधारण सी बात नहीं है, बल्कि अनगिनत बलिदानों और संघर्षों की कीमत पर हासिल हुई है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और भी असंख्य ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन को देश के नाम कर दिया। जरूरी है कि हमारी नई पीढ़ी केवल स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे को सलाम भर न करे, बल्कि उसके पीछे छिपे संघर्ष, त्याग और स्वाभिमान को भी समझे। आइए हम अपने बच्चों को आजादी का इतिहास ही नहीं बल्कि उसकी जिम्मेदारी भी सौंपें, ताकि वे इस देश की स्वतंत्रता, एकता और गरिमा को आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचा सके। यही हमारा स्वतंत्रता दिवस का सच्चा संकल्प होगा।

पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दहने बाएं थम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। लाल किला पर पहली बार वंदे मातरम का गायन। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल का प्रशिक्षण देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदार के रूप में उभर रहा है। कई देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कुछ देशों द्वारा संसाधनों का दुरुपयोग कर अपना वर्चस्व दिखाने के प्रयासों पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा, भारत आत्मनिर्भरता की भावना से इस चुनौती का सामना कर रहा है। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इंडोनेशिया के पूर्वी तट पर आए 7.7 तीव्रता के भूकंप में 20 लोगों की मौत और गाले में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट में भारत ने 1 विकेट पर 106 रन बनाए। राष्ट्र आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। श्री मोदी ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गुंजायमान हो रही है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि AI शिखर सम्मेलन के आयोजन से भारत ने विश्व को अपनी ताकत दिखाई है। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति AI के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में करोड़ों देशवासियों के संकल्प, समर्पण और हर संभव प्रयास की बदौलत देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने कहा कि पहले भारत 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों में गिना जाता था, लेकिन अब भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है।
1: इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल 5 में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कई बार देश केवल संसाधन की कमी के कारण नहीं बल्कि सीमित सोच के कारण भी पिछड़ता है। उन्होंने कहा कि भारत को कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ा है और ये भी सीमित सोच का परिणाम था। श्री मोदी ने कहा कि जिन अपतटीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के काम की अनुमति नहीं थी, सरकार ने उनमें से 99% को खोल दिया, जहां अब समुद्र के भीतर नए संसाधनों और भंडारों की खोज की जा रही है।
1: हमने समुद्री तट पे समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र्य था, हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को, जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया। हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 7-8 वर्ष में लगभग 8 सेमीकंडक्टर संयंत्र काम शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि इस समय देश में 3 संयंत्रों में सेमीकंडक्टर का निर्माण हो रहा है और इस क्षेत्र में भारत की प्रगति तकनीकी आत्मनिर्भरता को दर्शाती है।
1: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं।
0: स्वाधीनता दिवस समारोह पर हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद अंतर सेवा और दिल्ली पुलिस के संयुक्त गार्ड ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं पहली बार लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन किया गया। ध्वजारोहण के बाद भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर फूलों की बारिश की। इनमें से एक हेलीकॉप्टर पर राष्ट्रीय ध्वज था और दूसरे पर वंदे मातरम लिखा हुआ ध्वज था। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद NCC कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने वंदे मातरम का गायन किया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। सेना, नौसेना और वायुसेना के कुल 2,500 कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने समारोह में हिस्सा लिया। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5,000 विशेष अतिथियों ने लाल किले पर आयोजित समारोह में भाग लिया। इनमें PM विश्वकर्मा योजना के कारीगर, PM मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, PM स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले, भारत टैक्सी के चालक, स्वच्छ भारत मिशन के सफाई कर्मचारी और राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम से जुड़े युवा शामिल थे। लाल किले पर आयोजित समारोह का समापन आसमान में तिरंगे गुब्बारे छोड़ने के साथ हुआ। अनुपम और आनंद के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। श्री मोदी ने कहा कि सरकार महात्मा गांधी के कार्यों और उनके दृष्टिकोण से सदैव प्रेरणा लेती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक की प्रगति के लिए काम करती रहेगी, इससे देश प्रगतिशील और समृद्ध बनेगा। नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में भी 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने राष्ट्र ध्वज फहराया और हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि

0: दिन उन शहीदों को याद करने का दिन है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की जनता से राष्ट्र के विकास में योगदान देने और राष्ट्र को कमजोर करने वाली शक्तियों से दूर रहने की अपील की है। पश्चिम बंगाल में मातृभूमि के प्रति गहरे श्रद्धा के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है।
1: कोलकाता में मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित बंगाल विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे सकता है। रेड रोड परेड में राज्य सरकार की कई झांकियां प्रदर्शित की गईं, जिनमें पीएम सूर्य घर योजना और विकसित भारत जी राम जी योजना जैसी विभिन्न योजनाओं को दिखाया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने बैरकपुर के गांधी घाट पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया और महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। कोलकाता से आकाशवाणी समाचार के लिए कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ मैं कुमार राधारमण।
0: जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्य समारोह श्रीनगर के प्रसिद्ध बख्शी स्टेडियम में आयोजित किया गया।
2: स्वतंत्रता दिवस के हवाले से सबसे बड़ा समारोह श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में हुआ, जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आजकल के हालात अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि आजादी के 80 साल बाद जम्मू कश्मीर का भारत का हिस्सा बनने का फैसला सही साबित हुआ है। इधर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी श्रीनगर के लोक भवन में तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों को बधाई दी। इस बीच जम्मू कश्मीर के सभी जिला मुख्यालयों में भी ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित किए गए। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: छत्तीसगढ़ में 80वां स्वाधीनता दिवस उत्साह उल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली।
3: रायपुर में आयोजित स्वाधीनता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसिक नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प से नक्सलवाद के विरुद्ध ऐतिहासिक सफलता मिली है। माओवाद से मुक्त बस्तर में आज तिरंगा यात्राओं के माध्यम से स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा है। जो क्षेत्र कभी हिंसा और भय से प्रभावित थे, वहां आज शांति, विश्वास और विकास की नई सुबह हुई है। उन्होंने कहा कि बस्तर की सर्वांगीण प्रगति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है। कभी माओवाद से प्रभावित रहे और अब नक्सलवाद से मुक्त हो चुके राज्य के बस्तर संभाग के करीब 90 गांव ऐसे हैं जहां आजादी के बाद आज पहली बार स्वाधीनता दिवस पर तिरंगा फहराया गया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: केरलम में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रध्वज फहराया। इसके बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा की।
4: तिरुवनंतपुरम में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने परेड की सलामी ली। विभिन्न सशस्त्र बलों की टुकड़ियों के साथ माउंटेड पुलिस, एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड्स तथा स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स ने इसमें हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस संदेश देने के बाद पुलिस, अग्निशमन और बचाव सेवा तथा कारागार विभाग के कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक प्रदान किए। कोच्ची में दक्षिणी नौसेना कमान समारोह में वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने परेड की सलामी ली। समारोह के दौरान नौसेना के जहाजों को झंडों से सजाया गया। इडुक्की में बांधों और नौका केंद्रों पर स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किए गए, जिनमें पर्यटकों ने भी भाग लिया। कोवलम बीच के निकट एक निर्जन द्वीप पर तटरक्षक बल ने भी स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया। स्मिथि एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: वैश्विक नेताओं ने भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत संबंधों का उल्लेख किया है। इसराइल के राजदूत रूवेन अजार, अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कोसिना, श्रीलंका के उच्चायुक्त महेशिनी कोलोन, नेपाल दूतावास, फ्रांस दूतावास, ऑस्ट्रेलिया के उप उच्चायुक्त और कनाडा के उच्चायुक्त ने भी भारत की विरासत, विविधता, आर्थिक क्षमता और बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों पर जोर देते हुए शुभकामनाएं दी। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह और मालदीव नेशनल पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद नाजिम ने भारत के विकास और मालदीव के साथ घनिष्ठ साझेदारी की प्रशंसा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इंडोनेशिया के फ्लोरेंस क्षेत्र के पास आज सवेरे आए 7.7 तीव्रता के भूकंप से

0: 20 लोगों की मौत हो गई। भूकंप से कई इमारतें ढह गईं। भूकंप के कारण 6 लोग घायल हुए हैं और 2 लापता हैं। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। लेबनान में आज सवेरे इसराइल के हवाई हमले में 7 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। मलबे में दबे लोगों को बचाने के प्रयास जारी हैं। लेबनान और इसराइल के बीच इस वर्ष 26 जून को बनी सहमति के अनुसार दक्षिण लेबनान से इजरायली सैनिकों को वापस जाना था। इसके बदले ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्ला गुट को हथियारों से मुक्त करने की पहल की जानी थी। गाले में श्रीलंका के साथ 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 1 विकेट पर 118 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। लाल किला पर पहली बार वंदे मातरम का गायन। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल का प्रशिक्षण देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदार के रूप में उभर रहा है। श्री मोदी ने कुछ देशों द्वारा संसाधनों का दुरुपयोग कर अपना वर्चस्व दिखाने के प्रयासों पर निराशा व्यक्त की। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इंडोनेशिया के पूर्वी तट पर आए 7.7 तीव्रता के भूकंप में 20 लोगों की मौत। और गाले में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट में भारत ने 1 विकेट पर 118 रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: एन दत्ता की तर्ज राजा मेहदी अली खां के बोल आशा भोसले और साथियों की आवाजें। फिल्म थी भाई बहन, इसी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय के साथी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहां से हुजूर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: तेरा लिख गया माल पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल पगड़ी।
1: गीत और संगीत था प्रेम धवन का, मोहम्मद रफी की आवाज में। शहीद फिल्म का गीत आपने सुना।

दीदी फिल्म का ये दो गाना आपने सुना, आशा भोसले मोहम्मद रफी का गाया, साहिल उदयानवी के बोलों को सुरों में ढाला एन दत्ता ने। फिल्म सीमा का ये गीत है मन्ना डे की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की तर्ज।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। देश आज हर्ष और उल्लास के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण किया और राष्ट्र को संबोधित किया। इस मौके पर कई केंद्रीय मंत्री और गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान श्री मोदी ने शक्ति की सप्तधारा के माध्यम से 2047 तक विकसित भारत का स्पष्ट रोडमैप रखा।
1: मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
0: झारखंड में भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर हर ओर उमंग और उत्साह दिख रहा है। राज्य में मुख्य राजकीय समारोह रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में आयोजित हुआ, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मिलीजुली टुकड़ियों का निरीक्षण करने के बाद ध्वजारोहण किया। परेड में पहली बार ओडिशा की टुकड़ी भी शामिल हुई। मुख्यमंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए राज्य में जारी विकास गतिविधियों की चर्चा की। उन्होंने विकसित झारखंड के निर्माण के सामूहिक भागीदारी पर जोर दिया। श्री सोरेन ने कहा कि युवाओं के समग्र विकास पर भी सरकार ध्यान दे रही है। उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मिलीजुली टुकड़ियों का निरीक्षण करने के उपरांत ध्वजारोहण किया। इस दौरान राज्यपाल ने राज्य के सभी क्षेत्रों की विकास की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए कहा कि संथाल परगना के सभी जिलों को एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित करने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार भी राज्य सरकार की प्राथमिकता है। स्वतंत्रता दिवस पर राज्य के अलग अलग जिलों में प्रभारी मंत्रियों ने ध्वजारोहण किया। पश्चिमी सिंहभूम के जिला मुख्यालय चायबासा स्थित पुलिस लाइन मैदान में मंत्री दीपक बिरुवा ने झंडोत्तोलन किया, जबकि लोहरदगा के बलदेव साहू स्टेडियम में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्कीक ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। जामताड़ा में मंत्री इरफान अंसारी और बोकारो में मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने राज्य में चल रही विकास योजनाओं और सरकार की उपलब्धियों की जानकारी साझा की। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडलीय आयुक्त विजय कुमार गुप्ता ने करजन ग्राउंड हजारीबाग में झंडोत्तोलन किया। इधर सिमडेगा, पाकुड़, कोडरमा, सरायकेला समेत कई जिलों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष एनएस राजा सुब्रमणि, थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह मौजूद थे। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल खान एवं खनिज संशोधन विधेयक को लेकर राज्य सरकार के बयान की आलोचना की है। उन्होंने हजारीबाग में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस विधेयक से राज्य को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। श्री जायसवाल ने आरोप लगाया कि छात्रों के आंदोलन से डरी हुई राज्य की वर्तमान सरकार मुद्दे को दूसरी तरफ मोड़ना चाहती है।
2: भारत सरकार ने एक सामितिक निर्णय लेते हुए राज्यों के इंटरेस्ट को खराब किए बिना एक प्रकार का जो है टैक्स रॉयल्टी ये लागू होगा। इससे पूरा देश प्रगतिशील होगा, राष्ट्रीय भावना को मजबूती मिलेगी कि ये जो स्टूडेंट आंदोलन जो अभी चल रहा है इससे सरकार बैकफुट पर है। उस आंदोलन से लोगों का मन भटकाने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए जो है इस मुद्दे को हवा दिया जा रहा है।
0: मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने तात्कालिक पूर्वानुमान में बताया है कि अगले कुछ घंटों के दौरान पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले के कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान गरज के साथ वज्रपात होने की भी संभावना है, जिसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

लीजिए, आ चुका है आपके रेडियो सेट पर विविध भारती का कार्यक्रम मन चाहे गीत। सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाओं के साथ श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हवाओं में खास रवानी है, आज दिलों में खुशियों का रंग है और आपके भेजे पत्रों में भी मन चाहे गीत का कुछ ऐसा ही इंद्रधनुषी रंग नजर आ रहा है। ये गीत आपकी पसंद के यकीन मानिए श्रोताओं, रंग भरते हैं हमारे मन चाहे गीत कार्यक्रम में। तो देखते हैं आज हमारे किन श्रोताओं की पसंद मन चाहे गीत कार्यक्रम में झलकती है। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का ये दो गाना था लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया, आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में ढाला राहुल देव बर्मन ने। और फरमाइश भेजने वाले हमारे ये श्रोता हैं जिला अमरावती से, प्रवीण नगर से चंदू हातोले और सीमा हातोले की ये फरमाइश है। हमारे ये श्रोता हैं एम फारूख, पप्पू शेख और अल कुमार अफसानो महजमी मिर्जा, इनकी फरमाइश आई है गणेशपुर गंज डुंडवारा से। और सुब्रत चौधरी बेबी अनीशा मनीषा चौधरी ने कोलकाता से इस गीत को सुनना चाहा था। महावीर जैन रूपाली प्रीति निधि और परी और इनके परिवार के सभी सदस्यों की ये फरमाइश आई है जैन गली कसूना से और इस गीत को सुनना चाहते हैं। पुरानी सुनना चाहते थे पुरानी बस्ती ब्राह्मण पारा से चिंतामणि शुक्ला।

शंकर जय किशन की बनाई तर्ज पर इसे गाया लता मंगेशकर ने। आप सुन रहे थे झुक गया आसमान, फिल्म का गीत शैलेंद्र का लिखा। श्रीनगर से सहारनपुर से ये पत्र है श्रोताओं। उत्तर प्रदेश से सुरेश नारंग, आशु नारंग, प्रतीक और सोनाली ने ये पत्र भेजा है। और धमनी मनोरा से हमारे श्रोता हैं तुलसीराम, संदेश, किरण, मायावती, आदेश और प्रज्वल डेरे की फरमाइश है। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा ने पत्र लिखा है। वरोरा चंद्रपुर से हमारे श्रोता हैं लवकुश खाडिलकर, उमा देवी खाडिलकर, रोहित और प्रणीत खाडिलकर और चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश, शुभम और सावित्री की ये फरमाइश आई है धमतरी छत्तीसगढ़ से। और शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा, वाणी वर्मा ने इस गीत को सुनना चाहा था। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं श्रोताओं अपने ही पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत।

प्रेम धवन की रचना आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज में। फिल्म काबुलीवाला के इस गीत को सुनना चाहता बुलंदशहर से मोहम्मद सईद, निखत परवीन, शहनवाज फुद्दीन और आफान अब्बासी की फरमाइश थी। बर्गीनगर जबलपुर से रविंद्र, सुभाष, दिगंबर, राजेश और शुभांग की फरमाइश ये है। श्यामनगर दुर्ग से प्रदीप खांडेलवाल और नीता खांडेलवाल इस गीत को सुनना चाहते थे। सुलेमान भाई, खलील इकबाल और महबूब ये हमारे श्रोता हैं चल्लाला काठियावाड़ के, और इसी गीत को सुनना चाहा गुरप्रीत सिंह तंगोरी, जसवीर कौर ने, ये हमारे श्रोता हैं तंगोरी, अच्छा ये जगह का नाम है तंगोरी मोहाली पंजाब से हमारे ये श्रोता हैं गुरप्रीत सिंह और जसवीर कौर। और ये एक और इस गीत की फरमाइश है कटोल जिला नागपुर से सुरेश मलमकर और श्रीमती रजनी मलमकर की फरमाइश।

ये गीत आप सुन रहे थे सत्यम शिवम सुंदरम इस फिल्म से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, आनंद बख्शी के बोल थे, मुकेश की आवाज थी, संबलपुर कांकेर से फागुन राम और ज्योति यादव, ओजस्वी यादव और ईशिका यादव ने इस गीत को सुनना चाहा था। अलीवाड़ा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से देवीराम इनवाती और दामिनी इनवाती की फरमाइश आप सुन रहे थे। जमशेदपुर से चिन्मयी महतो, रेखा महतो ने इस गीत को सुनना चाहा और ये हमारे श्रोता हैं लोहारा बालोद के अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा तमूरिया, राधिका प्रभा देवी और ये हमारे श्रोता हैं हिच्छा महासमुंद से, अदालत दास मानसी, शांति ऋचा गायत्री

खानदान फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर का गाया, नक्श लालपुरी के बोल थे, खयाम का संगीत था, जगदलपुर बस्तर से पूनम नायडू, साजन के मास्टर शिवांशु, अभिषेक नायडू की फरमाइश आई, इस्लामपुर जिला बुलढाणा से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमित कुमार दामोदर ने इस गीत के लिए पत्र लिखा। लोहेड़ी महोबा के हमारे श्रोता हैं उत्तर प्रदेश से, जयपाल यादव, इंद्रपाल, अरविंद, राघवेंद्र, रिया, रेणु, देव्यांशी, रोनिका और रागिनी यादव ने इस गीत को सुनना चाहा। शीतला नगर दुर्ग के हमारे श्रोता हैं शिव चंद्राकर, भगवान और पार्वती, राधा चंद्राकर भी यहीं से, और इस गीत के लिए एक और पत्र भेजा अवधेश गुप्ता, भोलू नीलू, शालराज और वंशराज ने। ये हमारे श्रोता हैं गर्ल्स स्कूल रोड बनिहारी से।

चिराग फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी का गाया, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। रिधोरा से बाबूलाल बुराकड़े, गोकुला बुराकड़े, मंगेश की फरमाइश थी। अकोले महाराष्ट्र से श्याम संतानी, आशा नैन्सी, सुमित की फरमाइश थी। लचनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति और अनल साहू की फरमाइश ये थी। और हमारे डव्वाली हरियाणा के श्रोता हैं जेके बकोलिया, सुनीता बकोलिया, मीनू बकोलिया और जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, ज्योति शुभम और भावना, ये हमारे श्रोता हैं मोटक्का मूर्ति जिला खंडवा के। और इन्हीं गीतों के साथ संपन्न होता है आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम। भेजते रहिए अपने पत्र श्रोताओं, क्योंकि आपके पत्रों का रहता है हमें इंतजार। स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर बहुत सारे शुभकामनाओं के साथ लेते हैं इजाजत इस कार्यक्रम से। आप सभी को संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार।

आज की नाट्य तरंग कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं नाटक लगन। इसके लेखक हैं रोमी सिराज, निर्देशन किया है मुद्रा राक्षस ने। तो आइए सुनते हैं नाटक लगन।

0: भाई भाई शेखर, ये सर्दी तो लगता है फिर से पलट गई है। इतनी ठंड तो दिसंबर में भी नहीं थी।
1: कल रात से रुक रुक कर पानी बरस रहा है, बाहर निकलने की तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही है। मिस्टर निगम, आप एक कॉफी और लेना पसंद करेंगे?
0: क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं। लेकिन सुनिए, बस दूध की कंजूसी मत कीजिएगा। आई लाइक कॉफी विद लॉट ऑफ मिल्क, कॉफी और ले।
1: मतलब?
0: मतलब कॉफी विद मिल्क। आई सेड इट इन फ्रेंच।
1: ओह, फ्रेंच। अच्छा, एक बात बताइए, ये फ्रेंच पढ़ना छोड़ क्यों दिया आपने?
0: जब मेरी जगह उस थुलथुल बनर्जी को फ्रांस भेजा गया तो फ्रेंच पढ़ना तो छोड़ना ही था।
1: ये लीजिए गर्मा गर्म अपनी कॉफी और ले।
0: थैंक यू वेरी मच। भाई, लगता है कि मौसम इस बात से बहुत नाराज है कि आखिर हम इस ठंड को चुपचाप सहने की बजाय कॉफी के प्याले को हथियार बनाने पर क्यों तुले।
1: निगम साहब, प्रकृति ने जब चाहा बेरहमी से कुचला ही है हमें।
0: नो मिस्टर शेखर, हियर यू आर रॉन्ग। जितनी बेरहमी आदमी ने प्रकृति पर दिखाई है वो क्या कम है? जस्ट फॉर सम पक्स वी हैव वर्चुअली रेप्ड द एनवायरनमेंट। पहाड़ों पर पूरे के पूरे जंगल काट डाले, पूरे के पूरे जंगल। बरसात का पानी है कि रुकता ही नहीं। बाढ़ आने का एक बड़ा कारण है ये, और उधर जंगलों में पूरा का पूरा मैदान साफ कर दिया। तुम्हें याद है ना वो क्या नाम था उसका, वो सिन्हा के लड़के प्रदीप का केस?
1: हाँ, वो फॉरेस्ट ऑफिसर
0: जी, वो इस सब के खिलाफ था, रोकना चाहता था ये सब। मगर जब एक बार उसने अवैध लट्ठों से भरे हुए ट्रक को पकड़ा तो जानते हो क्या हुआ? न जाने लट्ठों को बांधने वाली रस्सी कैसे खुल गई और लट्ठे भारी आवाज के साथ उसे रौंदते हुए आगे तक फिसलते चले गए। It was not an accident, you know, he was killed.
1: Poor chap. निगम, ये जो डेजर्ट है ना अफ्रीका का सहारा, इसके बारे में भी कहते हैं कि यहां पर पहले मीठे पानी का सोता था, हरा भरा जंगल था।
0: ये सब बातें सुन करके तो ऐसा लगता है शेखर, मानो हम सब मेज कुर्सी पर नहीं, हड्डियों को छील कर बनाए गए ढांचे पर बैठे हो।
1: एक बात कहूं, प्रदीप की बीबी सोनाली के साथ बहुत बहुत बुरा व्यवहार किया सिन्हा ने।
0: अरे भाई, सास ससुर थे नवे, और प्रदीप का मरना तो मानो सोनाली की मर्जी से हुआ।
1: अब तो सोनाली ने शादी कर ली।
0: उसका हस्बैंड एक्सपोर्टर है, अच्छा काम है उसका दिल्ली में, और भाई वो भी बहुत खुश है। लेकिन एक बात बताऊं शेखर, वो प्रदीप को भूल नहीं पाई।
1: प्रदीप ऐसा था ही नहीं जिसे भूला जा सके। अरे, कौन है बाहर? कौन है बाहर? ए, कौन है बाहर? अरे, कौन है बरामदे गए? मैंने पूछा कौन है भाई, बोलता क्यों नहीं है?
2: अरे हाँ, मैं बाबूजी, बरसात से बचे के खातिर।
1: अरे हद होती है, बरसात से बचना है तो कहीं और जाओ भाई, और साथ में कौन है तुम्हारे?
2: चलो यहाँ से, चलो। हजूर, हमारे घर के ही बच्चे हैं।
1: अरे बाहर जाओ तुम लोग, चलो भागो यहाँ से।
2: हजूर, तेरी बरसात खत्म हो जाए।
1: मैं कहता हूँ अभी बाहर जाओ, इडियट्स, निकलो बाहर।
0: अरे अरे भाई शेखर, जरा बरसात तक।
1: नहीं यार, तुम समझते नहीं हो, बरामदे में तमाम तरह के गुलाब लगा रखे हैं मैंने, एक नहीं बचेगा, सब तोड़ ले जाएंगे ये लोग। अरे देखो तो, इनकी हिम्मत तो देखो, गेट खोलकर अंदर आ गए।
3: अरे भाई दरअसल ठंड इतनी ज्यादा है बाहर की।
1: करते हो निगम तुम भी, ठंड है तो कहीं और जाए।
0: अरे सुना नहीं तुम लोगों ने, कुत्ता है घर में, छोड़ो क्या?
2: जाते हैं बाबूजी, जाते हैं, चलो चलो कहीं और।
1: बताओ भला, गेट खोलकर अंदर घुस आए थे? कम से कम 8 तो बच्चे होंगे साथ में। वो क्या पता बच्चे चुराने वाला ही हो। लो अब इन चक्करों में आग ही बुझने लगी, 1-2 लकड़ियां और डालनी पड़ेंगी। निगम ये क्या बजाने लगे तुम?
3: क्यों, उस खांसने वाले आदमी की तरह ये भी तुम्हें नापसंद है क्या?
1: अरे नहीं नहीं, क्या बात करते हो, वाकई ये तो बड़ा खूबसूरत म्यूजिक है।
3: शेखर मैं जब मध्य प्रदेश में था तो वहाँ के आदिवासियों का लोक संगीत टेप किया था मैंने।
1: हाँ हाँ, वो एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट के
3: डॉक्टर मूले।
1: ओह यस।

0: भाई गाना बजाना इन आदिवासियों के जीवन का सबसे चटक और पक्का रंग है।
1: निगम, इन लोगों को देखकर हमेशा हमेशा मुझे ऐसा लगा मानो आज भी इस देश का एक टुकड़ा आदिम युग में जी रहा हो।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं शेखर, ऐसा नहीं है। हर जगह एक वर्ग जरूर अपनी सोच और मानसिकता की वजह से आदिम युग में ही है। अब सोनाली के सास ससुर सिन्हा को क्या कहोगे तुम? बोलो, विल यू कॉल देम मॉडर्न?
1: नो, कम से कम मैं तो नहीं कहूंगा।
0: अरे ये क्या हुआ?
1: लगता है इस तूफान की वजह से कोई पेड़ गिरा है।
0: हाँ, ऐसा तो नहीं कि कोई ट्रक या बस खड्ड में गिर गई हो?
1: वैसे आवाज तो बहुत भीषण थी, अब इतनी बारिश और तूफान में जाकर देखना भी असंभव। अब छोड़ो यार, सुबह पता चल जाएगा।
0: मामला तो कुछ सीरियस लगता है यार।
1: वो कोयला खदान में तो कुछ गड़बड़ नहीं हो गई?
0: नहीं नहीं, फॉर गॉड सेक, ऐसा नहीं हो तो अच्छा है। अरे भाई इंजीनियर मैं हूं, मुझे ही धरा जाएगा।
1: शोर तो बढ़ता ही जा रहा है।
0: वैसे खदान में अगर कुछ होता तो
2: साहब, साहब, साहब,
0: मर गए।
2: साहब, क्या बात है बहादुर? साहब,
0: हाँ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ बहादुर? क्या क्या हुआ, क्या बहादुर? अरे भाई बहादुर, इतने घबराए हुए क्यों? कुछ बोलो भी।
2: साहब, साहब, साहब, वो
0: क्या, क्या, क्या, क्या? वहाँ कहाँ?
2: साहब, साहब, साहब, साहब, वहाँ।
0: अरे भाई रो क्यों रहे हो, हुआ क्या? अरे कुछ बोलोगे भी?
2: साहब, साहब, वहाँ
0: कहाँ बहादुर?
2: अरे साहब, साहब, वहाँ कोयला खान में अंदर की दीवार से पानी आ गया साहब। मजदूर लोग वहाँ अंदर फंस गया है साहब।
0: कितने होंगे
2: साहब? बहुत साहब, मर गया होगा साहब।
0: अरे मरेंगे तो अब हम।
2: क्या बोले साहब?
0: नहीं नहीं कुछ नहीं। अच्छा सुनो, तुम चलो, मैं भी आता हूँ।
2: चलो जल्दी आओ साहब,
0: चलो वहाँ लोगों से कहो मैं भी फौरन ही पहुँच जाऊँ।
2: जल्दी आना साहब, जल्दी आना साहब।
0: गॉड, जो सोचा था वही हुआ।
1: मेरे ख्याल से बरसात की वजह से कोई खान ढह गई है।
0: नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है, हो सकता है अंडरग्राउंड वाटर किसी दीवार को फाड़कर खान में घुस आया हो। मेरे ख्याल से तो हम शायद ही बचा पाए किसी को। रेनकोट भी नहीं है यहाँ पर।
1: ये लो छाता, मैं भी साथ आऊं?
0: नहीं नहीं, रहने दो, मैं चलता हूँ। लेकिन इस आधी तूफान में बाहर निकलना, जिसका डर था वही। हजार बार मना किया था कि इस खान में काम बंद कर दो, बंद कर दो, पानी भरने का खतरा है। लेकिन जब तक कोई मरे नहीं, किसी के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। और अब सब मुझे ही नोच डालेंगे। खैर जाना तो पड़ेगा ही। अरे साहब आ गए। अरे मनोहर, अरे भाई मनोहर, कैसे हुआ ये सब?
3: अरे क्या बताएं साहब, खान नंबर 3 में पानी भर गया है, बगल की दीवार ढह गई, वहीं से जमा पानी अंदर आ गया साहब। अच्छा? हम तो पहले ही कहते थे साहब, दीवार से पानी रिश्ता दिख रहा है, खतरा है।
0: अच्छा ये बताओ कुल कितने लोग फंसे?
3: अरे साहब होंगे करीब 35।
0: 35?
3: आप कुछ कीजिए। हाँ साहब कुछ कीजिए, नहीं तो एक नहीं बचेगा अंदर।
0: अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। ये बताओ चीफ साहब को खबर की कि नहीं?
3: जी साहब, वो शंकर गया है।
4: अरे निगम साहब, कहाँ गए आपके सेफ्टी मेजर? खदान में पानी भर चुका है, कैसे निकालेंगे उन्हें बाहर?
0: देखिए देखिए देखिए, मैं
4: बार आपसे कह चुका हूँ कि इस खदान के बगल में पानी भरा है, यहाँ पर काम बंद करवाइए। सुना
0: देखिए, वो मेरी भी कुछ मजबूरी
4: है। हमारा एक भी आदमी मरा तो हम दिखाएंगे आपको कि मजदूर की ताकत क्या है।
0: अरे भाई देखिए देखिए, काम बंद करना है न करना चीफ साहब के ऊपर था।
4: अरे तो आप किस लिए हैं? चीफ कभी नजर आते हैं?
0: भाई देखिए देखिए, मेरी एक बात सुनिए।
4: देखिए क्या देखे, तो रहे 35 लोग फंसे पड़े, उनको निकालने का कोई साधन किया है आपने?
0: मैं पूरी कोशिश करता हूँ
4: मनोहर।
0: मनोहर जी साहब, भाई लिफ्ट का क्या हाल है? चालू हालत में है
1: है कि नहीं
3: साहब? लिफ्ट है तो चालू हालत में, मगर मुसीबत यह है कि मजदूर काफी अंदर फंसे हैं साहब, और आगे की सुरंग काफी नीची है, वहाँ पानी छत तक भर गया है।

0: ऐसे में साहब लीक तक उन लोगों को कैसे लाएंगे?
1: क्या पानी अभी भी अंदर आ रहा है?
0: जी इस तरफ का पानी तो खान में उतर चुका है, पर लगातार बरसात से अगर मिट्टी पोली पड़ गई तो बगल के ताल का पानी भी अंदर आने लगेगा। साहब तब किसी को भी बचा पाना बहुत मुश्किल होगा।
1: क्या करूँ? अच्छा सुनो, कितनी गहराई पर होंगे ये लोग?
0: होंगे यही करीब करीब 400-450 फीट पर। ये शंकर आ गया साहब।
2: नमस्ते साहब।
1: नमस्ते शंकर, वो तुमने चीफ साहब से बात की कि नहीं?
2: जी चीफ साहब ने कहा है कि आप उनसे बात कर लें।
1: मैं बात कर लूं?
2: जी।
1: अच्छा ठीक है, वो आने के लिए कुछ नहीं कहा उन्होंने? मतलब आ रहे हैं या नहीं?
2: जी नहीं, अभी तो घर ही पर है।
1: अच्छा मनोहर, तुम जाओ और 4 जनरेटर और पानी निकलवाने के लिए पंप और पाइप गोदाम से निकलवाओ जल्दी। और सुनो शंकर, तुम भी मनोहर के साथ जाओ। मैं चीफ साहब से फोन पर बात करता हूँ।
3: शायद ऊपर तक जानी चाहिए।
1: कमाल है, इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई और चीफ यहाँ तुरंत आने की बजाय कह रहे हैं बात करो। पता नहीं बात क्या करनी है।
4: लीजिए साहब, चीफ साहब से बात कीजिए।
5: हेलो हेलो सर, सर मैं निगम, मैं यहाँ पर सर खदान नंबर 3 में 3 से बोल रहा हूँ। सर खदान में पानी भर गया है, करीब 35 लोग अंदर फंस गए हैं।
6: कब हुआ ये
5: सर? करीब आधा घंटा पहले।
1: सर यहाँ पर लोग बुरी तरह से एजिटेटेड हैं, मुझे तो लगता है कि ऑफिशियल्स का घेराव करने वाले हैं।
6: अंदर फंसे सब जिंदा हैं या मर मर गए?
1: मर गए सर? मतलब
6: निगम मरने से बेकार का पकड़ा खड़ा होगा।
1: सर वो तो ठीक है, लेकिन लेकिन आप यहाँ सर तुरंत पहुँच जाइए प्लीज।
6: निगम डोंट टेल मी व्हाट टू डू, आई डोंट थिंक आई नीड एडवाइस फ्रॉम यू।
1: आई एम सॉरी सर, वेरी सॉरी सर, पर सर मेरा मतलब था इतनी बड़ी दुर्घटना सर अगर अगर आप होते सर तो।
6: निगम ये सब हुआ ही करता है, कोई नई बात नहीं है। उनको निकालने का कोई इंतजाम वगैरह करो। बस कोई मरे नहीं, यू गॉट दैट? आई वोंट बियर एनी कैजुअल्टी निगम।
1: बट सर सर सर, हेलो हेलो हेलो हेलो, नो, फोन भी रख दिया। आई वोंट बियर एनी कैजुअल्टी, नॉनसेंस, जैसे जैसे मरना जीना भी मेरे हाथ में है। ओह गॉड, इन लोगों के परिवार वाले भी पहुंच गए लगते हैं। अब तो लगता है पुलिस बुलवानी ही पड़ेगी।
7: सर चीफ साहब आ रहे हैं ना?
1: आने की सोच रहे हैं अभी। जनरेटर वगैरह मिला?
7: सर सर वहाँ गोदाम में ताला पड़ा है।
1: What?
7: जी चौकीदार के पास चाबी है, 2 लोगों को भेजा है चौकीदार को बुलाने।
1: ओ, अब ये चौकीदार कहाँ गायब हो गया इस समय?
7: अरे सर बरसात की वजह से शायद अपने क्वार्टर में हो, मनोहर भी गया है उसे लेने।
1: देखो देखो यहाँ तो भीड़ बहुत बढ़ने लगी है, अब तो मुझे लग रहा है कि इन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा।
7: सर सर मैंने मैंने पुलिस हेडक्वार्टर को फोन कर दिया है, पुलिस आती ही होगी।
1: पुलिस?
7: जी।
1: अच्छा ठीक है, अच्छा चलो हम लोग चलते हैं।
7: चलिए।
8: अरे भेजे,
9: अरे अरे बचा लो मेरे बच्चे को, कोई बचा लो रे, कोई निकालो उसे, मेरे बच्चे को कोई निकालो, मेरे बच्चे को कोई निकालो रे।
1: देखिए देखिए आप लोग बड़ा शांत रहिए भाई, आप लोग शांत रहिए, देखिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। हंगामा शुरू हो गया आखिर, और ये चौकीदार भी चाबी लेकर पता नहीं कहां मर गया है। आने दो, सस्पेंड कर दूंगा बदमाश को। अब तक तो काम शुरू भी हो गया होता, इधर ये बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है।
7: वो देखिए साहब मनोहर वगैरह आ गए।
1: अरे भाई मनोहर, वो क्या हुआ, चाबी अभी मिली?
0: अरे साहब वो चौकीदारी का पता नहीं चल पा रहा है, उसके दरवाजे पर भी ताला लगा हुआ है, शायद किसी रिश्तेदार के यहाँ रुक गया है साहब।
1: माय गॉड, लेकिन भाई जनरेटर वगैरह तो निकालना ही पड़ेगा ना। मनोहर तुम ऐसा करो, जा करके गोदाम का ताला तोड़ दो।
0: ताला तोड़ दे?
1: हाँ हाँ भाई तोड़ दो उसे।
0: अरे मगर साहब गोदाम के बाकी माल की गारंटी? साहब अगर आप साथ चले तो ठीक रहेगा। देखिए साहब हम तो मामूली कर्मचारी हैं साहब, आप
1: भाई अब मैं यहाँ देखूँ या वहाँ चलूँ?
0: साहब चले चलिए।
1: अच्छा ठीक है, और चलो चलता हूँ मैं।

0: इन लोगों को तो शोर शराबे के अलावा और कोई काम ही नहीं है।
1: सुनो
0: जी,
1: हथौड़ा वगैरह तो है ना पास में?
2: हाँ साहब है।
0: साहब, ये जो आदमी आपसे बहस कर रहा था ना, लक्ष्मण है, एक नंबर का बदमाश है। दो तीन बार तो साहब इसे कोयला चुराते मैंने खुद पकड़ा।
1: हाँ साहब। अच्छा, तो मुझे बताया क्यों नहीं?
0: अरे क्या बताएं साहब, रोने गिड़गिड़ाने लगता है, और फिर इसके साथ साथ बच्चे, और इसकी जोरू बहुत भली है साहब।
1: क्या, सात बच्चे?
0: जी सात बच्चे। वो जो जूट मिल है ना साहब, भवानीपुर वाली, वहीं पहले वॉचमैन था, वहीं से निकाला गया है। चुराया होगा कुछ वहां भी। लो शंकर, चलो ऊपर से हथौड़ा निकालो तो भाई।
2: अच्छा
0: आइए साहब। अरे ये तो काफी मोटा ताला है। कमबख्त ये पाजी चपरासी, इसी वक्त गायब होना था इसे। शंकर यार लगाओ तो चोट पे। तो
2: हाँ।
0: लीजिए साहब, टूट गया।
1: अच्छा चलो जल्दी से फाटक तो खोलो।
0: हाँ सर।
3: अरे यहां तो बत्ती भी नहीं आ रही, यहां तो कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा।
0: हाँ कुछ।
3: अरे मनोहर, हाँ टॉर्च है तुम्हारे पास?
0: टॉर्च मेरे पास तो नहीं है, देखें शायद इस अलमारी में।
3: हाँ ढूंढो। मिल गई, मिल गई, टॉर्च मिल गई।
0: अच्छा साहब, टॉर्च मिल गई।
1: देखो वो रहा जनरेटर। शंकर तुम पाइप उठाओ।
2: जी अच्छा।
1: अगर दो चार लोग और होते तो सहूलियत रहती। शंकर
2: जी,
1: अभी देखो अगर दो तीन लोग और अगर मिल जाए तो जरा सा बुलाओ तो उन्हें।
2: जी अच्छा, जी अच्छा।
3: अरे ओ बाबू हर्षों,
4: आ जाओ।
1: अरे भैया जरा जनरेटर और मोटर बाहर निकलवाने में हमारी मदद तो कर दो।
2: आप रहने दें, हम निकाल लेंगे।
1: नहीं नहीं कोई बात नहीं। बाबू बाबू तुम पाइप ले चलो। लगाओ तो ये तो घूमता ही नहीं है। शंकर अरे भाई देखो ये पहिए के नीचे पत्थर तो हटाओ। मैं भी कहूँ कि जनरेटर आगे खिसक क्यों नहीं रहा। हाँ लगाओ जोर, चलो शाबाश। अरे अब ये नारे क्यों लगने लगे साहब? लगता है चीफ साहब आ गए। अरे साहब लोग तो बेकाबू होते जा रहे हैं। अगर कोई मर गया तब तो लोग मरने माने पुतारू हो जाएंगे। अरे मनोहर जल्दी जल्दी पाई बिछाओ। चीफ तो आए नहीं लगते। हाँ सर वो तो नहीं आए। तो क्या सर चीफ साहब के आने तक इंतजार करें?
2: नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं है। मनोहर तुम मिलकर पाइप नीचे उतारो।
0: जी अच्छा।
1: शंकर चलो जल्दी खींचो पाइप।
2: जी समझे
1: मनोहर, जल्दी करो पाइप नीचे लटकाओ। और सुनो कम से कम चार पाइप का इंतजाम और करना होगा।
0: ठीक है सर, मैं और बाबू जाकर इसका इंतजाम करते हैं।
1: शंकर शंकर पाइप नीचे लटकाना शुरू करो।
0: जी ये लीजिए सर,
1: कहीं पाइप छोटा ना पड़ जाए। सुनो कितने कितने फीट नीचे होगा पानी?
2: अरे साहब करीब 400 फुट तो होगा ही।
1: 400 फुट?
2: पाइप 600 फुट लंबा है।
1: अच्छा
2: छोटा नहीं पड़े साहब। अरे बाबू जल्दी जल्दी हाथ चलाओ।
5: अरे निगम साहब जब लोगों की जान चली जाएगी
1: तो अरे भाई अब क्यों शोर कर रहे हैं आप लोग? देखिए पानी निकलते ही लिफ्ट चालू कर दी जाएगी।
2: शाबाश
1: शाबाश मनो, और तेजी से नीचे पहुंचाओ।
0: जी साहब, जी साहब। सर लगता है पाइप पहुंच गया नीचे तक।
1: वेरी गुड वेरी गुड। चलो और थोड़ी सी मेहनत और करो।
2: अरे अरे अरे अरे भाई अरे अरे अरे ये पत्थर कौन देख रहा? अरे कौन? अरे अरे भाई पत्थर क्यों चला रहे आप लोग? अरे पागल हो गए क्या?
1: अरे देखिए बस आधे घंटे की बात है, पानी निकलते ही लिफ्ट चालू कर दी जाएगी।
2: अरे पागल हो गए क्या?
1: जाने कौन भड़का रहा है ने? मुझे लगता है लोग बढ़ते जाएंगे। आइए इधर आइए।
2: वो तो ठीक है लेकिन अगर कहीं पुलिस ने हल्का सा भी लाठी चार्ज कर दिया तो ये लोग तो और भड़क जाएंगे। सुनो तुम लोग पानी निकालते रहो, मैं जाकर के समझाता हूँ।
1: नहीं साहब, नहीं साहब, अरे हम जाइए साहब।

0: अरे कितना मना किया था साहब को,
1: भीड़ तो जैसे बेकाबू हो गई थी।
0: डॉक्टर कह रहा था खून बहुत निकल गया है।
1: उनके बेहोश होकर गिरने के बाद भी लोग उन्हें पांव से ठोकर मारते रहे। बच जाएं बस, और क्या चाहिए।
0: हम उन्हें चाहकर भी भीड़ से नहीं निकाल पाए।
2: डॉक्टर क्या कह रहा था?
1: सीरियस बता रहा था, सिर पर गहरी चोट है। अरे डॉक्टर साहब कमरे से बाहर आ रहे हैं।
3: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
4: ये मनोहर और शंकर कौन है?
0: हम हैं डॉक्टर साहब।
4: आप मनोहर हैं?
0: जी हाँ डॉक्टर साहब, और ये है शंकर
4: जी। देखिए उन्हें होश आ रहा है, वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं।
0: अच्छा, होश आ गया?
4: मगर ध्यान रहे
0: जी,
4: ज्यादा बात मत कीजिएगा
0: जी। जी जी जी,
4: आइए।
0: चलिए जी, आइए आइए।
4: निगम, मिस्टर निगम, देखिए आपसे मिलने कौन आया है।
0: साहब, साहब, नमस्ते साहब।
3: नमस्ते साहब।
0: तबीयत कैसी है साहब?
3: मैं शंकर साहब। शंकर? हाँ साहब।
5: शंकर?
3: हाँ साहब।
5: शंकर
3: जी।
5: मनोहर?
3: हाँ साहब।
5: कौन?
3: यहाँ पर सब ठीक हो गया साहब।
0: हाँ साहब, सब ठीक हो गया।
3: पानी निकाल दिया गया साहब। सब आपकी तारीफ कर रहे हैं साहब। वो जिन्होंने आप पर हाथ उठाया था ना साहब, वो भी शर्मिंदा है
0: जी। बहुत शर्मिंदा है साहब।
3: नहीं साहब, कोई नहीं मरा, सभी को बचा लिया गया।
2: हाँ निगम, निगम, ये क्या हो गया है तुम्हें?
1: हाँ निगम, निगम, तुमने तो हद कर दी, उन लोगों के लिए अपनी जान।
5: शेखर, तुम समझते नहीं हो। शेखर, शेखर, शेखर, तुम समझते नहीं हो। शेखर, बरामदे में तरह तरह के गुलाब लगा रखे मैंने, एक एक नहीं बचेगा, सब तोड़ ले जाएंगे ना, सब तोड़ ले जाएंगे।
2: निगम, I am sorry यार, मैंने तो यूं ही कह दिया था। Really, I'm very sorry।
5: ठंड है तो कहीं और जाए ना
2: निगम,
5: कहीं
4: अब आप लोग इन्हें आराम करने दें, इनकी हालत अच्छी नहीं। ओह गॉड, नर्स भैया इंजेक्शन।
3: डॉक्टर साहब कुछ कीजिए। मेरे साहब को बचा लीजिए।

अभी आप सुन रहे थे नाटक लगन। इसके लेखक थे रोमी सिराज, निर्देशन किया मुद्रा राक्षस ने। आकाशवाणी लखनऊ केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। देश आज हर्ष और उल्लास के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण किया और राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने पिछले एक दशक के दौरान देश की उपलब्धियों और विकसित भारत निर्माण की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी दी। उन्होंने विकसित भारत के लिए सप्तधारा का रोडमैप भी प्रस्तुत किया। झारखंड में भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर हर ओर उमंग और उत्साह दिख रहा है। राज्य में मुख्य राजकीय समारोह रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आयोजित हुआ, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मिलीजुली टुकड़ियों का निरीक्षण करने के बाद ध्वजारोहण किया। परेड में पहली बार ओडिशा की टुकड़ी भी शामिल हुई। मुख्यमंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए राज्य में जारी विकास गतिविधियों की चर्चा की। उन्होंने विकसित झारखंड के निर्माण के सामूहिक भागीदारी पर जोर दिया। उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मिलीजुली टुकड़ियों का निरीक्षण करने के उपरांत ध्वजारोहण किया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री गंगवार ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए विकास को नया आयाम देने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है। राज्य के विभिन्न जिलों में प्रभारी मंत्रियों ने ध्वजारोहण किया। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने विधानसभा परिसर में राष्ट्रध्वज फहराया। उधर प्रमंडलीय मुख्यालयों में प्रमंडलीय आयुक्तों और जिला मुख्यालयों में उपायुक्तों ने ध्वजारोहण किया। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान सम विश्वविद्यालय में हर्ष और उल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। संस्थान के कुलपति अरुण कुमार झा ने रांची के हटिया स्थित कैंपस में ध्वजारोहण किया। रांची में छात्रों के आंदोलन का आज 22वां दिन है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में धरनास्थल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम देश प्रेम का संदेश देता दिख रहा है। राज्य सरकार तक संदेश पहुंचाने के लिए छात्रों और अभ्यर्थियों ने आज तिरंगा यात्रा निकाली। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: खुद नहीं उतरी, दूसरों से उतरवाया। तो हमारे बीच में शबीना जी आप हैं, और आप एक बहुत बढ़िया डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, और उसके साथ एक बेहतरीन कोरियोग्राफर हैं। तो इस सब में आपने बहुत सारी फिल्में की हैं, बहुत सारी एक्ट्रेस के लिए काम किया है, इवन एक्ट्रेस को भी डांस करवाया है, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम हमने पढ़ा था, नाम था अमिताभ बच्चन।
3: बिल्कुल।
2: और उनके साथ कुछ तो बहुत अच्छे डांसर्स हैं जो अच्छा करते हैं, उनके नाम हमने पढ़े थे, पर उन नामों में कुछ नाम ऐसे भी थे जिन्हें डांस करते हुए शायद हम देखते भी हैं तो उतना समझ में भी नहीं आता है। उनसे भी आपने डांस करवाया, सनी देओल हैं, संजय दत्त हैं, या और भी बहुत सारे, अनुपम खेर को भी आपने डांस करवाया है। ये बहुत सारे नाम है। इमरान हाशमी को आपने डांस करवाया है,
3: बोमन ईरानी
2: को,
3: डैनी डांस
2: जी डैनी को कैसे, मतलब वो तो बड़े,
3: हमारी फिल्म थी ऊंचाई सूरज बड़जात्या जी की,
2: बहुत प्यारी फिल्म,
3: बहुत प्यारी फिल्म है। नेशनल अवार्ड मिला है उनको एज ए डायरेक्टर उस फिल्म पे। एज ए कोरियोग्राफर मेरा नाम भी गया था, जो मुझे नहीं मिला, बट कोई बात नहीं, मुझे रिवॉर्ड मिल गया।
2: नहीं, वो फिल्म ही इतनी खूबसूरत,
3: बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई थी। जो सोच थी उस फिल्म के पीछे,
2: वो सूरज जी उस उम्र के लोगों को एक प्रेरणा स्रोत है।
3: बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें ये था

0: वाल के इनका एक गाना है, ये इतनी उम्र में पहुंच चुके हैं और उस उम्र में ये गाना अपने दोस्त को बर्थडे सेलिब्रेशन में ये गाना कर रहे हैं, जिसका नाम है केटिको केटिको सॉन्ग। केटिको का मतलब होता है लड़की।
1: अच्छा
0: हाँ, नेपाली
1: शब्द
0: लड़की
1: जी, जी।
0: तो फिर वो गाना किया और पता चला कि ओ डैनी सर को करना है, डैनी सर को डांस करवाना है, अनुपम जी को डांस
1: जी, भाई।
0: अच्छा, अब इनका सबका जो लेन देन था अमिताभ बच्चन के साथ था।
1: हाँ।
0: जो इतने ग्रेसफुल डांसर
1: हाँ।
0: साबित कर चुके अपने आप को।
1: हाँ।
0: बोमन ईरानी, अनुपम खेर, डैनी जी, तीनों कह रहे हम कैसे करेंगे
1: जी।
0: फिर उनको रिहर्सल करवाया। मैं एक चीज और करती हूँ, एक अपने असिस्टेंट्स को वो कैरेक्टर बना देती हूँ, उनको कहती हूँ आपको उनकी तरह जीना है।
1: अच्छा,
0: रिहर्सल हॉल में हम ये प्रैक्टिस करते हैं।
1: हाँ।
0: मेरा एक असिस्टेंट अमिताभ बच्चन बन गया, एक डैनी बन गया, एक अनुपम खेर बन गया।
1: हाँ, इम्प्रोवाइजेशन चलता रहता है।
0: इम्प्रोवाइजेशन, अब आप अपने कैरेक्टर के साथ जब हम एक्टर को करके दिखाएंगे, उनको अपना आप दिखना चाहिए उनके अंदर। फिर ये कहानी शुरू हुई और फिर हमने ये गाना किया और बहुत लोगों ने सराहा और शूटिंग के दौरान भी बहुत मजा आया इन हाँ। दिग्गज कलाकारों को।
1: हम वो मजा जो है ना वो सुनना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले हम चाहते हैं एक गीत हमारे श्रोताओं के लिए आपकी पसंद का दे दें, और तो इस गीत के बाद हम बताएंगे कि मजा क्या आया।
0: तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी तरफ से एक मेरा फेमस गाना जो मुझे बहुत पसंद
1: हाँ।
0: है, अमिताभ बच्चन, डैनी डेंजोंगपा, बोमन ईरानी साहब के साथ
1: हाँ।
0: अनुपम खेर जी, केटी को।
1: केटी को तो ये गाना हम सुनते हैं, लेकिन इसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि मजा क्या आया। हमें भी उस मजे को, उस मजे वाली जिंदगी को जीना है।
0: बिल्कुल बताऊंगी, हर एक कैरेक्टर के साथ आपको थोड़ा एक उस सफर पे ले जाऊंगी।
1: जी जी, चलिए तो सुनते हैं ये प्यारा गाना केटी को, और केटी को का मतलब होता है लड़की।
0: बिल्कुल, पहाड़ी लड़की।
1: बहुत बढ़िया, चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: गाना तो सुन लिया, बहुत मजा आया, लेकिन इस गाने की जो बात आप हमारे यहाँ कहते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए, तो उस वचन को पूरा कीजिए और बताइए कि मजा क्या आया था।
1: तो सबसे पहले अमिताभ बच्चन जी से शुरू करते हैं। अमित जी के साथ मैंने एज एन असिस्टेंट काम किया हुआ है।
0: हाँ।
1: मुझे गुड्डी बुलाते थे सेट पर।
0: अच्छा।
1: उन्हें लगता था मैं जय बहादुरी जैसी थोड़ी लगती हूँ, तो बोलते हैं गुड्डी इधर आओ। मेजर साहब फिल्म का एक गाना था
0: जी,
1: जो हम मैंने असिस्टेंट में किया था या नहीं, तो जब वो इस सेट पे आए
0: जी,
1: तो उन्होंने कहा हम तो काम कर चुके हैं साथ में, तुम बहुत छोटी सी होती थी, बड़ी हो गई,
0: गुड्डी बड़ी हो गई।
1: तो मैंने कहा याद दिलाया कि सर मैंने इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफी शुरू की, तो आपके साथ भी एक गाना किया है, वो रामगोपाल वर्मा का एक गाना था कम्मो कम्मो।
0: हाँ, एक गाना सुना हुआ है जी,
1: अमिताभ बच्चन और संजय दत्त वगैरह। तो अरे अरे हाँ, तुम्हारे साथ तो काम किया है, बताओ बताओ क्या करना है। मास्टर जी, अब वो मुझे मास्टर जी बुलाने लगे
0: गुड्डी से मास्टर जी।
1: वो अपनी दो कुर्सी लेकर बैठ जाते थे पैर पे पैर चढ़ाकर, और अमिताभ बच्चन जब आपके सामने बैठा हो और आपने उनको करके दिखाना है, आप दिखाओगे मास्टर जी? ऐसा जी सर मैं करके दिखाऊंगी। तो मैं क्या लड़कों का डांस भी कर लेती हूँ, लड़कियों का भी कर लेती हूँ, जब मैं लड़कों का करती हूँ तो उसी अंदाज में करती हूँ,
0: पूरा लड़का बन जाती हूँ।
1: मैं उनको कर दिखाई और वो खड़े हो गया, बोले इस साला, अपने कमर पे हाथ रख दिया और मुझसे कहे हम। तो मैंने कहा मुझे लगा कुछ गलती हो गई, मैं भागती भी गई, सर क्या हुआ, कुछ स्टेप चेंज करना है, कुछ भी आप बताइए जो करना है। मैं नहीं नहीं, फिर वो चलकर आए मेरे साथ सेंटर ऑफ द स्टेज और कहने लगे सर प्लीज बताइए क्या किया मैंने, कुछ तुमने इतना बढ़िया किया, मैं कैसे कर सकता हूँ इसको, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। सोचिए उन्होंने मेरे कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट किया। ये है लेजेंड अमिताभ बच्चन,
0: ये बड़प्पन है,
1: आप सिखाओ मुझे। और फिर उन्होंने मुझसे सीखा। अब बोले डैनी और अनुपम तुम सब आ जाओ, देखा तुमने, हाँ सर हम तो रिहर्सल कर रहे 3 दिन से। तो ही सेड हाँ मैंने भी कल रात घर पे रिहर्सल किया था, उन्होंने एक दिन रिहर्सल किया था घर पे, सोचो इस उम्र में उन्होंने घर बुला के हमें रिहर्सल किया
0: जी।
1: और सेट पे आके वो एकदम ऐसे हो गए और मेरा एनर्जी बूस्ट कर दी उन्होंने, कि जब अमिताभ बच्चन आपको ये कहता है, क्योंकि वो उनका तरीका है अपने मास्टर्स को डील करने का, उसी दिन
0: वो परंपरा है।
1: हाँ,
0: गुरु को गुरु बनाने हाँ, की।
1: और वो मुझे मास्टर जी कहते थे, तो सेट पे सब ऐसे परेशान, क्योंकि मास्टर जी आजकल कोई नहीं कहता कोरियोग्राफर्स को, बहुत कम लोग कहते हैं जो जानते हैं कि मास्टर क्यों कहते हैं मास्टर को। फिर उन्होंने एक अपना व्लॉग लिखते हैं वो, उन्होंने अपने व्लॉग में मेरे बारे में लिखा।
0: अच्छा।
1: और उस वक्त लिखा कि एक नन्ही सी बच्ची थी जो मुझे सिखाती थी और आज वो मेरी मास्टर बन गई और आज वो एक फीमेल जो पूरे सेट को चला रही है, 1000 लोगों के सेट को, और वो मुझे भी ऑर्डर दे रही है। मुझे बहुत पसंद आता है जब ऐसे हमारी हमारी बेटियां यहाँ तक पहुंच जाती है।
0: क्या बात।
1: तब वो मेरे एक असिस्टेंट ने कहा कि सर ने लिखा, और मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हो गई, मैं बहुत रो पड़ी, क्योंकि यही अचीवमेंट होती
0: है। वो चीज आपकी आंखों में अभी भी दिख रही है
1: कि मैं बहुत खुश हो गई। ये थे अमिताभ बच्चन और फिर आते अनुपम खेर जी।
0: हाँ, उनका तो जानना है,
1: उनका जो कॉमिक टाइमिंग है उसको कोई बीट नहीं कर सकता। वो इतने कमाल के एक्टर है और उसके वो रुला भी देते है, वो हंसा भी देते है कि
0: पल में
1: वो है। अब उनके लिए जो असिस्टेंट करके दिखा रहा था वो उस दिन आया नहीं, और मेरी एक लड़की असिस्टेंट थी एकता, और मैं अपनी लड़कियों को तैयार करती हूँ कि तुम्हें ये करना है, जब मैं कर सकती हूँ तो तुम भी करोगी, और उसने वो कर लिया।
0: हाँ।
1: वो आई सेट पे, मैं अमित जी का करूँ तो उनका कर, और उस लड़की ने जब अनुपम खेर बनके दिखाया पूरा सेट, ताली बजाया, अनुपम जी सिटी बजाने लगे।
0: हाँ।
1: बहुत खुश हुआ, बोले बस कमाल, अब मैंने ये करना है।
0: हाँ।
1: और वो उछल उछल के सेट पे अपने स्टेप करते थे और पूरा सेट, उस गाने में ऐसा होता था कि एक भी जूनियर और एक भी डांसर, जैसे शॉट खत्म होता है ना तो हम लोग बाहर निकल जाते हैं, डांसर निकल जाते हैं, हाँ सेट में आ जाएंगे, जूनियर निकल, जूनियर्स बाहर ही नहीं जाते थे,
0: सब वहीं रहते
1: वहीं रहते थे मतलब कि 500 लोग वहीं खड़े हैं, 100-150 डांसर वहीं खड़े हैं, और एक्टरों की रिहर्सल चल रही है, और हर बात पे वो हंस भी रहे, वो ताली भी बजा रहे, और बूढ़े डांसर्स थे हमारे पास, हमारे पास 60-70 के डांसर्स भी थे, और वो आगे आते थे और इनके साथ नाचने लग जाते थे तो एक अलग माहौल था उस सेट
0: जी,
1: पे।
0: जी, जी।
1: और उसके बाद डैनी सर,
0: हाँ उनका भी जाना है, वो तो बड़े अलग टाइप का किरदार है।
1: वो सीधा बोल देते थे आके कि देखो बेटा मैं भूल जाऊंगा, मुझे नहीं पता तुमने करना है मेरे साथ।
0: हाँ।
1: तो कैमरा के पास हम लोग उनके लिए डांस करते रहते थे
0: और वो कॉपी करते थे।
1: बोमन ईरानी भी, इतने बड़े कलाकार है, उनका भी एक अलग कॉमिक टाइमिंग चल रहा होता था, और वो बोलते थे, उनका एक पोर्शन था जिसमें उन्हें लड़की बनना था, तो मैं जो बोलते थे तुम करके दिखाओ मुझे, मैं तुम्हें कॉपी करूंगा और फिर उनको केटी को ये दोनों इनको बोलते हैं और ये लड़की की तरह अदायगी दिखाते हैं और फिर मैं उनको करके दिखाती। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस हम लेते हैं ना ऐसे लोगों के साथ, ऐसे कलाकारों के साथ काम करके, वो शायद मैं इतना बोलूं तो आप इमेजिन नहीं कर पाओ जो हमने जिया है।
0: फिर भी हम कुछ प्रतिशत तक तो पहुंच गए
1: और फिर हमारे एक प्यारे से शर्मीले से डायरेक्टर साहब जो सूरज बजातिया जी है,
0: बड़ी सॉफ्टली बोलने वाले,
1: बहुत ही सॉफ्ट, और वो जब आते इन सबको देखते करते हुए और वो मुझे ऐसे गले लगाते, बहुत असर पे हाथ रखते हर बार, बहुत अच्छा किया शबीना। तो ये कहानियां हैं जिनको हम जीते हैं, जिनके साथ हम सीखते हैं कि इस उम्र में भी उनकी जो एनर्जी थी, जो सीखने की, बच्चों की तरह वो उछलते थे रिहर्सल पे, अरे एक बार एक बार एक बार एक बार, अरे मैं गलत कर दिया, अरे मैंने, वो भूल जाते थे कि उनकी उम्र क्या है
0: जी।
1: मैं कहती थी सर आराम से, नहीं नहीं करना है, वो जो बचपन है बहुत मजा
0: जी।
1: हमने उनसे सीखा कि कलाकार की कोई उम्र नहीं होती,
0: कलाकार कभी बूढ़ा नहीं होता,
1: बूढ़ा नहीं होता कभी, वो हमेशा एक छोटा बच्चा ही होता है। तो आप गाना देखिए, आपको पता चले उसमें।
0: हाँ, उस गीत को देखने के बाद मजा हमको भी आया था, हम सब भी उसके साथ थोड़ा डांस किए थे कि जब ये डांस कर सकते हैं तो हम तो कर ही नहीं सकते। मैंने आपसे बात कर ली एक्ट्रेसेस के बारे में, यानी अभिनेत्रियों के बारे में, आपने हमारे पुराने जो दिग्गज हैं उन अभिनेताओं के बारे में भी बता दिया। एक अभिनेता है जिनकी हर फिल्म में शबीना का नाम लिखा ही हुआ है, साथ में शुरुआत कहाँ से हुई उनके साथ, और उसके बाद फिर शायद कोई फिल्म बीच में ऐसी थी ही नहीं जिसमें आप नहीं थी। तो आप समझ गई हैं मैं किस विषय पे बात कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ वो विषय आप खुद ही शुरू करें और हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: सबसे पहले मैं ये बताऊं, आप बात कर रही हैं मेरे, जिसे मैं जिंदगी में, मैं कुछ लोगों को अपना मेंटोर गुरु मानती हूं
0: जी,
1: और मेरी जिंदगी की हर एक सफलता का जरिया मानती हूं। उनमें अगर सूरज बजातिया है तो उसमें एक बड़ा नाम है सलमान खान ऑल्सो
0: जी,
1: जिन्हें मैं भाई बुलाती हूं
0: जी,
1: बहुत मोहब्बत से, और बहुत जब हाथ उठाती हूं उनके लिए दुआ करती हूं
0: जी,
1: क्योंकि आज भी जो आप उनका रूप बाहर देखते हैं
0: जी,
1: वो 5% भी नहीं है जो वो दुनिया के लिए करते हैं
0: जी,
1: 5% भी नहीं है। तो सलमान भाई का और मेरा काम जो शुरू हुआ, मेरी पहली फिल्म एज एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी खामोशी, गणेश हेगड़े के साथ,
0: खामोशी द म्यूजिकल जर्नी।
1: यस, जो मैंने पहले कहा आपसे कि स्टेज के बाद जब मैं कोरियोग्राफी में आई, जो मुझे गणेश आचार्य जी ने डांस करते हुए देखा, हमारा एक हॉल होता था मंगला हॉल, वहां पे जो डांस करते हुए देखा, वो गणेश हेगड़े साहब के ही गाने का डांस कर रही थी मैं।
0: अच्छा।
1: गणेश हेगड़े की जो पोनी वर्मा, जो बहुत बड़ी कोरियोग्राफर है, वो उनके असिस्टेंट होती थी उस वक्त, वो मेरी सीनियर है और उन्होंने मुझे बहुत सिखाया है। उनके एग्जाम्स होते थे तो गणेश हेगड़े साहब को ये फिल्म मिली थी खामोशी, जिसमें वो कोरियोग्राफी कर रहे थे, उनकी पहली फिल्म थी, मतलब स्टेज करते थे वो, और संजय लीला बंसाली थे और ये एक लड़की असिस्टेंट ढूंढ रहे थे। तो उस फिल्म में पोनी वर्मा जी ने भी एज एन असिस्टेंट किया और फिर मुझे भी मौका मिला
0: जी,
1: एक स्केड्यूल करने का
0: जी,
1: और मेरे पहले हीरो थे सलमान खान।
0: ओके।
1: जबकि मुझे पता भी नहीं था कि ये सलमान खान है, क्योंकि उस वक्त घर में टीवी नहीं होता था, हम फिल्में नहीं देख रहे होते थे, हमें इतना पता नहीं था।
0: हाँ।
1: स्कूल में थे हम,
0: आप उस चीज को उतना समझते भी नहीं थे,
1: एक्टिंग इंस्टीट्यूट में थे, सीख रहे थे
0: जी।
1: और फिर उस फिल्म को करने का मौका मिला तो मुझे लगा कि ठीक है, पर डे इतना पैसा मिलेगा, हम गोवा चले गए,
0: हम पैसे के लिए गए थे,
1: चलो वही मास्टर है जिन्होंने स्टेज पे मेरे साथ किया है, कंफर्टेबल है, हम मास्टर जी समझते हैं, गणेश हेगड़े साहब,
0: कोई दिक्कत नहीं,
1: कोई
0: है,
1: दिक्कत नहीं है। मम्मी ने कहा बेटा चलो करते हैं, देख लो क्या है। तो हमने गाने उनके साथ में किए और मेरा पहला हीरो सलमान खान, और उसमें नाना पाटेकर जी भी थे और मनीषा कोराला थी,
0: बहुत प्यारी फिल्म है, बहुत प्यारी फिल्म।
1: वो फिल्म के बाद मैं 6 महीना एग्जाम्स के लिए वापस आ गई, मेरे एग्जाम्स हुए और उसके बाद स्टेज करने लगी और फिर गणेश आचार्य जी के साथ फुल फ्लेज में फिल्म में शूट किया।
0: तो वो खामोशी में जब सलमान खान को पहली बार आपने डायरेक्ट किया, तो व्हाट यू रियलाइज कि वो बहुत अच्छे डांसर हैं या बहुत अच्छे एक्टर हैं?
1: ही वॉज अ वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी ऑन सेट फॉर मी।
0: हाँ, भारत की बहुत सारी लड़कियां 90 के दशक में सलमान खान का पोस्टर अपने कमरे में लगाती थी,
1: जो मुझे, मतलब छोटी है लड़की, तो मुझे बड़े प्यार से बिहेव करते थे, क्या जो बता दो क्या करना है
0: जी।
1: वो भी बड़े यंग ही थे बट वो बड़े ही सूदिंग पर्सनैलिटी थी मेरे लिए उस वक्त, कुछ भी, सब कुछ नया था।
0: हाँ।
1: कैमरा पहली बार देखा, अच्छा ऐसे शॉट होता है, अच्छा ये कभी नहीं देखा,
0: वही सीख रहे थे, वही कर रहे थे।
1: तो वो जब देख रही थी मेरे लिए था कि ये तो बड़ा अच्छा हीरो है, बड़े प्यार से बात करता है, मनीषा करोला बड़ी अच्छी है, इसको बताना है। संजय लीला बंसाली से डर जाती थी मैं सेट पे कई बार।
0: हाँ।
1: नाना पाटेकर जी से डर जाती थी, बट काम करने आए थे, बस इतनी समझ तो थी नहीं
0: जी।
1: सलमान खान इसलिए याद है कि ही बिहेव रियली वेल विद मी।
0: हाँ, वो शायद उम्र का भी ऐसा था कि वो आपसे उम्र में भी बहुत ज्यादा बड़े नहीं थे।
1: हाँ, और वो समझते थे कि वो समझ रहे थे कि अच्छे बच्ची नहीं है, अभी आई है। और उस वक्त वो तो बड़े स्टार हो चुके थे
0: जी,
1: उनकी बड़ी बड़ी फिल्में आ रही थी। उसके बाद में वापस आ गई, उसके बाद में सलमान भाई का। अब उसके बाद जब मैं कोरियोग्राफर बनी तो काफी वक्त तक मेरी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि मैं जब कोरियोग्राफर बनी, एक नियम होता है कि आप जाके सबसे मिलते हो जिनके साथ आपने काम किया है, कि गोविंदा से मिली मैं, सलमान से मिली, क्योंकि मैं उनके असिस्टेंट डेज में कर चुकी
0: तो मतलब बताने
1: खामोशी
0: तो जाना
1: के
0: पड़ेगा।
1: बाद मैं गणेश आचार्य जी के असिस्टेंट बनी तो सारे गाने सलमान खान के किए मैंने, जुड़वा से लेके जितनी भी उनकी फिल्में थी, रानी मुखर्जी के साथ बोलो, गोविंदा के साथ काम किया। तो सलमान भाई के साथ एक असिस्टेंट डेज में फिर रेपो बन गया, कि वो जब डांस करते थे कैमरा के नीचे मुझे बोलते थे चल तू कर, तो उन्हीं को सिखा रही होती थी, क्योंकि मैं गणेश मास्टर जी मेल है, उनके असिस्टेंट थी, उनको कॉपी करती थी, तो सबको लगता था मास्टर जी के बाद शबीना है जो अच्छा करती है उनका स्टाइल। तो तू सिखा, सनी देओल बोल रहे तू सिखा, संजू बाबा बोल रहे तू सिखा,

0: करेगी। फिर सलमान भाई से मुलाकात हुई तो एक रेपो बनता था ही मेरा पहले से उनके साथ, तो आसानियां बढ़ गई क्योंकि ही न्यू दैट ओके शबीना इज देयर, चलो करेगी। वो पिक्चर मेरी जो पहली हिट हुई वो भी सलमान खान की फिल्म थी जो प्रेम रतन धन पायो
1: जी बिल्कुल।
0: उसके पहले आशिक बनाया आपने, उसके पहले नाच आई मेरी, काफी फिल्में चली, मुझे कभी किसी के पास जाके काम मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। माधुरी दीक्षित फिल्म आने के बाद इंडस्ट्री का चलन था, मुझे बुलाने लगे बहुत ज्यादा, रामगोपाल वर्मा अपनी सारी फिल्में मुझे दे रहे हैं। तो ये चलता रहा। फिर सलमान भाई की फिल्म आई, पहला गाना मेरा हिट हो गया आशिक बनाया, उसके बाद सलमान भाई का गाना जिसने मुझे नाम दिया। जिसे कहते हैं ना कि आप अपनी डीवीडी नहीं भेज रहे हो, पहले डीवीडी भेजते थे प्रोड्यूसर के पास के, सर देखिए मैंने ये काम किया,
1: अब इस बार डीवीडी नहीं भेजना
0: पड़ी। अब मैं प्रेम रतन के बाद डीवीडी नहीं भेजना पड़ा, इंडस्ट्री में सबको पता चल गया शबीना खान कौन है, बिकॉज मेरा वो गाना प्रेम रतन धन पायो हिट हुआ। जबकि वो गाना सोनम कपूर की स्टेप्स थी, लेकिन सलमान खान हर जगह जा रहे थे और वो स्टेप कर रहे थे सोनम के साथ। ये पहली बार हुआ था। सलमान भाई बोलते थे अरे लड़की का स्टेप मुझसे करा रहे हर जगह, एंड ही यूज्ड टू डू आल्सो बिकॉज़ ही वाज डूइंग इट। वो हिट, वो
1: ऑरा क्रिएट हो गया था,
0: ऑरा क्रिएट हो गया, और वो स्टेप आज भी यूट्यूब में वो गाना सबसे ज्यादा,
1: कई लोग रील्स भी उस पे बहुत बनाते
0: हैं, उसी पे रील बनी, डब स्मैशेस बने, मैं हिट हो गई, मेरा करियर चल पड़ा। तो वो सलमान खान थे। फिर दबंग हुड़हुड़ दबंग जब आया, उन्होंने जो
1: मेरे पैंट की जेब में उंगली डाल के,
0: वो तो गणेश आचार्य जी ने किया था,
1: जी जी,
0: दो गाने उन्होंने किए। जब तीसरी दबंग का आया तो उन्होंने मुझे दिया ये गाना, कि शबीना करेगी तुम करो ये गाना।
1: अरे वाह।
0: फिर वो स्लीव्स के साथ में मोमेंट हिट हुआ।
1: अच्छा।
0: तो फिर उन्होंने एक चलन हो गया कि वो, उन्होंने कभी मुझे फीमेल कोरियोग्राफर की तरह देखा ही नहीं है, उन्होंने हमेशा मुझे एक सेंसिबल कोरियोग्राफर देखा,
1: मतलब मेल फीमेल से परे
0: परे
1: एक कोरियोग्राफर
0: है जो जज्बात समझती है, जो फैमिली बैकग्राउंड से आती है, ये फैमिली समझती है। तो मुझे ट्यूबलाइट का गाना दिया उठा के, कबीर खान को बोला ये गाना तो नाच मेरी जान शबीना करेगी उसको दो। तो वो मुझे हमेशा एक ऐसा गाना अपनी फिल्मों में दे देते है बुला के जो उन्हें लगता शबीना करेगी।
1: तो ये बहुत अच्छी बात है ना, साथ लेके चल रहे हैं, और साथ सिर्फ इसलिए नहीं लेके चल रहे कि करना है, इसलिए चल रहे हैं क्योंकि
0: ही नोज
1: उबत है, काबिलियत है,
0: काबिलियत को देख के उन्होंने मुझे बुलाया। राधे में उन्होंने गाना दिया
1: जी।
0: उसके बाद
1: राधे का कौन सा गाना था आपका,
0: जो परदेसिया सॉन्ग का रिमिक था जैकलिन का और सलमान खान का,
1: हाँ वो बहुत खूबसूरत,
0: वो गाना मुझे दिया बुला के। तो एक बेस्ट गाना वो मुझे बुला के दे देते हैं, और उन्हीं की वजह से आई थिंक जब एक मेगा स्टार आप पे भरोसा करता है ना, तो आप के लिए आसानियां हो जाती है
1: जी।
0: बाकी लोगों को लगता है और सलमान खान की कोरियोग्राफर, तो वो एक चलन चल गया, मुझे बोलने लगे सलमान खान की कोरियोग्राफर, सलमान खान की कोरियोग्राफर, सलमान खान की कोरियोग्राफर।
1: तो एक गीत जो आपने और सलमान खान ने साथ में किया है, यानी शबीना खान और सलमान खान का साथ का गाना है, वो कोई एक गीत जो आप कहेंगे वो हम हमारे श्रोताओं को जरूर सुनाना चाहेंगे, आपकी पसंद का, आपकी ख्वाहिश से।
0: सलमान भाई का एक हमारा साथ में किया हुआ गाना जो मुझे बहुत पसंद है, सभी गाने पसंद है नाच मेरी जान एक गाना है, बहुत पैपी नंबर है
1: जी।

0: श्रोता हमारे साथ है शबीना खान, जो कि एक बहुत बहुत बहुत बेहतरीन कोरियोग्राफर है। और अगर मैं कहूँ कि आज तक की जो लिस्ट बनी है, ऐसा कोई अभिनेता या अभिनेत्री या कोई दिग्दर्शक या कोई निर्देशक कोई नहीं बचा है जिसके साथ शबीना खान ने काम नहीं किया है, और जो भी किया है उम्दा किया है, परफेक्ट किया है और अब तक का बेस्ट किया है। हमने जब तक इनके बारे में इनके जाना या इनसे बात की है, जो अब तक उस सब में इतने सारे गाने आए हैं और हर गाना अद्भुत है, ऐसा लगता है कि वो अपने उत्कृष्टतम उत्कृष्ट पर बैठा हुआ है। तो उन्हीं में से एक और फिल्म आई थी जिसने अपना नाम पूरी दुनिया में बना लिया था, और उस फिल्म में हैंडपंप भी उखाड़ा गया, भारत के बारे में भी बात की गई। और ये फिल्म है ना, जो अपना एक कहा जाता ना, एक स्थान बना चुकी है, और कई सालों बाद वापस वो फिल्म आती है। और शायद जब ये फिल्म आई थी तब शबीना खान बहुत छोटी सी रही होंगी, और जब ये दोबारा ये फिल्म आई तब शबीना खान जो है वो कोरियोग्राफर बन चुकी हैं, और ये फिल्म इनके हाथ में आती है। फिल्म का नाम है गदर 2। ये फिल्म कैसे आपके हाथ में आई, और जो गाना अपने आप को पहले ही स्थापित कर चुका है, उस गाने को फिर से नए कलवर के साथ प्रेजेंट करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उस गाने को हमने देखा था एक स्कूल के बड़े से ऑडिटोरियम में मंच पे नाचते हुए। अब उस गाने को आप सड़क पे, यानी एक स्थान पे, एक आंगन में नृत्य करवा रही हैं, तो थोड़ा सा अगर वहां तक हमें ले जाए तो।
1: सो पहले सवाल का जवाब ये है कि गदर, हाँ, जब गदर रिलीज हुई थी 2020-21 में, तब मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी गणेश मास्टर जी के साथ।
0: जी,
1: इस फिल्म को किया था जय बोराडे साहब ने। जय बोराडे हमारे बहुत फेमस कोरियोग्राफर, जो सूरज बढ़ जाती है की सारी फिल्म,
0: बहुत बड़े कोरियोग्राफर,
1: बहुत बड़े कोरियोग्राफर थे।
0: हम साथ साथ हैं भी उनकी,
1: हम साथ साथ हैं, मैंने प्यार किया, उनकी लास्ट फिल्म थी विवाह,
0: हाँ,
1: उसके बाद मैंने ज्वाइन किया सूरज
0: बढ़िया,
1: उसके बाद से मैंने राजश्री प्रोडक्शन को ज्वाइन किया। तो जब गदर 2 कैसे आई, अनिल शर्मा जी जो हमारे बहुत ही दिग्गज, बहुत ही माने हुए डायरेक्टर है, उनकी बेटी की एक फिल्म आई थी जीनियस, उसमें उन्होंने मुझे दो गाने दिए थे।
0: अच्छा।
1: जब उन्होंने मेरा काम देखा तो उन्होंने कहा कि बड़ी फिल्म करेंगे साथ में।
0: अच्छा।
1: और जब गदर फिल्म आई तब उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे बुलाया, मुझे कहा ये फिल्म तुमने करनी है।
0: अच्छा।
1: तो उन्हें लगा था दो तीन गाने देंगे, मैंने कहा सर मैं पूरी फिल्म करूंगी, अब पूरी फिल्म एक ही फिल्म करूंगी। ऊंचाई की शूटिंग चल रही थी मेरी, ऐसा ऊंचाई पूरी फिल्म मैंने अकेले खुद की है, ये फिल्म भी पूरी करने दो मुझे, और मेरा पूरा वक्त आपका, आप जब बुलाओगे सुबह शाम 3 बजे रात को 4 बजे सुबह जब बुलाओगे मैं आपके साथ करूंगी, पूरी फिल्म करूंगी।
0: मतलब उतने दिनों में मैं कुछ और नहीं,
1: कुछ और काम नहीं करूंगी, क्योंकि इस फिल्म की डिमांड होनी चाहिए, क्योंकि ये फिल्म इतनी बड़ी हिट थी, 22 साल बाद रिलीज हो रही है, यू नो। और चैलेंज ये था इस फिल्म के साथ कि 22 साल के बाद आज की ऑडियंस सोशल मीडिया को लेकर बहुत अलग है। अगर 40% पुराने लोग ये फिल्म देखेंगे तो 60% आज के लोग देखेंगे, जो उस वक्त पैदा हुए होंगे और आज 22 साल के होंगे, 25 साल के होंगे, या 27-28 साल के होंगे, तो ये ऑडियंस तो यही मेन है अपनी, 65-70%। तो मैंने काम तो बहुत मेहनत की इस फिल्म पे, एक एक गाने को तराशा, और सवाल ये था कि आज की ऑडियंस को, पिक्चर बनी है हमारी 1970 के ऊपर,
0: बहुत पुराने समय की बात है,
1: 70s के ऊपर फिल्म बनी है, अंदाज 70s का है, कैरेक्टर 70s के, गाने 70s के अंदाज में,
0: खुशबू उसी समय की है,
1: सब कुछ उसी समय का, लेकिन दिखाना आज की ऑडियंस को है, और पुरानी ऑडियंस भी डिसअपॉइंट नहीं हो कि अरे यार ये क्या कर दिया नहीं कोरियोग्राफर ने,
0: हाँ हमारा पुराना वाला अच्छा था।
1: तो ये जो ख्याल थे ना, ये मेरी रातों की नींद उड़ गई थी, और मैंने इतनी मेहनत की इस फिल्म को लेके कि हर एक गाना मोती के दाने की तरह निकल कर आए। मैं निकला गड्डी लेके, जो आपने कहा आंगन के अंदर किया, वही चैलेंज था। सनी देओल उस वक्त, सनी देओल इस वक्त,
0: उम्र का भी अंतर है,
1: उम्र का भी अंतर है, लेकिन क्योंकि सनी सर के साथ मैंने असिस्टेंट डेज में काम किया है, हमारी एक रेपो थी, और मैंने उनसे

0: कहा कि सर ये सिग्नेचर मूवमेंट, सबने कहा सिग्नेचर मूवमेंट अलग करते हैं, अलग करते हैं, अलग करते हैं. सर नहीं सर, सिग्नेचर मूवमेंट वो मत करे. कोई और कोरियोग्राफर बोलता मैं करता हूँ मेरी स्टेप.
1: हाँ
0: यहाँ पे आप की आना, आपका ईगो नहीं आना चाहिए.
1: हाँ
0: सर जय मास्टर जी को एक मुझे श्रद्धांजलि देनी है.
1: हाँ
0: उन्होंने जो बनाया था स्टेप हाथ का,
1: हाँ
0: गड्डी लेके,
1: हाँ हाँ
0: वही स्टेप रखेंगे. उनके बेटे का जो रोल अभिनय निभा रहे थे उत्कर्ष शर्मा,
1: हाँ
0: जो अनिल शर्मा जी के बेटे हैं, उनको मैंने अलग स्टेप दिया.
1: हाँ
0: मैंने कहा कि आप, वो 70s का बच्चा है, तो उनको मैंने स्टेप दिया राजेश खन्ना वाला,
1: हाँ
0: क्योंकि वो बच्चा होता है राजेश खन्ना का और उसका दीवाना.
1: हाँ
0: और फिर वहां जाके ये गाना बना. और अगर आप पूरी फिल्म के गाने देखो, उसमें दो गाने नए एक्ट कलाकारों के साथ निभाए गए थे
1: जी
0: जो सबसे बड़े हिट हुए.
1: जी
0: एक गाना था चलते रे इश्क में,
1: चलते रे इश्क में
0: जो
1: बहुत पसंद किया यूथ ने.
0: उसमें ये दिखाया है कि वो लड़की पाकिस्तान की मुसलमान फैमिली से ताल्लुक रखती है, ये बच्चा हिंदुस्तान से जाता है, उनका अफेयर होता है, और लड़की पाकिस्तान की ईद के दिन डांस कर रही है. तो
1: हाँ
0: हमने चिलमन बनवाई, क्योंकि मुझे पता है
1: बहुत
0: ना
1: खूबसूरत सेट था वो.
0: चिलमन बनवा के, चिलमन के अंदर वो लड़कियों के साथ नाच रही है, चिलमन के बाहर लोग ईद, और पाकिस्तान के अंदर ये गाना हो रहा है ऐसा दिखाया है,
1: हाँ
0: और हिंदुस्तान की ऑडियंस उसको देख रही है. तो वो गाना इतना सुपरहिट हुआ कि लोग आज गदर के बाद फौरन चलते रे इश्क में कहते हैं
1: जी
0: गाना,
1: बिल्कुल
0: इतना खूबसूरत.
1: बिल्कुल
0: और उत्कर्ष शर्मा का एक गाना हिट हुआ था जो झूम झूम गाना था,
1: हाँ
0: तो हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर, पूरी दुनिया के लोगों ने. तो मैं ये कह रही हूं फिर से कि मेहनत ही मेहनत, कंसिस्टेंसी, लगन, और बार बार एक चीज को सोचना, करते रहना, रातों की नींद गवाना, बेचैन रहने से ही आप गदर 2 जैसी फिल्म को दर्शा सकते हो.
1: फिर से वही बात, मेहनत तो करनी पड़ेगी,
0: करनी पड़ेगी
1: बिना
0: आपको,
1: मेहनत के.
0: आप हर बार साबित करना पड़ेगा, आप बैठ
1: हाँ
0: नहीं सकते पीछे,
1: हाँ
0: आपको
1: यानी कि
0: साबित करना
1: आपने
0: पड़ेगा.
1: इतनी बड़ी बड़ी सुपर डुपर हिट दे दी, बहुत सारे अवार्ड्स आपने ले लिए, लेकिन जब गदर टू सामने आई, ऊंचाई में इतने सारे बुजुर्ग वाले लोगों को भी आपने काम करवा लिए, यानी वो बुजुर्ग वाले नहीं बोलना चाहिए, वो दिग्गज बोलना चाहिए,
0: दिग्गज है,
1: लेजेंडरी, भारत के वो सबसे बढ़िया कोहिनूर
0: बिल्कुल
1: हैं,
0: बिल्कुल
1: उन
0: कोहिनूर
1: सबको
0: है वो,
1: आपने काम करवा लिया. और
0: बिल्कुल
1: उसके बाद क्योंकि इन्होंने उस समय जो काम करके दिया है 70, 60 से लेके 80, 90 के दशक तक, और उसके बाद भी वो करते ही जा रहे हैं, पर वो जो किया है वो तो खैर बात ही अलग है. और उनसे काम कराने के बाद गदर टू में भी वही पसीना बहा रहे हो, एसी कमरे में बैठे हो लेकिन पसीना तो आ रहा है.
0: बिल्कुल
1: तो हमें मेहनत करनी चाहिए, ये बात,
0: बिल्कुल
1: ये सीख हमारे छोटे छोटे जो श्रोता हैं
0: बिल्कुल
1: उन तक बात पहुंचनी चाहिए और पहुंचती है. इतने सारे लोगों के साथ डांस किया, इतने सारे लोगों को काम कराया, राजपाल यादव एक नाम आता है.
0: मेरा पहला हीरो मेरी पहली फिल्म का पहला हीरो.
1: अच्छा
0: बिल्कुल, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती
1: हाँ
0: हूँ. मैं
1: हाँ
0: हीरो तो राजपाल यादव
1: जी
0: ही थे, तो
1: जी
0: मैं तो उनके जिंदगी भर अभी भी मिलती हूँ तो बोलती हूँ मेरा पहला हीरो.
1: हाँ तो हमारा प्रश्न यहाँ पे ये आ रहा है कि वो तो कॉमिक साइड में जाते हैं, कॉमिक साइड को डांस में या कोरियोग्राफी में कैसे कन्वर्ट कर पाते हो, क्योंकि कोरियोग्राफी में भी वो जो कॉमिक टाइमिंग है या वो जो मजाक मस्ती है या वो जो हल्की सी एक छोटी सी बात ही होती है, राजपाल यादव के साथ जो उनका अभिनय है वो एक हल्का सा किरदार थोड़ा सा घूमता है, उतने में भी जनता जो है जो देख रही होती है वो हंसना शुरू कर देती है,
0: बिल्कुल,
1: तो उनके साथ कैसे आपने काम किया?
0: मैं आपको एक बात बताऊं, बीइंग एन एक्टर माय सेल्फ, मैंने एक्टिंग सीखी है,
1: जी
0: तो सबसे मुश्किल काम होता है हंसाना लोगों को. हंसाना
1: रुलाना आसान है.
0: बहुत मुश्किल है. और वही काम मैंने कहा ना, जैसे ऊंचाई में केटिको में अनुपम खेर के बारे में कह रही थी मैं, वैसे ही राजपाल यादव है. जितना बंदा उछल उछल के हंसाता है वो उतना रुला भी देता है आपको 1 मिनट के अंदर. और जिसके अंदर ये एक रिदम है, जिसके अंदर कॉमिक टाइमिंग होती है उसके अंदर रिदम होता है. तो डांस करना तो बाएं हाथ का खेल है.
1: अच्छा
0: उसके बाद मैंने उनके 2-3 गाने किए जिनमें उन्हें नचाया है, और वो बराबर टाइमिंग पर डांस करते हैं.
1: क्या बात है.
0: बिल्कुल
1: तो ऐसे बढ़िया बेहतरीन अभिनेता अभिनेत्रियां भी हमारे यहाँ पे हैं. आपने कुछ साउथ के डांसर्स के साथ भी काम किया
0: काफी काम किया
1: है
0: साउथ
1: ना,
0: में.
1: साउथ के अभिनेताओं के साथ, अभिनेत्रियों के साथ काम किया, तो क्या अंतर है बॉलीवुड और दक्षिण भारत के काम में?
0: जिस वक्त मैंने काम किया, मैं बात कर रही हूँ 2000 शायद 12-13 की, मैं इतना काम करती थी वहां पर कि मुझे मुंबई आने का वक्त नहीं मिलता था.
1: जी
0: तमन्ना, कार्तिक, सूर्या, पवन कल्याण, ऐसे कई नाम हैं जिनके साथ मैंने काम किया. एक चीज जो मैं उस वक्त वहां देखती थी, डिसिप्लिन. अगर वो 7 बजे की शिफ्ट रखते हैं तो 7 बजे पहला शॉट होना चाहिए. मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ.
1: सात बजे रखते हैं तो सात बजे शॉट होता है, मतलब उसके पहले लोग
0: उसके
1: आते हैं।
0: पहले छह बजे सब आके सेटअप करके रेडी होके एक्टर शुड टच द सेट,
1: मतलब एक्टर पांच बजे आके मेकअप करा के तैयार होकर बैठा होगा।
0: अगर आप वो डिसिप्लिन देखा है कि मैंने डायरेक्टर को पैकअप करते हुए देख लिया कि एक एक्टर सिर्फ 10 मिनट लेट आया तो ही कॉल्ड मी असिस्टेंट के साथ, मैंने एक्टर के साथ रिहर्सल किया, शॉट दिखाया डायरेक्टर को और डीओपी को, शॉट की रिहर्सल हो गई, बस टेक बोलने वाले है, हीरोइन ने गाउन उतारा, बोला पैकअप, बड़ी हीरोइन मैं नाम नहीं लूं, क्यों, ही सेड अम्मा यू एंटर्ड इन द सेट एट 7:10 सो टुमारो वी रोल दिस एट 7
1: 7 मीन 7
0: 7 पैकअप, शी स्टार्टेड क्राइंग, ही सेड नो प्रॉब्लम। सो ये एक, इसे आप रूडनेस नहीं बोलते हो, इसको कहते हो कि आपको कभी कभी जब चीजें सीधी करनी होती है तो थोड़ा सा अलग रास्ता अपनाना होता है। वही किया, नेक्स्ट डे 6:30-7:30 में लड़की बैठी हुई थी वहां पे, जबकि उसकी गलती उस दिन भी नहीं थी, लेकिन ये एक तरीका है उनका काम करने का। लेकिन अब हमारे यहाँ पे भी मैंने ये देखा है कि हम वक्त पे काम शुरू कर देते हैं।
1: अच्छा,
0: तो और कहते हैं ना कुछ एक्टर बहुत लेट आते हैं, बट लोगों को ये नहीं पता कि वो लेट आने के बाद भी 8 घंटे का काम 4 घंटे में खत्म करके देके निकल जाते हैं
1: क्योंकि वो इतना क्विक है।
0: एब्सोल्युटली।
1: हाँ, तो अब जब इतनी अच्छी बात चल रही है तो एक गाना और बनता है, क्योंकि हम तो इंफोटेनमेंट वाले हैं, इन्फॉर्मेशन भी देते हैं और एंटरटेनमेंट भी करते हैं, तो एंटरटेनमेंट के लिए कौन सा गाना हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे?
0: मेरा बहुत फेवरेट गाना गदर 2 का चल तेरे इश्क में खो जाते हैं।
1: क्या बढ़िया, बहुत खूबसूरत सा गीत है, तो ये गीत हम हमारे श्रोताओं तक पहुंचाते हैं और हम आपके काम के इश्क में खो जाते हैं उतनी देर के लिए। बहुत खूबसूरत काम किया शबीना जी, बहुत बढ़िया, तो चलते हैं इस गीत की तरफ।

0: हालांकि शबीना जी, हमने आपसे बात की लेकिन ऐसा लगता है कि इतनी देर में आपको समेट पाना बहुत कठिन है। फिर भी हम ऐसा मान लेते हैं कि हमने आपसे बहुत सारी बातें कर लिया, ऐसा हम मान रहे हैं खुद से। हालांकि हम भी जानते हैं कि अभी बहुत सारे गानों की बहुत सारी कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपसे सुनी जा सकती हैं और रोचक तथ्य और रोचक बातें आपकी सुनने को मिलेंगी और हम चाहेंगे कि सुने भी एक आध। लेकिन उसके पहले एक बात बनती है कि शबीना खान यानी छोटी सी 7वीं 8वीं की लड़की आई थी इंडस्ट्री में, उसने बहुत मेहनत की और बहुत मेहनत करके बहुत बड़ी बन गई। अवार्ड्स भी बहुत सारे मिले, फिल्म फेयर मिला, बहुत सारे अवार्ड्स मिले। तो हम चाहते हैं कि वो अवार्ड्स जब आप ले रहे थे कैसा लग रहा था, कौन था जो आंखों के सामने आया था कि यार थैंक यू तेरे कारण मुझे ये मिला है।
1: मेरी अम्मी, मुझे पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला
0: जी,
1: तो मैं मुंबई में थी नहीं, प्रेम रतन धन पायो के लिए मुझे इनविटेशन आया, मैं मुंबई में थी नहीं, तो मैंने अम्मी से कहा, अम्मी चल नहीं पाती थी उस वक्त, उनका बैक का ऑपरेशन हुआ था।
0: अच्छा।
1: तो मैंने कहा अम्मी तुमको जाना पड़ेगा, ये तुम्हारा अवार्ड है, क्योंकि जिंदगी भर से मैंने सोच के रखा था कि जब भी अवार्ड मिलेगा मैं अकेले नहीं जाऊंगी स्टेज पर,
0: माँ को साथ लेके
1: अम्मी को ले जाऊंगी, क्योंकि ये उनका अवार्ड है। हर एक कदम चली मैं थी बट दिल और दिमाग उनका था, मुझे इतनी तरीके से सलीके से पालना, इस तरह बनाना, इतना सोच समझ के चलने वाली लड़की, बचपन में हमें क्या पता होता है, कुछ नहीं पता होता है, हमारी माएं होती है जो हमें,
0: और उस जनरेशन के बच्चों को कुछ नहीं पता होता था।
1: एग्जैक्टली, हमारे पास टीवी नहीं, रेडियो नहीं, ये हम सिर्फ अपनी माँ को सुनते थे, उसको देखते थे, उस जैसे बनना चाहते थे, बाल तुम्हारे लंबे हैं मुझे भी बाल लंबे चाहिए, तुम ऐसी थी, मेरी माँ मेरी हीरोइन है, मेरा बाप मेरा हीरो है, हम यही थे ना उस जैसे।
0: कई बार ऐसा होता था पूछते थे बड़े होके क्या बनना है, तो मम्मी बनना है,
1: मम्मी बनना है या टीचर बनना है, हमारी हमारी टीचर है भी हमारी बहुत बड़ी, आजकल वक्त बदल गया है लेकिन हमारी टीचर है, हमारी पहली बात टीचर रोल मॉडल होती थी हमारी टीचर, हमारे सर हमारे टीचर हमारे ट्यूशन टीचर यही होता था। तो मैंने हमेशा सोचा था अम्मी को ले जाऊंगी और उनके हाथ में अवार्ड दूंगी और फिर उनको बोलूंगी मुझे अवार्ड दे। तो कई बार ऐसा भी हुआ, मैं पहुंची और मुझे अवार्ड नहीं मिला, किसी और को मिल गया, मैं स्पीच करके गई, नॉमिनेशंस में मैं थी, तो जब ये अवार्ड मिला, देखो कुदरत ने भी मेरे मैनिफेस्टेशन को कैसे ओके हाँ किया, कहते ना हम जो मानते हैं वो ही मिलता है कुदरत से। मैं मुंबई में हूँ नहीं, बैंगलोर में शूट कर रही हूँ, फोन आया आपको अवार्ड मिल रहा है, वो भी ओरिजिनल दादा साहब फाल्के अवार्ड।
0: क्या बात है।
1: या तो अम्मी को फोन, अम्मी बोले बेटा मैं जाने पर नहीं, मैंने अपने भाई को फोन किया है, सर बेटा व्हील चेयर पे ले जाना अम्मी को,
0: पर लेके जाना,
1: बट लेकर जाना, मैं चाहती हूँ अम्मी जाए। मेरी अम्मी गई, उन्होंने वो दादा साहब फाल्के अवार्ड लिया और वहां पे उन्होंने बोला मेरी बेटी के लिए मैं ले रही हूँ, वो अवार्ड मेरी माँ को मिला है, कम से मेरा अवार्ड नहीं है वो
0: जी।
1: तो उस अवार्ड को मैं बहुत अलग नजर से देखती हूँ। उसके बाद पटाखा फिल्म के लिए फिल्म फेयर नॉमिनेशन, उसके बाद मराठी फिल्म के लिए जी सिने अवार्ड, मैंने मराठी फिल्में भी की है, उसके बाद बस वहां से सिलसिला शुरू हुआ, कई सारे अवार्ड्स मिले,
0: अब अलमारियां भर चुकी हैं।
1: हाँ काफी कुछ काफी कुछ, अब तो खैर बहुत सारे अवार्ड्स हो चुके हैं
0: जी,
1: बहुत सारे अवार्ड्स हैं जिनके अभी भी फोन आते हैं और हम कभी जा पाते कभी नहीं जा पाते, लेकिन जिसको मैं सराहती हूँ बहुत ज्यादा, फिल्म फेयर और दादा साहब फाल्के अवार्ड, अजीज सिने अवार्ड, और गदर भी, सारे गदर के गाने भी अवार्ड्स में थे
0: जी।
1: फिर एक नेशनल अवार्ड के लिए मैं 3 बार नॉमिनेशन में आई हूँ।
0: क्या बात,
1: देखो आपके सारे श्रोता मेरे लिए दुआ करें और मुझे नेशनल अवार्ड इस साल।
0: हम सबकी प्रार्थना है कि आपके हाथ में नेशनल अवार्ड आना चाहिए, जिसने इतनी मेहनत की है, अपना पूरा जीवन दिया है और किरदारों को खुद के नजरिए से हम तक पहुँचाया है,
1: बिल्कुल,
0: या कहें कि किरदारों के रूप में खुद हमारे सामने आई है, तो उसको मिलना तो चाहिए। तो हम सबकी दुआएं, हम सबकी प्रार्थनाएं आपके लिए रहेंगी। तो कोई एक गाना जिसने आपको बड़ी खुशी दी हो, ऐसा मन किया हो कि हम खड़े हैं तो 3 फीट ऊपर उछल जाएं और थोड़ा नाच लें और थोड़ा नाच लें, ऐसा कोई गाना जिसको करने के बाद बड़ा मजा आया हो या करवाने के बाद?
1: ऐसा एक गाना है तो जरूर, हमारे लेजेंडरी मेगा स्टार सलमान खान का गाना है। उस गाने की हर लम्हा उसका मेरे लिए कीमती था, क्योंकि एक फीमेल कोरियोग्राफर को हुड़ हुड़ दबंग गाना देना
0: जी,
1: पहली बात अपने आप में बहुत
0: जी।
1: वो गाना जब हम कोरियोग्राफी कर रहे थे तो मेरा जो मेल असिस्टेंट है मेरा भाई शर्जिल, वो मेरा राइट हैंड है हमेशा से, जब हम दोनों नाचते हैं तो ऐसा लगता है कि जमाना कैरेक्टर को देख रहा है, एक लेवल अलग है, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्मर है
0: जी।
1: उसकी बैक में प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि उससे एक गाने पहले वो इंजर्ड हो गया था। अब वो डांस कर नहीं पा रहा है। इस फिल्म के डायरेक्टर है प्रभु देवा, जो मेरे गुरु रह चुके हैं। सलमान खान साहब ने इतना बड़ा गाना दिया है, तो मैं थोड़ी सी ऐसी हो गई कि मैं फीमेल हूँ, हुरूर दबंग मुझे करना है, और मैं चाहती थी कि शर्जील के ऊपर किया जाए और वो इंजर्ड है, तो मैं क्या करूं। तो मैं जब रिहर्सल हॉल पे जाऊं तो अपने 20 लड़के जिनके साथ मैं कंपोज कर रही थी, मेरे अपने डांसर, उनमें से चुनती रहूं, ढूंढती रहूं कि कोई है जो ऐसा परफॉर्म
0: किससे करवा दें।
1: क्योंकि वो गाना जब मैं कंपोज कर रही थी उसमें एक दबंग वाला एक वो था ऑरा, और वो गाना जो था इस बार वाला वो उस पावर से कनेक्टेड हमें करना था जो ऊपर से आता है
0: जी,
1: वैसा पावर चाहिए था। मुझे मिले ही ना, मिले ही ना, और मैं गाना कंपोज करती जा रही हूँ, डांसर लड़कों को सिखाती जा रही हूँ, और ढूंढ रही हूँ कोई एक लड़का मिल जाए। और फिर तीसरे दिन मुझे सारे डांसर और मेरे अपने भाई ने बैठ के बोला कि यू परफॉर्म, यू शो इट टू प्रभु देवा, यू शो इट टू एवरीबडी। लड़कों ने बोला मैम देयर इज नो अदर डांसर हु कैन डांस लाइक यू द वे यू आर डूइंग दैट सॉन्ग। तब प्रभु सर जब आए और मैंने सोचा यार सच में
0: प्रभु देवा के सामने डांस कर,
1: प्रभु देवा के सामने जब वो आए बोले यू विल डू इट, व्हाई व्हाई व्हाई यू सर, एक बार देख लीजिए। फिर उसके बाद जब मैंने करके दिखाया वो भूल गए कि मैं लड़की हूँ प्रभु सर। वो बस मुझसे डिस्कस करते रहे। फिर हम सेट पे पहुंचे, सलमान भाई वैसे ही रिहर्सल नहीं करते, सेट पे पहुंचे, हम कर रहे थे ये गाना शूट, हम इंदौर में कर रहे थे गाना। तो जैसे हमेशा की तरह सलमान भाई ने सोचा नहीं कि मैं लड़की हूँ, लड़का हूँ, कौन हूँ, मैं कोरियोग्राफर हूँ, मुझे बोले चलो पूरा गाना करके दिखाओ। अब पूरा गांव वहां पे खड़ा है सेट पे, सलमान भाई आए तो पूरा गांव खड़ा हुआ है,
0: तो आए गई
1: और मैं भी भूल गई कि मैं लड़की हूँ भाई, मैं तो कोरियोग्राफर हूँ। हमेशा की तरह दबंग अंदाज में मैंने वो गाना गांव के सामने किया, पूरा गांव शूट कर रहा था, एंड दे ऑल क्लैप्ड, एंड सलमान भाई बोले करवा लेना मुझसे तुम ऐसे बस। वो जो शूट होके आया और लोगों ने पोस्ट करना शुरू किया, मैं अपने आप में हैरान थी। मेरे सारे लड़कों ने मुझे ऊपर उठा लिया कि मैम व्हाट वाइब्स यू गेव। तो उस वक्त मैं तो कोरियोग्राफर थी ना, मैं लड़की थी नहीं। अच्छा, अब शूटिंग शुरू होती है और मैं हर शॉट मैं करके दिखा रही हूँ, बिकॉज माई असिस्टेंट शर्जील वॉज ऑन सेट बट ही कुडंट डू इट, नाउ मुझे ही करना है, शॉट लगाऊं करके भी मैं दिखाऊं, भाई को भी सिखा रही हूँ, कर भी रही। अब ये पूरा जो गांव के लोग है वो खड़े रह के देख रहे, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन,
0: वो समझ रहे उस
1: वो
0: चीज़
1: देख
0: को।
1: रहे मुझे देख रहे। अब मैं रोजों में थी, उस वक्त रमजान चल रहा था, मेरे रोजे भी चल रहे थे। अब ये गाना खत्म हुआ, जैसे ही सब हो गया, लास्ट शॉट एंड एवरीबडी स्टार्टेड टू लीव, और मैं अपने होटल की तरफ ऊपर जा रही हूँ, एक मजमा सा मेरी तरफ भागता हुआ आया। और मुझे लगा ये लोग आके मुझे बोलना चाहते होंगे सलमान खान से फोटो दिलवा दो, ऐसे कुछ होगा। और मैं बोली अरे अरे रुको रुको, मुझे जाने दो, फिर चले जाओ मुझे जा। नहीं मैम, वी वांट टू, दे आर ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स एंड गांव के आसपास के लोग, एंड दे सेड कि आपके साथ फोटो उतारना।
0: क्या बात।
1: एंड देन वो फोटो उतारे, ऑटोग्राफ ले, मैं एकदम हैरान थी। उसमें से पूरे ग्रुप ने लास्ट में मुझे बोला मैम वी वांट टू गिव यू वन नेम टुडे, और लड़कियां थी उसमें 50 के करीब, आज के बाद हम जब भी आपका नाम ले आपका नाम दबंगनी होगा, असली दबंग आप हो हमारे लिए।
0: अगर शबीना बन गई दबंगनी,
1: तो उन्होंने मुझे ये खिताब दिया कि आप हमारी दबंगनी हो
0: जी।
1: तो आज भी वो सारे लोग जो खड़े थे वो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे है, मेरी पोस्ट देखते और मुझे पोस्ट बताते हैं कि आप दबंगनी शबीना खान दबंगनी। तो वो एक सिलसिला सोशल मीडिया पे उस वक्त शुरू हुआ था
0: जी।
1: तो ये इस तरह की अचीवमेंट्स भी होती है आपकी जिंदगी में कभी कभी
0: जी,
1: कि आप को नहीं पता जाने अनजाने में आप किसी के हीरो बन जाते हो।
0: ये अचीवमेंट शायद आपके सच्चे मन, बच्चे जैसा दिल,
1: बिल्कुल,
0: और अच्छा काम,
1: बिल्कुल,
0: इसके कारण आपको
1: बहुत जरूरी
0: मिली है जी।
1: रोटी की भूख खत्म ना हो पेट में
0: जी।
1: और नींद ना आए, बेचैनी से आप अपना काम करते रहो
0: जी। बड़ी खूबसूरत सी बातें आपके साथ चल रही है। तो दबंगनी शबीना खान हमारे बीच में है, तो दबंगनी शबीना खान को एक गीत तो सुनवाना बनता है, वो गीत हम आपको सुनवा देते हैं, और गीत के परे हम आपसे हमारे उन्हीं बच्चों से कुछ कहलवाना चाहेंगे।

0: तो शबीना बोलूं या दबंगनी बोलूं? तो शबीना खान जी, आपका फिर से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन बहुत प्यार से स्वागत है। और अब जो है हम चल रहे हैं हमारे, हालांकि बातें तो दो महिलाएं बैठी हैं तो खत्म नहीं हो सकती हैं, और उसके बाद बात यह है कि आपके पास तो कितना सारा, कितना कुछ है आपके पास जिसे हम अगर चाहें तो शायद एक बार में खत्म नहीं होगा। तो विविध भारती आपसे चाहता है कि एक बार और आना, एक बार और कह के जाना अपने जो मन का है जितना है, लेकिन अभी जो है वो हम कहलवाना चाहते हैं आपसे कि जो जीवन जिया है, ऐसा तो नहीं है कि हमेशा बड़ी, जो आप कह रही हैं इतनी देर से कि नदी बह रही है उसके साथ हम बहते जा रहे हैं, तो जब नदी के साथ बहते हैं तो बीच में चट्टाने, पत्थर, कांटे, बहुत कुछ आता है। ऐसा सबके जीवन में आता है, तो आपके जीवन में भी आया होगा। तो हम चाहते हैं आप हमारे श्रोताओं में उन बच्चों को बताएं जो कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं, जो डांसर बनना चाहते हैं, जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, या जो कुछ भी बनना चाहते हैं, उनके लिए आप कुछ संदेश।
1: सो बिना तकलीफ के तो राहत कभी नहीं आती। तकलीफ है तभी हमें राहत का मजा पता चलता है। तो तकलीफें बहुत आई, अभी तो हमने सिर्फ सक्सेस की बातें की हैं। ऐसे कई लम्हात, कई दिन, कई महीने, कई साल गुजरे जब काम भी नहीं होता है आपके पास।
0: अच्छा,
1: ऐसा भी होता है, क्योंकि जब आपका नाम होता है ना, वो अपने साथ एक बहुत बड़ी चीज लेकर आता है कि अरे सलमान खान की कोरियोग्राफर है, महंगी होगी।
0: हाँ।
1: तो आपके पास लोग नहीं आते, फिर आपको पता चलता है कि अच्छा मैं तो महंगी नहीं हूँ, आओ तो सही पता चलेगा क्या
0: पूछो तो।
1: ये एक चीज है। दूसरी चीज, एक लड़की होना, एक लड़की होना, एक लड़की जो बचपन से आप कहें अल्हड़ उम्र के अंदर भी मैंने कदम यहीं पे रखा। मैं 15 साल की थी तो मैं 20 साल की भी यहीं हुई, 20 की हुई तो 22 की भी यहीं हुई, 25 की भी हुई है। तो ये जो एक दौर होता है जब आपको लोग अलग नजरिए से देखते हैं,
0: कैशव और पूरा जवानी सब यहीं निकले,
1: यहीं पे गुजरा है, तो मैंने वो भी देखा। और एक वक्त था जब कुछ लोगों के साथ मैंने जुड़ना नहीं चाहा तो मैं घर बैठ गई। एक वक्त था जब मुझे घर बिठाया गया, ये नहीं करोगी तो ये होगा, मैं बैठ गई घर। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ लड़कियों से कि सबर का दामन थामे रखो, हमेशा पेशेंस जिसे कहते हैं, सबर रखो। ऊपर वाले ने जो आपको दो ताकतें मिली है, एक ये कि ऊपर वाले ने आपकी कुंडली लिख दी है, दूसरा ये कि आपकी अच्छी आदतें, आपकी अच्छी नीयत, सिर्फ वही चीज ऊपर वाले की लिखे को बदल सकती है। ये सारे चीजें यही कहती है कि आपका कर्म आपके आने वाले कदमों को अच्छा या बुरा बना सकता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ लड़कियों से कि हड़बड़ाहट में, पानी की लालसा में, चाहत में अगले ही कदम गलत कर दोगे तो भी आपको थपेड़े तो मिलेगी ही मिलेगी। तो क्यों ना हम सबर कर लें, थोड़ा बैठ लें, थोड़ा इंतजार कर लें, थोड़ा दुआओं की ताकत को आजमाएं,
0: थोड़ी एहतियात बरते,
1: थोड़ा मंदिरों में जाके बैठ जाए, सुकून ले ले, और उसको बोले कि मैं तो मेहनत करने तैयार हूँ, बट रास्ते तू देख ले। लेकिन वो सब आप तब कर पाओगे जब आपके अंदर सबर होगा, संयम होगा। संयम रखो, भाग भाग के तकदीरों को खराब मत करो, संयम से काम लो, और मेहनत और चाहत ऊंचे की। यू नो आई ऑलवेज से चिन अप प्रिंसेस, कीप योर चिन अप। तो आपकी डिग्निटी आपके सिवा कोई अपने ऊपर नहीं रख सकता, आपकी डिग्निटी आपको अपने हाथ में रखनी है। आपके माँ बाप की मर्यादा आपको अपने हाथ में रखनी है। और मर्यादा जब मैं कहती हूँ उसका मतलब ये है कि सबर तभी रख पाओगे जब आपके अंदर संयम हो, सबर हो। वो रखो और अपनी बनने की चाहत को, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कभी खत्म मत करो। आज आप कुछ नहीं हो, लोग आपकी बात को बोलेंगे अरे क्या बोल रही है, हट, कहीं सुन लिया होगा। लेकिन यही बातें आपको अपने अंदर का कॉन्फिडेंस ही आगे बढ़ के सहारा देगा। अपने पे भरोसा करना कभी मत छोड़ो।
0: आपने शॉर्टकट पकड़ा होता तो शायद आपको, आप आज यहाँ बैठ के बात नहीं कर रही होती, और आपने धीरता रखी, गंभीरता रखी, तो आज आप यहाँ बैठी हैं, और इतनी यहाँ नहीं बैठी हैं, आप कई सारे दिलों पे राज कर रही हैं, कई सारे गीतों के माध्यम से राज कर रही हैं। बहुत बड़ी बात है शबीना जी। तो आपसे जब बात की तो बहुत सारी शिक्षाएं निकली, छोटी छोटी बातें शिक्षाओं के रूप में निकली, और सबसे बड़ी शिक्षा निकली मर्यादा। और आपने एक शब्द बोले, अपने माता पिता के जो संस्कार हैं उनको ऊपर रखो और उनको बचा के रखो,
1: बहुत जरूरी।
0: ये बहुत बड़ी बात आज के समय में, आज के काल में आपने बच्चों को बताई है, उसके लिए हम सभी बहुत धन्यवाद देते हैं। और विविध भारती परिवार, जिसमें हमारे श्रोता, हम सब, और इसके पीछे काम करने वाले ढेर सारे लोग सब आते हैं, और सब आज आपको यहाँ वाकई बहुत खुश है, यहाँ तक आप आई, आपने इतनी सारी बातें की, और ये बात हम जानते हैं कि बहुत सारी बातें हैं जो रह भी गई हैं, शायद आपको भी याद नहीं है, और यहाँ से निकलने के बाद लगेगा अरे ये बात और बता देनी थी, तो वो जो बातें रह जाएंगी वो हम चाहेंगे कि कभी और किसी और रोज हम साथ में बैठे और हमारे श्रोताओं तक पहुंचाएं। लेकिन शबीना जी, यहाँ तक आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विविध भारती परिवार का एक नया हिस्सा बनने के लिए बहुत धन्यवाद।
1: मैं लास्ट में सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि आप लोगों का शुक्रिया कि विविध भारती को आपने अब तक उस शिखर पे रखा हुआ है। यहाँ पे आना, यहाँ के एहसास को जीना, यहाँ की सच्चाई जो मैंने आज फील की है, आई होप ये सच्चाई और ज्यादा से ज्यादा लोग जिए इसको। विविध भारती का शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, और आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू बी हियर।
0: थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू सो मच।
0: आपका बहुत धन्यवाद। प्रणाम। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान से विधि जैन की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आइए सुनिए प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। देश आज हर्ष और उल्लास के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण किया और राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने पिछले एक दशक के दौरान देश की उपलब्धियों और विकसित भारत निर्माण की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी दी। झारखंड में भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर हर ओर उमंग और उत्साह दिख रहा है। राज्य में मुख्य राजकीय समारोह रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आयोजित हुआ, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मिलीजुली टुकड़ियों का निरीक्षण करने के बाद ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए राज्य में जारी विकास गतिविधियों की चर्चा की। उन्होंने विकसित झारखंड के निर्माण के सामूहिक भागीदारी पर जोर दिया। उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मिलीजुली टुकड़ियों का निरीक्षण करने के उपरांत ध्वजारोहण किया। इस मौके पर श्री गंगवार ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए विकास को नया आयाम देने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है। राज्य के विभिन्न जिलों में प्रभारी मंत्रियों ने ध्वजारोहण किया। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने विधानसभा परिसर में राष्ट्र ध्वज फहराया। उधर प्रमंडलीय मुख्यालयों में प्रमंडलीय आयुक्तों और जिला मुख्यालयों में उपायुक्तों ने ध्वजारोहण किया। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान सम विश्वविद्यालय में हर्ष और उल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। संस्थान के कुलाधिपति अरुण कुमार झा ने रांची के हटिया स्थित कैंपस में ध्वजारोहण किया। गुमला और खूंटी समेत कई जिलों में आज भारी बारिश हो सकती है, वहीं कल सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला और खूंटी में भारी बारिश के आसार हैं। 17 अगस्त को गुमला और सिमडेगा समेत कुछ अन्य जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान है, जिसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। वहीं 18 अगस्त को हजारीबाग समेत कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा।

15 अगस्त हमारे देश के इतिहास का वह गौरवशाली दिन है जब भारत ने वर्षों की गुलामी के बाद स्वतंत्रता की नई सुबह देखी। यह दिन हमें उन अनगिनत वीरों के बलिदान की याद दिलाता है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आजादी की सांस लेने का अधिकार दिया। आइए आज के कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी में सुनते हैं देशभक्ति गीत।

दोस्तों, हमारी आजादी हमें विरासत में मिली है, लेकिन इसकी रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। देश की तरक्की में हमारा छोटा सा योगदान भी राष्ट्र निर्माण का हिस्सा बनता है। आइए इसी देश प्रेम की भावना को और मजबूत करते हुए सुनते हैं अगला गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी, और आज के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। लीजिए अब सुनिए अगला कार्यक्रम खेती बारी।

जोहार, नमस्कार, आदाब, किसान भाई बहन, तू सभन सुन रहल हा कार्यक्रम खेती बारी आर हम ही है तू सभन के रेडियो साथी नहमता। सभी के हमर देने से स्वतंत्रता दिवस के ढेर सारा शुभकामना आर बधाई। आज हम बात करबे एक ऐसन विषय पर जिकर संबंध हमर देश के हर नागरिक से है। स्वतंत्र भारत में किसान आर कृषि के बदलत तस्वीर आर कृषि के क्षेत्र में महिला सभन के का भूमिका हो है। भारत के लंबा समय से कृषि प्रधान देश कहल जा रहा है, ई हम इन सभे जानो ही है। हम सभन के खेत में पैदा होए वाला अनाज केवल कहला किसान के घर के चूल्हा न जलाओ है, बल्कि पूरा देश के पेट भरो है। आजादी के समय भारतीय कृषि के सामने बहुत सारा चुनौती हले, जैसे कि कहला सिंचाई के सुविधा सीमित हले, खेती काफी हद तक बारिश के पानी पर निर्भर हो हले, आर किसान सभन के पास आधुनिक कृषि उपकरण आर उन्नत बीज के सुविधा भी बहुत कम हले। लेकिन स्वतंत्रता के बाद धीरे धीरे भारतीय कृषि में बड़ बदलाव अलै।

0: देश में सिंचाई परियोजना विस्तार होले, नहर कुआं और बाद में ट्यूबवेल के जरिए खेत तक पहुंचे लगले पानी और एकर साथे साथे उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और कृषि से जुड़ल मशीन सब के इस्तेमाल भी बढ़ गेले। साथे हरित क्रांति देश में गेहूं और धान जैसन जे भी मुख्य फसल है इस सबके उत्पादन भी बढ़ल के और आज समय ऐसा आ गले है कि किसान ट्रैक्टर, पावर टिलर और हार्वेस्टर, ड्रिप सिंचाई और आधुनिक कृषि यंत्र के इस्तेमाल कर रहल हथिन। एकर साथे साथे मोबाइल फोन और इंटरनेट भी खेती के नावा दिशा देले है। किसान सभी मौसम के जानकारी, मंडी के भाव, कृषि विशेषज्ञ के सलाह और सरकारी योजना सभे कुछ के जानकारी अपन मोबाइले से ले ले हथिन। और साथे कहला कि आज जे है खेती खाली पारंपरिक अनुभव तक सीमित नहीं रह गेले, बल्कि माटी जांच, मौसम आधारित खेती, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, ड्रोन और डिजिटल खेती है जैसे नावा नावा व्यवस्था भी कृषि के हिस्सा बन रहा है। लेकिन बदलत कृषि के साथे बहुत सारा चुनौती भी आ गले है। मौसम में बदलाव, असमय बारिश और साथे जे है लागत बढ़ले है, माटी के उर्वरता में कमी आयले है और फसल के उचित कीमत के लेल आज भी किसान सभन के बहुत बड़ा चुनौती एक बनल है। ऐसन में जरूरी है कि किसान सभन आधुनिक खेती के साथे साथे अपन पारंपरिक जानकारी और अनुभव के भी सही इस्तेमाल करथिन। तो कार्यक्रम में आगू भी बातचीत करबे, अब धर सुनाओ ये जरूरी संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: अब बात करो ये कृषि के उ शक्ति जेकर योगदान के अक्सर सही पहचान नहीं मिले, और उ शक्ति है हमर देश के महिला सभन। कृषि के क्षेत्र में महिला सभन के भूमिका हमेशा से देखल आ रहल है। खेत में बीज के बुआई से लेके निराई गुड़ाई, रोपाई, कटाई, फसल के सफाई, भंडारण और पशुपालन तक महिला बहुते जरूरी काम करो हथिन। ग्रामीण क्षेत्र में महिला सभन खाली खेतवे में काम न करो है, बल्कि घर और परिवार जिम्मेदारी के साथ कृषि के काम भी संभालो है। डेयरी हो गले, मुर्गी पालन हो गले, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, सब्जी उत्पादन और खाद प्रसंस्करण जैसन जितना भी काम है, सभ्य में महिला सभन भागीदारी लगातार अपन देखेले है। और आज जो है महिला खाली कृषि मजदूर तक सीमित नहीं रह गले है, वो सभन किसान, एक उद्यमी, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, कृषि प्रशिक्षिका और कृषि व्यवसाय चलाए वाली महिला के रूप में भी आगे आ रहल हथिन। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिला सबके आर्थिक रूप से मजबूत बनाए में बहुत ही बढ़िया जे एक काम कर ले हथिन। और समूह के जरिए महिला सब छोट छोट बचत करके अपन व्यवसाय शुरू कर सको हथिन, बहुत सारा काम कर सको हथिन और कृषि से जुड़ल उत्पाद के तैयार करके बाजार तक पहुंचा भी सको हथिन। उदाहरण के लिए जैसे देखला कि गांव में महिला सब मिलके अचार, पापड़, मसाला, अनाज या आर भी कृषि उत्पाद जो है ओकर प्रसंस्करण करके ओकरा बाजार में बेच सको हती। अब प्रसंस्करण कहे का मतलब है कि जे भी हम इनके सब्जी जैसे कि देख ले टमाटर है तो टमाटर जल्दी खराब होए वाला चीज है तो ओकरा हम इन है कि सॉस बना सको या टमाटो सॉस या केचप इस तरह से जे कि लंबा समय तक एकरा इस्तेमाल करल जाए। और साथ में कहा है कि एकर से महिला सबके आत्मविश्वास बढ़ो है और खुद से एक फैसला लिए में एक क्षमता

0: भी ओकर बढ़ो है और कृषि के भविष्य में केवल कहला कि एक अधिक उत्पादन है बल्कि एक टिकाऊ और समझदारी भरल खेती में है और हमें ऐसा खेती के देने बढ़े के है कि जेकर से माटी पानी और पर्यावरण के बचाव हमें कर सको ही है और साथे किसान के जो है ओकर मेहनत के उचित लाभ भी मिल जाते है। और किसान भाई बहन ने स्वतंत्र भारत में कृषि लंबा सफर तय करल के है और पारंपरिक खेती से लेके आधुनिक और डिजिटल कृषि तक हमें कितना बदलाव देखलिए है। आए वाला समय में तकनीक है ज्ञान और किसान के मेहनत मिलके भारतीय कृषि के आर भी मजबूत बनेते। तो अब जो समय है किसान भाई बहन वो है जानकारी के और जानकारी आज है कि भाई को किसान हथिन राम प्रसाद कुशवाहा जे कि समेकित कृषि प्रणाली के का फायदा है एक बारे में बताए हथिन। तो पहले सुनर हुई है तो पहले सुनो हुई है इनखरी अनुभव इनखरे जुबानी। किसान भाइयों हमारे साथ है राम प्रसाद कुशवाहा जी। नमस्कार।
1: हाँ नमस्कार।
0: आप अपना परिचय खुद से ही दीजिए कि कहाँ के रहने वाले हैं।
1: मैं राम प्रसाद कुशवाहा हूँ, ग्राम अमनारी सदर ब्लॉक हजारीबाग जिला से निवासी हूँ। ठीक है, हम एक समेकित कृषि प्रणाली जैविक खेती और बहुफसलीय जिसको इंटरक्रॉपिंग कहा जा सकता है
0: जी जी।
1: और दूसरा अवेलेबल वेजिटेबल और पैकेजिंग प्रोसेसिंग पर ही काम कर रहे हैं
0: जी। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है राम प्रसाद जी कि आप इतने अच्छे अच्छे जो टॉपिक आपने बताए ना तो सारे टॉपिक बहुत ही अच्छे हैं। और किसान जैसे होते क्या है कि करते तो है खेती लेकिन एक सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप जितना भी बताए तो बहुत अच्छे तरीके से आप खेती कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम आपसे बात करना चाहेंगे समेकित कृषि प्रणाली पे।
1: समेकित कृषि प्रणाली है क्या जी? इसके जिसको बोला जा सकता है आजकल के भाषा में या इंग्लिश भाषा में इंटीग्रेटेड फार्मिंग
0: जी।
1: हम सरल भाषा में समेकित कृषि प्रणाली बोलते हैं। अब समेकित कृषि प्रणाली है क्या? समेकित कृषि प्रणाली खेती के साथ साथ खेती जो हम लोग खेती बाड़ी करते हैं और खेती के साथ साथ मुर्गी पालन बकरी पालन गाय पालन मछली पालन ये होता है
0: जी।
1: अब ये क्यों किया जाता है, इससे क्या लाभ है? हम लोग का के एक दूसरे का वेस्ट जो वेस्ट है बेकार पदार्थ, जैसे मान लें गाय का गोबर हो गया, ये गोबर हो गया लेकिन मेरे लिए खाद है, जैविक खाद बना के इसको हम प्रयोग करते
0: जी।
1: बकरी का उसी तरह जो है उसका भी खाद बना के हम प्रयोग करते हैं। फिर मुर्गी का जो बीट है उसको अभी खाद बना के प्रयोग, कंपोस्ट खाद बनने के बाद हमारा मैंने डीएपी यूरिया का जरूरत नहीं पड़ता है। उसी तरह अगर मछली देखा जाए, बायोफ्लोक टैंक है मेरा, सेवन टैंक है, उसमें मछली बायोफ्लोक डाले हुए हैं। उसका जो पानी है, उसका जो वेस्ट पानी है उसको हम पटवन में यूज करते हैं और वो पानी यूज करने के बाद क्या होती है कि यूरिया का मैंने समझिए यूरिया का पानी, तो यूरिया का पानी हमको मिल गया तो यूरिया देने की जरूरत नहीं। ये मेरा इंटीग्रेटेड फार्मिंग हुआ। अब मेरा है कि 8000 ब्रॉयलर मुर्गी फार्म है, देसी सौ है, कड़कनाथ सोनाली देसी टाइप का है, 100 मुर्गी रखते हैं, बकरी 10-15 बकरी है, बकरा बकरी और गाय 2 है
0: जी।
1: जो देसी है देसी का गोमूत्र और गोबर हमको यूज हो जाता है, जीवामृत बना लेते हैं, बीजा अमृत बना लेते हैं, इसको जो खेत में प्रयोग करते हैं, बाकी तो कंपोस्ट खाद ही है
0: जी।
1: इसमें ये समेकित कृषि प्रणाली हो गया। उसके बाद जैविक खेती पर हम जोर दें। जैविक खेती क्या है? अभी रासायनिक खेती करते करते लोग किसान लोग क्या होता है कि कीटनाशी और रासायनिक खाद दे के पूरा मैंने पूरा सिस्टम को बर्बाद कर लिए, अपने भी कुछ बर्बाद हुए हैं और कुछ जो खाने वाले उनको भी परेशान है, उनके भी परेशानी। परेशानी है क्या कि जो खाते हैं तरह तरह के बीमारी फैला हुआ है, तरह पहला छोटा छोटा
0: बच्चा अभी जैसे कि देख रहे हैं कि जो बच्चा पैदा होता है तो उसको भी पेट का दर्द होता है, डॉक्टर के पास जाने से डॉक्टर बोलेंगे गैस का प्रॉब्लम है।
1: हाँ।
0: और ये सब चीज जब हम लोग जैसे छोटे थे तो हम लोग तो ये सब चीज जानते ही नहीं थे कि गैस होता क्या है।
1: हाँ।
0: तो गैस असमय बाल का पकना, छोटे छोटे बच्चों का भी बाल पक जा रहा है, बाल पकने की कोई उम्र नहीं है।
1: हाँ, अभी
0: हाँ
1: ज्यादातर बच्चों में या मैंने पुरुष महिला में पेट दर्द का समस्या। पहले पेट दर्द
0: बिल्कुल
1: क्यों हो रहा है
0: हाँ
1: कि हम लोग रासायनिक और कीटनाशी खा रहे हैं।
0: जी।
1: किसान भाई क्या है समझते नहीं, 2 दिन के बाद पहले कीटनाशी ये प्रयोग की है, खाद प्रयोग की है, और फिर तैयार माल जाके बाजार में बेच देते।
0: बिल्कुल
1: खाने के बाद बच्चा हो या पुरुष महिला जो भी हो, उसको एक पहला बीमारी पेट दर्द, दूसरा अभी बारीकी बीमारी आ रहा है गुस्सापन।
0: बिल्कुल
1: ये
0: चिड़चिड़ापन
1: देखिए हर
0: बहुत
1: हाँ
0: ज्यादा।
1: चिड़चिड़ापन, हर बच्चा के देखिए कुछ बोलिएगा चिड़चिड़ापन हो जाता है। महिला है पुरुष है, घर में कोई भी परिस्थिति में आपस में शेयर नहीं कर पाते हैं जिसमें चिड़चिड़ापन होता है।
0: जी।
1: ये हम लोग बाकी तो देखिए हमारे यहाँ झारखंड तो अभी ठीक ठाक है, उतना रासायनिक और कीटनाशी नहीं प्रयोग किया जा रहा है। हम
0: जी बिल्कुल
1: और लेकिन यही अगर दूसरा राज्य देखा जाएगा पंजाब, तो वहां पर तो कैंसर फैला हुआ है, कैंसर का ट्रेन चलती गई है। तो हम लोग इससे है कि अपनी सरकार ही हो, जो भी हमारी झारखंड में सरकार है, और हम लोग जो किसान भाइयों से यह है कि धन्यवाद देना चाहता हूँ किसान को कि यहाँ का किसान क्या करते हैं, पहला रासायनिक खेती पर जोर नहीं है, ठीक है, प्रयोग देखते हैं करते हैं, अब रासायनिक खेती में जोर नहीं है। क्यों? हम लोग मसाला आइटम आदि है, अदरक है, ये हल्दी है, मिर्चा है, धनिया है, जो मसाला आइटम उतना खाद नहीं देते, मैंने बहुत कम, हम थोड़ा सा धनिया अगर कोई दे दे तो अलग बात है, यूरिया हल्दी में तो पड़ता नहीं, अदरक में पड़ता नहीं। अब दूसरा फसल जाए दलहन, दलहन में भी उसी तरह है, दलहन में कोई खाद नहीं देता है, न लहर या मूंग है, मसूर है, चना है, मटर है, कोई बारीकी अकरा मानसिकता उसका अगर गड़बड़ है देने की, खाद देने के लिए दे सकता है, वो अपना दे रहा है, लेकिन ना देने पर भी आराम से
0: हो जाता है। सबसे
1: हो
0: बढ़िया
1: जाता
0: तो गोबर ही होता है।
1: है। हाँ, गोबर कंपोस्ट से आप पूरा काम कर
0: बहुत
1: सकते हैं।
0: अच्छा।
1: अब तीसरी बात है बहुफसलीय। हम लोग किसान लोग क्या करते हैं, कभी एक फसल लेकर मार कर जाते हैं। मार क्या है, एक फसल लगाए रेट गिर गया या मौसम का मार पड़ गया तो हम लॉस कर जाते हैं। उसी में दोहरा फसल, तीसरा तीन फसल अगर हम इंटरक्रॉपिंग माने बहुफसलीय हम लगाए, या तो फसलीय में एक फसल अगर कमजोर पड़ा तो दूसरा फसल देगा, दूसरा नहीं तीसरा देगा, और तीसरा नहीं चौथा। उसी तरह हम अभी गन्ना विकास की योजना आई, बहुत सरल आई, और विभाग से हम संपर्क किए। संपर्क करने से गन्ना विकास की यहाँ जो हम लोग आपस में माने कम लग रहा है, तो कम लग रहने का कारण है कि यहाँ पर गुड़ का उत्पादन अच्छा सा नहीं हो रहा था, और चीनी का उत्पादन, चीनी से शुगर पकड़ रहा है। तो हम इस पर विशेष बात रखे मैम के पास, मैम इसका है कि गन्ना का खेती हो, और गन्ना का खेती इंटीग्रेटेड माने माने सॉरी बहुफसलीय इंटरक्रॉपिंग के माध्यम हो। काहे कि 6 महीना का क्रॉप है, 6 महीना के बीच में अगर हम लत वाला सब्जी भी उगा सकते हैं, धनिया और पालक साग भी उगा सकते हैं, तो जिस मौसम के हिसाब से कर सकते हैं, और बीच में लास्ट में तो गन्ना होगा, गन्ना से गुड़ होगा, इधर चीनी होके पूरा शुगर फैला हुआ है, ठीक है,
0: गुड़ तो फायदेमंद है,
1: गुड़ तो फायदेमंद है, बहुत ग्लूकोज की मात्रा बहुत अच्छी है। तो हम लोग बहुफसलीय में ये करे तो बहुत है। जैसे हम लोग अभी मेरे खेत में अभी प्याज लगा हुआ, प्याज के बीच में इंटरक्रॉपिंग में बीट लगा हुआ है, बीट अभी 40 रुपया है, प्याज 20 रुपया 25 रुपया जो भी मार्केट के भाव में मिलेगा। आलू में भी उस तरह है कि आलू में हम लोग मूली डाल देते हैं, ठीक है, और भी है, और भी फसल में धनिया है डाल दिए, मटर में सरसों डाल दिए, तो बहुत ऐसा बहुत फसल ही हम लोग करके भी काम।
0: बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि आप बहुफसलीय यानी जिसको कि मिश्रित खेती
1: हाँ,
0: भी
1: मिश्रित
0: बोलते
1: खेती
0: हैं,
1: हाँ।
0: तो बहुत ही अच्छी बात है ये, और सभी किसान को उम्मीद करते हैं कि करना भी चाहिए,
1: हाँ।
0: क्योंकि एक खेती में क्या होता है ना कि अगर नुकसान हुआ तो पूरे
1: हाँ,
0: नुकसान
1: दूसरा
0: हो जाता
1: दूसरा
0: है ना?
1: दोहरा फायदा
0: हाँ,
1: मिल जाए
0: बिल्कुल। और दो तीन अगर खेती एक साथ कर रहे हैं तो एक ही सिंचाई में ज्यादा तो मेहनत पड़ता
1: हाँ,
0: है,
1: एक ही सिंचाई में, एक ही कंपोस्ट में, और एक एक और बात है उसमें कीटनाशी जो है, कीटनाशी का जो प्रयोग है प्रयोग करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि दूसरा का खुशबू, एक फसल दूसरा फसल का खुशबू से कीड़ा जो है, माने अगर हम प्याज का कीड़ा कोई पहुंच जाए या माने आपका ये फूलगोभी का कीड़ा पहुंच गया, तो फूलगोभी में अगर हम लोग मक्का डाल दिए या गेंदा फूल डाल दिए या पत्ता गोभी में गेंदा फूल डाल दिए तो उसके ये से उसका खुशबू से वो कीड़ा नहीं आएगा, या आएगा तो उस फूल में उलझा रहेगा।
0: बिल्कुल, ये मतलब हम भी सुने थे कि टमाटर वगैरह या किसी भी फसल के साथ गेंदा फूल लगाने से तो कीट वगैरह फसल पे नहीं ज्यादा लगते।
1: दूसरे पर फूल, अगर फूल का खेती है तो दो फायदा है किसान भाइयों को, हम ये कहते हैं कि ये फूल लगाए तो क्या कोई एक तो बहुफसलीय इंटरक्रॉपिंग इंटर वेजिटेबल हो गया, क्या हो गया कि फूल के साथ भौरा भी आ गया, मित्र कीट और शत्रु कीट भी आएगा। तो मित्र कीट आएगा तो मित्र कीट क्या किया, शत्रु को मैंने खाएगा। अब शत्रु खाएगा, शत्रु की संख्या कम होगी। दूसरा है फूल में भौरा भी आएगा, भौरा से प्रांगण होगी तो फिर मेरा फसल का ग्रोथ आएगा, उसका मैंने ये वंशज बढ़ेगा, फूल बढ़ेगा, मादा फूल का ज्यादा ये होगा तो प्रांगण होगा, प्रांगण से होगा तो मेरा फसल बढ़ेगा, इससे भी होगा। और बाकी तो शत्रु कीट दूर से हम तो लेंगे ही। और हम लोग अभी क्या करते हैं कि कभी कभी एक ही फसल लगा के यही सब घाटा कर जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: अभी बहुत लोग है मंचिंग और ड्रिप चलाए हुए, बहुत किसान तकनीक का है, जो इजराइल का तकनीक है, जो हम इजराइल गए हैं वहाँ का तकनीक है। ये मंचिंग ड्रिप में क्या करते हैं कि सही से डोज नहीं दे पाते, रासायनिक और कीटनाशी का जो उपयोग है ज्यादा डाल दिए, दिन भर चल रहा है, डोजिंग बढ़ गया, फसल तो बहुत अच्छा हुआ लेकिन वो फसल कारगर नहीं हुआ जो खाने वाले हम लोग जनता है, जनता के लिए हमारे मेरे विशाल पदार्थ बन गया।
0: बिल्कुल, ये चीज जैसे हम लोग देखते हैं ना कि मार्केट का अगर पालक साग लाए या धनिया लाए तो एक दिन से दो दिन अगर सोचेंगे कि आज खरीद कर लाए कल बनाएंगे तो सारा पत्ता उसका ना गल जाता है पानी में डालने के साथ, वो भूल जाता है।
1: रासायनिक का ज्यादा उपयोग या कीटनाशी का ज्यादा उपयोग हो चुका है,
0: यही चीज है। और जैसे कि घर में ही थोड़ा बहुत अगर हम लोग लगाते हैं, कोई चीज उसमें नहीं देते हैं, सिर्फ थोड़ा केचुआ खाद दे दिए तो वो इतना अच्छा होता है ना, वो घर का धनिया लगा हुआ उसका खुशबू भी बहुत अच्छा होता है। तो ये सब चीज है कि सभी किसान क्या कहते तो है कि गोबर डाल रहे हैं, लेकिन गोबर के साथ साथ कहीं ना वो रासायनिक खाद का भी उपयोग करते हैं। तो आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि जो समेकित कृषि प्रणाली का काम कर रहे हैं कि कोई भी रासायनिक खाद का इसमें इस्तेमाल नहीं हो रहा,
1: नहीं।
0: आपका एक दूसरे का वेस्टेज ही काम आ जाता है।
1: अभी कीटनाशक में हम लोग अगर प्रयोग करना ही हो, बाई लक अगर मेरे फसल में कीड़ा आएगा तो हम लोग निमासीन बना लेते हैं, ठीक है।
0: तो चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया।
1: हम ये आपके माध्यम से हमें खुशी लगी कि हम जनता और किसानों को अपना राय शेयर किए।
0: तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे किसान?
1: हम यही के संदेश कि जनता और किसान भाइयों को कि आप भी जैविक खेती, समेकित कृषि प्रणाली, बहुफसलीय की ओर कदम रखें ताकि हमारा समाज कीटनाशी और रासायनिक से दूर हो जाए और अपना स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद, नमस्कार।
0: धन्यवाद आपका भी, और इतने अच्छे जानकारी आपने साझा किए हमारे साथ, किसान भाइयों के साथ। धन्यवाद।
2: तो देख लो, ये हलथिन राम प्रसाद कुशवाहा जे की समेकित कृषि प्रणाली के फायदा बतैलथिन, और ये एकरा अपनाओ भी हथिन, खुद से करो हथिन। तो बहुत बढ़िया से बतैलथिन कि भाई समेकित कृषि प्रणाली का है और ओकर फायदा का हो है। और एकरे साथ कार्यक्रम खेती बाड़ी से हम इनके जाए के बेरा भी हो गए है। तो हमरा नहमता के अनुमति दा, जोहार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बारी। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अगला प्रसारण रांची से, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: It's 6 o'clock.

0: रहते हैं श्रम। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब प्रादेशिक मुख्य समाचार होंगे।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। देश ने आज हर्ष और उल्लास के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण किया और राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा की ताकि उनके परिवारों पर वित्तीय बोझ कम हो सके। झारखंड में भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर हर ओर उमंग और उत्साह दिख रहा है। राज्य में मुख्य राजकीय समारोह रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आयोजित हुआ, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मिलीजुली टुकड़ियों का निरीक्षण करने के बाद ध्वजारोहण किया। उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मिलीजुली टुकड़ियों का निरीक्षण करने के उपरांत ध्वजारोहण किया। इस मौके पर श्री गंगवार ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए विकास को नया आयाम देने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है। रांची में आंदोलनरत कुछ छात्र अस्पताल में इलाजरत हैं। छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने चिकित्सकों और पुलिस से आज आंदोलन स्थल जाने की अनुमति मांगी, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई। इस दौरान पुलिसकर्मियों के साथ उनकी नोकझोंक भी हुई। चतरा पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 1000 किलोग्राम से अधिक डोडा लदे मालवाहक वाहन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जबकि एक तस्कर फरार होने में सफल रहा। मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने तात्कालिक पूर्वानुमान में अगले कुछ घंटों के दौरान गुमला और खूंटी जिले में बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान गरज के साथ वज्रपात होने के आसार हैं, जिसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 6:45 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर।

नमस्कार श्रमिक बंधुओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम मेहनतकश। मैं हूं आपकी अपनी साथी अनामिका और आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना कार्यक्रम मेहनत कश। मेहनत इंसान को सिर्फ रोजगार ही नहीं देती, बल्कि आत्मनिर्भर बनने और समाज में सम्मान के साथ आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाती है। सरकार की विभिन्न योजनाएं भी लोगों को शिक्षा, रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथियों, आज हम बात करेंगे अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षणिक विकास में 15 सूत्री कार्यक्रम की भूमिका के बारे में। साथ ही हमारे साथ एक ऐसे मेहनतकश व्यक्ति के साथ बातचीत भी सुनवाएंगे जिन्होंने ट्रंक ड्रम अलमारी निर्माण के व्यवसाय को रोजगार स्वरोजगार का जरिया बनाया है।

0: साथियों, शिक्षा किसी भी समाज के विकास की सबसे मजबूत नींव है। जब समाज के सभी वर्गों तक शिक्षा के समान अवसर पहुंचते हैं, तभी वास्तविक विकास संभव होता है। अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक और शैक्षणिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा 15 सूत्री कार्यक्रम चलाया जाता है। इसका उद्देश्य शिक्षा, रोजगार और विकास के अवसरों को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्र छात्राओं को शिक्षा से जोड़ने, छात्रवृत्ति तथा शैक्षणिक सुविधाओं का लाभ पहुंचाने और शैक्षणिक संस्थाओं में बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाता है। हम सभी जानते हैं कि आर्थिक परेशानी कई बार बच्चों की पढ़ाई में बाधा बन जाती है। ऐसे में सरकारी योजनाओं की जानकारी और उनका सही लाभ मिलना परिवारों के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि पात्र विद्यार्थी और उनके अभिभावक इन योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें और उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाएं। और अब कार्यक्रम में आगे आपको बातचीत सुनवाते हैं। ट्रंक, ड्रम और अलमारी को अपना स्वरोजगार व्यवसाय बनाने वाले हमारे एक उद्यमी कपिल देव विश्वकर्मा और आपसे बातचीत कर रहे हैं सूरज रजक। ये पुनर्प्रसारण इस बातचीत का हम आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं।
1: श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आज आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से करा रहे हैं जिन्होंने शुरुआत तो छोटी की लेकिन पहचान बड़ी बनाई है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ है कपिल देव विश्वकर्मा जी। ट्रंक है, ड्रम है और अलमीरा का व्यवसाय करते हैं। पारंपरिक व्यवसाय है, परिवार का व्यवसाय है, लेकिन इन्होंने इसे एक बड़ी पहचान बनाई है। आइए आज जानते हैं इस व्यवसाय के बारे में, इनके जीवन की सफलताएं, संघर्ष के बारे में कि आज वो इस मुकाम तक कैसे पहुंचे हैं। तो कपिल देव जी, आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार सर।
1: तो सबसे पहले ये बताइए हमारे सुनने वालों को कि इसकी शुरुआत अब कब से किए हैं?
2: ये तो शुरुआत हम लोग बहुत छोटा से ही कर रहे हैं। हमारे बाबू जी जो है बहुत छोटे में गुजर गए थे, तो हम लोगों को तकलीफ हो गया, तो उस समय से हम लोग ये व्यवसाय में लगे हुए।
1: कितना वर्ष हुआ होगा जब आप इस काम में शामिल हुए?
2: तो हम तो मतलब 10 वर्ष से इसमें लगे हुए हैं।
1: 10 वर्ष
2: का उम्र से?
1: ओ, 10 वर्ष की उम्र से।
2: जी,
1: तो कम से कम हमको लगता है कि 30-35 साल का सफर रहा होगा।
2: हाँ सर।
1: तो उस समय जो आपका ये वर्कशॉप था और आज है, उसमें क्या अंतर आपको?
2: नहीं, पहले तो ऐसा वर्कशॉप नहीं था। अब जो है सो ये तो मतलब हमारे बाबूजी का जमीन था, दादा का, तो उसी पर हम लोग को बनाए हैं घर और इसी में दुकान किए हैं।
1: तो अभी क्या क्या बनाते हैं आप लोग?
2: अभी तो हम गोदरेज, अलमीरा, ट्रंक और ड्राम वगैरह बनाते हैं।
1: बक्सा वगैरह भी?
2: हाँ, बक्सा वगैरह, ट्रंक वगैरह सब बनाते हैं। जी।
1: और मतलब जैसे कि इस तरह का जब व्यवसाय है तो आपका यहाँ व्यवसाय है और हजारीबाग में और सारा व्यवसाय है, तो क्या अंतर है जैसे ग्राहक महसूस करे कि क्या विशेष देते हैं?
2: हम विशेष यही देते हैं कि हम जो है जो भी चीज बनाते हैं ठोस चीज बनाते हैं, समझे? वो हम लोग ग्राहक को ठगने वाला सामान नहीं बनाते हैं। जो भी चीज है बढ़िया है। ट्रंक भी जो है सो भी मजबूत हम लोग बनाते हैं, बाजार से हम लोग हटकर बनाते हैं।
1: मतलब जैसे कि आमतौर पर जैसे जो कोई ग्राहक आता है आपके पास, तो उनके पास इस चीज का अनुभव नहीं होता है कि इसकी क्वालिटी क्या है
2: जी।
1: तो इसको ग्राहक को कैसे समझाते हैं आप?
2: तो वो तो ग्राहक को बताना पड़ता है, समझे ना। अब वो जो है सो अगर समझे तो ठीक है, नहीं तो हम लोग क्या उसमें, ऐसे तो चदरा मोटा पतला हम लोग सब दिखलाते हैं। जैसे हम लोग बनाते हैं 22 गेज सीट में, बाजार में जैसे 24 गेज, 26 गेज। अब वो 26 गेज सीट को उन लोग बोल देता है 20 गेज, तो कस्टमर को पता चले तब ना कि 20 गेज कितना मोटा होता है, 22 गेज कितना मोटा होता है। तो वो आके बोलते हैं कि नहीं, हमको तो 20 गेज का दे रही है, इतना ही में दे रही है।
1: मतलब इस चीज को समझ
2: नहीं होता है, इसलिए ठगा भी जाते हैं बाजार में।
1: अच्छा, जैसे इसके लिए किस तरह के रॉ मटेरियल आप लोग इस्तेमाल करते हैं?
2: हम लोग सब टाटा सीट इस्तेमाल करते हैं।
1: तो कहाँ से उपलब्ध होता है आपको?
2: हम लोग तो मतलब यहीं से लोकल ही उठा लेते हैं,
1: लोकल परचेज
2: करते
1: हैं।
2: जी।
1: और जैसे कि एक अलमीरा है, तो इस तरह का अभी जैसे डिजाइन वगैरह में बहुत सारा परिवर्तन आया है, तो क्या क्या बदले हैं आप लोग
2: उसमें? लॉकर के अंदर में जो चेंजिंग होता है वही सर,
1: बाकी वही पारंपरिक।
2: हाँ, पारंपरिक टाइप का जो बनता है उसी तरह का है, लेकिन अंदर में अभी के समय में जैसे स्टाइल वगैरह थोड़ा चेंज हो गया है,
1: लॉकर वगैरह भी,
2: हाँ लॉकर वगैरह में भी परिवर्तन है।
1: तो आप बता रहे हैं कि 30-35 साल आपका इस व्यवसाय में हो चुका है, तो शुरुआत में सारी चीजें थी कि उसमें कुछ अंतर था?
2: नहीं, उस समय इतना नहीं था।
1: तो मतलब उस समय क्या बनाते थे?
2: उस समय भी हम लोग गर्म काम करते थे, तो उसको फिर हम लोग चेंज करके फिर हम लोग ये काम करने लगे।
1: पहले गर्म काम?
2: हाँ, पहले गर्म काम करते थे।
1: तो गर्म काम करने से मतलब क्या?
2: जैसे कि मतलब सिकड़ी हो गया, पहले बाजार में वही सब चलता था, पारंपरिक जो हम लोगों का जो पैसा था वही हम लोग करते थे।
1: खुद करते थे इसको?
2: जी।
1: मतलब उसके बाद यहाँ?
2: उसके बाद फिर जो है हम लोग थोड़ा सा अपना चेंजिंग किए, तब फिर हम लोग जैसे अलमारी बक्सा ये सब बनाना शुरू किए।
1: आज देखिए आपके वर्कशॉप में भी कितने लोग काम कर रहे हैं, तो कितने लोग आज आप काम करते हैं?
2: हमारे वर्कशॉप में अभी 3 जन काम कर रहे हैं, एक बक्सा मिस्त्री है, एक अलमारी मिस्त्री है और एक पेंटर है।
1: मतलब 3 अलग अलग काम करने के लिए 3 अलग अलग
2: जी
1: लेबर है?
2: जी, और हम खुद से अपना काम करते हैं।
1: आप खुद भी अपना काम करते हैं, क्योंकि आप तो शुरुआत से गर्म काम कर रहे थे उस समय से, आपका ये अनुभव है। अच्छा, जैसे कोई एक व्यवसाय होता है तो उसमें परिवार के लोगों का भी सहयोग के बिना तो व्यवसाय सफल नहीं हो पाता है, आगे संभव नहीं हो पाता है, तो परिवार के लोगों को कितना आपका सहयोग मिल पाता है?
2: परिवार जैसे अभी बच्चा लोग थोड़ा बड़ा हो गया तो लोग सहयोग करते हैं।
1: हाँ,
2: एक लड़का हमारा एडवोकेट है, अब कोर्ट से आने के बाद जो है सो हम हमारे पास सहयोग।
1: तो मतलब परिवार के सभी सदस्यों का सहयोग मिलता है?
2: जी जी।
1: और जैसे कि जब हम कोई व्यवसाय करते हैं तो उसकी अपनी चुनौतियां हैं, उसकी अपनी समस्याएं हैं, तो किस तरह के समस्याओं का सामना करते हुए आप यहाँ तक आए हैं, इस बारे में कुछ बताइए।
2: मतलब हम तो पढ़ाई भी किए और पढ़ाई करने के साथ साथ हम ये व्यवसाय में भी आए हैं।
1: तो शुरू में कितना समय देते थे, जैसे जब पिताजी थे जब काम करते थे उस समय?
2: तो हम पिताजी तो हमारे बहुत छोटे में ही गुजर गए थे, समझे ना, तो हमारी माँ थी, वो माँ भी हमको बहुत कोऑपरेट की। तो माँ भी अभी गुजर गई है, तो अभी बच्चा लोग है वो लोग कोऑपरेट करता है।
1: और जैसे कि बाजार की बात करते हैं तो बाजार कहाँ कहाँ है, इसका मतलब आप बेचते कहाँ है इसको?
2: नहीं, बेचते तो यही पर से है,
1: लेकिन आपके ग्राहक कहाँ कहाँ है?
2: ग्राहक तो मतलब बहुत जगह है, जो भी एक बार सामान ले गए तो हमारे ग्राहक बन जाते
1: हैं। हमारे शहर में ही हजारीबाग शहर से बाहर?
2: हजारीबाग से बाहर भी है।
1: जैसे
2: आपका चतरा हो गया, फिर आपका इधर बिसुनगढ़ हो गया, फिर आपका बड़का गांव हो गया, इधर से लोग आते हैं और सब ले जाते हैं।
1: अच्छा, जैसे कि आपका ये वर्कशॉप देखकर, आपका काम देखकर ऐसा लगता है कि इसमें बहुत एक स्किल की जरूरत होती है, जैसे बहुत सारे लोग हैं एमबीए करके आए और इस तरह के व्यवसाय कर रहे हैं, तो आप पारंपरिक रूप से कर रहे हैं और इतना बेहतर कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या मानते हैं?
2: इसके पीछे का कारण क्या, मतलब वही है कि हम लोग अपना मेहनत से आगे बढ़े हैं।
1: मेहनत से आगे बढ़े? हाँ। जैसे कहते हैं कि किसी व्यवसाय की सबसे बड़ी चुनौती होती है कि जो नई टेक्नोलॉजी है, नई चीजों को उसमें अपनाना है, तो आप उन चीजों को अपनाए हैं अपने व्यवसाय में?
2: हाँ, नया चीज भी अपनाए हैं बहुत सारा चीज।
1: और जैसे कि कोई इस व्यवसाय को करना चाहता है, जैसे कोई युवा है, तो उसको क्या आप सलाह देना चाहेंगे, किस तरह इस व्यवसाय में आगे बढ़ सकता है?
2: नहीं, व्यवसाय करने में ठीक है, कोई वैसा बहुत ज्यादा पूंजी नहीं लगता है, समझे, कम पूंजी में भी अगर अपने से अगर वो जानते हैं तो बहुत अच्छा है, समझे ना। हम तो अपना मतलब हमारे वर्कशॉप से 3-4 मतलब स्टाफ जो को हम सिखाए हैं, वो लोग अपना अपना धंधा कर रहा है, बहुत अच्छा है वो लोग।
1: मतलब आप यहां से सीखे, हाँ, उसके बाद वो व्यवसाय करते हैं?
2: एक चतरा में जाकर दुकान किया है, एक गुमला में है, एक हजारीबाग में ही पिलावल में अपना काम कर रहा है।
1: मतलब ये भी आपके, ये उपलब्धि भी आपके?
2: हाँ।
1: और जैसे कोई व्यक्ति, कोई नया लड़का है या कोई नया इस व्यवसाय में आना चाहता है,
2: हाँ,
1: तो वो कैसे कर सकता है?
2: हाँ, वो आने के लिए अगर चाहता है तो हम उसको, अगर हमारे पास आएगा तो हम उसको सिखलाएंगे।
1: नहीं, जैसे बहुत सारे लोग हैं बाहर दूर दराज का, जैसे रेडियो में कोई कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो जो आपके साथ, आपके पास नहीं आ सकते हैं, तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे?
2: हम तो यही सलाह देंगे कि कम पूंजी में अच्छा बिजनेस है, आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। अगर आप अपने से करते हैं तो मतलब आपका लेबर चार्ज भी आपके पास ही रह जाता है।
1: मतलब अगर खुद से काम अगर आता है तो उसमें मतलब लागत भी कम,
2: हाँ,
1: और मुनाफा उसका ज्यादा,
2: हाँ, ज्यादा होगा।
1: कपिल जी, सबसे बड़ी

0: या कोई ड्राम का जरूरत हुआ तो ड्राम भी ले गए, तो इस तरह से बिक जाता है।
1: अच्छा, एक व्यवसायी का सपना होता है कि वो और आगे बढ़े, कुछ और बेहतर हो उसके जिंदगी में, तो आपके पास भी तो कोई सोच होगी कि और इसको यहाँ तक ले जाना है।
0: हाँ वो तो है, तो अब तो हम तो मतलब अब जो कर रहे हैं वो तो ये हो गया, अब तो हमारा लड़का लोग है, अगर वो लोग चाहे तो ले जा सकते हैं।
1: जैसे कहाँ तक इसको ले जा सकते हैं, किस तरह से परिवर्तित कर सकते हैं?
0: तो इसके लिए तो मतलब अगर इसी में जुटने से तो आप मतलब बड़ा व्यवसाय भी कर सकते हैं इसमें, और जैसे कि होलसेलर वगैरह भी कर सकते हैं, किन्हीं को जैसे अलमारी है वो हम लोग दे सकते हैं, उन लोग भी अपना बेचकर मुनाफा कमाते हैं लोग,
1: मतलब कि होलसेल के काम में इससे आगे बढ़ा जा सकता
0: जी,
1: है।
0: जी।
1: तो जैसे देखिए बाहर में जैसे महानगरों की बात करते हैं तो वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों की चीजें, या कहे कि ब्रांडेड हो गैर ब्रांडेड हो, तो बड़ी इस तरह की चीजें हजारीबाग के बाजार में भी है।
0: हाँ,
1: तो
0: भी है।
1: हाँ, तो बाहर से जो चीजें आती है तो क्या यहाँ से ये सारी चीजें संभव नहीं है?
0: नहीं, यहाँ से भी संभव है, समझे ना। लेकिन है क्या कि आदमी उतना करने लायक, और उसमें जो है सो बड़ा पूंजी का जरूरत पड़ता है, जैसे उसमें बड़ा बड़ा मशीन का भी जरूरत पड़ता है, तो हम लोग उतना बड़ा मशीन नहीं लगा सकते, इसी के चलते हम लोग हाथ से ही ये सब काम कर लेते हैं।
1: बड़े मशीन की बात करें तो किस तरह के मशीन का उपयोग होता है?
0: वो बैंड मशीन हो गया उसमें, फिर आपका स्पॉट वेल्डिंग हो गया, ये सब का जरूरत पड़ता है, रंग करने का बड़ा मशीन होता है, वो सब जरूरत पड़ता है।
1: मतलब बड़े पैमाने पर करने के लिए मशीनें हैं?
0: मशीनें
1: हैं
0: जी।
1: तो वो सारी चीजें बाजार में है, उसको लाकर किया जाए?
0: बाजार में है, लेकिन हम लोग के पास उतना पूंजी नहीं है और उतना जगह भी नहीं है जो कि हम लोग उतना बड़ा पैमाने पर कर सके,
1: लेकिन संभव है, इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। तो आप जैसे अपने बच्चों को बोलते हैं कि इस व्यवसाय में आएंगे तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, वहीं से बात बताइए।
0: वो असल बात है क्या, देखिए हमारे बच्चे जो है सो दो लड़का है, तो एक एडवोकेट है और एक इंजीनियरिंग कर रहा।
1: अच्छा,
0: हम
1: तो अपने
0: हाँ तो हम है तो हम इसको चला रहे हैं। अगर बच्चे लोग आना चाहते हैं तो हम तो कहेंगे कि भाई बहुत अच्छा है, अपना घर में रहकर आप व्यवसाय कर सकते हैं, दूर जाने का जरूरत नहीं है, पढ़ लिख कर भी आप बड़ा पैमाने पर कर ले जा सकते हैं इसको।
1: चूंकि परिवार का व्यवसाय है
0: जी,
1: ज्यादा आगे इसमें भी बढ़ा जा
0: जी,
1: सकता है।
0: जी,
1: चलिए कपिल देव जी, आपने इतनी अच्छी बात की, अपने व्यवसाय के बारे में बताया, अपनी चुनौतियों और संघर्ष की बातें हमारे साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: ठीक है, नमस्कार सर।
2: आप सुन रहे थे ये बातचीत, कपिल देव विश्वकर्मा से बातचीत कर रहे थे सूरज रजक, और ये बातचीत का पुनः प्रसारण था आज के इस कार्यक्रम में। और अब कार्यक्रम में एक और देशभक्ति गीत।

आप सुन रहे थे श्रमिकों को संबोधित कार्यक्रम मेहनतकश। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:30।

भारत की पहचान केवल इसकी सीमाओं से नहीं बल्कि इसकी विविधता, संस्कृति और आपसी भाईचारे से भी होती है। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग परंपराएं, फिर भी दिल एक, यही है हमारी भारत की खूबसूरती। सुनवा रहे हैं मन में देश प्रेम जगाने वाला ये गीत।

दोस्तों 15 अगस्त का दिन हमारे देश के इतिहास का वह गौरवशाली दिन है जब भारत ने वर्षों की गुलामी के बाद स्वतंत्रता की नई सुबह देखी। यह दिन हमें उन अनगिनत वीरों के बलिदान की याद दिलाता है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आजादी की सांस लेने का अधिकार दिया। सुनते हैं ये अगला देशभक्ति गीत।

आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:39 और 35 सेकंड हो रहे हैं। थोड़ी देर बाद आप रांची केंद्र से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: जन जन तक पहुँचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
2: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आँखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखे तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
3: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
2: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
5: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
6: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
5: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
7: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत ताराबाद, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें। फसल बीमा

आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से राष्ट्र को किया संबोधित। विकसित भारत के लिए सप्तधारा की घोषणा। युवाओं को संसाधनों की नहीं होने दी जाएगी कमी। राज्य भर में 80वें स्वतंत्रता दिवस पर शान से लहराया तिरंगा। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता पर दिया जोर। जश्न आजादी पर समूचे राज्य में दिखा देशभक्ति का जोश और जज्बा। विधानसभा, राजनीतिक दलों के कार्यालयों समेत कई स्थानों पर ध्वजारोहण। रांची में आंदोलनरत छात्रों ने निकाली भव्य तिरंगा यात्रा।

0: खतरा, न्याय की आवाज की बुलंद, गड़बड़ियों के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग और गुमला, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले में आज और कल भारी बारिश का पूर्वानुमान, आंधी और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी। और अब समाचार विस्तार से। देश ने आज हर्ष और उल्लास के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण किया और राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने पिछले एक दशक के दौरान देश की उपलब्धियों और विकसित भारत निर्माण की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी दी। उन्होंने विकसित भारत के लिए सप्तधारा का रोडमैप भी प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने युवाओं से बड़े सपने देखने का आह्वान करते हुए उन्हें संसाधनों और योग की कमी नहीं होने देने का आश्वासन दिया।
1: गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में 6 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय करते हुए कहा कि इससे महिलाओं की मजबूती के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के अपने लक्ष्य को पहले ही पार कर चुकी है।
2: बेटियां जिन्होंने पासपोर्ट क्या होता है पता तक नहीं था, वो बेटियां विदेशों में गई, ट्रेनिंग लेकर के आई और आज चिप निर्माण का काम कर रही है। आज 3 करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है।
0: झारखंड में भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर हर ओर उमंग और उत्साह दिख रहा है। मुख्य राजकीय समारोह रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आयोजित हुआ, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मिलीजुली टुकड़ियों का निरीक्षण करने के बाद ध्वजारोहण किया। परेड में पहली बार ओडिशा की टुकड़ी भी शामिल हुई। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरकार के सुधारात्मक कार्यों का भी जिक्र किया। श्री सोरेन ने राज्य में जारी विकास गतिविधियों की चर्चा की। उन्होंने विकसित झारखंड के निर्माण के सामूहिक भागीदारी पर जोर दिया।
3: मेरे युवा साथियों, रोजगार हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। हमारा उद्देश्य केवल रिक्त पद भरना नहीं, हमारा लक्ष्य ऐसे झारखंड बनाना है जहां सरकारी सेवा के साथ साथ उद्योग, एमएसएमई, कृषि, डेयरी, मत्स्य, पर्यटन, डिजिटल सेवाओं और स्टार्टअप के क्षेत्रों में भी लाखों नए अवसर तैयार हों।
0: उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मिलीजुली टुकड़ियों का निरीक्षण करने के उपरांत ध्वजारोहण किया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री गंगवार ने विकास को नया आयाम देने की प्रतिबद्धता जताई। प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर राज्यपाल ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक और अनियमितताएं स्वीकार नहीं की जा सकती। श्री गंगवार ने परीक्षा प्रणाली की कमियों की समीक्षा कर उन्हें दूर करने के लिए प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने पर बल दिया।
4: परीक्षा व्यवस्था में प्रश्न पत्र लीक, कदाचार अथवा किसी भी प्रकार की अनियमितता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसी घटनाएं मेहनत और प्रतिभा के आधार पर आगे बढ़ने वाले विद्यार्थियों के मनोबल और भविष्य को प्रभावित करती है। मैं अपेक्षा करता हूं कि राज्य सरकार परीक्षा प्रणाली की कमियों की गहन समीक्षा कर उन्हें दूर करने के लिए ठोस कदम उठाएगी।
0: स्वतंत्रता दिवस पर राज्य के अलग अलग जिलों में मंत्रियों ने ध्वजारोहण किया। पश्चिमी सिंहभूम के जिला मुख्यालय चायबासा में मंत्री दीपक बिरवा ने झंडोत्तोलन किया, जबकि लोहरदगा में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। जामताड़ा में मंत्री इरफान अंसारी और बोकारो में मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने ध्वजारोहण किया। गिरिडीह में मंत्री सुदिव्य कुमार, जबकि रामगढ़ में मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। देवघर में मंत्री हफीजुल हसन और पलामू में मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने ध्वजारोहण किया और राज्य में चल रही विकास योजनाओं की जानकारी साझा की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल

0: @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वतंत्रता दिवस पर राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और इस बात पर जोर दिया कि देश हमेशा उनके विचारों और कार्यों से प्रेरणा लेता रहेगा। जश्न आजादी पर समूचे राज्य में देशभक्ति का जोश और जज्बा देखने को मिला। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने विधानसभा परिसर में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर विधानसभा के अधिकारी और कर्मी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस दौरान श्री महतो ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया।
1: झारखंड की धरती पर स्वतंत्रता का स्मरण करते हैं तो हम बाबा तिलका मांझी ने 1784 में अंग्रेजों के सत्ता के विरुद्ध प्रतिरोध का बिगुल बजाया। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो ने 1855 में संथाल हुल के नेतृत्व दिया। धरती आबा बिरसा मुंडा ने औपनिवेशिक सत्ता को चुनौती किया।
0: स्वतंत्रता दिवस पर हजारीबाग के कर्जन ग्राउंड में प्रमंडलीय आयुक्त विजय कुमार गुप्ता ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं से प्रमंडल के लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। राज्य के विभिन्न जिलों में उपायुक्तों ने ध्वजारोहण किया। इसके अलावा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और राजनीतिक दलों के कार्यालयों समेत अन्य जगहों पर राष्ट्रध्वज फहराया गया। रांची में छात्रों का आंदोलन आज 22वें दिन भी जारी रहा। राज्य सरकार तक संदेश पहुंचाने के लिए छात्रों और अभ्यर्थियों ने आज जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से तिरंगा यात्रा निकाली। उन्होंने राज्य सरकार की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। तिरंगा यात्रा में शामिल युवाओं ने प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की। राज्य के कई इलाकों में 18 अगस्त तक भारी बारिश के आसार हैं। आज गुमला और खूंटी समेत कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं कल सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला और खूंटी में भारी बारिश की संभावना है। 17 अगस्त को गुमला और सिमडेगा समेत कुछ अन्य जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान है, जिसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। वहीं 18 अगस्त को हजारीबाग समेत कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से राष्ट्र को किया संबोधित। विकसित भारत के लिए सप्तधारा की घोषणा, युवाओं को संसाधनों की नहीं होने दी जाएगी कमी। राज्य भर में 80वें स्वतंत्रता दिवस पर शान से लहराया तिरंगा। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता पर दिया जोर। जश्न आजादी पर समूचे राज्य में दिखा देशभक्ति का जोश और जज्बा। विधानसभा राजनीतिक दलों के कार्यालयों समेत कई स्थानों पर ध्वजारोहण। रांची में आंदोलनरत छात्रों ने निकाली भव्य तिरंगा यात्रा। न्याय की आवाज की बुलंद, गड़बड़ियों के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग। और गुमला, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले में आज और कल भारी बारिश का पूर्वानुमान। आंधी और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे गोड्डा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गोड्डा संवाददाता।
1: राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। गोड्डा के गांधी मैदान में श्रम एवं नियोजन मंत्री संजय प्रसाद यादव जी ने तिरंगा फहराया। मंत्री श्री यादव ने परेड की सलामी ली तथा जिले वासियों को संबोधित कर जिला सहित राज्य में विकास कार्यों से लोगों को अवगत कराया है।
2: स्वास्थ्य क्षेत्र में हमारा हराया सड़क फंसा, ये फंसे नागरिक को पैसा और पूरा स्वास्थ्य स्वास्थ्य सेवाओं ध्यान संसार फसल एवं पूर्ण प्रगति हुए है।
1: गोड्डा महागामा नई रेल

0: के साथ गोड्डा में बन रहे वाशिंग पिट का निरीक्षण करने डीआरएम मनीष गुप्ता गोड्डा पहुंचे। गत दिनों निरीक्षण के दौरान डीआरएम श्री गुप्ता ने भागलपुर गोड्डा रेल मार्ग से सेफ्टी से जुड़ी मामले का निरीक्षण किया।
1: प्राइमरीली तो आज विजिट जो है हमारे भागलपुर गोड्डा वाला सेक्शन में सेफ्टी को लेकर है, ट्रैक SMT TRD और बाकी जो हम लोगों के इक्विपमेंट्स हैं, हम लोगों के एसेट्स हैं, उनके रखरखाव से रिलेटेड इश्यूज तो नहीं है।
0: वहीं मानसून के गतिशील होने के साथ किसान खेती कार्य में लगे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से नीरज किशोर।
2: अभी आप सुन रहे थे गोड्डा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। हमारे अगले प्रसारण की थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: आइए सुने। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का राज्य की जनता के नाम ये संदेश।
1: जोहार मेरे प्यारे झारखंड वासियों, स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को हृदय से शुभकामनाएं और अनेक अनेक बधाइयां। आज हम उस महान भारत के स्वतंत्रता का उत्सव मना रहे हैं जिसके लिए असंख्य वीरों ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा भीमराव अंबेडकर, उन सभी महान विभूतियों को जिनके त्याग और संघर्ष ने भारत को स्वतंत्रता का एक अमूल्य उपहार दिया। झारखंड के इस पवित्र धरती ने भी स्वतंत्रता, स्वाभिमान और न्याय के लिए अनेक महान योद्धा देश को दिए, जिनमें से

हमारे राज के भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, तिलका मांझी, फूलो जानू, नीलांबर पीताम्बर, शेख भिखारी और हमारे सभी अमर शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। साथ ही मैं दिशोम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन जी को भी सादर नमन करता हूँ, जिन्होंने जल जंगल जमीन, आदिवासी अस्मिता और झारखंड राज्य के निर्माण के लिए अपना पूरा जीवन संघर्ष को समर्पित किया। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि अधिकार संघर्ष से मिलते हैं और विकास तभी सार्थक होता है जब उसमें समाज के अंतिम व्यक्ति भी सहभागी बने। स्वतंत्रता केवल राजनीतिक आजादी का नाम नहीं, स्वतंत्रता का अर्थ है हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर युवा को सम्मानजनक रोजगार का अवसर मिले, हर किसान को समृद्धि मिले, हर महिला आत्मनिर्भर बने, हर झारखंडी अपना भाषा, संस्कृति, परंपरा पर गर्व के साथ आगे बढ़े और सभी को समान अवसर मिले, समान सम्मान और न्याय के साथ जीवन जीने का अधिकार मिले। आज भारत अपनी स्वतंत्रता के 80वें वर्ष में है और झारखंड अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर एक नए पड़ाव पर खड़ा है। हमारे प्यारे झारखंडवासियों, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त केवल इतिहास का एक तिथि ही नहीं बल्कि एक निरंतर चलने वाली जिम्मेदारी है। हमारे पूर्वजों ने हमें स्वतंत्र भारत दिया और झारखंड के महान जननायक ने हमें स्वाभिमान, प्रकृति के प्रति सम्मान और न्याय के लिए संघर्ष की प्रेरणा दी। इसलिए आज जब हम स्वतंत्रता का उत्सव मना रहे हैं, तब सबसे पहले उस विरासत को नमन करना हमारा कर्तव्य है जिसने झारखंड की आत्मा को आकार दिया। हमारे लिए संस्कृति केवल अतीत की स्मृति नहीं बल्कि भविष्य का मार्गदर्शन भी है। जल जंगल और जमीन के साथ संतुलित जीवन जीने की जो जीवन दृष्टि हमारे पूर्वजों ने हमें दी है, आज पूरा विश्व उसी दिशा में समाधान खोज रहा है। जब दुनिया जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की बात कर रही है, तब हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी सभ्यता सदियों से इन्हीं मूल्यों पर आधारित है। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो जानू और हमारे सभी महान नायकों ने केवल अन्याय के विरुद्ध संघर्ष नहीं किया बल्कि एक ऐसे समाज का सपना देखा जहाँ सम्मान, समानता, सामुदायिक सहभागिता और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता जीवन का आधार हो। हम ऐसे झारखंड बनाना चाहते हैं जहां राज्य का हर युवा आधुनिक शिक्षा, विज्ञान, तकनीक और उद्यमिता में अग्रणी हो, जहां हमारी सभी भाषाएं, साहित्य के लोक कला, संस्कृति, संगीत, विरासत नई पीढ़ी तक सम्मान पूर्वक पहुंच सके, जहां लाह, तसर, बांस, मिलेट, औषधि पौधे और लघु वनोपज केवल पारंपरिक आजीविका न रहे बल्कि वैल्यू एडिशन, ब्रांडिंग और बाजार से जुड़कर लाखों परिवारों की आय का आधार बने, जहां ग्राम सभा, स्थानीय ज्ञान और आधुनिक तकनीक मिलकर विकास का नया मॉडल प्रस्तुत करे, जहां विकास का अर्थ केवल खनिज का दोहन नहीं बल्कि मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और सांस्कृतिक विरासत तीनों का संतुलन विकसित हो। झारखंड केवल भारत का एक राज्य नहीं है, यह भारत की आदिवासी चेतना का केंद्र है और हमारा प्रयास है कि झारखंड की पहचान केवल खनिज संपदा से नहीं बल्कि पारंपरिक ज्ञान, संस्कृति, समृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग और सामाजिक न्याय पर आधारित विकास मॉडल से बने। मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में झारखंड पूरे देश को यह दिखाएगा कि विकास और प्राकृतिक, आधुनिकता और परंपरा, उद्योग और पर्यावरण के बीच टकराव नहीं बल्कि संतुलन स्थापित किया जा सकता है। मेरे युवा साथियों, हमारे विरासत हमें पहचान देती है लेकिन हमारे युवा उस पहचान को भविष्य देती है। यदि हमें अगले 25 वर्षों का झारखंड बनाना है तो उसकी सबसे बड़ी शक्ति हमारे युवा होंगे। आपका शिक्षा, आपका कौशल, आत्मविश्वास और आपके सपने ही विकसित झारखंड की असली पूंजी है। मैं आज इस ऐतिहासिक अवसर पर विशेष रूप से आपसे संवाद करना चाहता हूं। झारखंड के लाखों युवा आज अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनके माता पिता अपनी क्षमता से बढ़कर उन्हें पढ़ा रहे हैं।
इसलिए यह हमारी सर्वोच्च जिम्मेदारी है कि उनकी मेहनत का सम्मान हो, उनके प्रतिभा को न्याय मिले। मैं जानता हूं कि पिछले कुछ समय में भर्ती परीक्षाओं को लेकर अनेक प्रश्न उठे हैं। जब परीक्षा व्यवस्था पर संदेह पैदा होता है तो केवल एक परीक्षा प्रभावित नहीं होता, बल्कि पूरी एक पीढ़ी का विश्वास प्रभावित होता है। मैं आज इस ऐतिहासिक मंच में झारखंड के प्रत्येक विद्यार्थी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके मेहनत को किसी भी माफिया, किसी भी भ्रष्ट तंत्र और किसी अनियमितता के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा। देश के अनेक राज्यों और कई राष्ट्रीय परीक्षाओं में भी प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा संबंध गंभीर अनियमितताओं के मामले सामने आए हैं। यह पूरे देश के सामने एक गंभीर चुनौती है, लेकिन मैं यह भी स्पष्ट कहना चाहता हूं कि दूसरे राज्यों में क्या हुआ उससे झारखंड की जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण झारखंड का युवा है, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण उसका भविष्य है, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण उसका विश्वास है। इसलिए केवल कार्रवाई ही नहीं बल्कि व्यवस्था में परिवर्तन का निर्णय लिया है। जांच पूरी निष्पक्षता से होगी, जो भी दोषी होगा कानून उसके साथ कठोरता से पेश आएगा। कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, यदि उसके संलिप्तता सिद्ध होती है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन साथ ही हम बिना प्रमाण के किसी को दोषी ठहराने की भी राजनीति नहीं करेंगे। न्याय होगा और निष्पक्ष होगा। साथियों, सिर्फ दोषियों को पकड़ना ही समाधान नहीं है, असली समाधान ऐसी व्यवस्था बनाना है जिससे भविष्य में कोई भी युवाओं के सपने के साथ खिलवाड़ करने का साहस ना कर सके। इसी उद्देश्य से हमारी सरकार परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की दिशा में आगे बढ़ रही है। हमारा लक्ष्य है समयबद्ध वार्षिक परीक्षा कैलेंडर प्रकाशित होना, पारदर्शी और तकनीकी सुरक्षित परीक्षा प्रणाली, उत्तर कुंजी एवं OMR की समयबद्ध उपलब्धता, परीक्षा प्रक्रिया में बहुस्तरीय जवाबदेही और ऐसी व्यवस्था जिसमें पारदर्शिता अपवाद नहीं बल्कि एक नियम हो। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैं सरकार के साथ आपकी सहभागिता चाहते हैं, इसलिए हमने छात्रों की बात छात्रों के साथ अभियान प्रारंभ किया है। मैं चाहता हूं कि झारखंड के प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक शिक्षक, प्रत्येक शिक्षाविद और प्रत्येक अभिभावक परीक्षा सुधार में इस अभियान का सहभागी बने। हम उनके सुझाव सुनेंगे, विशेषज्ञों के साथ उनका अध्ययन करेंगे और जहां संभव होगा उन्हें नियमों एवं संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप लागू करेंगे, क्योंकि मेरा विश्वास है सबसे अच्छी परीक्षा व्यवस्था वही होगी जिसमें बनाने वाले विद्यार्थियों के भी भागीदारी हो। मेरे युवा साथियों, रोजगार हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। हमारा उद्देश्य केवल रिक्त पद भरना नहीं, हमारा लक्ष्य ऐसा झारखंड बनाना है जहां सरकारी सेवा के साथ साथ उद्यमी, MSME, कृषि, डेयरी, मत्स्य, पर्यटन, डिजिटल सेवाएं और स्टार्टअप के क्षेत्र में भी लाखों नए अवसर तैयार हों। इसलिए आने वाले समय में JPSC, JSSC तथा अन्य भर्ती एजेंसियों के माध्यम से बड़ी संख्या में नियुक्ति प्रक्रियाएं समयबद्ध रूप से आगे बढ़ाई जाएंगी, ताकि युवाओं को अवसर भी मिले और व्यवस्था पर विश्वास भी मजबूत हो। मैं आज झारखंड के प्रत्येक युवा से केवल एक आग्रह करना चाहता हूं, अपनी मेहनत पर विश्वास बनाए रखिए, अपना परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। आपके सपनों का रक्षा करना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि मेरा व्यक्तिगत दायित्व भी है। मैं झारखंड के युवाओं से केवल धैर्य नहीं मांगता, मैं उनका विश्वास भी मांगता हूं, और उस विश्वास को बनाए रखना मेरी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम ऐसी परीक्षा व्यवस्था बनाएंगे जिस पर अभ्यर्थी को भरोसा हो, समाज को विश्वास हो और देश झारखंड का उदाहरण दे। मैं किसानों से भी कुछ कहना चाहता हूं। झारखंड की आत्मा उसके खेतों में बसती है। हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं बल्कि हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था की सबसे मजबूत नींव है। हमने किसानों को सिंचाई, बीज समर्थन मूल्य, कृषि यांत्रिकरण और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मजबूत करने का प्रयास किया है। राज्य में कृषि और बागवानी के क्षेत्रों को
प्रोत्साहित कर

अर्थव्यवस्था में विविधता लाने का प्रयास किया गया है। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत राज्य के लगभग 2,15,000 एकड़ जमीन पर वृक्षारोपण किया गया है और लगभग 3,00,000 परिवारों को आजीविका के नए माध्यम से जोड़ा गया है। इनके द्वारा उत्पादित आम विदेशों में भी सफलतापूर्वक निर्यात भी किया गया है। हमारा लक्ष्य केवल खेती को सहारा देना नहीं बल्कि खेती को लाभकारी बनाना है। आने वाले वर्षों में हमारा प्रयास होगा कि झारखंड का किसान केवल धान उत्पादक बनकर ना रहे बल्कि कृषि उद्यमी बने। हम फल, सब्जी, बागवानी, डेयरी, मत्स्य पालन, कुकुट पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन, लाह, तसर, मिलेट, औषधि पौधों और लघु वनोपज आधारित अर्थव्यवस्था को भी नई गति देंगे। साथियों, किसी भी राज्य की आर्थिक शक्ति केवल बड़े उद्योग से ही नहीं बल्कि लाखों छोटे उद्यमियों से बनती है। झारखंड के युवा कारीगर, बुनकर, महिला स्वयं सहायता समूह, हस्तशिल्पी और छोटे उद्यमी हमारे अर्थव्यवस्था की वास्तविक ताकत है। एमएसएमई क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण एवं प्रभावकारी भूमिका निभाता है, साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराता है। वर्तमान में झारखंड में 16,00,000 से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमी एमएसएमई हैं। इनमें 8,00,000 से अधिक सूक्ष्म इकाइयां शामिल हैं, जो 60,00,000 से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रही है। हमारा लक्ष्य एक ऐसे औद्योगिक वातावरण तैयार करने का है जहां स्थानीय उत्पाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचे। हर जिले में स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योग विकसित हों, स्टार्टअप और नवाचार को प्रोत्साहन मिले और युवा को अपने ही जिले में सम्मानजनक रोजगार मिले। हाल ही में हमारी सरकार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन राज्य के विकास को दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल रही है। इस राष्ट्र मंच पर उद्योग जगत, निवेशकों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों के साथ उद्योग, पर्यटन, आईटी, एआई, आधारभूत संरचना और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में निवेश और नवाचार को बढ़ावा देने पर व्यापक विचार विमर्श हुआ। सरकार के प्रयासों के कारण कंसल्टेशन में प्रमुख कॉरपोरेट समूह के साथ साथ लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए 10 एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इन निवेश प्रस्तावों से राज्य के 22,000 से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। मेरी माताओं, बहनों और बेटियों, किसी भी समाज की प्रगति महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। हमने सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में अनेक कदम उठाए हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में हमारी सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की चर्चा देश भर में हो रही है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 3 वर्षों से लगातार हमारी बहनों, दीदियों के चेहरे पर मुस्कान की गारंटी बन गई है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण के स्तर में सुधार हुआ है। वहीं दूसरी तरफ 2,500 रुपये प्रति माह नियमित वित्तीय सहायता से महिलाएं आत्मनिर्भर हुई हैं और अपनी उद्यमशीलता का विकास करने में ज्यादा सक्षम हुई हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना अंतर्गत 15,000 करोड़ रुपया का आर्थिक लाभ सीधे लाभुकों के खाते में उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन हमारा अगला लक्ष्य इससे भी बड़ा है। हम चाहते हैं कि झारखंड की महिलाएं न केवल योजनाओं की लाभार्थी रहे बल्कि किसान उत्पादक संगठन की नेता बने, उद्यमी बने, निर्यातक बने, डिजिटल अर्थव्यवस्था की सहभागी बने, झारखंड की नई विकास यात्रा का अग्रदूत बने। ग्रामीण महिलाएं सखी मंडल के माध्यम से संगठित होकर स्वावलंबन एवं आर्थिक आत्मनिर्भर की मिसाल बन रही हैं। सखी मंडल की दीदियों द्वारा निर्मित प्लास ब्रांड अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है। 3,25,000 से अधिक सखी मंडल का गठन कर 35,00,000 परिवारों को सखी मंडल में जोड़ा जा चुका है। इन सखी मंडलों को लगभग 3,000 करोड़ रुपए की राशि चक्रीय निधि एवं सामुदायिक निवेश निधि के रूप में तथा 20,000 करोड़ रुपए बैंकों से क्रेडिट लिंकेज के रूप में उपलब्ध कराया गया है। ग्रामीण महिलाओं के हाथों से

0: संचालित गुमला जिले का जोहार रागी मिशन एक आंदोलन के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। महज 10 महिलाओं के साथ वर्ष 2022 से शुरू हुआ रागी मिशन और बाजरा प्रोसेसिंग आज 35,000 से अधिक किसानों और 500 से अधिक महिला शेयर धारकों की आजीविका का सशक्त साधन तथा ग्रामोदय से भारत का उदय का एक प्रेरक मिसाल बन गया है। मैं कहना चाहूँगा कि हमारे गांव देहात में रहने वाली माताएं बहनें झारखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने में अग्रसर है। साथियों, स्वास्थ्य केवल बीमारी का इलाज नहीं बल्कि जीवन की गुणवत्ता का आधार है। हमारा उद्देश्य ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था विकसित करना है जो शहर और गांव दोनों के नागरिकों को समान चिकित्सा सुविधा दे। हम आधुनिक अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग शिक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं, टेलीमेडिसिन और प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था की ओर मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। पंचायतों में दवा दुकान खोलने के वादे को आगे बढ़ाने के साथ साथ हमारी सरकार राज्य के सभी पंचायत को डेडिकेटेड एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है, जिसका संचालन स्थानीय ग्राम एवं पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा सुपर स्पेशलिस्ट रिम्स 2 का निर्माण कराया जा रहा है। इसके अलावा 6 नए चिकित्सा महाविद्यालय पूर्व सिंहभूम, खूंटी, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, धनबाद में भी निर्माण कार्य किए। ग्रासरूट लेवल पर स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ कराने हेतु मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला अस्पताल तथा चिकित्सा महाविद्यालयों को आधुनिक बनाने का कार्य किया जाएगा। हम बीमारी के इलाज से अधिक रोकथाम, पोषण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और जन स्वास्थ्य जागरूकता पर बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि झारखंड का प्रत्येक नागरिक यह विश्वास करे कि कठिन से कठिन बीमारी के समय भी उसकी सरकार उसके साथ खड़ी है। हमारा लक्ष्य केवल बेहतर अस्पताल बनाना नहीं बल्कि एक स्वास्थ्य सक्षम और आत्मविश्वासी झारखंड का निर्माण करना है। प्यारे झारखंड वासियों, आज जब हम स्वतंत्रता के 80 वर्ष पूरा होने का उत्सव मना रहे हैं और झारखंड अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर रहा एक नए पड़ाव पर खड़ा है, तब यह समय केवल उपलब्धियों का लेखा जोखा प्रस्तुत करने का नहीं बल्कि आने वाले 25 वर्षों का दिशा तय करने का है। हमारा सपना ऐसा झारखंड है जहां विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, जहां झारखंड अस्मिता और आधुनिक प्रगति के साथ आगे बढ़े, जहां किसान सम्मान के साथ समृद्धि का जीवन जिए, जहां महिलाएं विकास की सहभागी ही नहीं बल्कि नेतृत्वकर्ता बने, जहां हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाए, जहां हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले और जहां प्राकृतिक संसाधनों का लाभ सबसे पहले झारखंड के लोगों को मिले। हम ऐसे झारखंड बनाना चाहते हैं जहां विकास की पहचान केवल ऊंची इमारतों से नहीं बल्कि ऊंचे अवसरों से हो, जहां हमारी प्रगति केवल आंकड़ों से नहीं बल्कि लोगों के जीवन में दिखाई दे। मुझे झारखंड की जनता पर पूरा विश्वास है, मुझे अपने किसानों पर विश्वास है, मुझे अपनी माताओं और बहनों पर विश्वास है और सबसे अधिक मुझे अपने युवाओं पर विश्वास है। यही युवा आने वाले झारखंड की नई पहचान लिखेंगे, यही युवा झारखंड को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, ऐसा झारखंड बनाएं जो समृद्ध भी होगा, संवेदनशील भी होगा, आधुनिक भी होगा, अपनी जड़ों से जुड़ा भी रहेगा, विकासशील भी और न्यायपूर्ण भी होगा। यही हमारा स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का सम्मान होगा। यही भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, तिलका मांझी, फूलो जानो, चांद भैरव, शेख भिखारी, नीलांबर पीतांबर, विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो और दिसोम गुरु शिबू सोरेन जैसे महान व्यक्तियों के संघर्ष को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय झारखंड, जय हिंद, जोहार।
1: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का राज्य की जनता के नाम संदेश अभी हम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये
2: श्रोताओं, अभी आप स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री

आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: किसान मन हकै देश कर शान, इनकर साहे देश कर मान।
1: किसान वाणी कार्यक्रम सुनुया सब भाई बहन मन के मनीष भाई कर जोहार और करण भाई और केहू जोहार।
0: जोहार जोहार मनीष भाई और मोर बड़ से हूँ सब सुनय मन के जोहार। बताई दे खोजिला ई कार्यक्रम के प्रायोजक हकै कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: आज तो 15 अगस्त के तो सब वीर सपूत मन के नमन करते हमने मन किसान वाणी कार्यक्रम के आगे बढ़ाईला।
7: एकदम सब वीर सपूत मन के नमन है। और आज हमरे कर देश ले बहुत बड़ दिन है, काले की आज हमरे कर देश कर स्वतंत्रता दिवस।
6: हाँ, सब बड़ एकदम धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाल जाते। और मनीष भाई देखो, हमरे कर किसान मन हूँ, देखो हमरे कर देश ले बहुत बड़ी योगदान देवत है। और अगर अन्न उपजी तो भला कैसे देश आगे बढ़े। किसान मन की हूँ आज का दिन में बहुत बहुत उनके हमरे मन वंदन करेला, नमन करेला।
7: एकदम, काले की किसान भाई बहन मन रोज दिन अपन सांझ बिहान खेत में जाई के जे मेहनत करे ना, संघर्ष करे ना, उकरे फल है कि हमरे मन के अन्न भेटायला और हमरे मन खाई के ऊर्जा प्राप्त करीला। का कहिला?
6: सही कहती। देखो किसान मन अन्न उपजाबे, खेती बाड़ी नहीं करबे तो भला हमरे कर पेट कैसे चली और हमरे मन काम कैसे कर सकेला। तो देखो किसान मन रोज दिन रौरी कहली कि अपन खेत में जाई के काम करे ना। सही बात है, खेत में जाए के चाहिए, काल के खेती लगाए है तो अगर रोज दिन एक ढौ जाबने तो का बीमारी लागत है, पानी मन कैसे आहे कि कौन सुखत है और कौन बट काहे से कर पता लागेला नहीं।
7: एकदम, तो किसान भाई बहन मन हमरे मन के रोज सांझ बिहान अपन खेत में एक धाव जाएक चाहिए और जे फसल लो के देखे चाहिए सब कोना कोना जाए के।
6: एकदम सुपट कहली मनीष भाई। और रौरी तो कहली कोना कोना, तो देखो आजकल तो कोना कोना बद्री मन गिर के लाए
7: मूर्ख नगद कहली रौरे से ले बद्री मन से हो बांचे के हमरे मन के।
6: बद्री से देखो ठनका मन हो सेवरा बांचे के और बद्री के आवे के देखे पानी के नी।
7: हाँ हाँ,
6: और देखो कहें नी की भड़ार कोड़ा से पानी बरसत है, तो ये सब चीज हमरे कर गीत मन में भेटायला।
7: हाँ हाँ।
6: और मनीष भाई देखो हमरे मन तो खेती बाड़ी करेला, खेती बाड़ी कर संगे संगे बहुत एकन हमरे मन बाग बगीचा हूँ लगेला, गच वृक्ष हूँ लगेला है नी।
7: एकदम, उकर से हमरे मन के जो है आमदनियो होएला, खेती बाड़ी फसल कर संगे संगे हमरे जो फल फूल मन कर गच मन लगेला, उकर से हूँ फल फूल मन के बेच के हमरे और अपन आय के दुगना कर सकेला। का कहे?
6: एकदम सही बात है। इकर में का कहे के की इकर में ई कहे का है की जे किसान मन नहीं करे, खाली खेती बाड़ी करे और जे आय आहे तनिक बाँचल ठाव है से मन में कोनो गच बुद्धा नहीं लगाना, तो लगाए चाहिए।
7: लगाए चाहिए, एकदम नगद कहली रहो रे।
6: और मनीष भाई देखो, आप तो खेती करे का तरीका बदल जाई है आजकल, देखो असमेकित खेती जे कहें चाहे मिश्रित खेती उ केहू करल जायला नहीं।
7: हाँ हाँ।
6: खेती कर संगे संगे उकर संगे पशु पालन करल जायला, मछली पोसल जायला, गेड़े मुर्गी मन पोसें तो तनिक ठाव रहला तो पपीता केरा मन केहू लगाएं।
7: एकदम, जे हमरे कर ठाव है खेत मन का आयर मन में उमन में पपीता मन केरा मन आंबा मन के लगाए चाहिए और उकर से फल हो के बेच के हमरे मन दुगु कचिया हूँ कमाई सकेला।
6: हवा पानी हूँ बढ़िया शुद्ध रही, बढ़िया कन आवी है नी।
7: हाँ हाँ।
6: और उकर से हमरे कर जीव जहान बढ़िया रही और हमरे के कचिया हूँ भेटाई।
7: एकदम नगद कहली रहे। तो चलो आज कर बात में हमरे है विषय उपरे कृषि वानिकी का है के, और कृषि वानिकी से किसान मन कर जे आय में वृद्धि होत है कातिर होत है इकर बारे में जानीला ज्योतिष कुमार केरकेट्टा से, और इनकर से गोठी आई है प्रभु शरण।
6: तो चलो सुन ले विला।
8: नमस्कार श्रोताओं, आज हम कृषि वानिकी के बारे में बातचीत करेंगे और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर ज्योतिष कुमार केरकेट्टा, वानिकी वैज्ञानिक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची से। डॉक्टर साहब नमस्कार।
9: नमस्कार जोहार।
8: ने बताया कि आज हम कृषि वानिकी के बारे में बात करेंगे, तो पहले इस टर्म की ही व्याख्या कर ली जाए कि कृषि वानिकी है क्या।
9: कृषि वानिकी को एक मिक्स्ड लैंड यूज सिस्टम हम कह सकते हैं, इस रूप में इसको समझा जा सकता है, जिसमें हम बारहमासी वृक्ष, इसके अलावा झाड़, ताड़ और बांस इत्यादि को कृषि में सम्मिलित करते हैं, जिसमें पशुपालन को भी सम्मिलित किया जा सकता है। जैसा कि मैंने वृक्ष का नाम लिया, तो वृक्ष में मुख्य रूप से आम, लीची, जामुन, कटहल, गमहार, शीशम, बकेन, ये सब जो है झारखंड के लिए बहुत उपयुक्त हैं, और इसमें कुछ फलीदार जो प्रजाति के पौधे होते हैं उनको लगाना करना अच्छा रहेगा। और झाड़ के किस्म में बेर, करौंदा, नींबू प्रजाति, शरीफा, शहतूत, इनको हम लगा सकते हैं। और ताड़ प्रजाति में जो है सुपारी, खजूर, नारियल इत्यादि को हम लगा सकते हैं।
8: कृषि वानिकी के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक प्रश्न ये भी उठता है, जैसा कि अभी आपने बताया, क्या कोई एक नई पद्धति है कृषि वानिकी, या फिर ये पहले से भी प्रचलित थी? और अगर ये पहले से एग्जिस्ट करती थी कृषि वानिकी, तो अब इसमें ऐसा नया क्या आया है कि इसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है?
9: कृषि वानिकी कोई नई चीज नहीं है, यह आदिकाल से पूरे विश्व में प्रचलित है, लेकिन वर्तमान के कुछ दशकों से इसके बहुआयामी लाभ के चलते यह जोर पकड़ता जा रहा है। जैसे भोजन, जलावन, कास्ट, चारा इत्यादि के साथ मिट्टी की गुणवत्ता और स्वास्थ्य, भूमिगत जल की बढ़ोतरी, प्राकृतिक वनों पर दबाव को कम करता है। भारत सरकार ने 2014 में राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति बनाया है, जिसका मूल उद्देश्य कृषि भूमि पर इस प्रकार वृक्षारोपण करना है कि यह फसलों और पशुधन दोनों के लिए लाभदायक हो, ताकि उत्पादन, रोजगार, आय और जीविकोपार्जन के अवसर में छोटे किसानों को सुधार हो सके।
8: कृषि वानिकी का अगर हम समझना चाहें उदाहरण के तौर पे, जैसे किन किन फसलों के साथ कैसे वृक्ष लगाए जा सकते हैं, अगर हम उदाहरण को समझना चाहें सरल भाषा में?
9: इसमें वृक्ष का चयन जो है कि वृक्ष में जो है कि आप अपने जरूरत के अनुसार जो है, जो स्थानीय जरूरत है उसके अनुसार ही इसका चयन किया जाना चाहिए। बारहमासी वृक्ष में आम का अगर जरूरत है, लीची का हो, जामुन का हो, जो भी जरूरत हो उसे, या तो अगर उसे कुछ बेर प्रजाति चाहिए, झाड़ प्रजाति चाहिए, तो बेर, करौंदा, नींबू, शरीफा, ये सब जो है शहतूत वगैरह को हम लगा सकते हैं। और इसके साथ हम कृषि फसल है उनको भी हम शामिल कर सकते हैं।
8: जैसे कृषि फसल की अगर बात चली तो झारखंड में मुख्य रूप से धान है, गेहूं है, या जो खरीफ और रबी की जो फसलें हैं, मक्का है, इन सब चीजों की खेती की जाती है प्रायः, तो क्या इनके साथ भी वृक्ष लगाए जा सकते हैं?
9: हाँ बिल्कुल, इसमें आपको भूमि के अनुसार जो है कि प्रजाति का भी चयन करना होगा, वृक्ष प्रजाति का। जैसे है कि मेड़ पर भी ये जो है कि लग सकते हैं कृषि वानिकी के तहत, अगर जैसे है कि जो लो लैंड है हमारा, जो धान का खेत है
8: जी,
9: अगर उसमें भी अगर हम लगाना चाहें कृषि वानिकी के तहत, तो हम दो वृक्ष का हम जो चयन कर सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से एक हमारा अर्जुन आता है और दूसरा है कि जामुन, जो अत्यधिक पानी वाले स्थिति में भी वो है कि जिंदा रह सकते हैं। ऊपरी ताड़ के लिए जो है हम बाकी जो हमने कहा आम, लीची, जामुन, कटहल, गंवार, शीशम, बकेन वगैरह जो है हम उनका चयन कर सकते हैं। काफी जो है कि जोर दिया जा रहा है कि बांस को भी आप ज्यादा से ज्यादा लगाएं, क्योंकि ये ग्रीन गोल्ड के रूप में भी देखा जा रहा है।
8: तो मुझे जो समझ में बात आ रही है वो कृषि वानिकी के दो फायदे हैं, एक तो कि जैसे कि आपने बताया कि अगर फसल के साथ वृक्ष लगाते हैं तो धीरे धीरे वो वृक्ष जब बड़े होंगे तो उसका भी फायदा होगा, और दूसरी चीज है एक जो हम लोग बात करते हैं पर्यावरण के दृष्टि से ग्रीन कवर वो होना चाहिए, तो उस लिहाज से भी ये फायदेमंद है। आपकी इस पर क्या राय है?
9: जो राष्ट्रीय वन नीति है
8: जी,
9: उसके अनुसार जो है हमारा जो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो 328.74 मिलियन हेक्टेयर है, उसके कुल भूभाग का 33% क्षेत्र जो है वनों या वृक्षों से आच्छादित होना चाहिए। भारतीय वन सर्वेक्षण 2023 की हालिया रिपोर्ट को अगर हम देखें तो भारत में वनों का आच्छादन मात्र 21.76% है। इसमें वनों से बाहर के 3.41% वृक्षों को सम्मिलित कर लें तो यह 25.17 होता है, जो हमारे 33% के जरूरी आंकड़े को छूने में 7.83% कम है, जिसे वनों के बाहर के क्षेत्र को बढ़ाकर ही पूरा किया जा सकता है, क्योंकि प्राकृतिक वनों का क्षेत्रफल सीमित है और इस पर काफी दबाव है। हमारे देश का कुल फसल क्षेत्र लगभग 219 मिलियन हेक्टेयर है, अपने देश का बहुत विशाल कृषि क्षेत्र है जो अपने कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 51-60% है। अतः कृषि वानिकी ही वृक्ष आच्छादन के 33% के लक्ष्य को पूरा करने हेतु एकमात्र विकल्प बचता है।
8: ये बहुत ही आपने एक अच्छी बात बताई, कई श्रोता जानते भी होंगे और नहीं तो जानना चाहिए कि भारत की स्थिति वन के आच्छादन से, जैसा कि आपने बताया, वो लगभग 30-22% वन से आच्छादित है। अच्छा, अब जब प्राकृतिक वन है उसके अंदर जाकर तो आप पौधारोपण या वृक्षारोपण तो कर नहीं सकते, वो तो सीमित है, वो वहीं रहेंगे
9: जी।
8: तो बस जो कृषि योग्य भूमि है उसमें हम वृक्ष लगा सकते हैं, वो हमारे अख्तियार में है
9: जी, उसको तो हम बढ़ा सकते हैं।
8: तो वो भी अभी लगभग 7-8% कम है
9: जी।
8: तो उस
10: टारगेट को हम अचीव कर सकते हैं अगर कृषि के साथ वानिकी की जाए तो। झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में क्या स्थिति है वानिकी की?
9: झारखंड में हम कमोबेश अच्छी स्थिति में हैं, जहां वनों का आच्छादन 29.81% है और इसमें हम वनों से बाहर के 4.57% वृक्षों को सम्मिलित कर ले 34.57% होता है, लेकिन भविष्य की जनसंख्या और जलवायु परिवर्तन को देखते हुए इसे और भी बढ़ाने की जरूरत है।
10: बिल्कुल, क्योंकि ये तो एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहनी चाहिए। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, जो हमारे पास उपलब्ध भूमि है उसका जिस तरह से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, तो ये एक सतत प्रक्रिया है और ये चलती रहनी चाहिए। कृषि वानिकी की जब बात हुई है तो हम अपने कृषकों को इस संबंध में क्या सलाह दे सकते हैं, क्योंकि केवल वो इस दृष्टिकोण से नहीं सोचेंगे कितना वन से आच्छादित है हमारा देश या हमारा इलाका, वो देखते हैं कि इसमें क्या कोई अतिरिक्त आय है इससे संभव। तो अगर आमदनी के लिहाज से देखेंगे तो आप वानिकी को कैसे देखते हैं?
9: आमदनी की बात करें तो इससे पहले मैं चाहूंगा कृषि वानिकी से संबंधित कुछ अन्य फायदों को भी जरूर हमें जानना चाहिए। कृषि वानिकी कृषि में 4% की सतत वृद्धि हासिल करने में मदद करता है। कागज और पल्प के लिए यह 60% कच्चा माल जो है कृषि वानिकी से ही प्राप्त होते हैं। कृषि वानिकी हरे चारे पशुपालन के लिए 9-11% तक की जरूरत को पूरा करता है और ये कृषि वानिकी हमारे कृषि उत्पादन को विशेषकर 51% तक बढ़ा सकता है। इसमें देखा जाए तो ये कृषि फसल की विफलता को भी कम करता है, जिससे पोषण, स्वास्थ्य और कृषकों की आय में सुधार होता है। कृषि फसल अगर नष्ट हो भी जाए तो वृक्ष फसल आय सुरक्षा की गारंटी हो सकते हैं।
10: हम अपनी बातचीत को समाप्त करने से पहले हम ये जरूर चाहेंगे कि आप हमारे किसान भाइयों को कृषि वानिकी से संबंधित अगर कुछ और कहना चाहें।
9: अंत में मैं किसान भाइयों को कहना चाहूंगा कि कृषि वानिकी जो है रोजगार सृजन, किसानों के अतिरिक्त आय और जीविकोपार्जन में सतत रूप से बढ़ोतरी कर सकता है। कृषि वानिकी जलवायु परिवर्तन की जोखिमों से लड़ने में सक्षम है, अतः इसे हम जलवायु परिवर्तन के दौर में स्मार्ट खेती कह सकते हैं और इसे किसानों को जरूर अपनाना चाहिए।
10: आपने बहुत अच्छी जानकारी दी इस विषय पर और आपने ये भी बताया कि कृषि वानिकी के सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। कृषि फसलों का भी जो अगर उससे जो आमदनी होती है वो भी बढ़ेगी और साथ ही जो आपने दिखाया इसका कि कॉमर्शियल तरीके से भी इससे फायदा लिया जा सकता है। तो मैं समझता हूं कि कृषि वानिकी के बारे में हमारे श्रोताओं को एक अच्छी खासी जानकारी मिली होगी। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे श्रोताओं को अच्छी जानकारी दी कृषि वानिकी के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।
9: धन्यवाद।
6: तो मनीष भाई, अखन हमरे मन बहुत बढ़िया जानकारी कर ली है नी, जान ली कि कृषि वानिकी काके कहल जाएला और इकर से किसान मन कर जे आमदनी है, जे कचिया है, उकर में कातिर बढ़ोतरी हो सकेला। बढ़िया बतात रहे ज्योतिष कुमार केरकेट्टा और इनकर से गोठियाई रहे प्रभु शरण। मनीष भाई, देखो आज 15 अगस्त के तो कुछ गीत गोविंद हो जाए चाहिए।
7: एकदम, तो गीत गोविंद कर जुगाड़ तो राखी देखा था। गीत गोविंद
6: देखो ने आज हमरे मन के देश कर जे वीर सपूत मन से मन के नमन करे कर दिन है, मन के याद करे कर दिन है और छुआ मन के हूँ प्रेरित करे का है कि देश आहे तबे हमरे आहे है नी।
7: एकदम, तो देश ले छुआ मन के हूँ तैयार करे के कि देश सबसे बड़ है।
6: हाँ, तो चलो हमरे मन अजीज अंसारी उनकर संगे आजाद अंसारी और संगे मन गाई है से गीत की सुन लेविला। ई नागपुरी में है।
7: चलो तब सुन लेविला।

0: तो भाई बहिमन एखन हमरे अजीज अंसारी और आजाद अंसारी कर गावली नागपुरी गीत के सुनली बड़ा नगद गीत रहे करण भाई तो
1: हाँ हाँ देखो ने ये तो हमरे मन कर जे वीर सपूत है से मन कर ले समर्पित गीत रहे और मनीष भाई किसान मन हो अपन बहुत बढ़िया काम करत है आजकल तो पढ़ल लिखल किसान मन खेती बाड़ी में घूरत है और उके बढ़िया एकदम व्यवसायिक स्तर में करत है और बढ़िया कचिया कमात है
0: और ढेर एक नवा नवा जे फसल मन है उ मन के हो गाय के बढ़िया एक कचिया हो कमात है और दूसर मन ले प्रेरणा हो बनत है
1: और देखो प्रेरणा लेवे के चाहिए अगर कोई बढ़िया काम करत है तो यही तो देखो पढ़ल लिखल जे दू गो नौजवान मना है ऐसे मन मशरूम कर खेती करत है और बढ़िया एकदम हाईटेक विधि जे के कहना उके अपनाई के करत है बढ़िया पूंजी हो लगाई है और मशरूम के खन बढ़िया बाजार में बेचत है और बढ़िया कचिया कमात है
0: एकदम
1: तो ई मन हके प्रभात रंजन महतो और राहुल शाह इनकर से मनोज कुमार भेंट करिए चलो तनिक सुन ले विला
0: चलो तब सुन ले विला
2: किसान भाइयों नमस्कार आज हम जानेंगे मशरूम के खेती के बारे में इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है दो किसान हैं भाई आप दोनों को नमस्कार
3: नमस्कार
4: नमस्ते
2: आपका अपना परिचय बताइए
4: जी मेरा नाम प्रभात रंजन महतो है और मैं रांची झारखंड का ही रहने वाला हूँ
2: और आपका
5: मेरा नाम राहुल शाह है और मैं भी रांची का रहने वाला हूँ
2: तो आप लोग दोनों क्या करते हैं
4: मैं फैक्ट्री का मैनेजमेंट और प्रोडक्शन देखता हूँ और मेरा जो भाई है राहुल वो सारा मार्केटिंग का काम देखता है
2: तो आप लोग मशरूम से जुड़े हुए हैं
4: करीब आज से 4 साल पहले की बात है मैंने बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ट्रेनिंग लिया है और वहां से मैंने ट्रेनिंग लिया उसके बाद हमने म्यूचुअली डिसाइड किया कि हम लोग एक बटन मशरूम का प्लांट लगाते हैं उसके लिए हम लोग काफी जगह विजिट कर चुके हैं सोलन गए थे हिमाचल गए थे बिहार गए थे अलग अलग प्लांट देखा हमने उसके बाद फिर हमने अपने प्लांट पे काम स्टार्ट करवाया उस प्लांट को करीब करीब रेडी होने में 2 साल लग गया और पिछले 2.5 महीने से हमारा मशरूम का प्रोडक्शन आ रहा है
2: तो रांची में कहाँ पे लगाए हैं
4: ठाकुर गांव में प्लांट लगा हुआ है हमारा आप जैसे बटन मशरूम का प्रोडक्शन कीजिएगा तो उसमें आपको सबसे ज्यादा साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है हम बटन मशरूम के प्लांट में अगर डर्ट या फिर किसी भी तरह के बैक्टीरिया फंगस को ग्रो करने का सही टेम्परेचर दे रहे हैं और सही वातावरण दे रहे हैं तो बटन मशरूम के सिवाय और भी फंगस ग्रो कर सकता है अगर हम ध्यान ना रखें दूसरा होता है कि मशरूम का जो साइज होता है वो ओवरनाइट डबल हो जाता है आज अगर वो 1 सेंटीमीटर है तो कल आपका 1.8 या फिर 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा अगर वो उससे छोटा रहता है तो भी लोग नहीं खरीदना चाहते हैं उससे ज्यादा बड़ा हो जाता है तो भी नहीं खरीदना चाहते
2: हैं मिनिमम साइज कितना होना चाहिए
4: मिनिमम साइज आपका अराउंड 20 से 25 mm होना चाहिए अगर आप उससे बड़ा मशरूम ग्रो कीजिएगा तो वो फिर बी ग्रेड कहलाता है और बी ग्रेड का आपको रेट नहीं मिलेगा मार्केट में
2: तो शुरुआती दौर में जब आप इससे जुड़े तो कितना पूंजी लगाया आप
4: ये हमारा करीब करीब पूंजी लगा था 50 लाख जैसा बैंक से लोन लिया था हमने और ये 1 एकड़ में बना हुआ है हमारा प्लांट
2: आपके साथ में राहुल जी हैं तो राहुल जी आपका क्या इस विभाग है क्या देखते हैं
5: हमारा काम मार्केटिंग का है मार्केटिंग का काम अपने पास रखने का मुख्य कारण यही रहा कि हमारा बाजार समिति में आज से 25 साल पहले से व्यापार चला आ रहा है और मैं आलू प्याज लहसुन के व्यापार से 15 साल से जुड़ा हुआ हूं तो हमें एक चीज बेनिफिट मिला उसमें कि जो मशरूम का काम चालू करने के बाद जो सबसे बड़ी चैलेंजेस आती है वो मार्केटिंग की रहती है जो अच्छे कस्टमर का जुड़ाव है वो हमारे पास पहले से जुड़े हुए थे तो उसमें हमें प्लस पॉइंट मिला एक हमारा माल प्लांट से और आउटलेट तक आने में एक जगह में पहुंच जाते हैं तो 10 कस्टमर पास पहुंचने की जरूरत नहीं है वो एक जगह हमारे आउटलेट पर आए और वहीं से सारे माल डिस्पैच हो जाते हैं तो मार्केटिंग की हमारे पास सबसे बड़ी जो चैलेंजेस होती है वो नहीं रही और हम लोग आज के रेट में अच्छे से अच्छे रेट में अपने मशरूम को बेच पा रहे हैं
2: तो शुरुआती दौर में कितना उत्पादन कर पाते थे आप लोग
4: हमारे प्लांट का कैपेसिटी 3000 बैग का है और 1 बैग से 2 kg मशरूम ऑन एन एवरेज निकलता है तो हमारे पास 6 टन मशरूम होता है 1 साइकिल में इसका साइकिल का ये मतलब होता है ना कि हम जिस दिन से कंपोस्ट को बनाना स्टार्ट कर रहे हैं उस दिन से अराउंड 45th डे मेरा मशरूम निकलेगा जो फ्लश निकलता है वो 7 दिन चलता है जब मशरूम ग्रो करता है तो उसका साइज ओवरनाइट डबल कर रहा होता है कभी कोई मशरूम बड़ा हो गया ज्यादा जल्दी कभी कोई दबा रह गया जैसे पेड़ पौधा है उगने वाला चीज है नेचुरली ग्रो करता है तो स्टार्टिंग में माल कम रहेगा आपके पास तो मेरे पास पहला दिन माल रहता है अराउंड 5 से 6 पेटी 1 पेटी में 15 kg माल रहता है फिर वो धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ना स्टार्ट करता है अगले दिन 10 पेटी माल हुआ उसके अगले दिन 20 पेटी माल हुआ उसके अगले दिन जब फ्लश करता है तो मेरे पास करीब करीब 800-900 किलो तक रहता है। कभी बहुत ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन हुआ तो 1000 केजी 1100 केजी तक भी माल रहता है। फिर जैसे ही हम उस मशरूम को कट कर लेते हैं वो फिर ग्रेजुअली कम होने लग जाता है। उसके बाद फिर दोबारा जब सेकंड फ्लश आता है तो वो पहले फ्लश से थोड़ा कम माल आता है उसमें, क्योंकि बैग से जो न्यूट्रिएंट्स था वो पहले ही जो मशरूम पहला लॉट में ग्रो किया वो उसको कंज्यूम कर चुका था। अब अगले फ्लश में जब माल आएगा, मेरे पास पहला फ्लश में अराउंड 3500 से 4000 केजी माल रहता है, उसके अगले फ्लश में 2000 से 2500 माल रहता है। इस तरह से 6 टन माल मेरा एक रूम से निकलता है।
2: एक बार जब आप लगाते हैं मशरूम के बीज लगाते हैं तो कितने दिन के अंतराल में आप तोड़ते हैं उसको?
4: टूटता तो मशरूम डेली ही है, कम ज्यादा कुछ ना कुछ तो डेली
2: सब पार्ट पार्ट अलग अलग रहता है हिसाब से
4: जी।
2: एक बार हम बीज को लगाए तो कितने बार हम तोड़ते हैं उसको?
4: उसको 15 दिन तक तोड़ते हैं।
2: तो सबसे बड़ी बात है कि बेचने की समस्या आती है, चूंकि बहुत सारे किसान उत्पादन करते हैं तो कहाँ बेचें कैसे बेचें उनको उतना आइडिया रहता नहीं है, तो आप लोग कहाँ पे इसको बेचते हैं?
5: देखिए आज के डेट में मोबाइल का जमाना हो गया, इंटरनेट का जमाना हो गया, और आज के डेट में हर चीज बिकता है, बशर्ते उसका क्वालिटी होना चाहिए और क्वांटिटी होना चाहिए। अगर आपके पास क्वालिटी और क्वांटिटी है तो मशरूम को बेचने के लिए दिक्कत नहीं है। मशरूम उगाना चैलेंजिंग है, बेचना बहुत आसान है, और रांची में इतना खपत है मशरूम का कि हमारा मैक्सिमम माल लोकल में ही खपत हो जाती है। और एक चीज और है मार्केटिंग में, जब आज के तौर पे मशरूम को लोग नॉनवेज का अल्टरनेटिव देखते हैं, तो मशरूम की बिक्री सबसे ज्यादा होती है जो सावन महीने आती।
0: तो भाई बहन मन, एखन हमरे मशरूम उत्पादक किसान प्रभात रंजन महतो और राहुल शाह से करल मनोज कुमार कर गोइट के सुन ली।
1: हाँ, बड़ा नगद जानकारी रहे। आशा करीला कि किसान भाई बहन मन खेती बाड़ी कर संगे जे बागवानी करें और ओकर अलावा पशु मन पोसे ना मवेशी पोसे ना, तो ओकर संगे संगे मशरूम करूँ अगर उमन खेती करे खोजे ना तो मशरूम बटवाई सके ना और कचिया कमाई सके ना।
0: एकदम नगद रवरे कहली कि मशरूम कर खेती करके हूँ कचिया कमाई सके ना, तो
1: और देखो कर... नहीं मशरूम कहते तो आजकल तो हमारे कर गांव घर में जे प्राकृतिक मशरूम है जैसे खुखड़ी कहल नहीं बाप रे मुंह में पानी
0: आवत एकदम सुनते खुखड़ी करना मुंह में पानी आ जाए
1: लयर लयर एकदम कतना स्वाद खुखड़ी नहीं तो कतना स्वाद हो है ऊपर से प्रोटीन हो भेटाएला कचिया हो देवेला, तो भाई खुखड़ी का तो कमाले चीज हके है नी
0: एकदम
1: अपन स्वास्थ्य को बढ़िया रखेला और कचिया हो देवे तो इकर से बढ़िया का हो सकेला।
3: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का
6: उतला बोल रहे
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
6: मतलब
3: देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी शुद्धता झलकती थी माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहा
6: पर हम तो सभी डाले हैं
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
6: सच
3: है एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
6: ठीक है भाई मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
7: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
1: मनीष भाई हमरे गुठियाते देखो बेरा के तो देखते न कि अब तो बेरा हो ही जाते जाकर
0: एकदम। तो भाई बहन मन बताए खुजिला कार्यक्रम कर प्रायोजक रहे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार
1: और किसान वाणी कार्यक्रम कर प्रस्तुति रहे आकाशवाणी रांची कर। तो मनीष भाई चलो तो हमरे मन किसान वाणी कार्यक्रम से विदा ले विला तो राउर मनक रेडियो संगी करण भाई और
0: मनीष भाई के देव विदा
8: जोहार।

श्रोतो अभी आप सुन रहे थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर।

आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात के 8 बजे हैं। पेश है देशभक्ति गीत।

वीर जवानों की वजह से हम अपने घरों में सुरक्षित हैं। उनके साहस और बलिदान को हमारा नमन। सीमा पर खड़ा सैनिक केवल अपनी ड्यूटी नहीं निभाता, बल्कि करोड़ों देशवासियों के विश्वास की रक्षा करता है। आइए सैनिकों के इसी शौर्य को सलाम करते हुए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत कैलाश खेर की आवाज में।

0: आजादी का अर्थ केवल बंधनों से मुक्त होना नहीं है, बल्कि आजादी तब है जब हर नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्य को भी समझे। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, शिक्षित भारत और आत्मनिर्भर भारत, यही हमारे सपनों का भारत है। इसी सुंदर सपने के साथ सुनिए अगला ये देशभक्ति गीत।
1: नफरत

0: आप सुन रहे थे देश भक्ति गीत। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में रात के 8:15। अब आप सुनेंगे झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों में आयोजित स्वतंत्रता दिवस 2026 समारोह के अवसर पर आधारित राज्य स्तरीय समन्वित रेडियो रिपोर्ट।
1: अस्सीवां स्वतंत्रता दिवस झारखंड में पारंपरिक रूप से मनाया गया। मुख्य समारोह रांची के मोरहाबादी मैदान में संपन्न हुआ। इस अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली।
2: समीक्षा क्रम में मध्य से
1: उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन,
3: जोहार मेरे प्यारे झारखंड वासियों, स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी को हृदय से शुभकामनाएं और अनेक अनेक बधाइयां। हमारे प्यारे झारखंड वासियों, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त केवल इतिहास की एक तिथि नहीं बल्कि एक निरंतर चलने वाली जिम्मेदारी है। हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्र भारत दिया और झारखंड के महान जननायकों ने हमें स्वाभिमान, प्रकृति के प्रति सम्मान और न्याय के लिए संघर्ष की प्रेरणा दी। हम ऐसे झारखंड बनाना चाहते हैं जहां राज्य का हर युवा आधुनिक शिक्षा, विज्ञान, तकनीक और उद्यमी में अग्रणी हो, जहाँ हमारी भाषाएं, साहित्य, लोककला, संगीत और सांस्कृतिक विरासत नई पीढ़ी तक सम्मानपूर्वक पहुंच सके, जहाँ ग्राम सभा, स्थानीय ज्ञान और आधुनिक तकनीक मिलकर विकास का नया मॉडल प्रस्तुत करें, जहाँ विकास का अर्थ केवल खनिज का दोहन नहीं बल्कि मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और सांस्कृतिक विरासत तीनों का संतुलित विकास हो। मेरे प्यारे युवा साथियों, हमारी विरासत हमें पहचान देती है लेकिन हमारे युवा उस पहचान को भविष्य देते हैं। यदि हमें अगले 25 वर्ष का झारखंड बनाना है तो उसकी सबसे बड़ी शक्ति हमारे युवा होंगे। झारखंड के लाखों युवा आज अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इसलिए यह हमारा सर्वोच्च जिम्मेदारी है उनकी मेहनत का सम्मान हो और उनकी प्रतिभा को न्याय मिले। मैं जानता हूं कि पिछले कुछ समय में भर्ती परीक्षाओं को लेकर अनेक प्रश्न उठे हैं। जब परीक्षा व्यवस्था पर संदेह पैदा होता है तो केवल एक परीक्षा प्रभावित नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी का विकास प्रभावित होता है। मैं आज इस ऐतिहासिक मंच से झारखंड के प्रत्येक विद्यार्थियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी मेहनत को किसी भ्रष्ट तंत्र और किसी अनियमितता के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा। देश के अनेक राज्यों और कई राष्ट्रीय परीक्षाओं में भी प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा संबंधित गंभीर अनियमितताओं के मामले सामने आए हैं। ये पूरे देश के सामने गंभीर चुनौती है, लेकिन मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि दूसरे राज्यों में क्या हुआ उससे झारखंड की जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण झारखंड का युवा है, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण उसका भविष्य है, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण उसका विश्वास है। इसलिए केवल कार्रवाई ही नहीं बल्कि व्यवस्था में परिवर्तन का निर्णय लिया है। मैं किसानों से भी कुछ कहना चाहता हूं। झारखंड की आत्मा उसके खेतों में बसती है। हमारे किसान केवल अन्नदाता नहीं बल्कि हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत नींव भी है। राज्य की कृषि और बागवानी जैसे क्षेत्रों में को प्रोत्साहित कर अर्थव्यवस्था में विविधता लाने का प्रयास किया जा रहा है। हम फल, सब्जी, बागवानी, डेयरी, मत्स्य पालन, कुकुट पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन, लाह तसर मिलेट, औषधि पौधों और लघु वनोपज आधारित अर्थव्यवस्था को नई गति देंगे। हाल में ही हमारी सरकार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन राज्य के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस राष्ट्र मंच पर उद्योग जगत, निवेशकों, नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों तथा उद्योग, पर्यटन, आईटी, एआई, आधारभूत संरचना और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में निवेश और नवाचार को बढ़ावा देने पर व्यापक विचार विमर्श हुआ। सरकार के प्रयास के कारण कंसल्टेशन में प्रमुख कॉरपोरेट समूह के साथ लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए 10 MOU हस्ताक्षर किए गए हैं। मेरी माताओं, बहनों और बेटियों, किसी भी समाज की प्रगति महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। हमने सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में अनेक कदम उठाए। महिला सशक्तिकरण की दिशा में हमारी सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की चर्चा देश में हो रही है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 3 वर्षों से लगातार हमारी बहनों, दीदियों के चेहरे पर मुस्कान की गारंटी बन गई है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार हुआ है। वहीं

0: बल्कि हमारे स्वाभिमान संघर्ष त्याग और स्वतंत्रता का प्रतीक है। ये पावन अवसर उन असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के अदम्य साहस और बलिदान को श्रद्धापूर्वक स्मरण करने का दिन है, जिनके संघर्षों ने हमें स्वतंत्र भारत का नागरिक कहलाने का गौरव प्रदान किया। इस अवसर पर मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई तथा सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। हमारे झारखंड की धरती ने देश के स्वतंत्रता संग्राम तथा औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धो कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, तिलका मांझी, नीलांबर, पीतांबर तथा अनेक ज्ञात अज्ञात वीरों ने अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष करते हुए स्वाभिमान और अधिकार की रक्षा का संदेश दिया। प्रिय साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ आत्मविश्वास और तेज गति से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, युवाओं, किसानों तथा वंचित एवं जरूरतमंद वर्गों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए कार्य कर रही है। विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए युवाओं से ड्रग्स तथा सभी प्रकार के नशे से दूर रहने का आह्वान किया गया है। मैं आप सभी युवाओं से आग्रह करता हूं कि आप स्वयं नशा मुक्त रहें, अपने साथियों को जागरूक करें तथा अपने शिक्षण संस्थानों और समाज में नशा मुक्त के संदेश वाहक बने।
1: इधर झारखंड विधानसभा में माननीय अध्यक्ष श्री रविन्द्रनाथ महतो ने ध्वजारोहण किया और उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया।
2: आज हम सब भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हैं और तिरंगे को सलाम देने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये एक उत्सव नहीं बल्कि हमने इतिहास के उस पन्नों को स्मरण कर रहे हैं जिसमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का कुर्बानी, बलिदान सारा चीज लिखित है। साथ ही भारत की स्वतंत्रता किसी एक व्यक्ति या एक संस्था या एक समुदाय का काम नहीं है, क्षेत्र के संघर्ष का परिणाम, एक सब लोगों के मिलकर जो संघर्ष का परिणाम था उसी का फलस्वरूप हम लोग इस देश को आजाद कर पाए हैं। और इसमें हमारे देश के जो अगुवा नेता थे महात्मा गांधी, जिनके सत्य और अहिंसा का जो मार्ग था इसको अपनाकर देश को आजाद करने का हमें एक शक्ति, एक ताकत मिला था। उसी तरह जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने आधुनिक भारत को निर्माण करने के क्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता के लिए अदम्य साहस और पूर्ण समर्पण का उदाहरण प्रस्तुत किया, इसी तरह भारत की धरती ने भी स्वतंत्रता संग्राम को असाधारण बलिदान दिए, जैसे खुदीराम बोस जो कम उम्र में फांसी के मंच तक चढ़ने में द्विधाबोध नहीं किए और हमारे युवाओं के लिए ये एक प्रेरणा स्रोत बना। और जब हम झारखंड की धरती पर स्वतंत्रता का स्मरण करते हैं तो हमारी अपनी गौरवशाली परंपरा हमारे सामने आती है। आपने इतिहास में पढ़ा होगा बाबा तिलका मांझी ने 1784 में अंग्रेजों के सत्ता के विरुद्ध प्रतिरोध का बिगुल बजाया। सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो ने 1855 में संथाल हुल के नेतृत्व दिया। धरती आबा बिरसा मुंडा ने औपनिवेशिक सत्ता को चुनौती देने के साथ साथ अपने समाज के अधिकार, आत्मसम्मान और अस्तित्व की आवाज को भी मजबूत किया।
1: झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति श्री महेश शरद चंद्र सोनाक ने उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों और जनसमुदाय के समक्ष ध्वजारोहण

0: किया। औद्योगिक नगरी जमशेदपुर से हमारे प्रतिनिधि की रिपोर्ट।
1: रिमझिम फुहारों और सुहावने मौसम में आज पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसवां जिले का स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह उल्लासपूर्ण माहौल में मनाया गया। पूर्वी सिंहभूम का मुख्य समारोह जमशेदपुर स्थित गोपाल मैदान बिष्टुपुर में संपन्न हुआ, जहां पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी ने मिली जुली परेड की सलामी ली।

0: ध्वजारोहण कर उपायुक्त ने अपने संबोधन में कहा,
1: देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम के सभी सेनानियों, भारत के महापुरुषों, वीर शहीदों तथा राष्ट्र निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देने वाले सभी महान विभूतियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। झारखंड और विशेषकर पूर्वी सिंहभूम की धरती वीरता, संघर्ष, त्याग और जन भागीदारी की समृद्ध परंपरा की साक्षी रही है। यह पावन दिवस हमें उन महान बलिदानों को स्मरण करने के साथ साथ राष्ट्र की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों को भी सुदृढ़ करने की प्रेरणा देता है। विकास की इस यात्रा में समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं और सुविधाओं का लाभ पहुँचे, प्रत्येक बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करे, युवाओं को अवसर मिले, महिलाओं की भागीदारी और आत्मनिर्भरता बढ़े तथा हमारा जिला समावेशी और सशक्त बने। आइए स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर हम अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहते हुए एक सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प लें। झारखंड में प्रथम सिकल सेल एनीमिया प्रयोगशाला का शुभारंभ सदर अस्पताल पूर्वी सिंहभूम में टाटा फाउंडेशन एवं CCMV भारत सरकार के सहयोग से किया गया है। दिनांक 1 जुलाई 2026 से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 पूर्वी सिंहभूम के सभी ग्रामीण इलाकों में लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना प्रखंड डुमरिया अंतर्गत कंटासोल में 2 एकड़ में कृषि उत्पादन के प्रसंस्करण एवं वनोपज के विपणन हेतु MEZ संरचना का निर्माण किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत 5 अगस्त को पूर्वी सिंहभूम जिले की प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया है। जिला प्रशासन जन कल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारने के लिए निरंतर कटिबद्ध है। हमारा प्रयास है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और जिले का प्रत्येक वर्ग विकास की मुख्य धारा से जुड़े। जय हिंद, जय झारखंड।
0: सरायकेला खरसवा जिले का मुख्य समारोह बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां जिले के कई गणमान्य लोग, स्कूली बच्चे और आम जनमानस उपस्थित थे। इस अवसर पर जिले के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नीतीश कुमार सिंह ने मिलीजुली परेड की सलामी ली। ध्वजारोहण के पश्चात उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने जनमानस को संबोधित कर कहा,
2: आज का यह ऐतिहासिक दिन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों, राष्ट्र नायकों और अमर शहीदों को नमन करने का दिन, जिनके अतुल्य त्याग और बलिदान के कारण आज हम स्वतंत्र भारत की हवा में सांस ले रहे हैं। हमारे यह सरायकेला खरसावां की पावन धरा क्रांति और संस्कृति की अद्भुत स्थली रही है। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, श्याम भैरव और अमर सिंह फोटो हो जैसे वीरों के पक्षों पर चलते हुए इस क्षेत्र में आजादी की लड़ाई में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। खरसावां का इतिहास हमें सिखाता है कि अपनी माटी, अधिकार और सम्मान के लिए कैसे अडिग रहा जाता है। सरायकेला की विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य शैली हमारी सांस्कृतिक आत्मा है। जिला प्रशासन इस कला और इसके कलाकारों के संरक्षण एवं वैश्विक पहुंचों और प्रोत्साहन के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। जिला प्रशासन वर्ष 2026 में सरायकेला खरसावां का समृद्धि और सशक्तिकरण की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। राज्य सरकार की बुनियादी योजनाओं तथा सावित्रीबाई फुले ईश्वरी समृद्धि योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना को जिले के अंतिम व्यक्ति तक पारदर्शी तरीके से पहुंचाया जा रहा है। श्री मनोज वर्मी भारतीय पुलिस सेवा पुलिस अधीक्षक सरायकेला खरसावां के मार्गदर्शन निर्देशानुसार जिले को अपराध बनाने की एवं सभी को सुरक्षा का माहौल प्रदान करने में जिला पुलिस प्रशासन बेहतर कार्य कर रही है। सबसे हर्ष की बात है कि बीते दिनों में कुछ दिन पहले यहाँ से सुरक्षाओं को जिला प्रशासन ने बिल्कुल अपनी निशानदेही पे बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के मदद के लोगों के हिरासत में लिया है, जिससे हमारा जिला अब पूरी

0: नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है। आइए आज के इस अवसर पर हम अपने अमर शहीदों के सपनों को झारखंड के समृद्ध आत्मनिर्भर विकसित सरायकेला खरसावां निर्माण का संकल्प दोहराए। पुनः 80वें स्वतंत्रता दिवस के पुनीत अवसर पर मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
1: इस तरह 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। जमशेदपुर से विवेक कुमार आदित्य, राजीव रंजन तिवारी, जितेंद्र कुमार मांझी और कार्यक्रम प्रमुख राजेश कुमार राय के साथ मैं निमिषा बिरोले।
2: उधर कोल्हान प्रमंडल के मुख्यालय चाईबासा में हुए झंडोत्तोलन की रिपोर्ट आकाशवाणी चाईबासा के प्रतिनिधि द्वारा।
3: हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 80वीं स्वतंत्रता दिवस पश्चिम सिंहभूम में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सरकारी गैर सरकारी संस्थानों स्कूल कॉलेजों में झंडोत्तोलन किया गया। पश्चिम सिंहभूम में मुख्य समारोह स्थानीय पुलिस लाइन मैदान में आयोजित हुआ, जहां झारखंड सरकार के राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग तथा परिवहन विभाग के मंत्री दीपक बिरवा ने परेड की सलामी ली, तत्पश्चात झंडोत्तोलन किया। इस अवसर पर मंत्री दीपक बिरवा ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा,
4: प्यारे देशवासियों, यह दिन हम सबके लिए अत्यंत हर्ष एवं उल्लास का दिन है। हम सब अपनी आजादी का 80वां वर्षगांठ मना रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए प्राधीनता से मुक्ति का त्यौहार है। कई पीढ़ियों के ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष से हमारी आज़ादी का सपना साकार हुआ था। उन सभी ने त्याग और बलिदान के अनूठे उदाहरण प्रस्तुत किए। उनके शौर्य और पराक्रम के बल पर ही आज हम आज़ादी की सांसें ले रहे हैं। मैं उन सभी अमर सेनानियों की पावन स्मृतियों को श्रद्धापूर्ण समन करता हूँ।
3: मंत्री दीपक बिरवा ने विकास योजनाओं पर जानकारी देते हुए कहा,
4: वर्तमान में हमारी सरकार देश एवं जिला के विकास कार्यों को गति देने के लिए कृत संकल्प है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अबुआ आवास योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 अंतर्गत कुल 21,030 परिवारों के लिए 420 करोड़ 60 लाख की वित्तीय स्वीकृति दी गई, जिसमें से 1,141 आवासों को का निर्माण पूर्ण कर लिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वित्तीय वर्ष 2024-25 कुल 18,938 परिवारों के लिए 227 करोड़ 25 लाख 60 हजार की वित्तीय स्वीकृति दी गई। पश्चिमी सिंहभूम जिला ने विकसित भारत जी राम जी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिरसा हरित ग्राम योजनाओं के क्रियान्वयन में अपार सफलता पाई है। इस चालू वर्ष में सभी प्रखंडों के किसान भाइयों ने प्रखंड में लगाए गए आम स्टॉलों एवं अन्य माध्यमों से आम एवं अन्य फलों उत्पादन की बिक्री कर 1,30,00,000 की शानदार आय अर्जित किया है।
3: और इस तरह पूरे पश्चिमी सिंहभूम में 80वीं स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रस्तुतकर्ता प्रदीप कुमार, प्रस्तुति स्वर सुनीता हांसदा, बाह्य ध्वनि अंकन सह संपादन रमेश दास और सहायक संजीत राणा और देवजीत बोस।
2: उत्तरी छोटा नागपुर के मुख्यालय हजारीबाग में झंडोत्तोलन की रिपोर्ट हमारे प्रतिनिधि द्वारा।
5: उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के मुख्यालय हजारीबाग में 80वें स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह करजन ग्राउंड स्टेडियम में आयोजित किया गया। प्रमंडलीय आयुक्त श्री विजय कुमार गुप्ता ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और तिरंगे को सलामी दी। अपने संबोधन में प्रमंडलीय आयुक्त श्री गुप्ता ने जिले में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति और उपलब्धियों की जानकारी दी।
6: सर्वप्रथम मैं अपने उद्भाषण में सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना मैया सम्मान योजना के तहत 18 से 49 वर्ष की उम्र की सभी महिलाओं को दिसंबर से लेकर हर महीने 2500 रुपए की सम्मान राशि बैंक खाते के माध्यम से दिया जा रहा है। जुलाई 2026 में कुल 282,641 महिला बहनों को सम्मानित किया जा चुका है। सावित्री देवी फूले शक्ति योजना अंतर्गत द्वितीय वर्ष 2026-27 में सावित्री देवी फूले किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में अध्ययनरत छात्राओं को ई विद्यावाहिनी पोर्टल एवं 18-19 वर्ष की किशोरियों को सावित्री देवी फूले किशोरी समृद्धि योजना के पोर्टल के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु 13,43,09,000 रुपए का आवंटन उपलब्ध कराया गया है, जिसे सुयोग्य लाभुकों के बीच वितरण किया जाना है। निःशुल्क साइकिल योजना उन्नति का पहिया के तहत द्वितीय वर्ष 2026-27 में हजारीबाग जिला अंतर्गत सभी सरकारी विद्यालयों में कक्षा 8 के अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक पिछड़े जाति के 17,322 छात्र छात्राओं को साइकिल का वितरण किया जा रहा है। जिला में विभिन्न पेंशन योजनाओं में कुल 2,43,691 लाभुकों को प्रतिमाह 1,000 रुपये की दर से भुगतान किया जा रहा है। पिछले 6 महीने में 14,481 नए लाभुकों को सर्वजन पेंशन योजना से जोड़ा गया है।
5: इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों और वीर गति प्राप्त शहीदों के आश्रितों को सम्मानित किया गया। साथ ही परेड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली टुकड़ियों, सरकारी विभाग तथा समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पुरस्कृत भी किया गया। इसी तरह हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय, विभिन्न महाविद्यालयों, विद्यालयों, स्काउट एवं गाइड भवन, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों में स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। अपने सहयोगी विक्रम कुमार रंजन, अभिषेक कुमार, सैयद मासूम अहमद और सुनील कुमार के साथ हजारीबाग से मैं राजीव कुमार।
2: पलामू जिला का मुख्य समारोह डाल्टनगंज स्थित पुलिस स्टेडियम में मनाया गया। एक रिपोर्ट।
7: राज्य के पलामू जिला के सरकारी तथा गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह अदम्य उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह स्थानीय पुलिस स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां माननीय वित्त मंत्री, वाणिज्य कर योजना एवं विकास तथा संसदीय कार्य विभाग झारखंड सरकार श्री राधा कृष्ण किशोर द्वारा ध्वजारोहण किया गया और मिलीजुली परेड की सलामी भी ली गई। इस स्वर्णिम अवसर पर उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए माननीय वित्त मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर,
8: हार्दिक मुबारकबाद पेश करते मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस अवसर पर पलामू के सर्वांगीण विकास का संकल्प लें। मैं बहुत ही संक्षेप में ये बताना चाहूँगा, यहाँ के जंगलों में कीमती जड़ी बूटी, लाह कथा और केंदू पत्ता जैसे वन संपदा और वन प्राणियों से भरा पड़ा है। हमें गर्व है कि प्रकृति ने पलामू को अनुपम उपहार प्रदान किया। पलामू के गरीबी को मैंने बहुत करीब से देखा है, इसलिए पलामू के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना प्राथमिकता है। जिले की अर्थव्यवस्था को संतुलित बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, अबुआ आवास योजना, पीएम जनमन योजना, कृषि और संबद्ध कृषि के क्षेत्र में पशुपालन, गव्य और मत्स्य पालन आदि प्रक्षेत्रों में सरकार बहुत ही संवेदनशीलता के साथ काम कर रही। समाज कल्याण की यदि बात करूं तो सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सखी वन स्टॉप सेंटर, विधवा पुनर्विवाह योजना, दिव्यांग जनों के लिए विशेष यंत्र, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना सफलतापूर्वक चलाई जा रही है। पलामू जिले में मैया सम्मान योजना से 3,45,211 लाभुकों के खाते में 1,35,63,30,000 रुपए प्रति वर्ष दिया जा रहा है। मैं 15 अगस्त के अवसर पर जिले के किसानों को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि लगभग 350 करोड़ रुपए खर्च कर 2012 में अमानत ब्याज का निर्माण कराया गया था, लेकिन कतिपय कारणों से किसानों के खेतों में पानी कभी नहीं पहुँचा। ये योजना लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन मेरे अथक प्रयास से अमानत ब्याज योजना को पुनर्जीवित करते हुए 947 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इस साल का स्वाधीनता दिवस बहुत ही खास, युवा शक्ति जागरूक हो रही है, वह अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों के प्रति जागरूक हो चुकी है। मैं उनके इस जज्बे को सलाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। एक बार फिर आपसे हम आशीर्वाद और स्नेह मांगते हैं कि इसी जज्बा के साथ पलामू के विकास के लिए हम काम कर सके। ये शक्ति आप हम सबको दीजिए, हमारी सरकार को दीजिए। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।
7: इस प्रकार राज्य के पलामू प्रमंडल में 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह अदम्य उत्साह के साथ सम्पन्न हुआ। आकाशवाणी डाल्टनगंज से कार्यक्रम प्रमुख प्रशांत गौरव के साथ मैं संतोष कुमार।
2: इस प्रकार देश के प्रति

0: आस्था, समर्पण एवं देश की उन्नति में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी का संकल्प लिए 80वां स्वतंत्रता दिवस सामाजिक, शैक्षणिक, सरकारी, गैर सरकारी सहित विभिन्न संस्थानों में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों में आयोजित स्वतंत्रता दिवस 2026 समारोह के अवसर पर आधारित राज्य स्तरीय समन्वित रेडियो रिपोर्ट। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात के 8:44 और 39 सेकेंड। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या और रात 9 बजे अंग्रेजी समाचार News@9, रात 9:15 पर स्पॉटलाइट प्रसारण होगा हमारे दिल्ली केंद्र से ही।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। नागरिकों से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता और युवाओं तथा महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति का उपयोग करने के लिए सप्तधारा रूपरेखा का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य घोषित किया। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। इंडोनेशिया में फ्लोरेस तट के पास आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 47 लोगों की मौत। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने ग्रुप बी के मैच में वेल्स को 3-1 से हराया और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने गोल में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच के पहले दिन का खेल

0: समाप्त होने तक दो विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन हुआ।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया।
1: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा, और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि इन संकटों के दौरान टीके, ईंधन, गैस, डीजल और उर्वरक की कमी को लेकर काफी अफवाहें फैलाई गई थी। श्री मोदी ने कहा कि सुनियोजित नीतियों, तैयारियों और समय रहते उठाए गए कदमों के कारण देश ने इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है।
1: एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है, और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से सप्तधारा की शक्ति के उपयोग का आह्वान किया।
1: मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
0: स्वतंत्रता दिवस समारोह पर हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट।
2: आज स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 वर्षों से चली आ रही गौरवशाली विरासत का स्मरण किया गया। इस वर्ष पहली बार लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया गया। प्रधानमंत्री को तीनों सेनाओं और दिल्ली पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसके साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं भारतीय वायुसेना के दो MI-17 हेलीकॉप्टरों ने समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा की। सेना के बैंड ने वंदे मातरम की मधुर धुन प्रस्तुत की और लाल किले पर मौजूद सभी लोगों ने एक साथ राष्ट्रीय गीत का गायन किया। इसके बाद राष्ट्रगान का भी गायन किया गया। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लगभग 5,000 विशेष अतिथियों को लाल किले पर आमंत्रित किया गया था।

0: सुपर्णा और सौम्य के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। महाराष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों को संबोधित करते हुए किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मेघालय के राज्यपाल सीएच विजय शंकर ने शिलांग स्थित लोकभवन में स्वतंत्रता दिवस पर पारंपरिक एट होम समारोह का आयोजन किया। बिहार में स्वतंत्रता दिवस पारंपरिक उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित मुख्य राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। लद्दाख में स्वतंत्रता दिवस समारोह करगिल के ख्री सुल्तान चो स्पोर्ट्स स्टेडियम में देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। आकाशवाणी करगिल ने बारू परिसर में उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। मणिपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह इम्फाल पश्चिम स्थित प्रथम मणिपुर राइफल्स परेड ग्राउंड में आयोजित हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने आज स्वतंत्रता दिवस पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी का उल्लेख किया। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम ने कौशल विकास, डिजिटल तकनीक, सतत विकास और उन्नत विनिर्माण के क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग का उल्लेख किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने भी भारत को शुभकामनाएं दी। लातविया के विदेश मंत्रालय ने भारत की निरंतर प्रगति, एकता और समृद्धि की कामना की। इसराइल के राजदूत रुवे नजार, अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कोसिनो, श्रीलंका के उच्चायुक्त महेशिनी कोलोन ने, ऑस्ट्रेलिया उच्चायुक्त और कनाडा के उच्चायोग ने भी भारत को शुभकामनाएं दी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने कहा कि आजादी के 8 दशक भारत की आकांक्षाओं, दृढ़ता और अटूट भावना को दर्शाते हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की शुभकामनाओं के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी तथा सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इंडोनेशिया में फ्लोरेस द्वीप तट के पास आज आई 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। भूकंप के बाद देश के कई हिस्सों में 1 मीटर से कम ऊंचाई की सुनामी लहरें भी दर्ज की गई। मुख्य शहर माओमेर में बचाव दल ने 20 शव बरामद किए और 6 घायलों को बाहर निकाला। दक्षिणी लेबनान में आज इसराइल के हवाई हमले में 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने बताया कि अंसार गांव में एक मकान पर हुए इस हवाई हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। इसराइल की सेना ने कहा है कि इसराइली सैनिकों के खिलाफ की गई एक कार्रवाई के जवाब में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट news.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान कल से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। यह रखरखाव के कारण प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा।
3: अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण है। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार

0: तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: सहकारिता मंत्री अमित शाह कल राजस्थान के अलवर में अलवर सरस डेयरी परिसर में नए डेयरी प्लांट की आधारशिला रखेंगे। वे वर्चुअल माध्यम से विभिन्न डेयरी प्रसंस्करण संयंत्रों और पशु आहार संयंत्रों का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा रोजगार उत्सव के तहत नवनियुक्त 10,500 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। दूरसंचार विभाग पुणे में 17 से 21 अगस्त तक ब्रिक्स सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी ट्रैक का आयोजन करेगा। इस वर्ष का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और बदलाव। कार्यक्रम की शुरुआत 7वें ब्रिक्स आईसीटी कार्य समूह की बैठक से होगी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मूसलाधार वर्षा की संभावना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 21 अगस्त तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। और खेलों में नीदरलैंड्स के एम्स्टलविन में एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में आज भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। हरमनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत अपना अगला मैच 17 अगस्त को इंग्लैंड से खेलेगा। वहीं श्रीलंका के साथ गोल में खेले जा रहे भारत के ऐतिहासिक 600वें टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बनाए। भारत की ओर से देवदत्त पडिक्कल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। नागरिकों से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता और युवाओं तथा महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति का उपयोग करने के लिए सप्तधारा रूपरेखा का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य घोषित किया। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। इंडोनेशिया के फ्लोरेस तट के पास आए भूकंप में 47 लोगों की मौत और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने गोल में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi leads the nation in celebrating 80th Independence Day, urges citizens to dream big for a strong and self-reliant India. Prime Minister emphasizes on empowerment of youth and women for a Vikasit Bharat, unveils Saptadhara framework with aim of harnessing youth power to propel India to new heights. Prime Minister Modi announces target of 100 gigawatts nuclear power capacity by 2047. World leaders extend Independence Day greetings to India, praising its democratic journey, civilizational heritage, and expanding role in regional and global cooperation. In Indonesia, death toll in powerful earthquake rises to 47. Heavy rain alert issued in Arunachal Pradesh, Gangetic, West Bengal, Odisha, Uttar Pradesh, and Uttarakhand till tomorrow. In hockey, India defeat Wales 3-1 in Group D match of FIH World Cup in the Netherlands. And in cricket, India post 288 for 2 at stumps on day 1 of first test against hosts Sri Lanka. The nation is celebrating its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi led the Independence Day celebrations from the iconic Red Fort in Delhi. Addressing the nation from the ramparts of Red Fort, the Prime Minister said over the past 12 years, crores of citizens of the country, with their determination and dedication, made every possible effort to take the country to new heights. He said, a nation achieves greatness when it moves forward on the strength of its own dreams and resolve. The Prime Minister stressed that higher dreams and stronger resolutions raise the overall scale and capability of the nation's efforts.
3: कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनों अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। बड़े सपने हमारी सोच को विस्तार देते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है।
2: Prime Minister Modi said energy security is one of the major requirements of the present times, and the government has taken several significant steps in this direction. He said nuclear energy is an important means of ensuring a country's energy security.
3: Energy security ye hamare samay ki mang hai aur isliye humne pehle se hi us disha mein ek ke baad ek mazboot kadam uthaye hain. Energy security ka ek bada madhyam hai परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
2: Prime Minister Modi said the government has opened up 99% of offshore areas that were once designated as no-go zones and converted them into go-ahead areas. He said the government is now actively pursuing exploration beneath the sea and making efforts to discover new reserves.
3: हमने 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया और अब हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं हम प्रयास कर रहे हैं हमने पिछले वर्ष उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखते हुए समुद्र मंथन की घोषणा करके काम को गति देने का निर्णय कर लिया है
2: Stressing on empowerment of youth and women for a Vikasit Bharat, Prime Minister Modi announced to provide free online coaching for poor and middle-class families for various public examinations. He also announced that the government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. He said this will enable them to take the lead in the global AI sector.
3: हमने पिछले दिनों AI Impact Summit किया था. AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे
2: The Prime Minister urged all parties to support the implementation of women's reservation in Parliament and state assemblies without making it a political fight. He said women should be given the opportunity to contribute to shaping India's policies. On Naxalism, the Prime Minister said the people of the country gave the opportunity to serve the nation in 2014 and he resolves to make the country free from Naxalism. In his address, the Prime Minister called upon the nation to harness the 7 streams of strength called Saptadhara. He said in the next 5 to 7 years, the country will achieve all that could not be achieved in the past 5 to 7 decades.
3: आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूं आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ वो सप्त धारा के सामर्थ्य से शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा
2: Prime Minister Modi said in the next 7 to 8 years, another 5 to 8 semiconductor plants are set to commence operations. He said India has started production at 3 semiconductor manufacturing plants.
3: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे हर किसी में चिप अनिवार्य है और इसे चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं.
2: The Prime Minister highlighted the government's focus on critical minerals, saying that modern technology depends entirely on critical minerals and India is actively working to secure its position in this sector. Our correspondent takes a glimpse at independence celebrations at the Red Fort today.
4: Independence Day celebrations today commemorated 150 years of the enduring legacy of the national song Vande Mataram. For the first time, Vande Mataram was rendered during the celebrations at Red Fort. Upon his arrival at the Red Fort, Prime Minister Narendra Modi was received by Defence Minister Rajnath Singh, Minister of State for Defence Sanjay Seth and Defence Secretary Rajesh Singh. The Guard of Honour contingent for the Prime Minister consisted of one officer and 24 personnel, each from the Army, Navy, Air Force and Delhi Police. The Prime Minister hoisted the national flag, which was synchronized with 21 gun salute. Flower petals were showered at the venue by two Mi-17 helicopters of the Indian Air Force. The Army band played the tune of Vande Mataram and the national song was sung by everyone present at Red Fort. It was followed by the national anthem. Around 5,000 special guests from different walks of life were invited to witness the celebrations at Red Fort this year. With Suparna Sekia, Saklan Akhtar, Akashwani News, Delhi.
2: Reports of Independence Day celebrations have also come in from all states and union territories. Chief ministers, governors, lieutenant governors led the celebrations in the state capitals. Special programs were also held. World leaders and foreign missions have extended Independence Day greetings to India, praising its democratic journey, civilizational heritage, and growing role in regional and global cooperation. U.S. Secretary of State Marco Rubio highlighted the strengthening India-U.S. strategic partnership, while Singaporean President Tharman Shanmugaratnam stressed growing cooperation in skills development, digitalization, sustainability, and advanced manufacturing. French President Emmanuel Macron conveyed his warm wishes on India's 80th Independence Day, while Israeli President Isaac Herzog congratulated President Draupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi and the people of India in a message shared in Hindi. Prime Minister Narendra Modi has thanked world leaders for their greetings, including President Macron and Maldives President Dr. Mohamed Muizzo, Nepal's Prime Minister Balendra Shah, his Bhutanese counterpart Chering Tobge, and Slovakian President Peter Pellegrini. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts, and for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're with us on the news at 9. In a unique global celebration of India's Independence Day, the Suryapath Tiranga Global Relay is underway, in which the Indian tricolour is travelling across the world following the path of the rising sun. The Suryapath Tiranga journey began at 1:30 a.m. at Suva, the capital of Fiji, as the Tiranga was hoisted at the first point of the relay. From there it moved westward. The Culture Ministry said in a statement that at every mission and post the national flag was hoisted, creating a continuous visual relay of the Tiranga across time zones and continents. In Indonesia, the death toll has risen to 47 after a powerful 7.7 magnitude earthquake struck off the coast of Flores today. The earthquake was followed by dozens of aftershocks as rescue teams continued efforts to reach the worst affected areas. Hundreds of buildings in the region have been damaged by the quake and the dozens of aftershocks that followed. A 6.4 magnitude earthquake was also felt in North Sumatra later in the day at a depth of 163 kilometers. Tsunami waves of less than 1 meter were reported in several parts of the country. The tsunami alert was withdrawn around 3 hours after the initial earthquake. Officials said people are still believed to be trapped inside buildings in several affected areas. Landslides have also been reported, with debris blocking roads and hampering rescue and relief operations. The Inter Meteorological Department, IMD, has issued an orange color warning for heavy to very heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Gangetic West Bengal, Odisha, Uttar Pradesh and Uttarakhand till tomorrow.

0: Prime Minister called upon the people to build the India they had dreamed of.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम सब 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हर दिलों की धड़कन वंदे मातरम के नाद से गूंज रही। आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है और देश उत्साह और उमंग के साथ नए संकल्पों को लेकर के आज आगे बढ़ रहा है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: Amid the celebrations of Independence Day, the Prime Minister also spoke about parts of the country currently facing the challenge of floods. Expressing concern for the affected people, he assured them of all possible assistance.
1: बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए, उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं।
0: But India's aspiration do not end here. The Prime Minister made it clear that the country will no longer limit itself to small dreams. The goals will be bigger and the resolve to achieve them will be even stronger.
1: जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं, तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते हैं।
0: A strong economy is essential to turn these big dreams into reality. Highlighting India's rapid economic growth and changing economic landscape, the Prime Minister spoke about the country's growing capabilities.
1: इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल फाइव में गिरे जाते थे। 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं।
0: Modern infrastructure is giving further strength to this pace of development. Speaking about the expansion of roads, railways, air connectivity and digital connectivity over the past decade, the Prime Minister said,
1: हमने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेट्रो का विस्तार किया, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ताकत दी, जिस स्पीड से काम, जिस स्केल पर काम किया, ये सब, ये रफ्तार, ये विस्तार, ये अचीवमेंट आजादी के बाद पहली बार पिछले एक दशक ने देखा है।
0: India is also reaching new heights in the field of technology. In this context, the Prime Minister mentioned the country's first hydrogen-powered train and expressed confidence in India's technological capabilities.
1: देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी है और मुझे खुशी है, ये सबसे लंबी ट्रेन है और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है।
0: From technological strength to a growing global identity, the message is clear. India must move forward in the world with confidence in its own strength, capabilities and national pride.
1: आज भारत दुनिया के लिए एक स्वीकृत और सम्मानीय देश के रूप में बन रहा है। भारत के पास स्थिर सरकार है, भारत का मजबूत न्याय तंत्र है और हम सबको दिशा देने वाला भारत का संविधान है और अब दुनिया हमारे इन सामर्थ्य को पहचानने लगी है और इसलिए 2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा FTA एग्रीमेंट हो रहा है।
0: The Prime Minister also underlined the importance of equal participation of women in the journey towards a developed India. Referring to efforts related to women's reservation, he appealed to political parties to work together and move forward.
1: समय की मांग है और मैं सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यस लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: And who is at the center of this entire development journey? The citizen. With the message of Nagrik Devo Bhava, the Prime Minister called for putting citizens at the heart of national development. Let us listen to his words.
1: इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था, सोचा नहीं था यह संकट आएगा, लेकिन इस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है, हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे हैं।
0: Finally, the Prime Minister drew attention to the opportunities and possibilities before the country and said that India has the time, the opportunity and the capability to move forward. Now is India's time.
1: मैं सभी देशवासियों से कहूंगा, समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है। आइए सपनों को संकल्प बनाए, संकल्प को सामर्थ्य बनाए और सामर्थ्य को सफलता में बदल के रहे। आइए हर कदम को विकास का कदम बनाए।
0: सेल्फ अलायंस रिमेन्स।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के 9:30 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए 80वें स्वतंत्रता दिवस पर उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के मुख्यालय हजारीबाग में आयोजित विभिन्न झंडोत्तोलन समारोहों पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। संकलन और वाचन राजीव कुमार, सैयद मासूम अहमद, सुनील कुमार, नाहमता परवीन, माणिक चक्रवर्ती, सूरज रजक एवं अशोक कुमार की। एडिटिंग और मिक्सिंग सुनील कुमार और अभिषेक कुमार के। तकनीकी सहयोग दिया शंभुनाथ, संजीव मुर्मू और साधन चंद्र मंडल ने। प्रस्तुत करता है राजीव कुमार और संयोजक हैं विक्रम कुमार रंजन।

0: खून से खेलेंगे होली, अगर वतन मुश्किल में है, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं।
1: ना सर कटा है, ना सर कटा है और ना झुकेगा कभी, और ना मिटेगा नामो निशा हमारा।
0: आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से।
1: आज वो दिन आया है जब दिल को मगन कर लो, हर शहीद का तहे दिल से नमन कर लो।
0: आज 15 अगस्त 2026 का वो पावन दिन है जब सन 1947 में हमारे तिरंगे ने गुलामी की जंजीरें तोड़ी थी।
2: 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के मुख्यालय हजारीबाग में भी सुबह से ही देशभक्ति के बयार चलने लगी थी।
1: अहले सुबह से ही नन्हे मुन्ने स्कूली बच्चे हाथों में तिरंगा लिए प्रभात फेरी के लिए निकल पड़े थे। शहीद स्मारकों में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होने लगा था। जगह जगह वंदे मातरम का उद्घोष और देशभक्ति गीतों का तराना माहौल में देशभक्ति की बयार उत्पन्न कर रहा था।

0: लिए मुख्यालय हजारीबाग में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह स्थानीय करजन ग्राउंड स्टेडियम में हुआ। मुख्य समारोह स्थल से आइए सुनते हैं सैयद मासूम अहमद और सुनील कुमार की रिपोर्ट।
1: उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के मुख्यालय हजारीबाग में 80वें स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह स्थानीय करजन ग्राउंड स्टेडियम में हुआ।
2: इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि प्रमंडलीय आयुक्त श्री विजय कुमार गुप्ता ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और तिरंगे को सलामी दी।
1: इससे पहले प्रमंडलीय आयुक्त श्री गुप्ता ने परेड में शामिल टुकड़ियों का निरीक्षण किया।
2: झंडोत्तोलन के उपरांत प्रमंडलीय आयुक्त ने करजन ग्राउंड स्टेडियम में मौजूद गणमान अतिथियों, विद्यार्थियों और आम जनों को संबोधित भी किया।
1: उपस्थित लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए प्रमंडलीय आयुक्त श्री गुप्ता,
3: स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर माटी के वीर सपूतों को याद करते हुए नमन करता हूं सभी नागरिकों, जिला प्रशासन से जुड़े सभी पदाधिकारी एवं कर्मियों, परेड में शामिल पुलिस के जवानों, विद्यार्थियों, प्रेस मीडिया के को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं।
2: जिले में चल रही सरकारी योजनाओं की प्रगति और उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए प्रमंडलीय आयुक्त,
3: सर्वप्रथम मैं अपने उद्भाषण में सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना मैया सम्मान योजना के तहत 18 से 49 वर्ष की उम्र की सभी महिलाओं को दिसंबर से लेकर हर महीने 2500 रुपए की सम्मान राशि बैंक खाते के माध्यम से दिया जा रहा है। जुलाई 2026 में कुल 282,641 महिला वाहनों को सम्मानित किया जा चुका है।
1: हजारीबाग जिले में संचालित पेंशन योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए आयुक्त श्री गुप्ता ने कहा,
3: जिला में विभिन्न पेंशन योजनाओं में कुल 243,691 लाभुकों को प्रति माह 1,000 रुपये की दर से भुगतान किया जा रहा है। पिछले 6 महीने में 14,481 नए लाभुकों को सर्वजन पेंशन योजना से जोड़ा गया है।
2: जिले में चल रही पशुधन योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए आयुक्त,
3: मुख्यमंत्री पशुधन योजना के अंतर्गत 2025-26 में 75% और 90% अनुदान पर 2 दुधारू गाय का वितरण और 200 लाभुकों के बीच में डीबीटी के माध्यम से अनुदान किया जा रहा है, जिसमें 2 दुधारू गाय का वितरण योजना, 62 लाभुकों का परिसंपत्ति का वितरण और वित्तीय वर्ष 2025-26 में 50% और 75% अनुदानों पर कामधेनु योजना के अंतर्गत दुधारू गाय भैंस वितरण अंतर्गत 46 लाभुकों को डीबीटी के माध्यम से अनुदान दिया जा रहा है। इसमें कामधेनु योजना अंतर्गत दुधारू गाय भैंस की वितरण योजना में 13 लाभुकों को परिसंपत्ति का वितरण किया गया है। पशुपालन विभाग के अंतर्गत बकरा विकास योजना, नग सुकर विकास योजना, बायलर कुरकुट विकास योजना, नो इनपुट लेयर कुरकुट विकास योजना, बत्तख चूजा वितरण के साथ साथ भेड़ पालन की योजना संचालित की जा रही है।
1: मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते आप हैं प्रमंडलीय आयुक्त,
3: मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत 2026-27 में कुल 869 के विरुद्ध में 87 कन्याओं का विवाह के उपरांत 30,000 प्रति लाभुकों की दर से 26,10,000 रुपये की आर्थिक सहायता उन्हें भुगतान की गई है।
2: स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में आयुक्त के हाथों स्वतंत्रता सेनानियों एवं शहीद जवानों के आश्रितों को भी सम्मानित किया गया।
1: इसके अलावा परेड में शामिल बीएसएफ, सीआरपीएफ, झारखंड सशस्त्र बल, जिला बल, गृह रक्षा वाहिनी, एनसीसी, स्काउट एंड गाइड तथा इंदिरा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली टुकड़ियों को सम्मानित किया गया।
2: इस अवसर पर रेंज डीआईजी उपायुक्त श्री हेमंत सती, पुलिस अधीक्षक श्री अमन कुमार सहित जिले के वरीय न्यायिक, प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारी सहित गणमान व आम जन मौजूद थे।
4: करजन ग्राउंड स्टेडियम से ये थी सैयद मासूम अहमद और सुनील कुमार की रिपोर्ट।
0: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्थानीय विनोबा भावे विश्वविद्यालय में भी धूमधाम से समारोह आयोजित किया गया। विश्वविद्यालय परिसर से आइए सुनते हैं परमेंद्र कुमार मिश्रा की ये रिपोर्ट।
5: देशभक्ति का जज्बा हमारे दिलों में बसता है, यह वो जोश है जो हमें एक सूत्र में बांधता है, विविधता में एकता का संदेश देता है। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर विनोबा भावे विश्वविद्यालय का पूरा परिसर वंदे मातरम के जयघोष से आह्लादित हो रहा था। चहुं ओर देशभक्ति के नारे से छात्रों का उत्साह प्रशंसनीय था। अवसर था 80वां स्वतंत्रता दिवस का। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रभूषण शर्मा, सह धर्मपत्नी श्रीमती सरिता शर्मा, सीसीडीसी डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह, कुलानुशासक डॉक्टर सादिक रजाक, कुल सचिव डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा, छात्र कल्याण संकाय के डॉक्टर विकास कुमार, वित्त परामर्शी डॉक्टर अखिलेश शर्मा, वित्त पदाधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार, नामांकन के नोडल ऑफिसर सह विज्ञान के संकायाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रजीत कुमार, कॉमर्स के संकायाध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार, सोशल साइंस के संकायाध्यक्ष डॉक्टर रेणु बोस, मानविकी के संकायाध्यक्ष डॉक्टर एस जे ढक के अलावा विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष, एनसीसी और एनएसएस के अंडर ऑफिसर और इनकी टुकड़ी, सरस्वती शिशु मंदिर के जयघोष दल के अलावा विभिन्न विषयों के प्राध्यापकगण, शिक्षकेतर कर्मचारी, ज्ञान पिपासुओं, सुधार्थियों, विद्यार्थियों और विद्वजनों की सहभागिता रही। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत भूदान आंदोलन के प्रणेता संत विनोबा भावे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के तैलचित्र पर पुष्पार्पण के बाद मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रभूषण शर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी और राष्ट्रगान के साथ जय घोष हुआ।
6: भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे।
5: इसके पश्चात मुख्य अतिथि महोदय प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रभूषण शर्मा ने नेशनल कैडेट कोर राष्ट्रीय सेवा दल के साथ विभिन्न टुकड़ियों का निरीक्षण किया। इसके बाद मार्च पास्ट कर एनसीसी एनएसएस के विभिन्न टुकड़ियों ने मुख्य अतिथि को सलामी दी। इसके पश्चात मनोरम झांकी प्रस्तुत की गई, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, नेशनल सर्विस साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यूसेट और अनादा कॉलेज के साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ योगा और योग सरिता के छात्र छात्राएं शामिल हुए।
7: कहानी है उस भारत की जिसके चार मजबूत स्तंभ है, गरीबी से सशक्तिकरण, महिलाओं का सम्मान, युवाओं की ऊर्जा और किसानों की समृद्धि।
5: इसके बाद विनोबा भावे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रभूषण शर्मा ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर मंच से संबोधित करते हुए लोगों को बधाइयां दी और अपने उद्बोधन में कहा,
8: हर साल की तरह हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं अपने स्वतंत्रता दिवस मनाने को। आज वो दिन है कि हम याद करें कि हमें आजादी के लिए लड़ाई करनी क्यों पड़ी। हम दुनिया में सबसे आगे थे, सबसे समृद्ध थे, सबसे ज्ञानवान थे, दुनिया का केंद्र थे, वहां से हम गुलाम कैसे बन गए और पीढ़ियों को उस गुलामी से छुटकारा पाने के लिए लड़ना पड़ा।
5: इसके बाद केबी विमेंस कॉलेज, यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के बच्चों ने देशभक्ति समूह गान प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और जिसे सुनकर उपस्थित लोग मंत्रमुग्ध हुए।

0: इसके बाद सरस्वती शिशु मंदिर के जयघोष दल, एनसीसी और एनएसएस के अंडर ऑफिसर, विभिन्न कॉलेजों से आए छात्र छात्राओं और विनोबा भावे विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ साथ विनोबा भावे विश्वविद्यालय की सुरक्षा प्रहरी को उनके विशिष्ट कार्य और उनके अच्छे प्रदर्शन की वजह से उन्हें पुरस्कृत किया गया और मोमेंटो देकर उनका मान बढ़ाया गया। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर विनोबा भावे विश्वविद्यालय के सीसीडीसी प्रोफेसर मिथिलेश कुमार सिंह ने लोगों को बधाइयां दी और कहा,
1: हमारा स्वतंत्रता दिवस हमें प्रेरित करता हुआ नजर आता है और हजारीबाग के निवासी भी इस दिशा में संकल्पित हैं। विश्वविद्यालय उन सबको एक जगह इकट्ठा करने का, शिक्षित प्रशिक्षित और फिर देश की सेवा में लगने के लिए प्रेरित करने का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इस नाते विश्वविद्यालय का दायित्व और बढ़ा हुआ है और विश्वविद्यालय अपने दायित्व का निर्वाह कर रहा है।
0: इस प्रकार बड़े ही उत्साह और सौहार्दपूर्ण वातावरण में विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में आयोजित 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन इस आशा और उम्मीद के साथ संपन्न हुआ कि वीर शहीदों के अमर बलिदान से प्राप्त आजादी को हम सभी हर कीमत पर बनाए रखेंगे।
2: विनोबा भावे विश्वविद्यालय परिसर से ये थी प्रमेंद्र कुमार मिश्रा की रिपोर्ट और अब प्रस्तुत है डीएवी पब्लिक स्कूल कैनरी रोड से माणिक चक्रवर्ती की रिपोर्ट।
3: सुबह के 9 बजते ही हजारीबाग शहर के कन्हरी हिल स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल के सीनियर विंग के प्रांगण में 80वें स्वतंत्रता दिवस की रौनक ने आए हुए आगंतुक, उत्साहित बच्चों एवं छात्र छात्राओं, विविध कार्यक्रमों में हिस्सा लेने जा रहे कलाकारों, शिक्षक शिक्षिकाओं के बीच एक गजब का समा बंधता हुआ नजर आया। सबसे पहले राष्ट्रीय गीत गाए जाने के बाद स्कूल के प्रधानाचार्य ने झंडोत्तोलन किया, साथ ही नेशनल एंथम भी गाया। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए एनसीसी के कैडर्स के मार्च पास्ट के साथ मंच पर पहुंचे विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर रजनीश कुमार।
4: Traditional flag hoisting ceremony. For this, I would like to request our honorable principal sir, Dr. Rajneesh Kumar sir, to hoist the tricolor. With the chin up and chest high, the NCC of 22nd Jharkhand Battalion marches the steps on the occasion of 80th Independence Day celebration.
3: इसके बाद इस पावन अवसर पर सबको संबोधित करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर रजनीश कुमार,
5: आज का दिन केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, आज का दिन इस संकल्प संघर्ष त्याग और बलिदान की याद दिलाता है जिसके कारण हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक हैं। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि यह स्वतंत्रता हमें उपहार में नहीं मिली थी, इसके पीछे अनगिनत ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष था। किसी ने अपना घर छोड़ा, किसी ने अपना सुख छोड़ा, किसी ने अपना जीवन तक राष्ट्र के चरणों में समर्पित कर दिया। हम जब महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सरदार पटेल, रानी लक्ष्मीबाई और ऐसे असंख्य वीरों को याद करते हैं तो वास्तव में हम भारत की उस आत्मा को नमन करते हैं जिसने कभी गुलामी स्वीकार ही नहीं किया। साथियों, स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं है, स्वतंत्रता एक जिम्मेदारी भी है।
6: यदि हमारे हाथ में तिरंगा है लेकिन हमारे व्यवहार में ईमानदारी नहीं है तो हमारी देशभक्ति अधूरी है। एक विद्यार्थी के लिए सच्ची देशभक्ति है ईमानदारी से पढ़ना, अपने माता पिता का सम्मान करना, अपने शिक्षकों का आदर करना, अनुशासन का पालन करना, समय का मूल्य समझना, प्रकृति की रक्षा करना और सबसे महत्वपूर्ण एक अच्छा इंसान बनना। दुनिया भारत की ओर आशा और विश्वास से देख रही है, आइए पूरे उत्साह और गर्व से कहें, भारत माता की
7: जय,
6: भारत माता की
7: जय,
6: वंदे मातरम, जय हिंद।
3: प्रधानाचार्य के संबोधन के बाद बारी आई पिन ड्रॉप साइलेंस वाले हर उस देशभक्ति से सराबोर गीतों नृत्यों की जिसे डीएवी के जूनियर और सीनियर छात्रों ने मंच पर प्रस्तुत किया। साथ ही स्वतंत्रता अभी बाकी है जैसी लघु नाटिका ने तो उपस्थित सभी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। प्रस्तुत है 80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर प्रस्तुत उन कार्यक्रमों की एक झलक जिसमें बीच बीच में छात्रों को पुरस्कृत करने का सिलसिला भी चलता रहा।

अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी है, रावी की शपथ न पूरी, जिनकी लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वे अब तक है खाना बदोश गम की।

0: जिस मिट्टी ने हमें जन्म दिया उस मिट्टी के ऋण से बड़ा कोई ऋण नहीं होता है, और हम उसे मिट्टी नहीं माँ कहते हैं। माँ माँ पुकार रही है साथियों, इस माँ की लाज बचाने में यदि हमारी सांसें थम जाए तो समझना हम मरे नहीं, अमर हो गए, अमर हो गए।
1: हम आएंगे, हम आएंगे, हम जरूर आएंगे।
2: क्रांति अभी समाप्त नहीं हुई, बस उसकी मशाल अब हमारे हाथों में, क्योंकि स्वतंत्रता अभी शेष है।
3: और अंत में शांति मंत्र के साथ सभी भारतवासियों के लिए, स्वास्थ्य अच्छा हो, ईमानदारी से लोग काम करें, देश प्रेम से रहें, एकता के सूत्र में बंधे रहें और हर क्षेत्र में प्रगति करते रहें, सबके लिए सुख समृद्धि की कामना की गई।
4: ओम शांति शांति शांति।
5: इधर भारत स्काउट एवं गाइड राज्य प्रशिक्षण केंद्र में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। सुनते हैं सूरज रजक की ये रिपोर्ट।
6: 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह शनिवार को स्काउट एंड गाइड मुख्यालय मैदान हजारीबाग में बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। स्काउट एंड गाइड के विपिन कुमार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्रीय ध्वज की सलामी ली। इस समारोह में विभिन्न विद्यालयों से आए छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम के बारे में विपिन कुमार ने विस्तार से हमें जानकारी दी।
7: अकस्मात कहीं दुर्घटना होती है तो कैसे हमारे स्काउट गाइड सहायता करते हैं, कैसे उनका उपचार करते हैं और डॉक्टर तक पहुंचाते हैं, तो फर्स्ट एड का यहाँ प्रतियोगिता है। उसके बाद है पिरामिड, पिरामिड भी बनाएंगे। पिरामिड के बाद है उनका फैंसी ड्रेस महापुरुष के, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हुए, गांधी जी हुए, मदर टेरेसा हुई, इस तरह से उनका फैंसी ड्रेस प्रदर्शन भी है। कंपटीशन में सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिसमें लोकगीत, लोक नृत्य, भजन, कवाली ये आएगा। उसके बाद है कैंप क्राफ्ट। कैंप क्राफ्ट जो है हमारा ये स्किल है। इस कैंप क्राफ्ट में जो है बच्चे को हम जो सिखाते हैं कि हमारे पास कुछ भी साधन नहीं है तो कैसे लाठी डंडा को जोड़ करके जो है कि फ्लैग अथी करोगे, फहराओगे, अभी बरसात का समय है तो इसमें कैसे तुम, अभी प्रोग्राम चल रहा है, बरसा शुरू हो गई तो वे टेंट लाठी डंडा के सहारे, रस्सी के सहारे टेंट बनाएंगे हैं, ताकि बरसात के समय उसमें वो छिप सके, यानी शेल्टर अपना एक छिपने के लिए उनको बनाना है, तो कैंप क्राफ्ट है। कैंप क्राफ्ट के बाद में हमारा है आपका ओरेबिक। ओरेबिक डांस भी है, फैंसी ड्रेस तो हमने बतलाया, सांस्कृतिक का और सामान के साथ ड्रिल, जैसे लेजिम है, डंबल है, डांडिया है, वांट है, तो उसको बैंड के सहारे बच्चे अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। प्रतियोगिता में 7 आइटम जो है हम लोगों का प्रतियोगिता में रखा गया है और 7 आइटम में फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइज भी हम उनको देते हैं।
6: स्काउट एंड गाइड मुख्यालय हजारीबाग में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हजारीबाग नगर निगम के मेयर अरविंद कुमार ने उपस्थित अतिथियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें हर कार्य राष्ट्र प्रथम को दृष्टि में रखते हुए करना चाहिए।
8: आज हम सभी आजादी का दिवस मना रहे हैं। यह आजादी हमें ऐसे नहीं मिली थी, बल्कि इसके लिए लाखों लोगों ने अपना सर्वस्व न्योछावर किया था। संविधान हमें अधिकार देती है और हम अधिकार की बातें करते हैं, लेकिन आज का दिन अपने कर्तव्य का संकल्प लेने का भी दिन है और हम सब आज यह संकल्प लें कि जिए तो राष्ट्र के लिए, मरे तो राष्ट्र के लिए, सोचे तो राष्ट्र के लिए, करे तो राष्ट्र के लिए। अगर हमारा राष्ट्र रहेगा तो हम रहेंगे, हमारा घर रहेगा, हमारा मोहल्ला रहेगा, हमारे देवता रहेंगे, हमारे भगवान रहेंगे। इसीलिए आज हम स्काउट गाइड इस कार्यक्रम में है और जो यहाँ जो प्रशिक्षण है, यह जो अनुशासन है, हमें देश सेवा का संकल्प देती है और हमें यह पुनः संकल्प लेना होगा कि राष्ट्र प्रथम मानकर मेरा सारा कार्य हो। छात्र कल के नहीं आज के नागरिक हैं और हमें कल नहीं आज का तय करना होगा। भविष्य का भारत कैसा होगा यह हमें आज से तय करना होगा और भारत का हर युवा, हर छात्र, हर बालिका, हर बेटियां प्रशिक्षित हो, उन्हें जीवन जीने की कला आनी चाहिए, जीवन बचाने की कला आनी चाहिए और आपदा में कैसे हम अपने राष्ट्र की रक्षा कर सके, परिवार की रक्षा कर सके, यह स्काउट एंड गाइड से सीखना चाहिए। हम आज इस कार्यक्रम के बहाने मैं देशवासियों को अपने इस आजादी दिवस के स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ और पुनः आग्रह करता हूँ कि राष्ट्र प्रथम मानकर हम अपना कार्य का शुरुआत करें, घर से शुरुआत करें, दिनचर्या की शुरुआत करें। राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तब हम सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय।
6: इस मौके पर उपस्थित मुख्यालय आयुक्त विजेंद्र पांडे ने स्काउट एंड गाइड की प्रस्तुतियों की भरपूर सराहना की।
9: भारत स्काउट एंड गाइड एक बहु प्राचीन काल से चलता आ रहा है। इसमें बच्चों के साहस, ईमानदारी और कर्तव्य के बारे में चहुमुखी विकास के लिए हम लोग इसका प्रयास करते हैं। आज हजारीबाग जिले में, हजारीबाग शहर में भारत स्काउट एंड गाइड का लगभग प्रत्येक विद्यालय में इसका गठन है और प्रत्येक विद्यालय से हमारे ये मुख्यालय में लोग आते हैं और आकर के भारत स्काउट गाइड का हम लोग झंडोत्तोलन करते हैं और इसका हम लोग बहुत भव्य तरीके से 15 अगस्त, 26 जनवरी एंड भारत स्काउट गाइड के दिवस के अवसर पर हम लोग मनाते हैं। यहाँ का मुख्य आकर्षण सर रैली होता है और झांकी होता है।
6: इस तरह 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह शनिवार को स्काउट एंड गाइड मुख्यालय मैदान हजारीबाग में बहुत ही धूमधाम से संपन्न हुआ।
10: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिले के विभिन्न विद्यालयों में भी धूम रही। स्थानीय सरस्वती शिशु विद्या मंदिर कुम्हारटोली से आइए सुनते हैं अशोक कुमार का डिस्पैच।
11: आज हजारीबाग शहर में 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। सभी विद्यालयों समेत सरस्वती शिशु विद्या मंदिर कुम्हारटोली हजारीबाग में सभी बच्चों में इस अवसर पर भारी उत्साह का माहौल देखा गया। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के माननीय सचिव डॉक्टर जयप्रकाश आनंद ने झंडोत्तोलन कर झंडे की सलामी ली और अपने संबोधन में कहा,
12: हम सभी भारतवासी आज के दिन खास तौर पर भारत भूमि के उन रणबांकुरों, उन वीर शहीदों को नमन वंदन प्रणाम करने का अवसर होता है जिसके बदौलत यह सुंदर देश हम सबको मिल पाया है। 200 वर्षों के लंबे गुलामी के बाद आज ही के दिन 1947 में भारत देश आजाद हुआ था। हम सभी आजाद भारत में हैं। यह आजाद भारत सिद्धू कानू चांद भैरव, जतरा भगत, ताना भगत, फूलो झानो, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अपने सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों के बदौलत यह प्राप्त हुआ है। उन तमाम वीर शहीदों को नमन करते हैं।
11: साथ ही साथ प्रधानाचार्य श्री सर्वेंद्र कुमार साहू ने इन शब्दों में स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी।
13: वर्तमान सत्र 2026-27 जो गतिमान है, अगर इसकी उपलब्धि के बारे में कहा जाए तो अपने भैया बहन के कई टोली राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुके हैं।
11: स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की शानदार प्रस्तुति की और उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

0: तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे।
1: इसी के साथ हजारीबाग में 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह जिला स्कूल हजारीबाग, हिंदू हाई स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल आदि विद्यालयों समेत सरस्वती शिशु विद्या मंदिर कुम्हटोली हजारीबाग में धूमधाम से संपन्न हुआ।
2: इस प्रकार उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के मुख्यालय हजारीबाग में 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह के साथ समारोह पूर्वक मनाया गया।

आप सुन रहे थे 80वीं स्वतंत्रता दिवस पर उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के मुख्यालय हजारीबाग में आयोजित विभिन्न झंडोत्तोलन समारोहों पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। संकलन और वाचन था राजीव कुमार, सैयद मासूम अहमद, सुनील कुमार, नाहमता परवीन, माणिक चक्रवर्ती, सूरज रजक और अशोक कुमार के। एडिटिंग और मिक्सिंग दिया सुनील कुमार और अभिषेक कुमार ने। तकनीकी सहयोग दिया शंभुनाथ, संजीव मुर्मू और साधन चंद्र मंडल ने। प्रस्तुतकर्ता राजीव कुमार और इस रेडियो रिपोर्ट के संयोजक थे विक्रम कुमार रंजन।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात के 10 बजे हैं। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर

की इस खुशनुमा और शांत वातावरण में आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम रजनीगंधा में। आज की यह रात कुछ खास है क्योंकि आज हमारा देश स्वतंत्रता दिवस की खुशियां मना रहा है। देशभक्ति के जज्बे से सराबोर इस खास मौके पर आइए दिन भर की भाग दौड़ से थोड़ी देर दूर होकर संगीत की इस महफिल में खो जाएं। आज के रजनीगंधा में होंगे देश के नाम कुछ खूबसूरत नगमे, कुछ सदाबहार गीत जिनमें मिट्टी की खुशबू भी है और वतन से मोहब्बत भी।

को कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, इसको हृदय के खून से बापू ने सींचा, रखा है ये

दोस्तों, देश की मिट्टी से रिश्ता हमारा केवल जन्मभूमि का रिश्ता नहीं बल्कि भावनाओं का रिश्ता है। इस मिट्टी में हमारे पूर्वजों की यादें हैं, हमारे वीरों की कुर्बानियां हैं और हमारे भविष्य के सपने हैं। आइए इसी माटी को नमन करते हुए सुनते हैं अगला देशभक्ति गीत।

के फूल है खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो हे, हम सारे हैं भारतवासी, सब है।

हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस भारत का सपना देखा था, उस भारत को मजबूत बनाना आज हम सबकी जिम्मेदारी है। नई पीढ़ी को देश के इतिहास, संस्कृति और स्वतंत्रता के संघर्ष से परिचित कराना भी हम सबका कर्तव्य है।

दोस्तों, देशभक्ति किसी एक दिन की भावना नहीं बल्कि जीवन भर निभाया जाने वाला संकल्प है। आइए आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम संकल्प लें कि अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे और अपने देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। वीरों की शहादत को याद करना केवल उन्हें श्रद्धांजलि देना नहीं बल्कि उनके सपनों के भारत को बनाने का संकल्प लेना भी है। उन सभी ज्ञात अज्ञात वीरों को नमन जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया।

यह था कार्यक्रम रजनीगंधा। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। अगला प्रोग्राम बस थोड़ी देर में।

ये है आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर पेश है कार्यक्रम आज के फनकार। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज हम मना रहे हैं अपने देश का स्वतंत्रता दिवस। आज के इस कार्यक्रम में हम सुनवाएंगे उन फनकारों के गाए गीत जिन्होंने अपनी आवाज, अपने संगीत और अपनी कला के माध्यम से देशभक्ति के जज्बे को नई पीढ़ी तक पहुंचाया है। देशभक्ति के गीतों की परंपरा तो बहुत पुरानी है, लेकिन हर दौर के कलाकारों ने इसे अपने अंदाज में आगे बढ़ाया है। तो आज की हमारी ये संगीत यात्रा होगी देशभक्ति के सुर के नाम।

देशभक्ति के सुर के इन गीतों के साथ आज का कार्यक्रम आज के फनकार यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में रात के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से सप्तधारा की शक्ति के उपयोग का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की शुभकामनाओं के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी तथा सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अमृत उद्यान कल से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश

शाम 5 बजे तक होगा। ये रखरखाव के चलते प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। इंडोनेशिया में आज फ्लोरेस के तट के पास आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई। भूकंप के बाद दर्जनों झटके महसूस किए गए। राहत और बचाव दल सबसे अधिक प्रभावित इलाकों तक पहुंचने के प्रयास में जुटे हैं। देश के कई हिस्सों में 1 मीटर से कम ऊंचाई की सुनामी लहरें भी दर्ज की गई। अधिकारियों के अनुसार कई प्रभावित इलाकों में अब भी लोगों के इमारतों के भीतर फंसे होने की आशंका है। नीदरलैंड्स के एम्स्टलविन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में आज भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। हरमनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत अपना अगला मैच 17 अगस्त को इंग्लैंड से खेलेगा। श्रीलंका के साथ गोल में खेले जा रहे भारत के ऐतिहासिक 600वें टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बनाए। भारत की ओर से देवदत्त पडिक्कल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद रहे। श्रीलंका के लिए एकमात्र विकेट प्रभात जयसूर्या ने लिया। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र और उत्तराखंड में कल तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।